0: हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे.
1: आई वॉज नेवर दिस कॉन्फिडेंट इन लाइफ.
0: ओके, आई हैड अ फेज वेर आई वॉज गोइंग थ्रू अ बैड यू नो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. दैट वॉज बिकॉज ऑफ यू नो जो आउटसाइड सर्कमस्टेंसेज होती हैं, जो तुम्हारे साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके बेसिस पे तुम बहुत यू नो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फेस करते हो. आई वॉज गोइंग थ्रू दैट बैड फेज ऑब्वियसली. After, you know, 2 years of going through that phase, I realized that, oh, where is that charm that was in me? You know, something is missing. I have stopped talking. I have stopped going out. Why? Then I understood that. And उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई. And then, you know, I traveled throughout that year. मैंने उस year में 10 जगहें इंडिया में travel करी. You know, to sort of get back my confidence. And उसके बाद I understood that, you know, जो भी outside circumstances थी, जो which were, you know, pulling me down, they could no longer affect me after that 1 year. And then I started, you know, getting back on the track, meeting people, doing some things जो मुझे अच्छी लगती थी, doing events, going out to different places and working with different people, and उनसे सीखा मैंने बहुत कुछ. मैंने 12th तक साइंस पढ़ी, उसके बाद मैंने मास कम्युनिकेशन किया, उसके बाद मैंने इवेंट्स किया. ठीक है, तो आई थिंक आई हैड इनफ बैकअप्स को शन अवे करना, एंड देन आई केम टू दिस कंक्लूजन दैट आई हैव टू डू दिस. And I am meant to see the operations of things. So, अगर आज की डेट में आप पूछे मेरा बैकअप प्लान क्या है, I technically don't have a backup plan. But if I have to do something, I know I can do operations very well. Operations of any company, of any job, I can do that very well. Because मैंने एक master operations वाली field में काम किया हुआ है, जो events है जिसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ operations देखने होते हैं. तो if I can do this, I can see the operations of any place and any business. Walk Talk Radio.

0: एक इंसान के अलग अलग मूड्स होते हैं। कभी हम हैप्पी होते हैं, कभी सैड होते हैं, कभी नर्वस होते हैं, तो कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन जब हम म्यूजिक सुनते हैं ना, कोई भी गाना सुनते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसी म्यूजिक के मूड में चले जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ म्यूजिक। हेलो, हाय, नमस्कार, दिस इज आरजे गौतम और आज मेरे साथ हैं एक और गौतम, गौतम थापा। अगर आपने इनका नाम नहीं सुना तो इनकी आवाज जरूर सुनी होगी। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू गौतम इन वॉक टॉक रेडियो।
1: थैंक यू सो मच।
0: कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके?
1: बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट, सो थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, बट हाँ, मतलब अच्छा लग रहा है, अभी फीलिंग गुड है।
0: तो उस नर्वसनेस को एक म्यूजिक का फील देते हैं और गाने से शुरुआत करते हैं।
1: श्योर।

0: क्या बात है गौतम, क्या गाया है।
1: थैंक यू सो मच।
0: मुझे भी खुशी हो रही है, मजा आ गया मतलब सुन के।
1: अरे थैंक यू सो मच।
0: तो आपने जैसे अभी हिंदी गाना गाया
1: जी,
0: तो ऐसी और कितनी लैंग्वेजेस हैं जिनमें आप गाना गा लेते हैं?
1: मैं इंग्लिश सॉन्ग्स भी गाता हूँ, कुछ पंजाबी हो गए और कुछ सूफी हो गए। थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ आजकल जो हमारी कम्युनिटी लैंग्वेजेस हैं, कुछ गढ़वाली गाने प्रिपेयर कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि फरमाइशें काफ़ी आती रहती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और कुछ गोरखाली सॉन्ग्स की फरमाइशें आती रहती हैं, तो उनकी भी प्रैक्टिस चल रही है आजकल।
0: आप गिटार तो बजाते ही हैं?
1: हाँ जी।
0: साथ में और कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आप बजाते हैं या आपको आता है?
1: थोड़ा बहुत कीबोर्ड प्ले कर लेता हूँ मैं, बाकी गिटार मेरा मेन इंस्ट्रूमेंट है। अकोस्टिक गिटार ही प्ले करता हूँ ड्यूरिंग माई परफॉर्मेंसेज एंड ऑल। और अभी रिसेंटली 2 सालों से मैंने अपना बैंड फॉर्म किया है, तो एक बैंड, फुल बैंड में आपको पता ही है कि 4 लोग होते हैं, एक वोकलिस्ट होता है, लीड गिटारिस्ट होता है, बेस गिटारिस्ट होता है और ड्रमर होता है। तो बेस गिटारिस्ट की जगह हमारे पास थी नहीं, तो बेस गिटार भी आजकल मैं प्ले करके ही गाता हूँ।
0: क्या बात है।
1: तो ऐसी चीजें हैं बस।

0: जिन लोगों को दूसरे के सुनने की आदत नहीं है, छोटी छोटी बातों पर आप परेशान हो जाते हैं। आपको आगे बढ़ते देखने में बाकी हर मुमकिन कोशिश करते हैं आपको भटकाने की। तो आपसे मेरा यही कहना है कि सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि इस दुनिया में रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो दोस्तों, क्योंकि यहाँ टांग खींचने वालों की कमी नहीं है।
1: Walk Talk Radio, tune in for a better life.

0: एक आर्टिस्ट के लिए ना उसका पहला गाना बहुत ही स्पेशल होता है।
1: हाँ जी।
0: तो आपको कुछ याद आ रहा हो आपका पहला गाना आपने लिखा हो, गाया हो, या कोई भी मेमोरी हो ऐसी?
1: जी, पहला गाना जो मैंने कंपोज किया है, मेरा खुद का सॉन्ग है, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो ये खुला आसमां जो है उस गाने के बोल हैं। तो ये गाना मैंने बहुत पहले, आई बिलीव बैक इन 2004 मैंने ये गाना लिखा था, तो कभी मौका मिला नहीं, कंपोज भी खुद ही किया था बीच में, क्योंकि कभी हम लोग इस फील्ड में थे नहीं पहले म्यूजिक में। म्यूजिक में मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ, पर हाँ जब आया हूँ तो बड़े अच्छे तरीके से ही आया हूँ। तो तब मैंने इस गाने पे और काम करना शुरू किया, तो जो पुराने लिरिक्स थी उस गाने की वो भी थोड़ी सी मॉडिफाई करी इस टाइम के हिसाब से। तो दैट सॉन्ग इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, गाने का नाम है ये खुला आसमां।
0: जैसे आपने अभी म्यूजिक में आने की बात करी
1: जी,
0: तो ये म्यूजिक का शौक, ये सिंगिंग का शौक, ये आपने सिर्फ एक एज अ शौक करा है या इसकी आपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली है?
1: जी, मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली है। मेरे गुरुजी हैं पंडित मुरलीधर जगुड़ी जी, तो वो मेरे ही स्कूल में म्यूजिक टीचर थे, तो उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि मुझसे म्यूजिक सीखो। तो मैंने 6 साल का विशारद किया है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, वोकल सीखे हैं, मतलब वोकल सीखे, पर उसके बाद मैं प्रोफेशनली कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि वही आपको पता ही है, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो घर से आपको प्रेशर होता है कि पहले पढ़ाई पूरी करो, पढ़ाई के बाद फिर नौकरी करो तो वो वाला प्रेशर था। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली ये सब करने के बाद मैं आया म्यूजिक की फील्ड में। मैं आपको बताता हूँ, मैंने आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड वर्किंग, 4 साल मैंने नौकरी करी। नौकरी के दौरान मैंने US भी ट्रैवल किया, मेरी कंपनी ने मुझे बाहर भेजा, मतलब वेल सेटल जॉब थी। फिर मैंने वापस आके दोबारा देहरादून में वापस आया, फिर मैंने MBA किया, MBA के बाद भी मैंने 2-3 साल नौकरी करी। पर जब एक पॉइंट आ जाता है आपकी लाइफ में कि नहीं यार, ये चीज़ के लिए मैं बना नहीं हूँ, एक आपको हिट मिलता है कि मतलब ये चीज़ ना आप नहीं कर पाओगे, फॉर अ लॉन्ग रन आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि बचपन से ही शौक था म्यूजिक में आने का। ठीक है, कॉलेज लाइफ में भी हम स्टेज शोज में परफॉर्म करते थे, तो सोचते थे कि यार अब स्टेज वर्क ही करना है। अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती थी, पर क्योंकि नौकरी में इतना व्यस्त होते थे कि आपको नहीं मिलता था इतना टाइम कि आप जाके परफॉर्म भी करो। तो धीरे धीरे ये चीज़ें डेवलप हुई। 2018 में मैंने अपनी जॉब छोड़ी और मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे म्यूजिक ही करना है। तो अपने आप को प्रिपेयर करा मैंने 3-4 महीने काफ़ी, क्योंकि जब आप स्टेज शोज करते हो, जब आप स्टेज परफॉर्मेंस करते हो, तो आपको एक स्टैमिना चाहिए होता है,
0: बहुत बहुत चाहिए,
1: राइट? आपको कम से कम 2-2.5 घंटे या 3 घंटे आपको परफॉर्म करना है।
0: बिल्कुल।
1: तो आपके वोकल कॉर्ड्स, वोकल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप 3 महीने तक कंटिन्यू, 3 महीने बोल रहा हूँ सॉरी, 3 घंटे तक आप कंटिन्यू गा सके। 3 महीने इसलिए निकला मेरे मुंह से क्योंकि 3 महीने मैंने प्रिपरेशन करी थी डेली। तो उसके बाद मेरे को पहला ब्रेक जो मिला वो मुझे मिला जयपुर में। जयपुर से मेरी स्टार्ट हुई 2018 में। 6 महीने मैंने वहाँ के क्लब्स एक्सप्लोर करे, धीरे धीरे अपना बिल्डअप किया, अपने सॉन्ग लिस्ट चेंज करता रहा, क्योंकि एक टाइप के सॉन्ग्स अगर आप गाते रहेंगे तो आपकी ऑडियंस भी बोर हो जाती है। एग्जैक्टली, आपकी ऑडियंस बोर हो जाती है। फिर आपको इतने गाने प्रिपेयर करने हैं क्योंकि आपके रिक्वेस्ट बहुत आती हैं। अब कुछ रिक्वेस्ट मैं फुलफिल कर पाता हूँ क्योंकि मैंने वो गाने सुने हैं, मैं वो गाने प्रिपेयर कर चुका हूँ, कुछ कभी कभी नहीं हो पाते। फिर 2019 में मैं देहरादून आ गया, जब मुझे पता चला कि देहरादून में भी लाइव म्यूजिक का स्कोप बढ़ रहा है, बहुत सारे क्लब्स यहाँ पे खुले थे। सबसे पहला क्लब था ग्रेट इंडियन पब, जो कि आपके राजपुर रोड में है। फिर आपका टॉनिक है, जो कि आपके टूवर्ड्स बल्लूपुर रोड में है। तो टॉनिक से मेरी शुरुआत हुई थी, और अभी ऐसा है कि 5 साल हो गए मुझे टॉनिक में परफॉर्म करते करते, तो बस जर्नी वहीं से शुरू हुई म्यूजिक की और कंटिन्यू है अभी तक।

आजकल हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को जीने का ढंग बदल लेते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि अपनी पसंद का जीवन जीने के समान कोई जीवन नहीं। तो लाइफ अपने हिसाब से जिए, ना कि दूसरों के। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: आपने जर्नी की बात करी और अपनी पूरी कहानी के बारे में हमें बताया, लेकिन एक ऐसा जो आप एक पॉइंट आता है जब बंदे को हिट करता है,
1: हाँ जी,
0: यार नहीं अब नहीं करनी जॉब, अब मुझे अपने पैशन को फॉलो करना है, तो वो इंसिडेंट या वो पॉइंट कब था?
1: ये बहुत ही एक अमेजिंग किस्सा है। मैं गया तो था बिजनेस ट्रैवल के लिए अपनी कंपनी की तरफ से। आई यूज टू वर्क फॉर एन MNC उस टाइम पे, 2016 की बात है। हम चैटानूगा गए थे, ऑफिस का क्राउड पूरा एक प्रोजेक्ट लेने के लिए गए थे। तो 2016 में जब चैटानूगा में थे, टेनेसी एक स्टेट है US का, वहाँ पे एक सिटी है चैटानूगा। फिर चैटानूगा से हम नैशविल गए थे, विच इज़ अ म्यूजिक सिटी। तो नैशविल में, नैशविल से वैसे आपको मैं बता दूँ कि बहुत सारे सिंगर्स वहाँ से नैशविल के ही हैं, मतलब
0: जैसे जैसे
1: जैसे आपने सुना होगा एल्विस प्रेस्ली, बहुत ही 60s के जाने माने, अभी तक उनके गाने सुनते हैं, कांट हेल्प फॉलिंग इन लव विद यू उनके सॉन्ग्स हैं, माइली साइरस जो कि लोगों ने सुना ही होगा काफी नाम, शी इज ऑल्सो फ्रॉम नैशविल। तो वो म्यूजिक सिटी है, वहां पे मतलब हर 10 बंदों में से 9 बंदे जो हैं गिटार बजाना जानते हैं। तो वैसी क्लब हॉपिंग चल रही थी हम लोगों की, हमारी छुट्टी थी, हम घूम रहे थे, तो एक कैरियोके नाइट था वहां पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं थोड़े इंग्लिश सॉन्ग्स भी सुनता हूँ, गा लेता हूँ, तो मैं भी चढ़ गया स्टेज पे कि मैं भी गाऊंगा। सो वहां पे लोग थे जो मुझे कह रहे थे कि यू आर एन इंडियन, हाउ कैन यू सिंग इंग्लिश सॉन्ग्स एंड ऑल। तो मैंने कहा नहीं मैं गाता हूँ। तो जॉन डेनवर एक कंट्री आर्टिस्ट हैं, 60s-70s के ही हैं ये, तो उनका सॉन्ग है एनी सॉन्ग। तो मैंने जब वो एनी सॉन्ग गाया तो लोग वहाँ पे थोड़े वो हो गए कि यार ये तो बढ़िया गा रहा है लड़का,
0: इंडियन आदमी ने इतना अच्छा इंग्लिश
1: गाया है। बिल्कुल। तो वहीं उनसे, वहीं पे एक जेंटलमैन बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि यू हैव अ वेरी लवली वॉइस एंड यू शुड डू समथिंग विद योर वॉइस। तो वो बात मुझे काफ़ी हिट करी। तो नैशविल में मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं यार अब तो कुछ करना है, अब नौकरी ज्यादा नहीं हो सकती है। कुछ अपना ही करना है।
0: तो नैशविल से मतलब आपने अपनी गाड़ी मोड़ ली?
1: बिल्कुल बिल्कुल। वहां से आने के बाद 6-7 महीने मैंने थोड़ा और काम किया क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट में था। उसके बाद मैंने अच्छे से अपनी जॉब छोड़ी, पूरा अपना क्या बोलते हैं उसको, कौन सा पीरियड होता है वो,
0: नोटिस पीरियड
1: सर्व करके मैंने नौकरी छोड़ी और फिर मैं अपनी म्यूजिक जर्नी मैंने स्टार्ट करी।
0: आपने अभी नैशविल की कहानी सुनाई हमको
1: जी,
0: तो एक गाना फिर इंग्लिश में भी हो ही जाए।
1: इंग्लिश में मैं वही गाना सुनाता हूँ आपको जो मैंने
0: बिल्कुल, बिल्कुल, था ना?

0: थैंक यू।
1: अब मैं समझा कि वहाँ पर आपको क्यों उस आदमी ने बोला कि भैया अपनी गाड़ी घुमाओ। आप म्यूजिक के फील्ड में इतने टाइम से हैं और काफी तरह के गाने आपने सुने होंगे, गाए भी होंगे, और इतने बड़े बड़े दिग्गज हुए हैं इस म्यूजिक की फील्ड में।
0: हाँ जी।
1: तो आपका भी जरूर कोई ना कोई रोल मॉडल रहा होगा।
0: हाँ जी, मतलब मेरे तो बहुत सारे रोल मॉडल्स रहे, क्योंकि मैंने हर एक आर्टिस्ट से बहुत कुछ सीखा है। हर एक आर्टिस्ट की जो चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, वो ग्रैब करने की मैं कोशिश करता हूँ। बहुत सारे वेस्टर्न आर्टिस्ट को मैं सुनता हूँ, एल्विस प्रेस्ली हैं, बीटल्स बैंड है, ठीक है, जॉन डेनवर हैं, ये तो हमारे वो हो गए। बाकी हमारे जो इंडियन वो हैं, किशोर कुमार जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है, 90s का किड हूँ, तो अपने कुमार सानू जी, उदित नारायण जी, इन सबको सुन के बड़ा हुआ। और मेरे जो पसंदीदा अभी के जो हैं, मतलब जिनको मैं अभी तक मानता हूँ, हरिहरन साहब हैं, सुखविंदर सिंह, उनके जैसी आवाज किसी की नहीं है, मतलब वो डिफरेंट है। और आज के दौर में अगर बात करें तो अरिजीत की टक्कर के सिंगर तो कोई है नहीं, आप सबको पता है और ये सब मानते भी हैं, क्योंकि वो उनका ऐसा जॉनर है कि वो मतलब कोई भी गाना गा सकते हैं और विद दैट ईज वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसा है, तो मतलब इंस्पिरेशन मैं हर जगह से लेता हूँ, ऐसा नहीं है। सोनू निगम सर है ना,
1: उनकी जैसी आवाज भी,
0: उनकी भी आवाज जैसी कोई नहीं है,
1: कोई आवाज नहीं है ऐसी।

0: रेडियो।
1: जिंदगी में कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस उसको करने का तरीका कुछ अलग सा होना चाहिए। आप उस काम को कितनी शिद्दत से करते हैं, कितना क्रिएटिव तरीके से करते हैं, ये जरूरी है। और किसी भी काम को करने से पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। अगर खुद पर विश्वास हो तो वो काम फोकस के साथ होता है। सोचो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजों के बारे में कभी आपके साथ हुई हो, बचपन में, स्कूल टाइम में, जहां हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस अपने काम में होता था, फिर चाहे वो कोई खेल क्यों ना हो। इसीलिए आप कोई भी काम कर रहे हो तो फोकस के साथ करें।

0: जब ऐसे म्यूजिक की फील्ड में हम जाते हैं या कोई भी इंसान एंटरटेनमेंट की फील्ड को चुनता है तो इनिशियल डेज में काफी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो आपके क्या वो चैलेंजेस थे?
1: मेरी लाइफ के तो बहुत बड़े चैलेंजेस थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक वेल सेटल्ड जॉब में था, मुझे बहुत अच्छा ऑफर भी था, सैलरी भी अच्छी थी, जो कि हर माँ बाप को चाहिए होती है कि चलो बेटे को पढ़ाई करवाई है तो बहुत अच्छे से ये काम भी कर रहा है। तो उस समय ये डिसीजन लेना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, पर दिल से तो करना था, दिल तो मान नहीं रहा था कि अब नौकरी तुमसे होगी नहीं। तो जब मैंने नौकरी छोड़ दी थी तो मैंने 6 महीने तक अपने घर पे नहीं बताया था, मेरे पेरेंट्स को पता भी नहीं था कि ये, मतलब क्योंकि मैं दिल्ली में था तो घर वालों को कोई आइडिया नहीं था इसने नौकरी छोड़ दी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने जयपुर से शुरुआत करी, तो 6 महीने मैंने जयपुर में शोज करे और वो वीकेंड पे मेरे कुछ मैं अपने फेसबुक में या इंस्टा पे पोस्ट कर देता था, तो घर वालों को लगता है चलो सैटरडे संडे इसकी छुट्टी होती है तो ये अपनी
0: शौक
1: पूरा कर रहा है। एग्जैक्टली। पर जब मैं 2019 में वापस आया और जब मैंने बताया घर वालों को कि मैंने नौकरी छोड़ दी है, तो आपको, आप जानते ही हैं इंडियन पेरेंट्स थोड़े से, तो बिल्कुल खफा हो गए मुझसे। काफ़ी समय तक मेरे से बातचीत नहीं हुई, बातचीत भी नहीं करी, मुझे रोज समझाते थे ये क्या डिसीजन ले लिया तुमने इस एज में, हम तो सोच रहे थे तुम सेटल हो गए हो, तुम्हारी शादी करवाएंगे। पर नहीं, मैंने सोचा था जो करना है तो अब करना ही है, क्योंकि दिल में एक बार ही ठान लिया था कि अब तो भाई म्यूजिक ही करना है और इसके अलावा मैं कुछ और कर नहीं सकता क्योंकि मैं इसी चीज में अच्छा हूँ। तो बस डिफिकल्टी यही थी कि घर वाले मान नहीं रहे थे, तो बहुत टाइम लगा उनको समझाने में। फिर एक डिफिकल्ट टाइम और आया था, वो तो सबकी जिंदगी में ही था, जब कोविड का टाइम आया था तो आपके पास कोई लाइव शोज की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो उस समय काफी तगड़ा झटका लगा था। उस समय एक बारी के लिए दिल में ख्याल भी आया था कि यार ये गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, कि अभी अगर नौकरी में होता तो कम से कम सैलरी तो आ रही होती। पर वही है कि जैसे कहते हैं लोग कि जहां चाह है वहीं राह है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: मुझे जूम शोज बहुत मिले, मैंने घर में बैठे बैठे शोज करे उसके बाद, सो आई यूज टू गेट पेड थ्रू यू नो जहाँ पे जूम मीटिंग कर रहे हैं लोग, तो जूम मीटिंग में लोग मुझे कहते थे कि आपके पास सेटअप है, मैंने कहा बिल्कुल है, तो मैं उनके लिए एक एक घंटे परफॉर्म कर रहा हूँ, वो घर में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। मजा कम आता था लेकिन उनके लिए वो फन था और मेरे लिए मेरी मतलब रोजी रोटी टाइप आप कह सकते हैं। तो कोविड के टाइम पे मैंने जूम में बहुत शोज करे तो ठीक ठाक चला, बहुत अच्छा समय भी नहीं था पर मैं ये कहूंगा कि बहुत बुरा समय भी नहीं था, पर कोविड के टाइम पे मुझे टाइम बहुत मिला अपने आप पे काम करने में, तो ये पॉजिटिव पार्ट था। उसके बाद तो मैंने इतने गाने प्रिपेयर कर लिए कि मतलब अब मेरे पास गानों की कमी नहीं है,
0: बैंक भर लिया
1: मैंने अपना। एग्जैक्टली।

मेरे दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना ना बहुत आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लेकिन हाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ऐसी ही बातों को सुनने के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ।

0: अभी हम लाइव रिकॉर्डिंग्स की बात कर रहे थे, लाइव शो की बात कर रहे थे
1: जी।
0: तो एक स्टूडियो में रिकॉर्ड करना
1: जी।
0: और लाइव शोज करना
1: जी,
0: काफी डिफरेंस होता है
1: कि
0: आप एक कॉन्सर्ट में या लाइव शो में आप मिस्टेक नहीं कर सकते।
1: ना ना बिल्कुल भी।
0: तो लाइव शो करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं?
1: लाइव शो करने के देखिए डिसएडवांटेज तो मैं कुछ कहूंगा नहीं कि कुछ है, क्योंकि लाइव शोज में एक तो आपको क्राउड रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। आप जब आप परफॉर्म कर रहे हो और आपके सामने कोई क्राउड ही नहीं है तो आपको वो फील ही नहीं आएगी, यू नो। अब हम गाते ही हैं लोगों के लिए और अपने लिए भी गाते हैं, ऐसा नहीं है, बट जब लोग सामने बैठे हों और थोड़ा म्यूजिक को अप्रिशिएट कर रहे हों, जो सुनने वाले लोग हों, तो उनके सामने परफॉर्म करने में बहुत मजा आता है। और जैसा आपने कहा कि क्या डिफरेंस है स्टूडियो और लाइव में, स्टूडियो में आप रीटेक ले सकते हैं, लाइव में आप रीटेक नहीं ले सकते, तो ये पार्ट है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अपने बैकग्राउंड के बारे में आप थोड़ा सा और बताएं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड फ्रॉम स्कूल टिल योर कॉलेज क्या क्या आपने कराया?
1: स्कूल मेरा केंद्रीय विद्यालय हाथीबड़कला से है, फिर मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, बीएससी मैंने करा है आपका डीएवी कॉलेज से, फिर आफ्टर डीएवी पीजी 4 साल मैंने नौकरी करी है, मैंने आपको जैसे बताया कि 7-8 साल मैंने नौकरी करी है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में करी है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में करी है। पहले मैं शिपिंग कंपनी में था, फिर मैं एक स्टाफिंग कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल कंपनी थी गुड़गांव में, वहाँ पे था। तो 4 साल वहाँ जॉब करने के बाद 2013-14 में मैंने MBA किया है, ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी से मैं MBA हूँ। फिर मैंने बिग बाज़ार में एज अ मार्केटिंग मैनेजर काम किया है, जो बिग बाज़ार यहाँ देहरादून में आया था। फिर मैं वापस नोएडा मूव हुआ, दिल्ली और नोएडा, तो EXL सर्विसेज में काम किया है। फिर ये सब जब हो गया, क्योंकि किसी भी कंपनी में मेरा मन नहीं लगता था, क्योंकि मैं शायद बना ही म्यूजिक के लिए था, तो इसलिए मैं हर 2-2 साल में स्विच कर लेता था फॉर द ग्रोथ एज वेल। पर वही है कि काम में, किसी भी काम में मुझे मजा नहीं आया, और जब से मैं म्यूजिक में आया हूँ फिर मुझे और कुछ करने का मन ही नहीं करता।
0: बिल्कुल, काम में मजा आना ना बहुत जरूरी,
1: बहुत जरूरी होता है।
0: तो जब गौतम थापा एक स्टूडेंट था या एक नॉर्मल कॉलेज का लड़का था
1: जी,
0: और जब अब आप एक फेमस सिंगर बन गए हैं, शहर में गाते हैं, लोग आपको जानने लग गए हैं
1: जी,
0: तो लोगों के नजरिए में कुछ बदलाव देखते हैं क्या आप?
1: बदलाव एज इन ऐसा कोई बड़ा बदलाव तो नहीं है। अब स्टूडेंट लाइफ में तो आपको बस आपके फैकल्टीज जानते हैं, आपके कॉलेज फ्रेंड्स जानते हैं, कॉलेज के लोग जानते हैं। स्टूडेंट लाइफ में भी मैंने जब ग्राफेस्ट होता है तो परफॉर्म किया है, तो कॉलेज में थोड़ा बहुत फेमस हो गया था, और जब से अब यहाँ देहरादून में करता हूँ तो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हूँ मैं, बट हाँ थोड़ा बहुत, थोड़े लोग जानते हैं अब देहरादून में कि हाँ कि गौतम थापा इस क्लब में परफॉर्म कर रहा है, तो चलो हम इस क्लब में चलते हैं आज सुनने के लिए।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और वॉक टॉक रेडियो में मैं हूँ आपके साथ किरण। वॉक टॉक रेडियो पर जो हमारी पॉडकास्ट सीरीज है उसमें बहुत सारे अलग अलग लोग अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस को लेकर और अपने बहुत सारे थॉट्स को लेकर हमारे साथ बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं और इसी पर आज हमारे साथ हमारी पॉडकास्ट सीरीज में मेरे साथ इस वक्त जो स्टूडियो में मौजूद है उनके बारे में आपको बता दूं, इनका नाम है कृतिका गुरुंग और एक बहुत ही प्यारा सा स्टार्टअप इनका है जिसका नाम है एवांते। तो सबसे पहले कृतिका बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉक टॉक रेडियो पर।
2: थैंक यू सो मच किरण फॉर हैविंग मी।
1: कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आकर?
2: बहुत अच्छा लग रहा है।
1: रेडियो का मतलब क्या है आपकी लाइफ में?
2: रेडियो का मतलब है टू कनेक्ट पीपल थ्रू आवर वॉइसेस, थ्रू आवर स्टोरीज, थ्रू आवर जर्नीज।
1: हाँ, सो कृतिका सबसे पहले जो है मैं आपसे ये पूछूंगी कि कृतिका गुरुंग कौन है, क्या करती है एंड क्या करना चाहती है लाइफ में आगे, क्योंकि जो हमारे लिसनर्स सुनेंगे उन्हें आपके बारे में अभी कुछ नहीं पता।
2: सो कृतिका गुरुंग, शी इज अ ऑर्डिनरी गर्ल हु लव्स शॉपिंग, हु लव्स क्रिएटिविटी एंड छोटे से शहर से है, छोटी सी जगह से है, डोईवाला।
1: हाई फाई, मैं पासी से हूँ,
2: पास पास वाली जगह से है। और मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी से।
1: ओके,
2: इंग्लिश ऑनर्स, देन एम ए इंग्लिश 2021 में कंप्लीट हुआ है। सो लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, खाली थी और क्लासेस भी ऐसी चल रहे थे, ऑनलाइन चल रहा था, तो क्या हुआ कुछ ना कुछ चलता रहता था क्रिएटिविटी ना, कि क्या किया जाए, मतलब कुछ ना कुछ लाइक स्क्रैप बुक वगैरह हो गया या फिर कार्ड्स बनाना, ये सारी चीजें मुझे पहले से बहुत पसंद था। एकदम से माइंड में क्लिक हुआ कि एक आईडी बना लेते हैं, तो फिर माइंड में आया कि चलो स्क्रंची से स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रंची से स्टार्ट किया मैंने एंड उस टाइम पे मेरे जो जूनियर्स रहे हैं कॉलेज के इंग्लिश ऑनर्स के बैच के, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे ना।
1: कैसा सपोर्ट?
2: उन्होंने काफी ज्यादा पोस्ट वगैरह शेयर किया, खरीदा मुझसे काफी स्क्रंचीज, तो मेरे लिए वो काफी मोटिवेटिंग था उस टाइम पे ना। अगर आप कुछ सामान बना रहे हो या फिर कुछ आपने ला के रख दिया दुकान में, आपने दुकान भी खोली, कोई खरीद ही नहीं रहा है, कोई कस्टमर ही नहीं है, तो एक बहुत ज्यादा ना डीमोटिवेशन टाइप का हो जाता है आपके लिए। हाँ, लेकिन आपने कुछ स्टार्ट किया है एंड लोग आपको
1: अप्रिशिएट
2: कर रहे हैं, आपको आगे वो कर रहे हैं, फेमस टाइप का कर रहे हैं थोड़ा बहुत छोटा मोटा करके, लेकिन हाँ वो काफी मेरे लिए उस टाइम पे मैटर करता था, उस टाइम पे अभी भी मैटर करता है। तो ऐसे स्टार्ट हुआ एवांते का जर्नी।
0: वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: रेडियो।
1: कभी भी हौसला मत खोना ए मुसाफिर, क्या पता मंजिल ने भी तेरे ही हौसलों का बहाना लिया हो।
0: वॉक टॉक।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: सो जब ये स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बिल्कुल डिफरेंट है ना, वो बिल्कुल पढ़ाई वाला है एकदम, और ये जो आप काम कर रहे हो एवांते के अंदर वो एक क्रिएटिव साइट है आपका, तो उस टाइम पे घर वालों को ऐसा नहीं लगा कि क्या कर रहे हो, कॉलेज तो किसी और चीज की फीस हम दे रहे हैं और तुम जो चूज कर रही हो, काम कर रही हो, वो कुछ और ही है, तो उनका क्या रिएक्शन था उस पे?
2: बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफरेंट, बट मेरा ये है कि अगर मैंने कुछ चीज स्टार्ट किया है या फिर कुछ ठान लिया ना, फिर फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई कुछ भी बोले, तो करना है तो करना है, चाहे मैं रात के 2 बजे तक करूँ चाहे 3 बजे तक करूँ, और मॉर्निंग में उठ के फिर मुझे कॉलेज भी जाना पड़े ना 7 बजे, तो चलता है मेरे लिए ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है।
1: बड़ी बिंदास था आपका जो थॉट प्रोसेस था उस टाइम पे, था
2: ये चीज माइंड में थी तो फिर करती गई। हाँ,

0: पेरेंट्स बोलते थे कि कुछ जॉब वॉब का देख लो, बाकी साइड बाय साइड में अपना पढ़ रही थी उस टाइम पे, और कॉलेज भी फिर खत्म हो गया और कॉलेज में कुछ प्लेसमेंट का भी कुछ आया नहीं उस टाइम पे. तो एक तरह से ना माइंड में थोड़ा डिप्रेसिंग भी हो रहा था वो साइड बाय साइड. बट इवान थे मेरे लिए ना एक वो था खुद को हील करने का ना. हम किसी न किसी चीज के थ्रू खुद को हील करते हैं, कोई घूम के करता है ना. और तो मेरे लिए वो थी क्रिएटिविटी.
1: अच्छा,
0: तो उसी में मैं बिजी रहती थी, कभी उसका कंटेंट बनाने में, कभी उसको यू नो बनाने में उसी चीज को, या फिर उसको पिक्चर्स क्लिक करने में, फिर सोचने में कि अरे इसका क्या नाम रखना चाहिए इस वाली स्क्रंची का, इसको कैसे हम डिफरेंट तरीके से यू नो प्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे रीच बढ़ाया जाए. तो माइंड में वो चलता रहता था. तो मैंने ज्यादा ना उस चीज को, जो चीज है नहीं उस चीज को मैंने ना ज्यादा उस टाइम पे सोचा नहीं कि जॉब नहीं है करके. तो इसी सोच के यू नो लेके मैं आगे बढ़ती गई. तो हाँ. ऐसे ही अब 2 साल भी हो गए वांदे को.
1: हाँ. मतलब वो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने उस बात का दुख नहीं मनाया, बट ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने अपने आप को टाइम दिया उस टाइम के लिए कि कोई बात नहीं, वो कर रहे हैं तो करने दो, मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगी.
2: Walk Talk Radio, tune in for a better life.

या तो दिन आपके अनुसार चलता है या आप दिन के अनुसार चलते हैं। जो प्रेरित होना चाहते हैं वो किसी भी चीज से हो सकते हैं। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। शानदार जीत के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपनी काबिलियत बस आप ही पहचान सकते हैं। Mock Talk Radio, tune in for a better life.

0: Walk Talk Radio.
1: कि जब आपके घर वाले आपका सपोर्ट करते हैं, उसके बाद जो बाहर वाले होते हैं ना, वो बहुत बड़े हमारे क्रिटिक्स बहुत सारे आते हैं इधर उधर से, कुछ कहते हैं, लेकिन कई लोगों को ना वो चीज तोड़ देती है.
2: Like मैंने आपको बताया, मैंने स्क्रंचीज से स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे मैं क्या करती थी, मार्केट में जाके फैब्रिक चूज करती थी. अगर आप कुछ अपने लिए लहंगा भी बना रहे हो या फिर नॉर्मल एक सूट या कुर्ती ले लो, तो आप कुछ फैब्रिक देख के लड़के को होता है ना, खुद को इमेजिन कर लेती हो कि इसका ये वाला इस फैब्रिक का कि ओके इस फैब्रिक में और इस प्रिंट में और इस एम्ब्रॉयडरी में ये स्क्रंची बहुत अच्छी लगेगी.
1: एस्थेटिक सेंस.
2: हाँ, तो वो चीज था पहले से ना. बट सुनने में ये आता है कहीं से, पता लगता है कि ये ना बचे हुए कपड़ों का बनाती होगी ये लड़की, उन्हें पता भी नहीं, उन्होंने देखा भी नहीं वांथे में चल क्या रहा है. बट बातें कैसे बनाएंगे ना फिर, अगर देख लेंगे तो. तो ये चीज सुनने में आती थी, तो लगता था कि भाई क्या ही, क्यों ही बोलना ऐसे लोगों से. सोचने दो उन्हें जो सोचना है, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो. सो लेट इट बी, आप जाओ, आप जिसको जो बातें करनी है करो, मैं ऐसी खुश हूँ, मैं ऐसी कर रही हूँ.
1: तो उस वक्त, अब ये तो रही क्रिटिसिज्म वाली बात, एप्रिसिएशन की बात करूँ या फिर कॉम्प्लीमेंट्स की बात करूँ आपके वर्क को लेके, लेकिन जब किसी का कॉम्प्लीमेंट आता है, जब कोई कह देता है यार बहुत अच्छा कर रही हो, तो बड़ा अच्छा लगता है, तब सेटिस्फेक्शन होता है, हाँ मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ. तो वो कॉम्प्लीमेंट्स कौन कौन से थे, कहाँ से आए हो?
2: जब स्टार्टिंग में क्या हुआ, नॉट स्टार्टिंग, लास्ट ईयर की बात है, जब मैंने एक मैम है दैट सिली वॉन्डरर करके, उनका इंस्टाग्राम में नेम है मिनर्वा मैम, उनका नाम मिनर्वा है. तो उस टाइम पे मैंने उनको कोलैबोरेशन के लिए पूछा था, तो उन्होंने पेज वगैरह चेक किया, उनको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने कोलैबोरेट किया. और उनके मतलब जब उन्होंने कोलैबोरेशन किया तो काफी फॉलोवर्स भी आए, और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया उस चीज को ना, काफी अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया अपने कोलैबोरेशन वाली रील पे. तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा ना एक माइलस्टोन टाइप था. अच्छा, उस टाइम पे ओके. और उसके बाद चीजें काफी अच्छी होने लगी, यू नो, फैमिली फ्रेंड्स जब कुछ भी गिफ्ट विफ्ट भी हो, छोटी मोटी चीजें वो मेरे से ही आके पैक करवा रहे हैं, सब ले रहे हैं, तो मेरे लिए काफी वो था, वो ओवरवेलमिंग था काफी कि ओके नाउ इवांते इज देयर फर्स्ट चॉइस, आई एम डूइंग समथिंग, ठीक है सही चल रही हूँ.
1: ओके. Walk Talk Radio. Tune in for a better life.

0: ये है वॉक टॉक रेडियो।
1: वॉक टॉक रेडियो,
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। हालात कैसे भी हों, वक्त अच्छा हो या बुरा हो, अगर आप हंसकर मुश्किल का सामना करते हैं तो यार मुश्किल भी एक दिन शर्मा के भाग जाएगी।
0: वॉक टॉक रेडियो,
1: वॉक टॉक रेडियो।

0: Talk Radio.
1: आपने अभी कोलैबोरेशन की बात करी और अगर मैं बोलूं कि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने आइडिया से एक स्टार्टअप किया है और सोच रहे हैं कि उसको एक उस जगह तक पहुंचाएं जहां तक वो चाहते हैं, तो सोशल मीडिया की जहां तक मैं बात करूं एंड क्योंकि आप एक यूथ हो तो आप बता सकते हो कि सोशल मीडिया कितना हमारे लिए, हमारे मेंटल पीस के लिए खराब भी है और अगर हम उसको अच्छे से इस्तेमाल करें, उसका सही इस्तेमाल करना जाने, तो वो हमारे लिए एक एडवांटेज भी हो सकता है. आपका कैसा एक्सपीरियंस है?
2: आई विल से कोलैबोरेशन को लेके बोला ना आपने, लाइक उस टाइम भी मुझे बहुत अच्छे लोग भी मिले, जैसे मैंने आपको मिनर्वा मैम का बताया, और भी है 2-3 जो बहुत सपोर्ट करते हैं, जो रील्स वगैरह शेयर करते हैं, पोस्ट वगैरह शेयर करते हैं, जिनकी ऑलरेडी मतलब कीज में है फॉलोवर्स. इस बीच ऐसी चीजें भी हुई है जब मैंने ऐसे गलत लोगों के साथ कोलैबोरेट कर लिया. वो भी पेड कोलैबोरेशन, फर्स्ट और लास्ट टाइम था वो, जहाँ पे मैंने अपने प्रोडक्ट्स भी बहुत दिए, ठीक है, और पेड कोलैबोरेशन था, पैसे भी दिए, लेकिन ना उसमें एक फॉलोवर आया, ना उसमें कोई कुछ रिव्यू वगैरह इतना कुछ था नहीं, क्योंकि उन्होंने अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं किया. और वो भी चीज बार बार बार बार बोलने पे, एंड जब आप बार बार किसी को बोलते फिर वो बोलते हैं कि यू आर रेस्टलेस, व्हाई यू आर बीइंग सो रेस्टलेस. तो हम बोलते हैं ना, जैसे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, आई नॉट से कि वो बुरी है या वो, लेकिन जब आप कुछ काम कर रहे हो, आप उस चीज पे प्रोफेशनली उस चीज को डील कर रहे हो, तो भले वो स्मॉल बिजनेस हो या बिग बिजनेस हो, आप उस चीज को जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपको पेमेंट मिल चुकी है, तो आपको वो चीज भी उतनी ही श्रद्धा से करनी चाहिए जितनी आपने बाकी चीज को किया है. एंड वो चीज उन्होंने की नहीं, तो वो बहुत डिसहार्टनिंग था मेरे लिए. तो ये चीज भी आई डोंट नो कि कितनी आनी चाहिए उस सोशल मीडिया में, लोगों को कैसे पता लगना चाहिए कि हाँ कौन फेक है, कौन ऑथेंटिक है, कौन रॉ है और कैसे कर रहा है अपनी चीजों को. सबका अपना अपना वे है, बट इन सब चीजों में बिजनेस ओनर्स को मैं यही बोलूंगी कि बहुत सोच समझ के स्टेप ले जब हम कोलैबोरेशन वगैरह करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डर्स कैसे आते हैं स्टार्टिंग में. ठीक है, एक टाइम पे एक वो हाइट पे भी चले जाते हैं कि बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं, बट फिर वही ना, जैसे हम बिजनेस में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं,
1: हाँ.
2: बहुत ऊपर भी जाते हो तो फिर उसी हिसाब से नीचे भी आते हो, तो वो बैलेंस करना भी है. तो जब हम किसी पे स्पेंड कर रहे हैं कोलैबोरेशन वगैरह में, तो सोच समझ के उतना आपको रीच आना भी चाहिए जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं.
0: Walk Talk Radio. Tune in for a better life.

0: A lion will never have to tell you that he's the king of the jungle. The eagle will take its flight knowing it owns the sky. And the shark will go about casually in the ocean just making its presence. You know, friends, it's never that noise you should make that will prove your value and people will hear it. But it is the skill, it's a hardship, it's the work which you might be doing constantly and people are noticing it. You don't need to prove yourself to the other people who will always try to pull you down. But you need to continuously work on yourself. Walk on the road marked by you. That consistency and persistence is needed in your this journey. The success ultimately comes. People would follow you. People would praise you. But people would praise you for your hardship, your determination. So stop seeing here and there what people are thinking about your work, whether they're praising or pulling you down. Just go ahead.
1: हाय, मेरा नाम शुभ बिश्नोई है. मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रोबस्ट वर्ल्ड. आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर. आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो तीन चीजों की अगर हम बात करें, पेड़, पानी और फार्मिंग के लिए लैंड. तो पेड़ हमें देते हैं ऑक्सीजन, बिना पानी के कोई जिंदगी नहीं. और फूड की बात करें तो बिना फार्मिंग के कोई फूड नहीं. लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ों को काटा जा रहा है, नदियों को नाला बनाया जा रहा है और खेतों पे कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ये सब बनाई जा रही हैं. लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है नेचुरल रिसोर्सेज हमारी जिंदगी के लिए और हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए. बिना नेचुरल रिसोर्सेज के लिए ना आगे कभी जिंदगी होगी, ना ये कभी कोई जानने के लिए बचेगा कि ह्यूमन रेस या फिर एनिमल रेस करके कोई होता था. अगर हम बात भी करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की तो सिर्फ बातों तक या डिबेट्स तक ही सीमित रह जाती है. अगर हम बात करें कुओं की, तो गाँव में जो कुएं होते थे उनको भर दिया जाता है और उनपे जमीन बना के उनपे कब्जा कर दिया जाता है. सारी नदियों में इतना कचरा, इतना इंडस्ट्री की फैक्ट्री का कुछ ना कुछ रसायन डाल के उनको हम नालों में कन्वर्ट कर देते हैं. और खेतों की तो बात ही क्या करें, वहाँ हर जगह कंस्ट्रक्शन होती है. लेकिन ये बात गवर्नमेंट को कुछ ज्यादा ही अलार्मिंग लगी, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स निकाले और विलेजेस में वापस वेल्स या कुओं को वापस खोदना शुरू किया गया. और इसके बेस्ट एग्जाम्पल आज हिंदुस्तान में राजस्थान और महाराष्ट्र हैं, जहाँ पे वापस से कुएं खोदे जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वाटर टेबल कम हो रही है और लोगों को पानी की आगे फ्यूचर जनरेशन में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है. एक और अगर हम बात करें कहीं पे नेचुरल रिसोर्सेज की, तो वो माइनिंग की आती है. अब आप देखेंगे कि अगर कहीं पे भी माइनिंग होगी, चाहे वो कोल की हो, चाहे क्रूड ऑयल की हो, वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट एरियाज और कहीं पे भी रिजर्व एरियाज में होती हैं. तो ये एक और बात ये होगी कि जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं. अगर माइनिंग होगी तो जंगल के पेड़ कटेंगे. जितनी भी हमारी माइनिंग के लिए डिगिंग की जाएगी, हमें जितनी भी हमारी मशीन्स लगी जाएंगी, वो किसी ना किसी कोल या पेट्रोल या डीजल या किसी ना किसी चीज़ पे चल रही होगी. उसके तहत हमें और पॉल्यूशन बढ़ेगा, डिफॉरेस्ट्रेशन होगा, बर्निंग ऑफ ऑयल होगा. और साथ ही साथ जब हम इस क्रूड ऑयल को माइनिंग करके कुछ भी कहीं भी ले जाएंगे, फैक्ट्रीज में उसे रिफाइन करने के लिए पॉल्यूशन और होगा. और लास्ट में हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं, चाहे पेट्रोल हो, हम हर दिन ट्रैफिक में जाते हैं, कहीं ना कहीं हम सभी को जाना होता है, वहाँ पे भी पॉल्यूशन होगा. पॉल्यूशन सिर्फ एक व्यक्ति के वजह से नहीं होता है, पॉल्यूशन हम सब कर रहे हैं और हम ना चाहते हुए भी उसका हिस्सा बनते हैं. अगर आप कहीं पे भी आ, चाहे आप अपने उत्तराखंड के देहरादून की बात करें, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आप देखेंगे लोगों को एक ही ऑफिस में जाना होता है, लेकिन वो फोर व्हीलर से, एक फोर व्हीलर में एक व्यक्ति बैठा होता है. तो उससे क्या पॉल्यूशन बढ़ता नहीं है? पार्किंग की दिक्कत आती है, हर किसी को गर्मियों में छाए में पार्किंग और सर्दियों में उनकी गाड़ी गर्म रहे तो धूप में पार्किंग चाहिए होती है. नेचुरल रिसोर्सेज की बातें सिर्फ बात ना रहे, हम इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंट और बच्चों के फ्यूचर जनरेशन का इंपॉर्टेंट हमें दिमाग में रखते हुए नेचुरल रिसोर्सेज का सही तरीके से उपयोग करना है. हम सब सोचते हैं कि हमें अपने घर को बचाना है, घर को साफ रखना है. तो सबसे पहला घर अगर आपको मानना है तो आपका सबसे पहला घर ये धरती माता है. ये धरती है मदर नेचर जिसे आप कहते हैं. आपका घर सिर्फ चार दीवारी तक सिमटा हुआ नहीं है. आप ये सोचिए कि आप किस तरीके से नेचर को सेव कर सकते हैं और पर्यावरण के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए आप कुछ छोड़ के जा सकते हैं. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो.
2: ये है वॉक टॉक रेडियो. वॉक टॉक रेडियो, चलते रहिए अपने रास्ते पर. चलने में माहिर बन जाइए, या तो मंजिल मिल जाएगी या तो अच्छे मुसाफिर बन जाएंगे.
3: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ. ट्यून इन.

0: स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, घर, बस में चलते हुए, सड़क पर चलते हुए, कहीं भी, कभी भी, क्या पता कौन हमसे किस बात पर बुरा व्यवहार करके चला जाए। तो जवाब में हम क्या करें, दोस्त अच्छे के साथ अच्छा बने, बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तराशा तो जा सकता है पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। तो बुरे के लिए हम भी क्यों बुरा बने, आप जैसे हैं वैसे ही रहे और ऐसे ही बातों के लिए सुनते रहे वॉक टॉक रेडियो।
1: वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: अगर जिस दिन आपने खुद को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर दिया ना, तो उसी दिन से आपने लाइफ को जीना छोड़ दिया। आपकी लाइफ में आपकी खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है, लेकिन एक बार जब आप दूसरों को खुद से कंपेयर करना शुरू कर दोगे तो आप दूसरों के हिसाब से चलना शुरू कर दोगे। आपको आपके पास जो भी है आप खुश नहीं रहोगे, आप हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते रहोगे, जिसके चलते आप कभी भी अपने काम पर फोकस नहीं कर पाओगे। लाइफ आपकी है, सपने आपके हैं, तो फिर रिमोट भी आपके हाथ में होना चाहिए। इसलिए दूसरों के बारे में सोचना या फिर खुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो।
1: Walk Talk Radio। नमस्कार, मेरा नाम शुभ बिश्नोई, मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रोबस्ट वर्ल्ड। आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर, और अब हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे, जॉइंट फैमिली। तो हिंदुस्तान बहुत चीजों के लिए जाना जाता था, जिसमें से तीन महत्वपूर्ण चीजें थी हमारी, वेल्थ, हेल्थ और फैमिली। जब ब्रिटिशर्स या इन्वेडर्स आए, वो हमें लूट के, हमारी सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को लूट के चले गए, जहाँ पे हमारी वेल्थ पे बहुत प्रभाव पड़ा। जो हमारी हेल्थ थी, हमारी आयुर्वेद और योगा, जो पूरे वर्ल्ड या पूरे विश्व में बहुत आज भी प्रसिद्ध है, उसको खत्म करने के लिए हमें जो ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने अपनी इंग्लिश दवाइयां हमारे ऊपर थोपी गई। और तीसरी चीज, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी फैमिली, ये धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, जॉइंट फैमिलीज, और प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रही हैं, क्योंकि सबके दिमाग में कहीं ना कहीं एक तरीके से वेस्टर्न कल्चर की सोच डाली जा रही है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए पांच लोग हैं, तीन भाई और दो बहनें। अब उनके हस्बैंड्स भी होंगे, वाइव्स भी होंगी, और उनके बच्चे भी होंगे, तो कुल मिला के कहीं ना कहीं ये 25-30 या उससे आगे का, ज्यादा का एक परिवार बन जाता था। अब हर एक व्यक्ति की, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, उसकी एक ना एक व्यक्ति से बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती थी, चाहे वो भाई की बहन से हो, चाहे एक बच्चे की ताऊजी से या बुआ से या चाचा से, एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी और खूबसूरत होती थी, जहाँ पे वो सब कुछ खुल के शेयर कर देते थे। खूबसूरती तो जॉइंट फैमिली की एक और है, वो कि हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा सबके लिए इक्वल होता था, कोई अलग नहीं, कोई अपना नहीं, सब अपने होते थे, सब इक्वली ट्रीट किए जाते थे। अगर घर में शादी भी होती थी तो कुछ ना कुछ करके शादी इतने प्यार और आराम से निपटती थी कि किसी एक व्यक्ति पे बोझ ही नहीं आता था। लेकिन आज वही जॉइंट फैमिली टूटने लग गई है, फैमिली रिश्तेदारी में बदल गई है, जो सिर्फ आते हैं और थोड़ा बहुत काम करा के चले जाते हैं। तो क्यों ना हम अपनी भारतीय संस्कृति को इतना मजबूत रखें कि चाहे कुछ हो जाए, हम वो कॉन्फिडेंस और वो जितना भी हमारी स्ट्रेंथ थी वो कहीं जाने ना दे। तो क्या किया जाए कि अगर जॉइंट फैमिली नहीं है, उसे जॉइंट फैमिली फिर से बनाया जाए? तो मेरा मानना है कि महीने में 15 दिन में एक डिनर क्यों ना किया जाए, जगह बैठ कर, एक किसी के हर दिन घर चूज करके वहां पे जाया जाए, डिनर किया जाए, बॉन्डिंग की जाए, ताकि आपको शेयर करने के लिए आपके भाई बहन बने। दो लोग कहते हैं कि मेरे दोस्त नहीं है, मैं क्या करूं, तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। आई होप ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जल्दी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: वॉक टॉक रेडियो। कभी भी हौसला मत खोना ए मुसाफिर, क्या पता मंजिल ने भी तेरे ही हौसलों का बहाना लिया हो।

नमस्कार, मेरा नाम शुभ बिश्नोई, मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रोबस्ट वर्ल्ड। आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर, और अब हम बात करेंगे कि आप सभी खुश रहो। तो खुशी है क्या? खुशी एक मन में होने वाली एक सुखद अनुभूति है, एक फीलिंग है जिसमें आप बस सुखी हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपने रावण के बारे में सुना होगा। रावण के पास क्या कुछ नहीं था, सब कुछ था, लेकिन तब भी वो सुखी नहीं था। उसने सीता माता का अपहरण कर लिया। और दूसरी ओर आप दूसरे पहलू को देखें तो हमारे प्रभु श्री राम जो राजपाट वगैरह सब कुछ छोड़ के आ गए और एक छोटी सी कुटिया में अपने एक भाई के साथ वन में रहते थे। तो खुशी कोई चीज नहीं है जो आप कहीं से लेके आ सकते हैं। लोग पूछते हैं कि मेरे को खुश रहना है, मैं क्या करूं, मैं खुश कैसे रहूं? तो खुशी एक चीज नहीं है कि आप जाके दुकान से ले आए या मार्केट से ले आए, या फिर ये कोई लिविंग की स्टाइल नहीं है। खुशी तो तब मिलती है जब आप सुखी हैं, टेंशन नहीं है लाइफ में, जैसे हैं जो है उसके साथ आप सैटिस्फाइड है। था मैंने ये कहीं सुना था कि केमिस्ट्री में जैसे हमें पढ़ाया जाता था कि जब एटम या न्यूक्लियस कुछ टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है,

उसी तरीके से जब आप दुखी होते हैं, आप टूटते हैं कहीं से, आपका मन टूटता है, तो आपकी एक एनर्जी रिलीज होती है। तो अपने आप को थैंकफुल करिए कि आपकी जो एनर्जी है इसको आप सही जगह डाल के आप खुशी के माध्यम या खुशी के रास्ते जा सकते हैं। ये एनर्जी को आप नेगेटिव भी कर सकते हैं, पॉजिटिव भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति खुश होता है ना, उसकी अलग ही दुनिया होती है, वो उसी में मग्न होता है। अब एक स्टूडेंट या यूथ की लाइफ में एग्जाम्स एक बहुत बड़ी चीज होती है, कॉम्पिटिशन एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो आपने पूरी मेहनत की, आप खुशी से मेहनत कीजिए, और 1% को अगर जो चीज आप जिस लक्ष्य की तरफ आप जा रहे हैं वो नहीं हो पाए, तो ये सोचिए कि आपका प्रायोरिटी क्या थी। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी खुशियां थी। आपके पेरेंट्स के लिए भी आपका सक्सेसफुल होना जरूरी तो है, परंतु वो चाहते हैं कि आप खुश रहिए, वो पहली प्रायोरिटी रहती है। तो आप ये जान चुके हैं कि खुश रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बाकी सब छोड़ के आप खुशी की तरफ बढ़ेंगे तो आपके 10 दरवाजे और खुलेंगे। तो अब आप ये बताइए कि आप खुश हैं? क्या आपको खुशियां ढूंढनी जरूरी है? जो आपकी लाइफ जैसे है, क्या आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं है? जो लोगों को चीजें नहीं मिलती, क्या आपके पास वो नहीं है? मैं आशा करता हूं कि आप इस प्रश्न का उत्तर अभी अपने मन में जरूर ढूंढेंगे, और इसका उत्तर आज जब भी आप ये सुन रहे हैं आज जरूर ढूंढिएगा। आई होप ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: रेडियो। कुछ बनना है तो अपने आप की तरह बनो, किसी और की तरह कोई ना कोई हर रोज यहाँ बन रहा है, तैयारी ही सफलता है।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

नमस्कार, मेरा नाम शुभ बिश्नोई, मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रोबस्ट वर्ल्ड। आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। हम बात करने वाले हैं राइट यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड इंटरनेट। आप ज्यादा नहीं, बस 20 साल पहले देखिए, जब मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं था। पुराने लोगों को ज्यादा अच्छा फील होता था, क्योंकि जब फोन नहीं थे वो अपने घर वालों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करते थे, उनकी अलग हॉबीज होती थी। लेकिन जब से फोन आया है, जब से हमारे पास सोशल मीडिया और इंटरनेट आया है, तब से हमें अनयूजफुल, फेक, मोल्डेड और फैब्रिकेटेड न्यूज और इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिलती, और जिसमें हमें ज्यादातर हमारी जो मेन फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन्हें छुपा दिया जाता है। मेरा मानना है कि अगर सोशल मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट, अगर इसका हम सही इस्तेमाल नहीं करें तो ये एक बीमारी है जो ड्रग से भी खतरनाक है। एक इंसान पूरे दिन सोशल मीडिया पे बस स्क्रॉल कर सकता है, बिना कुछ खाए, एक ही जगह पे बैठे हुए, एक ही पोजीशन पे बैठे हुए, बिना कुछ कंस्ट्रक्टिव किए वो बस सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर सकता है। इसका एक और एग्जांपल है, अगर आप किसी बच्चे को अपना मोबाइल दे दें और वो पूरे दिन बस उस मोबाइल पे गेम्स खेल रहा है या कुछ भी कर रहा है, और आप शाम को रात में उससे जाके पूछिए कि आज आपने पूरे दिन फोन यूज किया, आपने आज क्या सीखा, तो आंसर आपको एक ही मिलेगा कि कुछ नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि सोशल मीडिया का जहाँ पे हमें सही उपयोग करना था, वहां पे हम उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट में सिर्फ गलत प्रभाव ही हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी की पहले से और आज में बहुत सारी चीजों में सुधार भी लाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एजुकेशन में बहुत हेल्प किया है। नेचुरल डिजास्टर्स होते थे, आपके पास सूचना पहुंच सकती है, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, सरकार लोगों के पास आराम से पहुंच सकती है, आपको सही गलत के बारे में बता सकते, डॉक्टर कंसल्टेशन कर सकते हैं, बहुत कुछ जिंदगी में आसान हो गया है। इसी का अगर हम उदाहरण लें तो पहले अगर आपको ट्रेन की रिजर्वेशन करानी होती थी तो आप जाने के लिए तो यहां से कहीं जहां पे आप हैं वहां से करा सकते थे, लेकिन लौटने की रिजर्वेशन के लिए आपको एक चिट्ठी भेजनी होती थी, जहां से आपको लौटने की रिजर्वेशन करानी है वहां पे वो एक ट्रेन से जाती थी, दो दिन वहां पे अप्रूव होती थी, फिर एक ट्रेन से वापस आती थी। लेकिन आज आप विद इन सेकेंड्स आप बुक भी कर लेते हैं और उसे कैंसिल भी कर लेते हैं। आपको एक व्यक्ति, आपके माता पिता आपको सही दिशा और सही रोड दिखा सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए चॉइसेस नहीं बना सकते हैं। ये आपको चूज करना होगा कि आप किस तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है आज के लिए और कल के लिए, क्या आप उस सोशल मीडिया के माध्यम से या उसके सही उपयोग के माध्यम से आप अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप नेशन को कुछ वापस दे रहे हैं, जितना भी नेशन ने आपको दिया है क्या आप उसे घूम फिर के नेशन को भी कुछ दे रहे हैं, इस बात पे जरूर सोचिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

रेडियो। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी क्या रजा है। इसका मतलब है कि आप अपने आप को इतना ऊंचा कर लो, इतनी मेहनत कर लो कि खुदा तुमसे खुद पूछे, तुम क्या चाहते हो भाई, क्या दूं तुम्हें।

नमस्कार, मेरा नाम शुभ बिश्नोई, मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रोबस्ट वर्ल्ड और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। और आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेशन, जिसे आप पलायन भी जानते हैं। बाकी नहीं, हम अपने उत्तराखंड की बात करें जो 2000 में बनाया गया था। इसमें बहुत सारे रीजंस थे उत्तराखंड को बनाने के लिए, लेकिन उसमें से दो तीन रीजन ये थे कि उत्तराखंड एक छोटा स्टेट रहेगा, उसमें डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है और रोजगार मिलेगा, लोग पलायन नहीं करेंगे। लेकिन आज शहरी जिंदगी के आकर्षित होकर जो हमारे युवक हैं और अन्य लोग हैं उत्तराखंड के, वो पहाड़ छोड़कर शहरी जिंदगी जीने के लिए अलग अलग जगह जा रहे हैं। वो दिल्ली जाते हैं, अलग शहरों में जाते हैं और वहां जाते ही उनके सपने टूट जाते हैं। एक छोटा सा कमरा होता है, रोजगार के लिए छोटे मोटे उन्हें काम करने पड़ते हैं, वो लौट के नहीं आते हैं, जिंदगी में वैसे ही निकल जाते हैं। पहाड़ों पर होते हैं, वो ये सोचते हैं कि शहर में उनको सैलरी अच्छी मिल रही है, वहां जाके उनकी कमाई अच्छी होगी। लेकिन वो एक चीज ये भूल जाते हैं कि शहरी जिंदगी में शहरी खर्चे भी उस हिसाब से होते हैं, तो जितना वो पहाड़ों पे उन्हें मिल रहा था उतना ही उन्हें शहर में भी मिलता था। सरकार ने बहुत सारी नीतियां निकाली हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिले लोगों के लिए, होम स्टे जैसी चीजें, छोटी मोटी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने, उन्हें प्रमोट करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने बहुत सारी चीजें प्रयास करी हैं। अगर आप उत्तराखंड में ही रहें और उत्तराखंड को देखें, उत्तराखंड में क्या कुछ नहीं है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं उत्तराखंड में। केदारनाथ हमारे पास है, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, अन्य टूरिस्ट स्पॉट्स हमारे पास हैं, क्योंकि पहाड़ों पर आप पे खुद का घर है, खुद की जमीन है, खेती है, अलग तरीके के रिसोर्स हैं, दोस्त हैं, एक हिम्मत बनती है, कॉन्फिडेंस बनता है। लेकिन तब भी हमें वो शहरी जिंदगी, जो वेस्टर्न कल्चर हमारे दिमाग में बहुत पहले डाल दिया गया था, वो अभी तक निकला नहीं है। हमें अभी भी दिखावटी रूप में शहरी जिंदगी जाना है ताकि हम बोल सकें कि मैं शहर में नौकरी करता हूँ। लेकिन वो दुख और जो तकलीफें शहर के व्यक्ति को प्लान करके जो सहनी पड़ती हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो क्यों ना हम अपने यूथ को और आसपास जितने भी, उन सभी को समझाएं। आप खुद ये सोचिए कि क्या नहीं हो सकता है उत्तराखंड में। इसे हम देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं और देवभूमि, जिसे हम देवों की भूमि कहते हैं, तो क्या देवों का आशीर्वाद नहीं होगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, इको पार्क स्टार्ट कर सकते हैं, होम स्टेज हो सकते हैं, होटल्स हो सकते हैं, अन्य चीजें हैं, आयुर्वेदों से जड़ी बूटियां हो सकती हैं जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो आप इस बारे में सोचिए कि क्या पलायन करना जरूरी है, क्या उत्तराखंड में रोजगार नहीं बनाया जा सकता, नए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आइडियाज जागरूक नहीं किए जा सकते। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

हाय गाइस, माय नेम इज़ काव्या और मैं अपने बारे में क्या कहूँ. आई थिंक मैं एक रूरल एंटरप्रेन्योर हूँ जो गांव में रहती हूँ. इनफैक्ट जंगल में रहती हूँ. बहुत पसंद करती हूँ भारत की कला और एक विजन है मेरा कि मैं आदिवासी जनजाति को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ना चाहती हूँ ताकि उनका हेरिटेज, उनका क्राफ्ट्स बना रहे, और यही कोशिश है. सो दैट इज़ वॉट आई एम. एंड बाय एजुकेशन आई एम एन MBA ग्रेजुएट, और कभी नहीं सोचा था कि क्राफ्ट, ट्रैवल और इस तरह के गांव के इकोसिस्टम में काम कर पाऊंगी. आई एम अ ह्यूमन रिसोर्स MBA बाय एजुकेशन, बट आई थिंक गॉड हैज़ बीन रियली ग्रेशियस. आई वॉज बॉर्न इन राजस्थान एंड नाउ आई लिव फ्रॉम अ फॉरेस्ट इन कोरापुट इन ओडिशा. दैट्स अबाउट मी.

अपने सपनों के पीछे भागते हैं, उनके सपने भी सपने बने रह जाते हैं। पर कोई बात नहीं, जो होता था अच्छे के लिए होता था, शायद वो वक्त ही गलत था।

करना चाहते हैं या आपको देख के इग्नोर करते हैं, आपको देख के दूर चले जाते हैं। हमारी जीवन की हर कड़ी हमारे खुद के स्वभाव से जुड़ी हुई है। अपने स्वभाव को चेक करें और जब जहां जाएं अपने स्वभाव, अपने व्यवहार से खुशियां बांटें। Walk Talk Radio.

मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। अगर आपने सफर शुरू कर दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। तो अपने एम की तरफ बढ़ते रहिए। रुकना और वापस जाना, ये वर्ड अपने डिक्शनरी से निकाल दीजिए।

मैं शेयर करना चाहूँगी मेरा एंट्री इनटू विलेज, क्योंकि बहुत टाइम तक लोग ऐसे सोचते थे. अभी मुझे आई थिंक मैं अगस्त 21 में शिफ्ट हुई थी फुल टाइम इनटू अ फॉरेस्ट विलेज. तो लोग पहले ऐसा सोचते थे कि ये लड़की मिट्टी के घर में रहती होगी लेकिन ऐसा नहीं है. बट बहुत टाइम लगा मुझे, तो ये ओवरनाइट नहीं हुआ है. जो भी आज हम काम कर रहे हैं बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू बिग स्टार्टअप्स. कई लोग मुझसे बहुत ही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने एक साल में क्या किया. मैं देखती हूँ कि यू नो वन ईयर में बहुत सारे स्टार्टअप्स पिवट कर जाते हैं, बट हम लोगों का ग्रोथ हैज़ बीन वेरी स्लो एंड माइंडफुल. बट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस उन सभी लोगों के लिए जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की ओर देखते हैं, कि आई थिंक स्लो ग्रोथ एंड एक्सेप्टेंस इज वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया. तो मैं ये बताना चाहूँगी ये इंसिडेंट कि मुझे 6 महीने लगे टू स्टार्ट माई फर्स्ट प्रोडक्ट. क्योंकि हो सकता है कि पहले आप किसी नोशन को लेके किसी गांव में आओ, वो चीज़ आपके लिए काम ही ना करे. पहले मैंने सोचा था कि मैं किसी ज्वेलरी पे काम करूंगी, बट वो नहीं वर्क किया. आई हैड नेवर थॉट कि मैं टर्मरिक पे काम करूंगी, यू नो. एंड उसके बावजूद भी लोगों गांव में जनरली भरोसा धीरे धीरे आता है, और जब एक बार आ जाता है फिर वो लोग आपके लिए कुछ भी कर देंगे. तो फॉर मी दैट टुक अ लिटिल टाइम. मुझे 6 मंथ्स लगा टू ब्रेक दैट आइस बोलें या हम केमिस्ट्री बोलें. एंड जब वो 6 महीने का पीरियड पास हुआ एंड इट वेंट थ्रू डिफरेंट प्रोसेस, चाहे आप टैटू कह लीजिए मेरी बॉडी पे, या आप जितने भी फेस्टिवल्स, या आप मेरा इंस्टाग्राम में स्टोरीज देखेंगे. तो आई थिंक इट टुक मी अ वाइल, बट जब वो एक बार वो हो गया देन इट वॉज अ इजी राइड फॉर मी. आई

0: ये है वॉक टॉक रेडियो।
1: दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो आपको हर तरह से तोड़ने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपकी खूबियों को नजरअंदाज करके सिर्फ आपकी कमियों को ही दर्शाएंगे। हो सकता है बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जाए, लेकिन आपको सिर्फ ये सोचना है कि दुनिया का तो काम ही है आपको बार बार गिराना, और हमारा काम है ढीठ बनकर बार बार उठ खड़ा होना। इसलिए जब जब आपकी हिम्मत जवाब देने लग जाए तो याद करिए अपनी उन तमाम खूबियों को जिनको आप जानते हैं, और करते रहिए कोशिश लगातार, और बनते रहिए बेहतर हर बार।
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: अरे सबके बस की बात नहीं है, छोटे शहर की लड़की है, एक्टिंग में कहाँ जा सकती है। ये सब बातों को अनसुना करके एक लड़की सपनों की नगरी मुंबई जाती है। MS धोनी, रणबीर कपूर, अरमान मलिक सबके साथ काम कर जाती है। हाय, दिस इज RJ गौतम फ्रॉम वॉक टॉक रेडियो। और यार, देहरादून की ना काफी चीजें फेमस हैं, जैसे कि मोमोज, FRI, यहाँ का घूमना, यहाँ का मौसम, यहाँ की एजुकेशन, शिक्षा, और अब इस लिस्ट में जुड़ गई है दून की दीक्षा। A very warm welcome to you, Diksha Chatwal, in Walk Talk Radio.
1: Thank you so much. Wow. It's a great feeling. I'm super excited to be here and have a great conversation with you guys.
0: सबसे पहले एक्टिंग की बात करते हैं। एक्टिंग कैसे और क्यों स्टार्ट करी आपने?
1: मुझे एक्टिंग का मुझे शुरू से ही था एक्चुअली, बचपन से, पर लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं था और अंदर से मुझे वो आई नेवर हैड द करेज to accept the fact that I want to get into it. मतलब I loved watching films जब मैं छोटी थी. I used to imitate actresses also. I used to love dancing.
0: Bollywood kid.
1: Yeah. And my grandfather, he was a musician, and my dad, he sings. So वो कहीं ना कहीं अंदर genes में है. But Mumbai आने से पहले I used to work for Indigo Airlines. I used to fly with them as a cabin crew. और मेरा प्रमोशन होने वाला था, बट कुछ चीजें ऐसी हो गई वहां पे. आई वॉज बेस्ड आउट ऑफ हैदराबाद, तो मुझे ऐसा लगा कि नो, आई थिंक आई शुड जस्ट स्टॉप एंड प्रोबेबली जस्ट यू नो फॉलो माय हार्ट नाउ. तो दिल वहां नहीं था, दिल कहीं और था. तो आई जस्ट फॉलोड माय हार्ट एंड आई मूव टू बॉम्बे.

जैसे अंधेरे के बाद रोशनी आती है, ठीक वैसे ही बुरे के बाद एक अच्छा वक्त भी तो आता है। सोचने वाली बात है कि जिंदगी में हम इतना घबरा जाते हैं मुश्किलों को देखकर। हम लड़ते नहीं है, लड़ना नहीं चाहते। देखिए, लाइफ को जीना है ना तो वॉरियर बनना पड़ेगा, खुद को स्ट्रांग करना पड़ेगा। और जब तक हम खुद को स्ट्रांग नहीं करेंगे, दूसरे लोग हमारी मुश्किलों का हमारा फायदा उठाते जाएंगे। आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद पर विश्वास करना चाहिए। कभी भी किसी के सामने झुको मत, बस काम पे फोकस करो। और कभी भी डरना नहीं है। सिचुएशन हर किसी के साथ होती है, प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ आती है। आपको अपनी प्रॉब्लम्स को समझना है और उन्हें सॉल्व करना है, और उसके लिए खुद को टाइम भी तो देना है। इसीलिए जिंदगी में वॉरियर बनें।

0: काफी सारे ब्रांड्स के साथ आपने कोलैब किया है, काम किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं कि कौन कौन से ब्रांड्स के साथ आपने अभी तक काम किया है।
1: हाँ जी, मैंने कोको कोला के लिए काम किया है, मैंने फेसबुक के लिए और मूव और GSK, कैरेट लेन, मैकडॉवल्स नंबर वन सोडा, एंड मैंने म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं। मैंने अंकुर तिवारी के साथ एक म्यूजिक वीडियो किया है फॉर MTV साउंड ट्रिपिन, एंड रिसेंटली मैंने एक और म्यूजिक वीडियो किया है जो टी सीरीज में आने वाला है। सो यस एंड या।
0: तो ये फीलिंग कैसी होती है जब आपने सपना देखा था कि मैं मुंबई जाती हूँ, कुछ करती हूँ, और अब जब आपकी वीडियो आती है, आपका एड आता है, आप बड़े पर्दे पे आते हैं और घर वाले देखते हैं, रिश्तेदार देखते हैं, तो वो फीलिंग कैसी होती है?
1: आई थिंक दैट फीलिंग इज समथिंग आई रियली कैन नॉट एक्सप्रेस। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कैमरे के सामने आती हूँ तो वो फीलिंग ही अलग ही होती है। मतलब आप सब कुछ भूल जाते हो, बिकॉज दैट इज वॉट आई लव टू डू। आई मीन कैमरा, आई लव कैमरा, आई लव बींग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सो इट इज अ ग्रेट फीलिंग विच आई लिटरली कैन नॉट एक्सप्रेस। इट्स लवली।
0: टॉकिंग अबाउट योर एजुकेशन, तो आपका एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या रहा है अभी तक?
1: So, I have not really gone to college. I don't have a degree. I have a diploma in acting and production. Mm-hmm. I was in Noida Film City after my school. After my schooling, I told my family that मुझे बॉम्बे आना है, but लेकिन उन्होंने मुझे आने नहीं दिया बॉम्बे। मैं बहुत ज़्यादा young थी उस time, and my dad never like took me seriously कि आ रे यार कहाँ इतनी छोटी हो अभी, तुम बॉम्बे जाओगी, auditions वगैरह दोगी, you know, नहीं जाना। तो उसके बाद मैं बहुत ज्यादा ना रिबेलियस हो गई थी कि नहीं यार, फिर मुझे भेजा ही क्यों आपने, यू नो नोएडा क्यों भेजा आपने मुझे ये कोर्स करने के लिए। तो आई वाज लाइक अब तो मुझे निकलना ही है घर से। तो मैंने रैंडमली फिर जॉब अप्लाई कर दिया इंडिगो में, एंड आई गॉट थ्रू एंड आई गॉट द जॉब, एंड मैं भूल गई अपना यू नो एक्टिंग वैक्टिंग भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग माय जॉब। बट
0: वो कहते हैं ना कि जहां पहुंचना होता है इंसान को, हाँ, तो कैसे भी पहुंच जाता है।
1: एग्जैक्टली, आई थिंक वो चीज है, वो चीज मैं समझ चुकी हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा करके ना वो लाइफ इज लाइक अ सर्कल, तो कहीं ना कहीं वो आपको पहुंचा ही देती है जहाँ पे एक्चुअली आपको पहुंचना होता है। सो इट इज लाइक दैट, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो चीजें आप प्लान करके चलते हो ना लाइफ में, वो कभी नहीं होती, वो कभी नहीं होती है। सो आई फील दैट इट्स बेटर नॉट टू प्लान थिंग्स। आई डोंट नो, इट्स जस्ट Let life happen to you.

0: रेडियो।
1: कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है।
0: वॉक टॉक रेडियो।
2: सुनता नहीं मैं ज्यादा बोले जो जहाँ, मेरे दिल में बड़ी है शांति।

0: So you work in Bombay, but you are a Dunite girl. So quickly answer Bombay and or Dehradun and why?
1: Always Dehradun. I think मैंने काफी travel किया है और travel करके मुझे ये पता चला कि Dehradun जैसी city इस दुनिया में नहीं है. I think Dehradun is an emotion and हर चीज मैं देहरादून की मिस करती हूँ जब भी मैं बॉम्बे में रहती हूँ. देयर इज नथिंग व्हिच आई डू नॉट मिस अबाउट देहरादून.
0: जैसे क्या क्या चीजें हैं जो आप मिस करती हैं देहरादून की?
1: फर्स्ट इज मोमोज. आई लव मोमोज. मतलब एक तो बॉम्बे का खाना इतना खास नहीं है. बिकॉज हम नॉर्थ इंडियंस हैं तो यार हमें चाहिए थोड़ा स्पाइसी और बटर चिकन प्रॉपरली, यू नो, मोमोज की चटनी ये वो सब कुछ. तो आई मिस द फूड, आई मिस द वेदर, I miss the people from Dehradun because यहाँ पे वो simplicity है लोगों के अंदर अभी भी लोग इतने grounded हैं. मतलब it's just I miss that thing a lot from Dehradun.
0: और आपको क्या लगता है एक actor के लिए कितना मुश्किल होता है अपनी personal और professional life को एक साथ manage करना?
1: I think it is difficult. It is difficult for a lot of people. मतलब वो आपकी वायरिंग पे डिपेंड करता है, हाउ यू बेसिकली परसीव थिंग्स. बट बॉम्बे में सब कुछ इतना ज़्यादा फास्ट है, सब लोग भाग रहे हैं, लाइक पीपल आर जस्ट रनिंग बिहाइंड थिंग्स. तो कभी कभी ऐसा होता है कि यू जस्ट लूज इट, आप खो देते हो खुद को भी. हाँ, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ हाउ यू परसीव थिंग्स एंड यू हैव टू बी अवेयर ऑफ all these things that you need to keep your personal life separate and your professional life separate because har cheez aapke kaam ke aas pass revolve nahi karti. Everything doesn't revolve around your work. You have a personal life also which is separate and just enjoy it. I mean, theek hai
2: yaar, kahan ho? I've been trying your number for past 3 days. Tumse gana nahi ban raha to mana kar do, but we don't have any more time to waste. Okay, please complete this as soon as possible.

0: रेडियो।
1: काफिला भी तेरे पीछे होगा, तू अकेले चलना शुरू कर तो सही। बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत जरूरी है।
0: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

0: मतलब आई थिंक दैट इज़ वन फीलिंग विच आई लिटरली लिव फॉर. जो मैं ये चीज़ें जो मैं कर रही हूँ वो मैं इसी फीलिंग के लिए कर रही हूँ, इज़ दैट कि जब मैं शूट के बाद जब मैं वापस घर आ रही होती हूँ या मैं अपने बॉम्बे वाले घर या यहाँ पे आ रही होती हूँ, आई थिंक दैट फीलिंग इज़ समथिंग विच इज़ मतलब एक वो सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग होती है कि यार आज कुछ किया है, आज मैंने वो किया है जिससे मैं प्यार करती हूँ. नो लाइक आई लव वट आई डू राइट नाउ एंड आई एम गोइंग बैक होम डूइंग दैट. तो दैट वो फीलिंग के लिए I live for that feeling. So I think वही है.
1: और बहुत कम लोग होते हैं जो ना अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो वो उसी में रह जाते हैं, यार काश मैं ये बन जाता या काश मैं वो कर लेता.
0: Exactly.
1: लेकिन आपने बहुत से बड़े बड़े एक्टर्स और सिंगर्स के साथ भी काम किया है, रणबीर कपूर, अरमान मलिक, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस, जिनको आपने पहले कभी टीवी पे देखा है या सुना है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था?
0: वो एक्सपीरियंस मतलब जब मुझे व्हेन आई गेट दीज प्रोजेक्ट्स, तो वो बहुत मुझे ऐसा ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ कि मुझे ऐसा एक्साइटमेंट नहीं हुई कि यार आज मैं माय गॉड इनके साथ काम कर रही हूँ उनके साथ. बट द एक्सपीरियंस द फीलिंग आपको वो तभी आती है जब आप सेट पे उनके साथ होते हो. देन यू गेट दैट कि यार ओके बट वेन आई वर्क विद एम एस धोनी आई डिड दिस एड, ओ माई गॉड आई थिंक ही इज सो स्वीट.
1: Captain Cool.
0: Very like humble and grounded and he's talking to me. He's like, even my wife is also from Dehradun. So I was like, I'm also from Dehradun. And he's just like, तब मुझे ऐसा लगा कि वाओ यार लाइक ही इज सच अ
1: ही इज एम एस धोनी और और एम एस धोनी होके भी इतना काम और
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली.
1: आपने अभी ट्रैवलिंग की बात भी करी, आप अपने काम के सिलसिले से ट्रैवल करती हैं और जब इंडिगो में थी तब भी ट्रैवलिंग होती थी. तो व्हेन यू वर्क इन सच अ फील्ड, तो हाउ डज ट्रैवलिंग टू डिफरेंट सिटीज और इवन कंट्रीज इवॉल्व यू एज अ पर्सन?
0: इट डज इवॉल्व यू एंड आई थिंक ट्रैवलिंग इज वन थिंग के मुझे ऐसा लगता है कि काम के अलावा आप हम सबको ट्रैवल करना चाहिए. मतलब आप जितना भी कमा रहे हो उससे थोड़ा सा आप अपना 20-30% पैसा अलग करके वी ऑल शुड ट्रैवल. मतलब आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ विच विल इवॉल्व यू इन टू अ डिफरेंट ह्यूमन बींग. सो सर्टन थिंग्स जो मैंने लाइफ में अडेप्ट करी है वो ट्रैवलिंग से ही करी है. आप जिस तरीके के लोगों से मिलते हो, आप अलग अलग लाइफ स्टाइल, अलग अलग कल्चर्स देखते हो, इट्स सो डाइवर्स आउट देयर. सो या इट विल चेंज यू समवेयर.
1: मैंने कहीं पे पढ़ा था आपने एक गाना लिखा भी, आप लिखती भी हैं.
0: हाँ.
1: तो उस गाने की अगर एक दो लाइन अगर आप गा दें बता ही दें मतलब की.
0: हाँ मैंने गाने लिखे हैं एक्चुअली. देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन हु इज वन ऑफ द रेनाउंड लिरिसिस्ट इन द इंडस्ट्री, तो उनके साथ मैंने काम किया है. बट एक गाना है जिसमें मुझे एक्चुअली एज अ लिरिसिस्ट मेरा नाम आया था, विच इज कॉल्ड किलर हसीना फॉर टी सीरीज, एंड दिस वन वॉज फॉर अर्जुन काननगू एंड तुलसी कुमार. सो मी एंड द अदर पर्सन वायु, हम दोनों ने साथ में ये गाना लिखा था. तो नॉट जस्ट दिस, आई डू राइट स्टोरीज ऑल्सो. आई एम राइट नाउ लर्निंग कॉपी राइटिंग एंड कॉन्टेंट राइटिंग ऑल्सो. सो बेसिकली आई एम गोन बी वर्किंग ऑन एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड कैंपेन्स. तो आई जस्ट वॉन्ट टू एज एन आर्टिस्ट आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर
1: क्रिएटिविटी होनी चाहिए.
0: हाँ मतलब और जगह भी मुझे एक्सप्लोर करना है. सो इस वजह से अभी मैं कॉपी राइटिंग में भी घुस रही हूँ. सो बेसिकली आई विल बी अ कॉपी राइटर, सर्टिफाइड कॉपी राइटर नेक्स्ट मंथ. तो मेरा नेक्स्ट मंथ मेरा कोर्स खत्म हो रहा है.
1: अच्छा
0: या.

इंसान हर घर में जन्म लेता है, लेकिन इंसानियत सिर्फ कुछ चुनिंदा घरों में ही होती है। आज के जमाने में हर व्यक्ति अपना फायदा चाहता है, मैं ये बन जाऊं, मैं वो कर लूं, मैं सबसे आगे, फिर चाहे वो दूसरे का नुकसान पहुंचा के क्यों ना मिले। ऐसी सोच रखने वाले लोगों को शॉर्ट टर्म में खुशी मिल सकती है, लेकिन आगे चल के इसके कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें खुद भुगतने पड़ते हैं।

0: किलर हसीना की कोई हुक लाइन या दो लाइंस, कुछ भी।
1: किलर हसीना हसीना आ जान ले ले, किलर हसीना
0: तो ये डांस और पेपी टाइप का सॉन्ग होगा।
1: इट्स अ प्रॉपर बॉलीवुड नंबर, मतलब ये तो बहुत मजा भी आता एक्चुअली इसको लिखने में, बट प्रॉपर बॉलीवुड नंबर है ये।
0: तो ये लिखने की जो जर्नी है ये भी बहुत पहले से ही है या अभी साथ साथ आप लिखने लगी हैं?
1: ये बहुत पहले से है एक्चुअली, बचपन से है, पर लेकिन अब मैंने इस पे प्रोफेशनली काम करना शुरू कर दिया है बिकॉज बहुत ज्यादा जरूरी है। एट द एंड ऑफ द डे आई वॉन्ट टू गेट इन टू समथिंग विच इज कि कैमरे के पीछे भी क्या होता है, मतलब मुझे उस पर भी काम करना है, दैट आई वॉन्ट टू गेट इन टू स्क्रिप्ट राइटिंग एंड यू नो लाइक एक एड को, मैंने एड्स वैसे बहुत सारे किए हुए हैं एज एन एक्टर, बट नाउ आई वॉन्ट टू क्रिएट एड्स ऑल्सो।
0: बनता कैसे है,
1: बनता कैसे, लिखते कैसे हैं, यू नो प्रॉब्ली आई वॉन्ट टू डायरेक्ट ऑल्सो वन डे एड्स और फिल्म्स व्हाटसोएवर, सो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग इन टू कॉन्टेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग।
0: बहुत ही अच्छी बात है कि सीखने की चाह हर चीज में है। हाँ। किसी एक चीज को आप स्टिक नहीं कर रही हैं।

रेडियो। वो कहते हैं ना कि बांटने से प्यार बढ़ता है, फिर चाहे हम अपनी खुशियां बांटें, अपना गम बांटें, खाने की चीजें बांटें या कुछ भी चीज शेयर करें, जब हम किसी के साथ कुछ बांटते हैं तो उस इंसान के चेहरे पे एक स्माइल आती है और फिर वो भी आपके साथ चीजें बांटना शुरू करता है। रिश्ते गहरे होते हैं, तो यार जब भी मौका लगे अपनी फीलिंग्स, अपना लंच, अपनी खुशियां शेयर करके देखो, अच्छा लगता है।

0: वॉक टॉक
1: मनुष्य के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती हो, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से ही होती है। बोला भी गया है, मीठा मीठा बोले सबसे, सबसे करे हम प्यार। अगर आप सबसे अच्छे से व्यवहार करोगे तो आप जरूर सबके चहेते बन जाओगे।

ज़मीर ज़िंदा रख, कबीर ज़िंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर ज़िंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख।

0: कई लोगों को जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें होती हैं। अपनी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी प्यारी लगती है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि ये मत पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो वो भी करते हैं जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।
1: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो। ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक
2: रेडियो। अगर मैं कहूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा वेपन यानी हथियार क्या है, तो हो सकता है आप कहें कि न्यूक्लियर बॉम्ब दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन अगर आपके दिमाग में दुनिया को बदलने का विजन है, आपका मन चाहता है कि आप कई बातों में दुनिया को बदल कर रख दे, तो इस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है एजुकेशन, यानी कि शिक्षा। अगर हमें दुनिया बदलनी है, मेंटालिटी बदलनी है, अपने समाज को बदलना है, अपनी सोसाइटी को बदलना है, तो उसके लिए जरूरी है कि एजुकेशन हर एक तक पहुंच जाए। यानी अगर हम एजुकेटेड हैं, तो हम अपने आने वाली जनरेशन को भी एजुकेट करके दुनिया को सही दिशा में बदल सकते हैं।
1: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: कभी कभी ना हम दूसरों की बातें दिल पे ले लेते हैं, अरे यार उसने ऐसे कैसे बोल दिया एक्सेट्रा। हम खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं और यही चीज हमें लाइफ में काफी डिस्ट्रैक्ट करती है। हम अपना सारा काम छोड़कर दूसरों पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। सोचो हम खुद के साथ, खुद की लाइफ के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पर जरा गौर करना। हमेशा जो है दूसरों की बातें दिल पर लेने की बजाय एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो और अपने टाइम को सही यूटिलाइज करो, क्योंकि वक्त जब एक बार चला जाता ना दोस्त, दोबारा वापस नहीं आता, उसके बाद सिर्फ पछतावा होता है। इसलिए पछताने से अच्छा है खुद को टाइम दो।
1: वक्त

मेरे दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना ना बहुत आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लेकिन हाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ऐसे ही बातों को सुनने के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ।

0: रेडियो।
1: क्यों इतना डरते हो जिंदगी से? क्या होगा, कैसे होगा, जो भी होगा आगे तजुर्बा ही होगा, और तजुर्बा ही इंसान को जीना सिखलाता है।
0: वॉक टॉक रेडियो।
2: वॉक टॉक
0: रेडियो।
2: सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: कुछ बनना है तो अपने आप की तरह बनो। किसी और की तरह कोई ना कोई हर रोज यहां बन रहा है। तैयारी ही सफलता है।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

दोस्तों, हमें कभी छोटी छोटी परेशानियों या हार से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए ही हो रहा है। इसलिए हर वक्त हर हाल में हमें जीतने का जज्बा रखना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय जरूर बदलता है। ऐसी और बातों के लिए सुनते रहे फॉक टॉक रेडियो।

0: बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो जब ही बोलें, हमेशा नाप तोल कर बोलें। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।
1: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो,
2: वॉक टॉक रेडियो, वॉक।

आजकल हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को जीने का ढंग बदल लेते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि अपनी पसंद का जीवन जीने के समान कोई जीवन नहीं। तो लाइफ अपने हिसाब से जिए, ना कि दूसरों के। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: परिवर्तन और संघर्ष से डरने वाला व्यक्ति कभी भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता। परिवर्तन इस संसार का नियम है। जो आया है वो जाएगा, सुबेरे हुई है शाम होगी। कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं बदलती? लेकिन अगर हम हार्डकोर हो जाते हैं, किसी बात पे अड़ जाते हैं, तो दुनिया हमारे अगेंस्ट हो जाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। बदलिए और देखिए, आप खुद नहीं बदलेंगे, आप अपने आसपास की सिचुएशन को भी बदलने का मौका देंगे। संघर्ष से डरना, पीछे रह जाना, हमेशा डरते रहना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। हिम्मत करिए और फेस करिए अपनी उस प्रॉब्लम को। ऐसा फेस करिए कि प्रॉब्लम भी आपसे डर जाए, और देखिए जिन चीजों से आपको डर लग रहा था वो कितनी आसानी से दूर हो जाती है। कोशिश तो करके देखिए।
1: वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: फोकस ऐसा रखो कि आपके और आपके सपनों के बीच कोई ना आ सके, समझ रहे हैं आप?

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: दोस्तों, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि आज की डेट में सबसे ज्यादा मुश्किल चीज कमाना क्या है, तो आप क्या कहेंगे? शायद आप किसी बहुत महंगी, किसी लग्जरियस कार का नाम लेंगे और कहेंगे कि इसे कमाना बहुत मुश्किल है। शायद हो सकता है कि आप बहुत बड़े घर का नाम ले लें और कहेंगे कि उस बंगलों को खरीदना बेहद ही मुश्किल है। या हो सकता है कि आप ये कहें कि चांद पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन सबसे ज्यादा अगर हम अपनी हकीकत की दुनिया में वापस लौटे, तो शायद आज की डेट में सबसे ज्यादा महंगा है किसी का विश्वास जीतना, जिसे हम खरीद तक नहीं सकते। तो यदि जीतना है किसी को, तो किसी का भरोसा जीतिए, इंसान को जीतिए, बाकी के काम तो आपके बनते ही चले जाएंगे। ऐसे ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल बातों को सुनने के लिए बने रहिए वॉक टॉक रेडियो पर।
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
0: ये है वॉक टॉक रेडियो।
2: वॉक टॉक रेडियो।
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: ट्यून इन।

आजकल हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को जीने का ढंग बदल लेते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि अपनी पसंद का जीवन जीने के समान कोई जीवन नहीं। तो लाइफ अपने हिसाब से जिए, ना कि दूसरों के। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: Walk Talk Radio.
1: दोस्त, खुद को टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिर कब तक दूसरों के टाइम के लिए तरसते रहोगे? खुद को वैल्यू दो। हम लाइफ में बहुत कुछ प्लान करते हैं और सबके साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन क्या कभी खुद से कोई भी बात डिस्कस की आपने करते हैं? अगर हमें कुछ भी बोलना है या फिर कुछ भी फैसले लेने हैं, तो क्या हम तनिक सा अपनी लाइफ के बारे में या खुद से सवाल करते हैं? लाइफ में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो क्लियर नहीं होती। अगर आप एक बार खुद से बात करना शुरू कर दोगे ना, तो वो जो क्लैरिटी है वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में आने लगेंगी। इसीलिए खुद को टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना खुद को टाइम दोगे, उतना ही खुद को समझोगे। और कोई भी फैसला लेने से पहले ये सोचना जरूरी है कि ये जो फैसला है, ये आपने खुद से लिया या दूसरों के कहने पे आप ये फैसला ले रहे हो।
0: Walk Talk Radio.
2: Walk Talk. सक्सेस का सीक्रेट क्या है? क्या है मोटिवेशन का मंत्र? जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: मेरे दोस्त, सब्र करना पड़े तो कर लेना, दुनिया से लड़ना पड़े तो लड़ लेना, उगते सूरज को वो सलाम जरूर करेंगे। तुझे वक्त लगे अगर वो सूरज बनने में, तू चाहे वो वक्त ले ले।
1: ये है वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: रेडियो।
1: ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पीछे हटूंगा ना हारूंगा हौसले, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है।
0: वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक।

0: रेडियो।
1: उस काम को कभी न छोड़ें जिसके बारे में आप हर दिन सोचते हैं।
0: Walk Talk Radio, tune in for a better life.
2: Walk Talk दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। Walk Talk Radio.
3: Walk Talk Radio. Walk

अगर आपकी लाइफ में जितना स्ट्रगल होगा सफलता भी उतनी बड़ी होगी। राहों में बस कहीं तुम भटक मत जाना, चलते चलते कहीं तुम थक मत जाना। ठान लिया है ना अगर मंजिल को पाना, बस मुसाफिर बनकर चलते रहो, कदम से कदम आगे बढ़ाते रहो, क्योंकि जिंदगी में स्ट्रगल जितना बड़ा होगा सफलता उतनी ही बड़ी होगी। और हर इंसान सफल होने के लिए ही कड़ी मेहनत करता है, कड़ी धूप में चलता है।

0: Pop Talk Radio।
1: अब शायद ही कभी मिलना हो, ये जानते हुए भी वादे सबने बहुत किए स्कूल फेयरवेल में कि मिलते रहेंगे, टच में रहेंगे। आज इतने सालों बाद सब कुछ है, अच्छी नौकरी है, अच्छा घर है, लेकिन एक चीज जो आजकल किसी के पास नहीं है,

0: वो है टाइम। मिलते हैं यार किसी दिन, लेकिन वो किसी दिन आता नहीं है। तो दोस्त, किसी को तोहफे में कुछ देना है तो मिठाई, कपड़े, घड़ी, ये सब नहीं। अपना टाइम दीजिए, अपना कीमती समय दीजिए। समय से ज्यादा कीमती आजकल कुछ भी नहीं है।
1: Tune in for a better life.
2: ये है वॉक टॉक रेडियो।
3: वॉक टॉक रेडियो।
2: Tune in for a better life.
3: Tune in for

0: ये है वॉक टॉक रेडियो. ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ. वॉक टॉक रेडियो.
1: इस कॉम्पिटिटिव दुनिया की भीड़ में अगर आप भी अपने आप को दूसरों से कम आंकते हैं, तो इन शब्दों को बार बार जरूर अपने मन में दोहराइए कि आप अमेजिंग है, आप इम्पोर्टेंट है, आप बहुत स्पेशल है, आप यूनिक है, आप बहुत ही काइंड है, आप बहुत ही अनमोल है. आप वो सब कर सकते हैं जो आप सोचते हैं.
0: वॉक टॉक रेडियो.

0: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।

वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो।
1: वॉक टॉक रेडियो,
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: इस बेहिसाब जिंदगी में हिसाब देना भी जरूरी है, गैरों से ज्यादा खुद पर विश्वास करना भी जरूरी है। माना कि हालात कभी कभी बेकाबू से हो जाते हैं, अपने दूर हो जाते हैं और कुछ राहों में छूट जाते हैं। कौन सही है कौन गलत है कभी कभी ये भी हम सोच नहीं पाते हैं, लेकिन मेरे दोस्त ये पल भी तो गुजर जाते हैं और वक्त भी तो बदल जाते हैं। दुखों के बाद खुशियों के पल ही आते हैं।

हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर भानुशाली यानी कि आपका देवानंद जूनियर। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला इंस्पिरेशनल ऐप वॉक टॉक रेडियो। तो जल्दी से जाओ और गूगल पे डाउनलोड करो प्ले स्टोर से।

0: Walk Talk Radio.
1: Walk Talk Radio.
2: Walk Talk Radio.
3: Walk Talk.
0: Walk Talk Radio.
4: Come, shall we do a radio talk with a radio called Say What? Walk Talk. Hi, मैं हूँ अनुष्का. I'm a singer, songwriter and rapper. और आप मुझे सुन रहे हैं Walk Talk Radio पर.
5: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी. वॉक टॉक रेडियो.
6: वॉक टॉक रेडियो.

वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: मैं तो थक ही गया।
1: अमिताभ बच्चन का नाम तो आपने सुना ही होगा, मैं सिर्फ उनकी आवाज निकाल रहा हूँ, उनके आसपास भी आप नहीं पहुंच सकते। मुझे लगता है कि ये आवाज निकाल के ना मैं कुछ कुछ उनके आसपास पहुंच जाता हूँ। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूँ कहानी वाला रजत। मेरे शो कहानी वाला में मैं कहानियां आपके लिए लेकर आता हूँ, और बच्चन साहब की आवाज से आज मैंने जो शुरुआत करी है अपने शो की, वो इसीलिए क्योंकि आज की कहानी उनकी जिंदगी से जुड़ी कहानी है। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लाइफ लेसन है जो उन्हें दिया था उनके पिता ने, यानी कि महान साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन, जिनकी लिखी मधुशाला तो आपने कई बार सुनी है। उनकी जिंदगी ने कुछ ऐसा दिया अमिताभ बच्चन साहब को जो उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है। आपको पता होगा कि बच्चन साहब ने अपने जमाने में बहुत स्ट्रगल किया। जैसे बताया जाता है कि 11-12 फ्लॉप फिल्में आने के बाद उन्हें एक बड़ी फिल्म ऑफर हुई, जंजीर, या फिर ऑल इंडिया रेडियो पर जब वो गए थे रेडियो जॉकी बनने तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, या 80s के दौर का वो महानायक 90s आने के बाद अचानक से अपनी जगह बचाने के लिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा था। आप मानिए ना मानिए, एक वक्त ऐसा था जब बच्चन साहब ने अपने घर से यश चोपड़ा जी के घर तक, जो उनके पड़ोस में ही रागा करते थे उस समय, नंगे पांव जाकर उनसे काम मांगा था। कहा था कि मुझे काम की सख्त जरूरत है, क्योंकि उनकी बनाई हुई कंपनी कर्ज में थी, उनकी फिल्में नहीं चल रही थी। उन्होंने म्यूजिक कैसेट्स में अपना एक वेंचर शुरू किया था, बिग बी म्यूजिक, ABCL नाम से एक कंपनी शुरू की थी जिससे वो फिल्में प्रोड्यूस कर रहे थे, और हर तरफ नुकसान हो रहा था और कर्ज बढ़ता जा रहा था। बच्चन साहब खुद कहते हैं कि उन्होंने उसके बाद हर एडवर्टाइजमेंट के लिए हाँ कहा, क्योंकि वो पैसा कमाना चाहते थे। पर ये उनके स्ट्रगल की कहानी नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं। जो कहानी मैं सुना रहा हूं वो है उस दौर की कहानी जब वो कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे, या कहिए स्कूल के दिनों की बात। शेरवुड में वो पढ़ते थे, और शेरवुड में जब थिएटर वो कर रहे थे तब उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का मौका मिला था। वो नाटक का मेन किरदार था, वो चाहते थे कि उसमें जी जान लगा दे, उस किरदार को ऐसा निभाएं कि लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाए। उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। प्ले होने से कुछ दिन पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और अमिताभ बच्चन साहब का फ्रैक्चर हो गया। वो बेड रिडन थे, हॉस्पिटल में भर्ती थे, और वहां से उस वक्त निकल पाना मुमकिन नहीं था। जहां वो पढ़ते थे वहां, ये मान लीजिए कि एक पहाड़ी के छोटे से हिस्से पर ऊपर की तरफ उनका कॉलेज था, जहां लाउडस्पीकर पे कुछ होता था तो नीचे के हिस्से में आवाज आया करती थी, और नीचे उनका हॉस्पिटल था, तो उन्हें उस प्ले की आवाजें आ रही थी। उन्हें पता चल रहा था कि वो उस प्ले का हिस्सा नहीं है, कोई और उनका किरदार निभा रहा है, और ये बात उन्हें बड़ी दुख दे रही थी, परेशान कर रही थी, रोना आ रहा था। हाथ से चीज फिसल गई, आप चाहते थे वो नहीं हुआ, और जो हुआ कितना बुरा हुआ। तब बाबूजी आए उनसे मिलने, हरिवंश राय बच्चन, और उनका दुख कम करने के लिए बाबूजी ने कहा कि देखो जो हुआ वो अच्छा, और जो नहीं हुआ वो और अच्छा, क्योंकि जो हुआ उसमें तुम्हारी मर्जी शामिल थी, यानी तुम जो चाहते थे वो हो गया, लेकिन जो नहीं हुआ उसमें तुम्हारी मर्जी नहीं थी पर खुदा की मर्जी उसमें शामिल थी, यानी ऊपर वाले की मर्जी थी उसमें, तो वो ऊपर वाला जो है वो नहीं चाहता इसलिए वो चीज नहीं हुई है, और अगर नहीं हुई है तो कोई कारण होगा। वो कारण का पता चलेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हमेशा ये याद रखो कि जिंदगी में जो हुआ वो अच्छा, और जो नहीं हुआ वो और अच्छा, क्योंकि जो नहीं हुआ वो खुदा की मर्जी है।

याद रखिएगा, कभी भी डिसअपॉइंटमेंट, रिजेक्शन, कुछ भी अगर आपकी लाइफ में आया है, उसे हैंडल करना है, तो हमेशा जो हुआ वो अच्छा, जो नहीं हुआ वो और अच्छा। बड़ी छोटी सी कहानी है लेकिन बड़ा कमाल कर गई। बच्चन साहब के लिए तो करी गई, हमारे लिए भी कर जाएगी। अब सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, मैं हूँ कहानी वाला रजत, लौटूंगा थोड़ी देर में एक और कहानी लेकर। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: मैं कर्नल अजय कोटियाल हूँ। अगर आपके पास कोई अपनी स्टोरी होती है, कोई एक्सक्लूसिव फीलिंग होती है, तो आप वॉक टॉक रेडियो में आए और यहाँ पे आकर के अपना आइडिया शेयर करें और डाउनलोड करें वॉक टॉक रेडियो, बहुत सारे लोगों की अच्छी जानकारियों को जानने के लिए।
0: वॉक टॉक रेडियो।

पैनिक अटैक जानते हैं क्या होता है? पैनिक अटैक ये वो चीज होती है जो आपको तब आती है जब आपकी लाइफ से कुछ छिन रहा हो, कुछ छूट रहा हो, वक्त कम पड़ गया हो, कोई डेडलाइन आ गई हो, या एक इमरजेंसी की सिचुएशन है और आपको उसे हैंडल करना है। तो अक्सर मेरा मानना है शायद 90% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पैनिक अटैक आ जाता है। कुछ ही ऐसे होते हैं जो महेंद्र सिंह धोनी की तरह कैप्टन कूल रह पाते हैं, इतने सारे शोर, इतनी सारी प्रेशर में भी अपना खेल स्मूथ और ओरिजिनल रख पाते हैं। सिचुएशन से जिनकी जिंदगी पर फर्क नहीं पड़ता वो कैप्टन कूल कहलाते हैं। असल आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं कहानी वाला रजत, शो चल रहा है कहानी वाला। और अब जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये उस सिचुएशन की है जब पैनिक अटैक आता है ना तो हमें पता नहीं होता करना क्या है। हम यहां वहां हेडलेस चिकन की तरह घूमते तो रहते हैं लेकिन वो डेडलाइन कैसे मीट करेंगे, उसका सोल्यूशन क्या होगा, इसके बारे में सोल्यूशन नहीं मिलता। तो उसे लेकर मैं एक कहानी लाया हूं। ये कहानी एक किसान की कहानी है, किसान की घड़ी की कहानी है। सुनिए। तो एक दिन की बात है, एक किसान अपने खेत के पास जो अनाज की कोठी थी उसमें काम कर रहा था। काम करने के दौरान उसकी घड़ी कहीं खो गई। वो घड़ी उसके पिताजी ने जब पहली बार वो खेत पर हल चलाने आया था, जब उसने पहली बार अच्छा काम करके दिखाया था, तो पिताजी ने खुश होकर वो घड़ी खरीद के उसे दी थी। जब किसान को वो घड़ी मिली थी ना तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ था, क्योंकि उस जमाने में घड़ी एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल था, हर एक के हाथ में नहीं होती थी। जिसके हाथ में है उसका वक्त अच्छा चल रहा है, ये बात वो घड़ी साबित कर देती थी। घड़ी को लेकर एक छोटा सा किस्सा है कि दो लोग थे, दो दोस्त थे, दोनों ने हाथ में घड़ी पहनी थी। तो एक के हाथ में एक मामूली सी घड़ी थी, दूसरे के हाथ में एक बहुत स्टाइलिश ब्रांडेड घड़ी। तो दूसरे ने, जो दोस्त था जिसने मामूली घड़ी पहनी थी, उसने मजाक में कहा कि यार देख मेरी 200 रुपए की है, तेरी 2000 की, लेकिन वक्त तो सेम बताती है। तो जिसकी 2000 की घड़ी थी उसने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो घड़ी ये बता रही है कि तेरा वक्त कैसा चल रहा है और ये घड़ी ये बता रही है कि मेरा वक्त कैसा चल रहा है। सोच सोच का फर्क है। वापस आते हैं हमारी किसान की घड़ी पर। तो किसान की वो जो बहुत ही खास घड़ी थी जो उसके फादर ने उसे गिफ्ट करी थी, उसके पापा ने, वो खो गई। और उसका बड़ा अटैचमेंट था उस घड़ी से, उस स्टेटस सिंबल के साथ साथ में उसके पापा की निशानी भी थी। उसने वो घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की, स्कोटी का हर कोना कोना छान मारा लेकिन घड़ी नहीं मिली। वहां बहुत सारा अनाज था, बोरियां थी, एक छोटा सा कमरा था, अंधेरा था, लेकिन घड़ी नहीं मिली। आखिरकार वो बिल्कुल निराश हो गया और कोठी के बाहर आ गया। वहां देखा तो कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसने बच्चों को पास बुलाकर अपने पिताजी की वो घड़ी खोजने का काम सौंपा। उसने कहा कि जो घड़ी ढूंढ देगा उसको मैं इनाम दूंगा। इनाम का लालच था तो बच्चे लगे घड़ी ढूंढने। कोठी के अंदर जाकर बच्चों ने घड़ी ढूंढने के लिए अपनी जान लगा दी। इधर उधर, यहाँ वहां, हर जगह खोजने पर घड़ी नहीं मिली। बच्चे थक गए, उन्होंने हार मान ली। किसान ने अब घड़ी मिलने की उम्मीद खो दी थी। बच्चों के जाने के बाद वो कोठरी में उदास बैठा रहा। तभी एक बच्चा वापस आया। उसने किसान से बोला कि वो एक बार फिर से ढूंढने की कोशिश करेगा। किसान ने कहा ढूंढ लो, पर अब मुझे देर हो रही है, अंधेरा हो रहा है, तो मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। तो किसान को जाने की जल्दी भी थी। बच्चा जो था वो कोठी के अंदर गया और कुछ देर बाद वो अकेला ही था उस कोठी में। उस वक्त कोठी बंद की अंधेरे में, कुछ देर बाद वो वहां से बाहर आया और उसके हाथ में किसान की घड़ी थी। जब किसान ने वो घड़ी देखी तो बहुत खुश हुआ और उसने पूछा कि आखिर तुम कैसे ढूंढ पाए इसे, जब कोई और बच्चा नहीं ढूंढ पाया, मैं भी नहीं ढूंढ पाया, तो तुम्हें कैसे मिली। पूछने पर बच्चे ने कहा कि कोठी के अंदर जाकर ना वो एकदम चुपचाप अंधेरे में जाकर एक कोने में खड़ा हो गया और बस ध्यान लगाकर सुनने लगा। उस घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे उसका इंतजार कर रहा था और आखिर वो सुनाई दी। उसी डायरेक्शन में ढूंढा तो पता चला कि अनाज का एक बोरा था, उस बोरे के पीछे की तरफ एक आला था, एक शेल्फ। उस शेल्फ में वो घड़ी पहुंच गई थी किसी तरह से। किसान ने बच्चे को शाबाशी दी, इनाम दिया, और उस बच्चे ने किसान की उस घड़ी के साथ में हमें दे दिया एक छोटा सा लेसन, एक कहानी के फॉर्म में। शांति, पीस हमारे मन और हमारे दिमाग दोनों को ना फोकस्ड फॉर्म में ले आती है, उसे एकाग्र कर देती है। जब हमारे मन की स्थिति एकाग्रचित होंगे, जब हम एक डायरेक्शन पर फोकस कर पाएंगे, तब जिंदगी में फैसले लेना आसान होगा। ऐसे ही जब कोई पैनिक सिचुएशन आएगी उसमें जब आप फोकस्ड होकर डिसीजन लेंगे, आपका जो मन है वो आपके काबू में रहेगा। अगर अंदर एक शांति होगी तो आप घड़ी की टिक टिक सुन पाएंगे, आप वो सही डायरेक्शन ढूंढ पाएंगे जहां पहुंच कर आप अपनी प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं। तो जिंदगी में परेशानियां बहुत आएंगी, जिंदगी में बहुत मुश्किलें आएंगी, जिंदगी में ऐसे पैनिक सिचुएशंस बहुत आएंगे जब आपको समझ नहीं आएगा करना क्या है। 2 मिनट रुक कर अपने मन के अंदर ना वो एकाग्र चित्त वाला भाव लाने की कोशिश करना, वो शांति, वो पीस लाने की कोशिश करना, देन यू विल फाइंड आउट द वे, यू विल फाइंड आउट द डायरेक्शन वेयर टू गो। समझे? सुनते रहो वॉक टॉक रेडियो, यहाँ पर हम जिंदगी बदलने की कहानियां सुना रहे हैं आपको। शो का नाम है कहानी वाला, मैं हूँ कहानी वाला रजत, और आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: हाय, लगी तो नहीं?
1: आई एम गुड, आई एम गुड।
0: चलो मैं सिखाती हूँ।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: बुक रीडिंग हम में से बहुत लोगों को बहुत ही बोरिंग एस्पेक्ट लगता है, पता है क्यों? टाइम नहीं है यार, बहुत कुछ करने का है। बिजनेस है, फोन है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीजें करनी है और लोगों से बातें करनी है, जगहें देखनी है। किसी सफर पे अकेले निकलना, हम सब लोग ग्रुप में निकलते हैं, दोस्तों के साथ निकलते हैं, परिवार के साथ निकलते हैं, बट खुद के साथ नहीं निकलते क्योंकि डर लगता है। हम अपने दोस्त थोड़े ना है, हमें अपना अकेलापन खा जाता है। अगर खुद को फील करना है तो अकेले निकलिए सफर पे और एक किताब लेके निकलिए। लेकिन एक जो रीडिंग हैबिट होती है ना, वो आपको आपसे कनेक्ट करती है।
2: कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से।
1: किसी इंसान ने अपने 60 साल 70 साल का तजुर्बा 60 से 150 पन्ने की किताब में डाल दिया आपके लिए। अगर आप उस किताब के साथ दोस्ती कर लेंगे तो यकीन मानिए ये दोस्ती आपकी खुद से हो जाएगी, क्योंकि ये समय आपका खुद का है।

वॉक टॉक रेडियो, एक ऐसी जगह जहां पर जिंदगी बदलने की छोटी सी कोशिश की जाती है। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। मैं हूं कहानी वाला रजत, शो का नाम कहानी वाला। किससे कहानियां सुनाने के साथ साथ मुझे लगा कि आज कुछ शायरियां आपको सुना दूं जो जिंदगी पर लिखी हैं कुछ महान शायरों ने, द ग्रेट राइटर्स, जैसे जॉन एलिया साहब। उन्होंने लिखा, जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। बहुत कम शब्दों में बड़ी बात कही। बशीर बद्र साहब ने लिखा है कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। और इमाम बख्श साहब ने कुछ ऐसा लिखा है जो आप बरसों से सुनते आए लेकिन आपको नाम नहीं पता था कि लिखा किसने। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ये फिल्मों में डायलॉग्स थे ना, ऐसा लगता था किसी फिल्मी राइटर ने लिखा होगा। और फिराक गोरखपुरी साहब, एक बहुत ही फेमस लिरिसिस्ट भी रहे, वो लिखते हैं कि मौत का भी इलाज हो शायद, जिंदगी का कोई इलाज नहीं है। बहरहाल ये तो जिंदगी के नाम लिखी वो शायरियां हैं जो जिंदगी की डेफिनेशन बनाने में मदद करती हैं। तो वाकई मौत का इलाज है, जिंदगी का नहीं है। जिंदगी अपने दर्द देती है, अपने रास्ते भी बताती है, फिर भी हम इसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसी कोशिश में कहानी सुन लेते हैं। ये बेंगलुरु की कहानी है। बेंगलुरु के गोल्फ क्लब में कैडी, आपको पता है गोल्फ में कैडी क्या होता है? कैडी होता है खिलाड़ियों के पीछे बैग जो होता है ना उनका, वो गोल्फ जिसमें सारी स्टिक्स होती हैं उनको उठाकर चलने वाला लड़का। तो जो कैडी का काम करता था उस लड़के की कहानी है। उसका नाम है चिन्ना स्वामी मनियप्पा। तो ये लड़का जो कैडी का काम करता है, जिसके माँ बाप उस गोल्फ क्लब में मजदूरी किया करते थे, उसने कमाल करके दिखाया और वही कमाल कहानी बनी। कमाल था कि चिन्ना स्वामी मनियप्पा ने 11 अक्टूबर 2009 को $12.5 लाख की हीरो होंडा इंडियन ओपन चैंपियनशिप जीतकर सबका सर चकरा दिया था। जब डीएलएफ गुड़गांव गोल्फ क्लब के मैदान पर चिन्ना स्वामी ने साउथ कोरिया के सबसे प्रेस्टीजियस खिलाड़ी ली सुंग को हराया ना, तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ। कर्नाटक के चिन्ना स्वामी मनियप्पा के बिना, उन्होंने बिना किसी कोच के अपनी मेहनत और लगन के दम पर यह कॉम्पिटिशन जीत कर ये साबित कर दिया कि अगर आप पूरी लगन, पूरे डेडिकेशन और कॉन्फिडेंस के साथ कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो वो कर लेते हैं। कमाल की बात है कि चिन्ना स्वामी आज तक कर्नाटक गोल्फ क्लब के मेंबर नहीं बन पाए। जैसा मैंने बताया था कि उनके माँ बाप कर्नाटक के उसी गोल्फ क्लब के मजदूर हुआ करते थे और आज बेटा वहाँ गोल्फ प्रैक्टिस करता है। चिन्ना स्वामी ने गोल्फ की बारीकियां कैडी का काम करते करते सीखी और वो प्रोफेशनल गोल्फर बन गए। मतलब ये वही हुआ कि कोई लड़का है जो किसी वर्कशॉप में मैकेनिक है और एक दिन उसी ने वो गाड़ी बनाई और वो उस वर्कशॉप को अब ओन करता है और वो गाड़ियां भी बनाता है। भाई हमें गर्व है एक ऐसे हिंदुस्तानी पर जिसने एक इंस्पायर किया हर एक शख्स को और बताया कि आर्थिक मजबूरी, फाइनेंशियल सेटबैक्स अगर आपकी लाइफ में रहे हैं तो वो चैलेंजेस नहीं है, आप उसको बड़े आराम से पार कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अगर एक कैडी गोल्फर बन सकता है, $12.5 लाख का एक गोल्फ चैंपियनशिप जीत सकता है, तो आप उससे बहुत बेटर सिचुएशन में हैं अपनी जिंदगी में। आप सोचिए आप क्या नहीं कर सकते। मुझे यकीन है आप कर सकते हैं, बस किसी ने आपको यह एहसास नहीं दिलाया कभी कि आप बहुत स्पेशल हैं। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, यकीन मानिए। मैं हूं कहानी वाला रजत, कहानियां सुनाता हूं इसीलिए ताकि उन कहानियों में से कुछ ऐसा आपकी जिंदगी में चला जाए जो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग थॉट बनकर सामने आए। एक लाइफ चेंजिंग थॉट भी काफी है, शुरुआत तो बस सोच से होती है जनाब। सुधरे वॉक टॉक रेडियो, कहानियां सुनाऊंगा, कहानियों के साथ साथ दूंगा कुछ ऐसी एडवाइस जो शायद आपकी जिंदगी बदलने में आपके काम आए। मैं हूं कहानी वाला रजत, ये है वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: हम में से कितने ही ऐसे लोग हैं जो जब अपनी टीनेज में रहे होंगे तो हर छोटी छोटी बात पर हमने अपने घर पे कितनी जिद की होगी ना। कभी आइसक्रीम वाले का भौंपू सुनते ही रोज आइसक्रीम खाने की जिद, बाजार गए तो महंगे अच्छे कपड़े लेने की जिद, हर बार नए नए जूते खरीदने की जिद। तब माँ बाप की कही बातों के मायने हमें समझ नहीं आते थे, लेकिन आज जब हम उस जगह पहुंचते हैं, उस स्टेज पर पहुंचते हैं, तो वो सारी बातें हम समझ पाते हैं। तो दोस्तों, जरूरी नहीं कि जो बात आपको पसंद नहीं आ रही वो आपके लिए अच्छी नहीं है, क्या पता उसी बात में आपका ही भला छुपा हो।
0: Tune in for a better life.
2: Tune in for a better life.
3: On the stage. Right now.

कुछ कहानियां इसलिए नहीं जरूरी होती कि वो आपकी जिंदगी में कुछ ऐड कर देती हैं या आपको एक जिंदगी का लेवल अप करने का मौका देती हैं। कुछ कहानियां इसलिए जरूरी होती हैं क्योंकि वो आपको वो चीजें याद दिलाती हैं जो आप भूल गए हैं, और शायद उन्हें याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं कहानी वाला रजत, और कहानियां सुनाना मेरा काम है, ये तो आप जानते ही हैं। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो आपकी जिंदगी से जुड़ी कहानियां होती हैं। तो अगली कहानी देखते हैं। अगली कहानी है एक घंटा। शाम का वक्त था, ऑफिस से घर आने के बाद पापा जो थे वो बहुत ज्यादा बिजी थे ऑफिस की फाइल्स में, तो टेबल पर बैठ गए और पूरा ध्यान फाइल्स में था। तभी उनका 7 साल का बेटा उनके पास आया, रात के 9 बजे थे। बोला, पापा क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो बिना फाइलों से नजर हटाए पापा बिजी थे, पापा ने बोला, हाँ पूछो। उसने, पापा आप एक घंटे का कितना कमा लेते हैं? बहुत अजीब सवाल था, पापा को गुस्सा आ गया। उन्होंने जवाब दिया, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इससे, क्यों बेकार के सवाल पूछ के मेरा टाइम खराब कर रहे हो, देखते नहीं मैं काम कर रहा हूँ? पापा मैं बस जानना चाहता हूँ, प्लीज बताइए ना आप एक घंटे का कितना कमा लेते हैं। तो बेटा जिद करने लगा। पापा ने कहा, 500 रुपए। ओ 500 रुपए? तो बेटा सर झुकाकर कुछ सोचने लगा, फिर उठकर बोला, पापा आप मुझे 300 रुपए उधार दे देंगे? ये सुनना था कि पापा को गुस्सा आ गया। वो पापा को बोले, बेटे को बोले कि अच्छा तो तुम इसीलिए मुझसे मेरी सैलरी पूछ रहे थे क्योंकि तुम्हें कोई खिलौना खरीदना है या कोई चीज लेनी है? अब एक शब्द बिना कहे ना अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, मैं इतनी मेहनत से पैसे इसलिए नहीं कमाता कि तुम्हारे फालतू डिमांड्स पूरी करता रहूं बस, जाओ। बेटे का चेहरा उतर गया, भारी कदमों से वो वहां से चला गया। पापा कुछ देर तक तो बेटे की बात पर नाराज रहे और काम में लग गए। काम खत्म हुआ, तकरीबन रात के 11 बज चुके थे। पापा की नाराजगी भी खत्म हो गई, उनको लगा कि बेटे के लिए वो काफी रूड रहे। वो सोचने लगे कि बेटे ने यार सच में कोई जरूरी चीज हो सकता है उसे खरीदनी हो तभी 300 रुपए मांगे, क्योंकि वो पहले कभी पैसे नहीं मांगता इस तरह से। फिर वो अपने बेटे के कमरे में गए, देखा तो उनका जो बेटा था वो बिस्तर पर लेटा था। तो उन्होंने पूछा कि सो गए क्या बेटा? तो उठकर बोला, नहीं पापा मैं तो जागा हूँ। तो बोले कि बेटा मैं काम की वजह से थोड़ा परेशान था, पर तुम बुरा मत मानना, मेरा गुस्सा तुम पर निकल गया, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, ये 300 रुपए लो, जो टाइम उस टाइम तुम मुझसे मांग रहे थे ना ये लो। उसने कहा कि थैंक यू पापा। 300 रुपए एक तरफ रखकर उसने अपने तकिए के नीचे से कुछ नोट निकाले और उन्हें गिनने लगा। पापा ने देखा कि इसके पास पैसे हैं फिर भी मांग रहा है, फिर गुस्सा हो गया। बोले, जब तुम्हारे पास पहले से पैसे थे तो मुझसे क्यों मांग रहे थे? तो उसने कहा, पापा मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे ना, अब है, ये सब मिला के और वो 300 रुपए मिला के पापा पूरे 500 हो गए, ये लीजिए 500 रुपए, क्या मैं आपका एक घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज आप कल घर जल्दी आना ना, अपन डिनर साथ में करेंगे, और काम मत करना कम से कम उसे एक घंटे में। बेटे की बात सुन के पापा शॉक थे, हम पैसे कमाने की जद्दोजहद में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमारी जो फैमिली है ये पीछे छूट जाती है, हमारे पास अपने फैमिली हमारे रिलेटिव्स के साथ बिताने के लिए वक्त नहीं है, ये वक्त धीरे धीरे हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है और ये बीता समय कभी लौटेगा नहीं। ऑफिस में हमारा रिप्लेसमेंट आसानी से मिल जाता है, लेकिन फैमिली में क्या कोई हमें रिप्लेस कर पाएगा? अब सोचिए कि आपको किसे ज्यादा वक्त देना है, ऑफिस, फैमिली, पैसे या काम, सोचिएगा इस पर। मैं हूँ कहानी वाला रजत, कुछ कहानियां आपको सुनाता हूँ, बस यूं ही बैठे रहिए और मेरे साथ मेरी कहानियां एंजॉय करते रहिए। वॉक टॉक रेडियो पर ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। स्टे ट्यून्ड ऑन वॉक टॉक रेडियो।

बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो जब ही बोलें, हमेशा नाप तोल कर बोलें। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: जब भी आपकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आए तो थोड़ा सा ठहर जाना, एक लंबी सी गहरी सांस तुम लेना, अपने अच्छे से अच्छे वक्त को उस वक्त तुम याद करना, अपनी मंजिल को तुम याद करना, खुद से वादा तुमने जो किया है उस वादे पर ध्यान करना। अगर सपने बड़े हैं तो मुश्किलें भी बड़ी होंगी, बस इरादे पक्के होने चाहिए। इसलिए जिंदगी में जब भी अप्स एंड डाउन्स आए तो थोड़ा सा खुद के बारे में जरूर सोचिएगा।
1: कपड़े तो पहन ले।
2: दादी मिल गई से।
1: मतलब ये उन लोगों में से है।
3: कल्चर की तो कुछ परवाह कर।
4: मैं आपको समझता हूँ।
3: कैसा ही होगा?
4: लड़की
3: मेरा चल।

अब जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आज की आखिरी कहानी है। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं कहानी वाला रजत। कहानी वाला शो पर लेकर आया हूं एक कहानी एक लड़के की। ये कहानी ये सिखाती है हमको कि जिंदगी में ना नथिंग कैन बी, यू कैन नेवर बी लेट फॉर समथिंग, इन अ वे इट्स नेवर टू लेट। कैसे, कहानी सुनते हैं। एक लड़का जो जब 5 साल का था तब उसके फादर की डेथ हो गई। माँ नौकरी पर जाती थी तो वो घर पर खाना बनाता। अब वो लड़का 7th क्लास तक स्कूल गया, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी, माँ ने दूसरी शादी कर ली और ये जो लड़का था ये घर से भाग गया। तो शुरुआती जिंदगी में तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। कभी स्टीम बोट में नौकरी की, फिर एक इंश्योरेंस कंपनी में सेल्समैन बनने की कोशिश की, फिर रेल रोड में फायरमैन का काम किया। 16 साल की उम्र हुई ना तो अपनी उम्र गलत बताकर वो आर्मी में शामिल हो गया, क्यूबा में नौकरी करने लगे। 1-2 साल में वहां से भी उनकी छुट्टी हुई। 20 साल की उम्र में उनकी शादी हुई और बताते हैं कि कुछ साल बाद ही उनकी वाइफ उन्हें छोड़कर चली गई क्योंकि उनके पास काम नहीं था, वो बेरोजगार हो गए थे या फिर पैसे कमाने के जरिए नहीं थे। उनकी एक बेटी भी थी, वो चाहते थे कि बेटी को अपने पास रखे चाहे वाइफ उन्हें छोड़ जाए तो भी। तो उन्होंने अपनी बेटी को ही किडनैप करने की कोशिश की, बट दैट वॉज अ फेल्ड अटेम्प्ट। अब सवाल यह हुआ कि उन्हें अपनी वाइफ को मनाना पड़ा कि तुम वापस घर आ जाओ। तुम्हारी वाइफ ने कहा तुम काम शुरू करो, तो उनके पास करने के लिए काम नहीं था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या काम करें। फाइनली उन्हें पता चला कि वो एक ही चीज सबसे अच्छी करते हैं और वो खाना बनाने का काम, जो बचपन में किया करते थे ना वो, और उसमें भी चिकन बहुत कमाल का बनाते हैं। तो 40 साल की उम्र में वो चिकन बनाते थे और जो उनके सर्विस स्टेशन पे या जहां पर वो चिकन बनाते थे वहां रुकता था वो उनका चिकन जरूर खाता था। अब तब वो पॉपुलर तो हो रहे थे पर उनके पास कोई रेस्टोरेंट नहीं था। चिकन की क्वालिटी ऐसी कमाल की बनाने लगे, उनकी बिक्री बढ़ने लगी और फिर वो 142 सीटर होटल के मेन शेफ बन गए। तब ये बहुत बड़ी बात थी। वहीं पर उन्होंने चिकन पकाते पकाते ना एक नया तरीका इजाद किया जिसे प्रेशर फ्रायर चिकन कहने लगे लोग। अब तक आपको समझ आ चुका होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि 60 साल की उम्र ना रिटायरमेंट की उम्र होती है। इस शख्स ने अपनी रिटायरमेंट की उम्र से पहले कई बार हाथ पांव मारे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, कोई एक ऊंचाई पर पहुंचने के लिए, पर किस्मत ने उनका साथ ही नहीं दिया। फिर एक मौका आया, एक मौका ऐसा आया कि उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी ना वेस्ट हो गई है, वो अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाए, एक शेफ रहे उससे ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाए। तब उनकी जो वाइफ थी वो उन्हें छोड़कर जा चुकी थी और पैसा जो था वो कमाया, लेकिन जब नौकरी छोड़ी तो उन्हें सरकार की तरफ से $105 की एक पेंशन मिली, जिसके बाद ये साबित हो गया कि यार मैंने शायद अपनी जिंदगी में वो किया ही नहीं जो मुझे करना था। वो एक आम सी जिंदगी, एक बिलो एवरेज जिंदगी लेकर अपनी जिंदगी खत्म करने वाले थे। उनको लग रहा था कि बस अब मैं अपनी वसीयत लिख देता हूँ, जो मेरे पास है वो मेरी फैमिली को मिल जाए, मेरा कोई भरोसा नहीं। 60 साल की उम्र में उन्होंने जब अपनी वसीयत लिखने का फैसला किया, ही रोट दैट डॉक्यूमेंट, और लिखते लिखते उन्होंने लिखा कि कितना मुश्किल था अपनी वाइफ को उनके लिए मनाना, फिर भी वो मनाकर वापस लाए सिर्फ इस दम पर कि वो बहुत अच्छे कुक थे, तो उन्हें खाना बनाना तो आता था, उन्होंने तो चिकन की नई रेसिपी भी इजाद की थी, क्यों ना वो उसे बेचे। वही लिखते लिखते उन्हें जब ख्याल आया तो उन्होंने रेस्टोरेंट्स के दरवाजे खटखटाने शुरू किए। ऐसे ही रूमर्स भी हैं और लोग कहते भी हैं कि उन्होंने 1000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स के दरवाजे खटखटाए थे और हर एक ने उन्हें मना कर दिया था कि नहीं, हम आपकी ये रेसिपी नहीं ले सकते। धीरे धीरे करके जब वो इतनी बार ना सुनते गए तब फाइनली एक रेस्टोरेंट, सोचिए 1000 रिजेक्शंस झेलने के बाद एक रेस्टोरेंट ऐसा था जो तैयार हुआ कि हाँ हम आपकी रेसिपी को ट्राई करें। उन्होंने वो चिकन वहां पर सेल किया और वो पॉपुलर हो गया। इस बिजनेस की शुरुआत, इस चिकन को बेचने की शुरुआत उन्होंने केंटकी में की थी। उनका बिजनेस जबरदस्त पॉपुलैरिटी के आसमान को छू रहा था। केंटकी के जो गवर्नर थे रूबी लफून, 1935 में उन्होंने इस शख्स को एक उपाधि दी, एक टाइटल दिया, केंटकी कर्नल, क्योंकि कभी ये फौज में रहे थे। तो केंटकी कर्नल सॉन्डर्स ने शुरुआत की KFC की, केंटकी फ्राइड चिकन। आपने देखा होगा ना वो KFC के बकेट्स जो लोग लिए बैठे रहते हैं KFC के कॉर्नर्स पर, जिनका वो लिप स्मैकिंग टेस्ट, वो डिलिशियस स्वाद, वो जो भी, अगर आप चिकन लवर हैं तो यू मस्ट बी नोइंग दैट थिंग, दैट जूसी फ्राइड चिकन जो वहां पर सर्व होता है, इट इज कम्प्लीटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एक ऐसी यूनिक रेसिपी है जिसकी वजह से KFC की जब शुरुआत हुई तब, मतलब आप सोचिए 1964 में $2 मिलियन में KFC का हिस्सा कर्नल ने 1964 में बेचा था,
कर्नल ने कनाडा में अपनी फ्रेंचाइजी बेची और खूब पैसा कमाया, मतलब इतना पैसा जो बाकी की पूरी जिंदगी के लिए काफी था, लेकिन इस चीज की शुरुआत 60 साल की उम्र में हुई। ये कितनी बड़ी बात है कि इस शख्स ने अपनी ढलती हुई उम्र को अपने हार जाने का कारण नहीं माना और जीतने के लिए कोशिश करी उस चीज के दम पर जो उसके लिए सबसे खास थी, कुकिंग। ऐसे ही कोई एक आपकी यूनिक स्ट्रेंथ होगी जो आपके लिए खास है, जो आपको खास बना सकती है। आप बस उसका इस्तेमाल करके देखिए, मैं कह रहा हूं जिंदगी बदल जाएगी। हमने सुनी है आज कर्नल सॉन्डर्स की कहानी। इनका पूरा नाम है हार्लन डेविड सॉन्डर्स। कर्नल इन्हें एक उपनाम मिला था, एक तरह का टाइटल मिला था फ्रॉम द गवर्नर ऑफ केंचुकी, जहां पर इन्होंने शुरुआत की थी केंचुकी फ्राइड चिकन की। केंचुकी को KFC यानी केंचुकी फ्राइड चिकन के लिए हमेशा सदियों तक जाना जाएगा। 5 साल की उम्र में वो लड़का जब अपने घर पे खाना बनाता था, जब उसकी माँ नौकरी पर जाती थी, तब उसने नहीं सोचा था कि एक दिन यही चीज उसके इतने काम आएगी जो KFC बनकर दुनिया के सामने आएगी। हमें नहीं पता कि पजल के कौन से पीस से कौन सी पिक्चर बनने वाली है, पर ये छोटे छोटे हिस्से, वो छोटी छोटी कोशिशें हैं जो हम कर रहे हैं अपनी जिंदगी को एक बेहतर जिंदगी बनाने की। वॉक टॉक रेडियो पर कहानी वाला के साथ आज कहानियों का सफर बस यहीं तक। मेरे जाने का वक्त हो चला है, मैं भी चलता हूँ, फिर भी यहीं मिलता हूँ वॉक टॉक रेडियो पर, जो आपकी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहा है। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। मैं हूँ कहानी वाला रजत, जल्द फिर मिलेंगे।

नशीली वो रातों में, गहरी सी अपनी वो यादों में मैं रहा, अनकही सी बातों में, मीठी सी वो मुलाकातों में मैं रहा। बहुत सहा मेरे सारे जख्मों को दिए तूने बहुत दवा, लोग साले अपनों को देते रहते बहुत धक्का, बहुत खफा इन सपनों से बहुत खफा। तू भूल जाती छिपकों में अपनों को बंद कमर।

हूँ, तुझे क्या, तू तो मेरी हो गई हूँ, मैं किस वफा की उम्मीद रखूँ, तेरे ताने सुन लेता तो गाना ये आज मेरे साथ ना रहता, काश बहाने ना देता तो तू शायद आज मेरे साथ ही रहता, काश ये काश का जिक्र ना रहता, सियाही भी पन्नों से बस कफा रहता, और आज भी खुद को मैं कहता ही रहता तू साथ में।

0: रेडियो।
1: हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना।

0: Fucked up, tune in for a better life. Fucked up, fucked up, tune in for a better life.
1: अवसर उसी को मिलता है जिसमें काबिलियत होती है। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते।
2: Mock Duck Radio, tune in for a better life.

0: तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आज की दुनिया में बहुत से दोगले लोग पाए जाते हैं जो अगर आपके दोस्त बन जाए तो दुश्मनों की भी कमी नहीं महसूस होने देते। इसीलिए मैं आप सभी से ये गुजारिश करती हूँ कि ऐसे लोगों से बचे रहें और हमेशा अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपके लिए सिर्फ अच्छा सोचते हैं और आपको हमेशा सही राह दिखाते हैं। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो।
1: वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है मोटिवेशन का मंत्र जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: Every day.

0: जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही छोटे छोटे एफर्ट से आपका गोल धीरे धीरे पूरा होता है। हर दिन की मेहनत काउंट होती है। एक एक दिन जब आपने अपनी नींद को सैक्रिफाइस किया, आपके दोस्त घूम रहे थे लेकिन आप अपने गोल को पाने के लिए काम कर रहे थे, यही तो टेस्ट है मेरे दोस्त। सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन पूरे मन से पूरी लगन से लगे रहना, और जब आखिरकार वो गोल आप अचीव करोगे तो ट्रस्ट मी, माउंट एवरेस्ट चढ़ना और वो गोल अचीव करना एक ही जैसी फीलिंग होगी।
1: वॉक टॉक रेडियो, सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ,
2: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: कुछ करके दिखाने की चाह रखने वाले रास्ते में आने

पले पहाड़ों से नहीं डरते। कुछ ऐसी ही बुलंद हौसले रखने वाली एक इंडियन, जिनके बारे में हमने अपनी किताबों में भी पढ़ा है, अनसंग चैंपियंस में आज मैं उनकी कहानी लाई हूँ, जिन्होंने एवरेस्ट के साथ साथ हमारे दिलों पे भी एक हिम्मत की छाप छोड़ दी। कहानी है बछेंद्री पाल की, उत्तराखंड में जन्मी एक ऑर्डिनरी लेडी की, जिन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट से हम देशवासियों को सिखाया कि जो आपकी ट्रू कॉलिंग है वो आपको किसी भी तरह से अपने पास बुला ही लेती है। बछेंद्री जी का जन्म भारत की देवभूमि यानी उत्तराखंड में नाकोरी गांव में 1954 में हुआ था। उनके पिताजी श्री कृष्ण सिंह पाल जी एक किराने की दुकान चलाते थे। बछेंद्री जी एक बैकवर्ड गांव से बिलोंग करती हैं। आज के टाइम पे इतनी अवेयरनेस के बाद भी गांव के लोगों की मेंटेलिटी थोड़ा नैरो ही होती है, तो सोचिए उस समय कितना मुश्किल रहा होगा अपने मन की इच्छा पूरी करना और सोसाइटी के संग चलना। बछेंद्री जी को पढ़ाई से बहुत प्यार था। गांव में लड़कों को तो पढ़ाया जाता था, पर लड़कियों के लिए 10वीं पार करना भी बहुत ही बड़ी बात हो जाती थी। बछेंद्री जी को लोगों ने पढ़ने से बहुत रोका टोका, फिर भी बछेंद्री जी जिद्दी थी कि उन्हें पढ़ना है, तो उन्होंने घर पे खुद से ही पढ़ना शुरू कर दिया। साथ ही घर के कामों में भी हाथ बटाती थी। अपनी एक कजन सिस्टर जिन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की थी, उनसे बुक्स लेके बछेंद्री घर पे खुद से पढ़ाई करती थी। उनका डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्टेबल नहीं थी। फाइनेंशियल स्ट्रेन कम करने और अपनी पढ़ाई सपोर्ट करने के लिए वो 5-5 रुपए के लिए लोगों के कपड़े सिला करती थी। एजुकेशनल बैकग्राउंड उनके गांव में उनके जानने वालों का कुछ भी नहीं था, तो उन्हें बिल्कुल गाइडेंस नहीं मिली। कोई बताने वाला तक नहीं था कि उनको क्या कोर्स करना चाहिए, और उस टाइम तो इंटरनेट भी नहीं होता था। बछेंद्री जी भी बढ़ रही थी डॉक्टर बनने की तरफ, लेकिन फिर उन्हें रियलाइज होने लगा कि उनका इंक्लिनेशन स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा है। वो कॉलेज में भी स्पोर्ट्स चैंपियन थी, और फिर उन्होंने अपनी एजुकेशन लाइन शिफ्ट करी। बछेंद्री ने एमए किया संस्कृत में और देहरादून के डीएवी कॉलेज से बीएड भी किया, और वो अपने गांव से पहली लड़की थी जिन्होंने डिग्री हासिल की थी। एजुकेशन खत्म होने के बाद बछेंद्री जॉब ढूंढ रही थी और एक साल तक बेरोजगार बैठी रही। उनको एमए बीएड के अराउंड ही जॉब चाहिए थी। कहते हैं कि वो बहुत कठिन समय था उनके लिए, क्योंकि इतनी मुश्किलों से लड़कर पैसे इकट्ठा करके पढ़ाई पूरी करी, लेकिन उसके बावजूद उनको अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। लोगों से ताने भी पड़ने लगे कि पढ़ाई लिखाई करके घर पे बैठी हैं। उस दौरान बछेंद्री की मुलाकात कर्नल प्रेमचंद से हुई, जो एक रिनाउंड माउंटेनियर थे। उन्होंने बछेंद्री को सजेस्ट किया कि तुम स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्टेड हो और पढ़ी लिखी भी हो, तो तुम माउंटेनियरिंग को एज अ करियर क्यों नहीं चुन लेती। वो माउंटेनियरिंग का कोर्स करने के लिए बछेंद्री को कहीं जाने की जरूरत भी नहीं थी, उनके घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो बछेंद्री ने अप्लाई किया और बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करना शुरू कर दिया। इसी बीच बछेंद्री को एक चिट्ठी आई इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन से कि वो प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए सिलेक्ट हो गई हैं, और बछेंद्री को उसका विलिंगनेस का रिस्पॉन्स भेजना था, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। लकीली उन्हें वहां से फिर एक रिमाइंडर आया, तो अब वो चिट्ठी लेके गई अपने कोच के पास, और उन्होंने समझाया बछेंद्री को कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हारा डोर नॉक कर रही है, इसे मत जाने दो। यहाँ से संघर्ष शुरू हुआ उनका एवरेस्ट चढ़ने की तैयारी का। बछेंद्री कहती हैं कि उस समय वो 100% फोकस्ड हो चुकी थी और उन्हें एवरेस्ट किसी भी कीमत पे चढ़ना था। जब हम कुछ भी बड़ा करने लगते हैं तो हमारे रास्तों में मुश्किलें तो आती ही हैं। जब उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी तो गांव के लोग

0: रेडियो।
1: हमेशा से ही एक बात हमें बहुत सताती है कि हमारा फ्यूचर कब ब्राइट होगा, हमारे सपने कब पूरे होंगे। लेकिन उससे पहले अगर ये समझा जाए कि तुम्हारे सपने क्या हैं और तुम प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, तो जिंदगी के आधे मसले यहीं पर खत्म हो जाएंगे।

0: हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर भानुशाली यानी कि आपका देवानंद जूनियर। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला इंस्पिरेशनल ऐप वॉक टॉक रेडियो। तो जल्दी से जाओ और गूगल पे डाउनलोड करो प्ले स्टोर से।
1: अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कुछ बातों का ध्यान रख के कैसे आप अपनी सॉफ्ट स्किल को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो सुनिए सॉफ्ट स्किल डेवलपर मानिक कौर को सिर्फ और सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक
2: रेडियो। ये सोचना चाहिए कि हम जब लोगों के लिए मीन बातें बोलते हैं या उनके बारे में गॉसिप करते हैं बिहाइंड देयर बैक्स, या फेस पे उनके अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं लेकिन थोड़े टाइम के बाद पता लगता है कि दे हैव चीटेड ऑन यू और दे वर टॉकिंग बैड अबाउट यू और यू शेयर्ड समथिंग विद देम एंड इट्स ऑल ओवर द टाउन। सो ये सब बातें दे आर बैड प्रैक्टिसेस। द स्किल्स इन्वॉल्वड हियर आर एज सिंपल एज बेसिक ह्यूमैनिटी। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट स्पेशल स्किल्स। आई जस्ट फील दैट बेसिक ह्यूमैनिटी इज गोइंग मिसिंग। वी नीड टू रिवाइव दैट एंड हैव गुड कंडक्ट विद पीपल। अगर आपको कोई पसंद नहीं भी है तो भी आप उनके साथ पोलाइटली बात करें, कम बात कीजिए। अगर आपको कोई इंसान पसंद नहीं है, आपको जरूरी नहीं है उसको बताना है कि आपको दैट यू डोंट लाइक हिम और हर। बी पोलाइट इन योर कंडक्ट, बी केयरफुल इन योर कंडक्ट, बी माइंडफुल इन योर कंडक्ट। डोंट गैंग अप विद अदर पीपल एंड इंसल्ट दैट पर्सन। आज जितनी सोशल एंग्जाइटी है कभी नहीं थी। 10 लोगों के ग्रुप में से 9 लोगों को बुला के एक लोग बंदे को छोड़ देते हैं। पीपल हैव बिकम सो इनसेंसिटिव। लेकिन कोई 10 लोगों में आपको छोड़ के बाकी 9 को बुला ले तो आपको कैसा लगेगा? दिस इज समथिंग वेरी वेरी कॉमन अगेन इन सोशल सर्कल्स दैट इज हैपनिंग। पीपल आर फीलिंग, पीपल आर डूइंग दिस टू देम पर्पसली। वॉक टॉक रेडियो।

उम्मीद कहते हैं उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए आपकी जिंदगी में। अगर आपको किसी मंजिल से मोहब्बत है, अब वो कोई काम हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई ख्वाहिश हो सकती है, तो बस उससे जुड़े रहो। उतार चढ़ाव आएंगे, अच्छा बुरा वक्त भी आएगा, लेकिन एक ना एक दिन आपकी मंजिल आपको

आजकल हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को जीने का ढंग बदल लेते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि अपनी पसंद का जीवन जीने के समान कोई जीवन नहीं। तो लाइफ अपने हिसाब से जिए, ना कि दूसरों के। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: लोगों को जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें होती हैं। अपनी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी प्यारी लगती है, तो मेरा आपसे यही कहना है कि ये मत पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो वो भी करते हैं जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।
1: हाय गाइस, मेरा नाम है खुसरो, AKA टेक नाइट, और आप मुझे सुन रहे हैं। इंसान की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वेल, जॉब से आपका ब्रेड एंड बटर चलता है, और पैशन जो है वो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है, जिसको मैं बोलता हूँ। तो अगर आप जॉब के साथ साथ अपने

तो दोस्तों, अगर हम कर्म की बात करें तो वो हमेशा कहता है कि जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही वो लौटकर आपके पास आएगा। तो अगर कभी भी आपकी जिंदगी में ऐसा हो कि आप किसी के साथ अच्छा करने चले हैं और वो आपके साथ हमेशा बुरा ही करता है, तो अच्छा करने से पहले कभी मत सोचना कि ये मेरे साथ बुरा करता है तो मैं भी इसके साथ बुरा ही करूँगा। क्योंकि जो भी हो, कर्म हमेशा लौट कर आता है। और जीवन में एक ऐसा समय आता है जब कुछ लोग पछताते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत या धोखा क्यों किया। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहें मॉक टॉक रेडियो।

थैंक्सगिविंग के बारे में जानते हैं ना आप? थैंक्सगिविंग डे एक बहुत ही स्पेशल मौका जिस दिन आप उन चीजों के लिए थैंकफुल होते हो जो आपको दुनिया में मिली, जिंदगी में मिली और चाहते हो आपके यार शुक्रिया अदा किया जाए। तो ये थैंक्सगिविंग डे आने वाला था। फर्स्ट ग्रेड टीचर जो थी उसने अपनी क्लास को एक फन असाइनमेंट दिया। उसने कहा कि एक ऐसी पिक्चर, ऐसी तस्वीर बनाओ जिसे तुम थैंकफुल हो या जिसको थैंक्स कहना चाहते हो। मोस्ट ऑफ द क्लास माइट बी कंसिडर्ड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड बट स्टिल मेनी वुड सेलिब्रेट द हॉलीडे विद टर्की एंड अदर ट्रेडिशनल गुडीज ऑफ द सीजन। टीचर ने उनको सिखाया था कि मोस्ट ऑफ हर स्टूडेंट्स वर ऑफ आर्ट्स एंड सब जने ये चीज जानते थे कि किसी के पास बहुत ज्यादा पैसे हो या ना हो, हर शख्स इस चीज का थैंकफुल होना चाहिए कि उसके पास कुछ तो है। ये उस टीचर ने अपने सारे स्टूडेंट्स को सिखाया। उसके सारे टी स्टूडेंट्स जो थे वो ये बात मानते भी थे, लेकिन एक लड़का जरा अलग था। उसने एक अलग तरह की तस्वीर ड्रॉ करी, डगलस। डगलस एक अलग बच्चा था। ही वॉज द टीचर्स ट्रू चाइल्ड ऑफ मिजरी, फ्रेल एंड अनहैप्पीनेस। बाकी लोग जब रिसेस में खेला करते थे, डगलस वॉज लाइकली टू स्टैंड क्लोज बाय हर साइड। डगलस को जो दर्द था वो उसकी आंखों में साफ नजर आता था। वो अपने घर की कंडीशन से, अपने पेरेंट्स की कंडीशन से बहुत ज्यादा दुखी था। उसे पता था कि उसके पास उतने पैसे नहीं, उतनी खुशियां नहीं है, पर उसने एक पिक्चर बनाई थैंक्सगिविंग के लिए, एक स्पेशल पिक्चर बनाई एज एन असाइनमेंट। इट वॉज डिफरेंट। जब इस तस्वीर को दिखाया गया सबको तो उसने एक हाथ बनाया था, नथिंग एल्स, सिर्फ एक खाली हाथ। ये एब्स्ट्रैक्ट इमेज थी जिसे देखकर उसके साथी जो थे वो इमेजिन करने लगे, हूज हैंड कुड इट बी। किसी को लगा ये किसी फार्मर का हाथ है क्योंकि वो हमारे लिए टर्कीज को रेस करता है, उन्हें बड़ा करता है। दूसरे ने कहा नहीं, पुलिस ऑफिसर का है क्योंकि पुलिस हमें प्रोटेक्ट करती है। तीसरे ने कहा नहीं, भगवान का हाथ है जो हमें खाना देता है। जब चिल्ड्रन अपना असाइनमेंट देकर चले गए तो उस टीचर ने डगलस से पूछा कि डगलस ये किसका हाथ है। डगलस ने दूसरी तरफ देखा, बच्चों की तरफ देखा और धीरे से बोला, ये आपका हाथ है टीचर।

0: टीचर को याद आया कि कैसे वो उसका हाथ पकड़कर ही यहाँ वहां चला करता था। वो हमेशा कहती थी कि टेक माई हैंड डगलस, वी विल गो आउटसाइड, लेट मी शो यू हाउ टू होल्ड योर पेंसिल, लेट्स डू दिस टुगेदर। डगलस थैंकफुल था कि उसकी टीचर ने उसका हाथ पकड़ा, उसे सिखाया और उसकी आंखों से आंसू पहुंचे। अगर वो ना होती तो शायद चीजें उसके लिए बहुत मुश्किल होती। सो इट्स सेड दैट कीप रीचिंग आउट बिकॉज यू मे हेल्प पुल समवन आउट ऑफ डार्कनेस एंड गाइड देम इनटू द लाइट। ये भी एक बहुत बड़ा काम है, किसी को उस अंधेरे से बाहर निकाल लेना। ये कहानी कहलाती है द टीचर्स हैंड। टीचर्स के हाथ भी बहुत जरूरी है, चाहे वो कॉपी पर हो या आपके गाल पर, हर तरह से टीचर्स हैंड आर रियली इंपॉर्टेंट। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं कहानी वाला रजत।
1: हाय हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार, मैं हूं शान और आप सुन रहे हैं मेरे गाने ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो। एंजॉय द म्यूजिक एंड

अपने सपनों के पीछे भागते हैं, उनके सपने वे सपने बने रह जाते हैं। पर कोई बात नहीं, जो होता था अच्छे के लिए होता था।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो और आप सुन रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम विद गिरेंद्र भारती।
1: हेलो, कैसे हैं आप सब? आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और मैं हूँ गिरेंद्र भारती। वर्ड्स ऑफ विजडम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक दिन जब बारिश हो रही थी तो एक 15 साल का लड़का जिसका नाम जॉन गोडार्ड था, वो अपने घर में अपनी किचन टेबल पे बैठा लॉस एंजलिस के अंदर, और उसने एक येलो कलर का पैड लिया जिसके टॉप पे उसने लिखा माई लाइफ लिस्ट, और उस लिस्ट के नीचे उसने 127 गोल्स लिखे। जी हाँ, 127 गोल्स उसने लिखे। हम कहेंगे कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, लोग ऐसे गोल्स लिखते ही रहते हैं, खास तौर पे बच्चों में तो ये बहुत शौक होता है। लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं था। इस इंसान ने अपनी जिंदगी में उन 127 में से मोर देन 109 यानी 109 से भी ज्यादा गोल्स पूरे कर लिए। अब आप कहेंगे ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लोग गोल्स लिखते हैं उन्हें पूरा भी कर लेते हैं। लेकिन आपको ये सुन के तब आश्चर्य होगा जब आपको पता चलेगा कि जो गोल्स उसने लिखे थे वो कोई सिंपल या इजी गोल्स नहीं थे। उनमें ऐसे ऐसे गोल्स थे जो कहते थे कि मेरे को दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन्स पर चढ़ना है, मेरे को दुनिया के जो बड़े से बड़े रिवर्स हैं, जो नदियां हैं, उनको सोर्स से लेकर उनके एंड तक एक्सप्लोर करना है, मेरे को दुनिया के जो बड़े से बड़े जो सबसे तेज चलने वाले एयरक्राफ्ट हैं, हवाई जहाज हैं, उनको चलाना है, यानी ही वांट्स टू बिकम अ पायलट आल्सो, मेरे को 1 मील 5 मिनट से भी कम समय में भागना है, और मेरे को पूरी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़नी है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा, ये जो इंसान था, ये जो लड़का था, इसका नाम था जॉन गोडार्ड, और बाद में लॉस एंजलिस टाइम्स ने इसको रियल लाइफ इंडियाना जोन्स का खिताब दिया। जी हाँ मित्रों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इनको ही हैज बिकम एक्चुअली, ये जॉन गोडार्ड जो थे बाद में वर्ल्ड रिनोन्ड एडवेंचरर बने, एक्सप्लोरर बने, ऑथर बने, लेक्चरर बने। इन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर बहुत से लोगों को प्रेरित किया, मोटिवेट किया, दो किताबें भी लिखी। 2013 में इनकी डेथ हो गई, लेकिन ये दुनिया के सामने एक ऐसी मिसाल छोड़ गए जो हम सबको हमेशा याद दिलाती रहेगी कि हमारे अंदर कितनी पावर है और हम क्या कर सकते हैं अगर हम करने पर आए तो। मैं यहाँ पर आपको उनके गोल्स की लिस्ट नहीं बताने वाला क्योंकि वो बहुत लंबी है और मेरा सारा टाइम उसी में निकल जाएगा, वो आप गूगल पे जाकर कभी भी देख सकते हैं। आप जॉन गोडार्ड टाइप कीजिए, आपके सामने उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी जो 127 गोल्स उन्होंने लिखे थे। आप कहेंगे हम सब लोग अब गोल्स लिखते रहते हैं। देखिए, लिखने की पावर बहुत ज्यादा है। आप गोल्स अपने मन में रखते हैं या उसे लिखते हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। गुड मॉर्निंग अमेरिका एक शो है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमारी सबकी आदत होती है कि नया साल आते ही हम लोग नए नए गोल्स बनाते हैं, रिजोल्यूशन, हमने उसको नाम दिया है अपना कि इस साल मैं ये चीज अचीव करूंगा, इस साल मैं हर रोज जिम जाऊंगा, अपनी बॉडी बनाऊंगा, या खाना ठीक से खाऊंगा, सिगरेट छोड़ दूंगा, वॉट एवर इट इज। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि 15 फरवरी के आसपास यानी हार्डली आफ्टर 45 डेज उन्होंने ऐसे लोगों को इंटरव्यू किया जिन्होंने अपने रिजोल्यूशंस बनाए थे। तो उन्होंने देखा कि जो लोग सिर्फ अपने मन में सोचकर रिजोल्यूशंस बनाए हुए थे कि हमने ऐसा करना है इस साल, उसमें से सिर्फ 4% पीपल यानी 4% लोग ही ऐसे थे जो कंटिन्यू कर रहे थे, बाकी 96% लोग छोड़ चुके थे। लेकिन जिन लोगों ने अपने गोल्स नोट डाउन किए हुए थे, यानी जिन्होंने ये लिखा हुआ था कि हमने इस साल ऐसा ऐसा करना है, यानी ठीक वही काम जो जॉन गोडार्ड ने किया था 15 साल की उम्र में जब उसने 127 गोल्स की लिस्ट बनाई थी, तो जिन लोगों ने भी लिख रखे थे अपने गोल्स को, उसमें से मोर देन 46% वर स्टिल कंटिन्यूइंग। जी हाँ, 46%

0: आप दोबारा उसको खोल कर नहीं देखते कई महीनों तक, तो उसके लिखे या ना लिखे होने का कोई बहुत ज्यादा महत्व रह नहीं जाता। हम अगर किसी गोल को लिखते हैं तो हमें उसको दिन में कम से कम 3 बार उसे खोल कर देखना है और उसे पढ़ना है। उससे होगा क्या कि आप तीर की तरह से फोकस रहोगे उस गोल की तरफ जिधर आपको जाना है, और बाकी वो सारी अनवांटेड चीजें जो आपको खींचती रहती हैं और आपकी एनर्जी को और आपके टाइम को खाती रहती हैं, उनसे आप बचते रहेंगे। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि जॉन गॉडर्ड की लाइफ से हम लोग इस इंस्पिरेशन को लें, हम ये देखें कि अगर एक इंसान अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर सकता है। मैं चाहूंगा आप लोग गूगल पे जाएं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, एक दो पेज में आपको उसकी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अगर कोई इंसान इतने टफ गोल्स को अचीव कर सकता है अपनी एक ही जीवन काल में, तो हमारे तो जो गोल्स है वो इतने टफ भी नहीं है, बहुत आसान गोल्स है हमारे। उसको देखकर आपको बहुत हिम्मत मिलेगी, बहुत ताकत मिलेगी और आप पूरी ताकत से अपने गोल्स पे लग जाएंगे। आपको बहुत आशा मिलेगी, बहुत होप मिलेगी कि अगर वो ये सब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और होप इज एक्चुअली प्लेइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट व्हेन इट कम्स द अचीविंग ऑफ गोल्स। बातें जारी रहेंगी, आप सुन रहे वॉक टॉक रेडियो, मैं बोल रहा हूँ वीरेंद्र भारती, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: एक बेटर जिंदगी के लिए सुनते रहिए वर्ड्स ऑफ विजडम वीरेंद्र भारती के साथ, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: मजबूत होने का मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तुली हो। अपने आसपास बहुत लोग हो सकते हैं आपके जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हो, डरा रहे हो, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। क्या फर्क पड़ता है, शायद वो जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाए या उसी सिचुएशन में उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसी सोच और ऐसे लोगों से अपने आप को सतर्क रखिए, क्योंकि उनसे सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिविटी, डराना यही मिल सकता है। अगर किसी के पास सॉल्यूशन है तो वो आप खुद हैं। खुद से बात करिए, खुद की सोच और खुद के निर्णय पे यकीन करिए, उस पे आगे बढ़िए और देखिए आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी आपके खुद के भरोसे से, जो आपका खुद पे होगा।
1: Walk Talk Radio.

वॉक टॉक ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ, मैं हूं मुस्कान और ये शो है अनसंग चैंपियंस का, जिसमें हम और आप बात करते हैं उन चैंपियंस की जो अपनी लाइफ में ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, मेडल ला रहे हैं और साथ ही साथ हमें ऐसा लगता है कि आखिर भारत अब खेलों में कितना आगे बढ़ चुका है। सो आज बात कर रहे हैं पुलेला गोपीचंद की और एक इंटरव्यू में साइना नेहवाल ने बताया कि जब कॉमनवेल्थ गेम 2018 हो रहा था तब उन्होंने देखा कि वो किस तरह से पुलेला गोपीचंद को इतना टेंस्ड देख रही थी। यहां तक कि कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पुलेला गोपीचंद बीच में से ऐसा कह रही हो कि ये क्या कर रहे हो, नहीं ऐसे नहीं करना है वैसे करना है, बट उस गेम में पुलेला गोपीचंद एक्चुअली बहुत टेंस थे और बिल्कुल एज पर बैठे हुए थे कि ये क्या हो रहा है आखिर। और जब गेम है तब मलेशिया के बिल्कुल अगेंस्ट चल रहा था और साइना नेहवाल खेल रही थी और साइना नेहवाल ने देखा कि पहली बार पुलेला गोपीचंद इतने टेंस थे। इंडिया ने अपना पहली बार फर्स्ट एवर मतलब मिक्स टीम इवेंट था जिसमें गोल्ड लेकर आए थे कॉमनवेल्थ गेम्स में और जिसमें इंडिविजुअल्स इवेंट में साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, कादम्बी श्रीकांत, अश्विनी और एन सिक्की रेड्डी एंड सात्विक साईराज सब लोग लौटे थे मेडल्स के साथ। और साइना एंड सिंधु ने तो फाइनल में खेला था वुमेन सिंगल में एंड वेयर साइना वॉन द गोल्ड मेडल, बट गोपीचंद टोल्ड इंडिया टुडे दैट ही डिड नॉट सी द गेम क्योंकि वो बहुत टेंस थे। सैटरडे ही था उस दिन और साइना ने बताया कि गोपीचंद वॉज एट द एज ऑफ हिज सीट। साइना उस टाइम मलेशिया की प्लेयर सोनिया के अगेंस्ट खेल रही थी और इस टाइम पे जो फीलिंग वो शेयर कर रही थी और उनको लग रहा था कि गोपीचंद बिल्कुल सोच के बैठे हैं कि आज तो हम हार जाएंगे और वो इतना टेंस थे मतलब ये पहली बार ऐसा हो रहा था क्योंकि इससे पहले उन्होंने हमेशा उनको कूल देखा था, काम देखा था, पर कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पर ही वॉज डिफरेंट, मतलब बिल्कुल अलग दिख रहे थे। गोपीचंद की एक कहावत मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा था कि विनर को कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, विनर शुड नॉट सेटिस्फाइड, और लूजर को कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए। इन दोनों बातों को जब आप बारीकी से सोचते हैं तब आपको लगता है कितनी गहरी बात है, मतलब अगर आप जीत भी जाते हो तो अब आपको सोचना चाहिए कि अभी सीखने के लिए और बहुत कुछ बाकी है, अभी जीतने के लिए और बहुत कुछ बाकी है, और अगर आप किसी खेल में हार भी जाते हो तब आपको लगना चाहिए कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस आपका डगमगाना नहीं चाहिए क्योंकि खेल में एक की जीत होना तय है और एक की हार होना तय है। तो ऑब्वियसली कभी आप जीतोगे कभी आप हारोगे, लेकिन कभी कभी जब आपने बहुत सारे सपने देखे होते हैं और आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है तब आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, तो इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आपने जस्ट अभी खेलना शुरू किया है तो ट्रस्ट मी, सिर्फ कॉन्फिडेंट रहिए और अपने आप को बस लगातार उस काम के लिए झोंक दीजिए, उसके बाद देखिएगा कि क्या रिजल्ट आएंगे। और अभी के लिए बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि थोड़ी देर के लिए जा रही हूं, लौट कर आऊंगी, सुनते रहिए रेडियो वॉक टॉक, मैं हूं मुस्कान, ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ।

0: Walk Talk Radio.
1: Come, shall we do a radio talk with a radio called Say What? Walk Talk. Hi, मैं हूँ अनुष्का. I'm a singer, songwriter and rapper. और आप मुझे सुन रहे हैं Walk Talk Radio पर.
0: Walk Talk Radio.
2: हाय, मेरा नाम है शार्दुल कोटियाल और आज मैं आया हूँ वॉक टॉक रेडियो में. सो बेसिकली मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो है थोड़ा बहुत अब ट्रैवलिंग की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है. सो मैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हूँ, जो मतलब मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो 2 लाख प्लस हैं फिलहाल. और ये मैंने कमाए हैं सिर्फ 1 से 2 महीने के अंदर पे. और कैसे कमाई है तो मुझे खुद भी नहीं पता. खैर, बस कर रहा हूँ जो लोगों को पसंद आ रहा है और उसी वजह से मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो मुझे काफी ज्यादा मिल रहे हैं. बेसिकली मैं अगर आपको सच बताऊं ना, तो आइडिया तो मुझे 2015 में आ गया था, जब मैं कॉलेज में था. तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था बेसिकली. और मतलब था भैया कुछ ऐसा करना है कि मतलब मुझे फेमस होना है, बस कुछ भी करूं, चाहे मुझे और मतलब कुछ भी ऐसा काम करना है जिससे मैं फेमस हो जाऊं बस. तो उस टाइम पे दिमाग में सिर्फ आया रैप, क्योंकि उस टाइम पे चला था रैप वाला ट्रेंड. तो रैप करने का बड़ा शौक चढ़ा था मुझे. तो लिखता था मैं और लिखने के बाद फिर गाता था, रैप करता, लेकिन फ्लॉप हो गया भैया मैं तो. फिर उसके बाद जैसे ही मेरा मैकेनिकल कंप्लीट हुआ, उसके बाद जॉब वाली जिंदगी में आया, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं भैया हम. तो मिडिल क्लास फैमिली वालों का क्या होता है ना, बस जॉब के अलावा कुछ नहीं होता भाई. सुबह उठो, निकल जाओ जॉब पे, शाम को आओ, खाना खाओ और सुबह फिर से निकल जाओ जॉब पे. तो बेसिकली ऐसी जिंदगी देखी. लेकिन कुछ टाइम बाद ना ये जिंदगी मुझे झंड से लगने लग गई थी पूरी की पूरी. तब दिमाग में आया भैया कि ट्रैवलिंग तो कर ही रहे, तो क्यों ना ट्रैवल व्लॉगर बना जाए, क्योंकि अब ट्रैवल व्लॉग वाला ट्रेंड आने लग गया ना. तो सोचा अब चलो ट्रैवल व्लॉगर ही बनते हैं. लेकिन जो मेरी ट्रैवल व्लॉगिंग की जर्नी थी बेसिकली, वो स्टार्ट हुई थी 2019 नवंबर में. 1 साल हो गया, कंप्लीट हो गया, बहुत खर्चा वर्चा कर लिया भैया, घूम लिया, लाखों रुपए उड़ा दिए, गोप्रो ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन कुछ नहीं, सब्सक्राइबर कुछ नहीं मिले हमें. मतलब 1000 से 1500 सब्सक्राइबर हुए. तो अभी बेसिकली ये है कि जैसी हमारा मतलब 1 साल कंप्लीट हो गया, तो मतलब अब दिमाग में आया कि भैया अब क्या करें, बढ़ तो रहे नहीं हम, मतलब क्या हम इसके लिए भी नहीं बने हुए क्या? तो बने किस चीज के लिए? वही नौकरी करने के लिए बने क्या, 9 से 6 वाली? तब दिमाग में आया, मतलब कई हमने वीडियोस वगैरह देखी जिसमें लोग बता रहे हैं कि मतलब लोगों को बोलने का तरीका अच्छा लगता था मुझे कई कुछ वीडियोज में.

हाय, मेरा नाम है शार्दुल कोटियाल और आज मैं आया हूँ वॉक टॉक रेडियो में। मैं आपको सच बताऊँ, 2022 गया अभी ना, तो 2022 दिसंबर में ना हमें कुछ नहीं पता था। 2022 दिसंबर में हमारे जो चैनल पे ना 2000 सब्सक्राइबर थे, वो भी रोध हो गए। हमने एक चैलेंज चलाया था 30 दिन का, तो उसमें हमने मतलब 2000 गेन कर लिए थे। तो हमें लगा भैया कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन इस चीज को, जो ये शॉर्ट बनाने वाली चीज है ना, इसको रेगुलर रखते हैं। मतलब भाई जनवरी के बाद से जैसी हमने कंटेंट डालना शुरू करा, एकदम से हाइप। भाई मैं अगले से पूछ रहा कहीं ये मतलब फेक तो नहीं है भैया, देख ले ढंग से, मुझे तो क्योंकि फेक लग रहा है एकदम से। रातों रात कहां से आ गए उठ के? तो वो चीज सच बताऊं तो हमने ना प्लान करी थी ना सोची थी, और मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि भैया सच में 2 लाख है हमारे। मुझे अभी भी वो जैसे सपना जैसा ही लगता है, भैया ये फर्जी तो नहीं है कुछ। तो मैं कुछ ऐसा, क्योंकि अब मैं वही रेगुलर चीज डालता ना, तो मुझे पता था कि भाई चलने वाला है नहीं, क्योंकि मुझ जैसे तो पता नहीं कितने हर गली और नुक्कड़ में बैठे हुए, हर घर में ऐसा कंटेंट क्रिएटर तो बैठा है। तो मैं अपनी उस रैप वाली चीज को, जो मैं लिखता था उसको, और इस ट्रैवल को मिक्स करना चाह रहा था बेसिकली, लेकिन अपने अंदाज में। कई लोगों ने मुझे ये बोला है कि भाई मैं बोलता बड़ा प्यारा हूँ, अब पता नहीं ऐसा है कि नहीं है, पर कई लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। तब मेरे दिमाग में था कि भाई मैं लिखता भी अच्छा हूँ और बोलता भी अच्छा हूँ, एडिटर तो मेरे पे है ही बढ़िया वाला। तो फिर उस चीज से मतलब कई वीडियोस देखी मैंने कई लोगों की, तो वो मेरे दिमाग में बैठी और मैंने उसको करना शुरू कर दिया। थोड़ा वो मजाक करने वाला ह्यूमर भी है मेरे अंदर, तो स्क्रिप्ट में वो मजाक भी डाली, नॉलेज भी डाला, मजाक नॉलेज को मिक्स करके मैंने कॉन्टेंट बना दिया।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: मैं कर्नल अजय कोठिया हूँ। अगर आपके पास कोई अपनी स्टोरी होती है, कोई एक्सक्लूसिव फीलिंग होती है, तो आप वॉक टॉक रेडियो में आए और यहाँ पे आकर के अपना आइडिया शेयर करें और डाउनलोड करें वॉक टॉक रेडियो, बहुत सारे लोगों की अच्छी जानकारियों को जानने के।
2: मेरा नाम सिद्धार्थ है और आप मुझको सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पे। मैं बेसिकली अपैरल इंडस्ट्री में काम करता हूँ। कोरोना काल में लोग वापस उन जगहों पे गए, उन चीजों में गए, उन हैबिट्स में गए जो हम छोड़ चुके थे। तो मैंने भी कोविड के दौरान ही ये साइकिलिंग का एक दौर मेरा शुरू हुआ, जहाँ मैंने बहुत ही निचले स्तर से शुरू करा, बिकॉज साइकिलिंग बिल्कुल छोड़ चुका था मैं। तो बस तब से साइकिलिंग करना स्टार्ट करा और मुझे साइकिलिंग करते हुए अभी आई थिंक 1.5 साल के आसपास हुए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन 1.5 साल में मैंने इतनी जगहों को एक्सप्लोर कर लिया है अपने देहरादून सिटी के अंदर ही। अभी स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ शहर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे इतने हिडन स्पॉट्स हैं, इतने अच्छे ट्रेल्स हैं, जहाँ आप जाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, आप नेचर के करीब जाते हैं, और चाहे वो मन की शांति हो, चाहे इंस्पिरेशनल, आप खुद एक इंस्पिरेशन बन जाते हो काफी लोगों के लिए और लोगों से इंस्पिरेशन लेके। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा 1.5 साल का, और मुझे एक बहुत बड़ा फोमो बोल सकते हैं ये रहेगा और है, जो कभी टाइम वापस नहीं आ सकता, कि मैंने साइकिलिंग और जल्दी शुरू क्यों नहीं करी। तो मैं अभी यहाँ पे हूँ तो आप सबको एक छोटा सा मैसेज ये देना चाहूंगा कि आप लोगों को ऐसा फोमो ना हो, तो देर आए दुरुस्त आए, जल्दी से अगर साइकिलिंग नहीं है आपके पास तो लीजिए, परचेस कीजिए, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट्स में आती है, कोई बहुत महंगी साइकिल भी नहीं आती, आप ले सकते हैं और अपनी जर्नी साइकिलिंग की स्टार्ट कर सकते हैं। आई एम श्योर यू विल बी रियली हैप्पी आफ्टर डूइंग सर्टेन साइकिल ग्रुप राइड्स और सोलो राइड्स, आपको बहुत अच्छा लगेगा 4-5 राइड करने के बाद। एक वो एक्सपीरियंस ही बहुत ही अच्छा होता है जब आप सुबह सुबह 4 बजे उठ के घर से निकलते हैं और आपको खाली सड़क दिखती है, सूर्य उदय हो रहा होता है या

0: कुछ छोटे मोटे काम होते हैं जो हम एक या तो टू व्हीलर या कार पे या वॉक करते जाते हैं, वॉक तो फॉर श्योर कर सकते हैं, बट वो टू व्हीलर या कार भी हम ट्रैफिक ऐड करते हैं अपनी सिटी में, अपनी सोसाइटी में, अपने एनवायरनमेंट में, तो हम वो फुटप्रिंट्स कम कर सकते हैं और हम साइकिल को फॉलो कर सकते हैं। तो ये मेन मेरे दिमाग में ये था कि हम साइकिल लेके बहुत सारे फायदे हैं। दूसरा, देहरादून सिटी में हमारे ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे लोग साइकिलिंग से जुड़े हुए हैं। तो अभी इंस्टाग्राम में अगर बोलें कि यहाँ से लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो वो थोड़ा देख के मुझे इंस्पिरेशन सा मिला, मोटिवेशन सा मिला कि यार जब हमारे रिटायर्ड लोग, 60 साल से प्लस लोग ये सब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो जो लोग ये सुनेंगे उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे पिताजी जो हैं उन्होंने अपना एक लंबी उम्र तक साइकिल ही चलाई है और उन्होंने वैष्णो देवी जैसे टूर 3 बार साइकिल पर ही करे हैं और उन्होंने भी अपनी लाइफ में सब स्ट्रगल किया है। तो उनकी जब 25th वेडिंग एनिवर्सरी थी तब हमने उनको पहली बार एक टू व्हीलर विच इज एक्टिवा गिफ्ट करी थी। उससे पहले वो अप्रोक्स 50 साल की एज तक अपनी रोजाना जिंदगी में जो दौड़ भाग करते थे वो सिर्फ साइकिल पे करते थे। और आज मुझे इस बात का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पश्चाताप बोल सकते हैं कि एक पीयर प्रेशर बोल सकते हैं, स्कूलिंग एनवायरमेंट बोल सकते हैं, कि मुझे कहीं ना कहीं शर्म सी आती थी कि मेरे स्कूल में मेरे पिताजी मुझको साइकिल पे छोड़ने आ रहे हैं जबकि औरों के पिताजी में भी कार में आ रहे हैं या टू व्हीलर में आ रहे हैं। तो मेरी पेरेंट्स मीटिंग होती थी या स्कूल की कोई एक्टिविटी होती थी, मैं कहीं ना कहीं प्रेफर करता था कि मेरी मदर आए। मेरी मदर ऑब्वियसली साइकिल पे नहीं आ रही है बट वो चाहे पैदल आ रही है, बट वो साइकिल कहीं ना कहीं गायब है उस सीन से। तो वो मैं अवॉइड करता था कि साइकिल वहां पे ना रहे, क्योंकि तब थोड़ी सोच हमारी उतनी मैच्योर नहीं रहती, हम छोटे बच्चों की तरह ही होते हैं 12th स्टैंडर्ड तक। तो पीयर प्रेशर में जो दिख रहा है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो वो मैं आज के जो भी हमारे यूथ हैं, स्कूल गोइंग यूथ हैं, तो ये तो ऑलमोस्ट बहुत ही कोई इक्का दुक्का ऐसा बच्चा स्कूल का निकलेगा जिसके पिताजी अभी तक साइकिल यूज कर रहे हैं। मेन शहर में आपको नहीं दिखेगा कि उनकी फैमिली में किसी का साइकिल है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप खुद तो प्लीज यूज करें, और अगर आपके बुजुर्ग लोग जो पहले कभी यूज करते थे वो यूज करना चाहते हैं और आपने कभी उनको ये बोल के कि साइकिल साइड रखवा दे कि शर्म आती है, हमारा स्टैंडर्ड लो होता है, ऐसा कुछ भी आपकी सोच थी, मुझे गारंटी नहीं पता बट शायद हो सकती है, तो प्लीज आप रिक्वेस्ट कीजिए उनको कि आप वापस साइकिलिंग करना स्टार्ट करें और आप खुद भी अपने घर में, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, फ्रेंड्स, फैमिली सब जगह पे साइकिलिंग का मैसेज लाएं और साइकिल यूज करें। वॉक टॉक रेडियो,
1: वॉक टॉक रेडियो। जिंदगी में देखा जाए तो टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है।

बुरा करके चला जाए, मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी जो हंसी है, आपकी जो मुस्कुराहट है, ये आपसे है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार की बात है, यूनान के जो किंग थे वो किसी बात से अपने मंत्री से नाराज हो गए और नाराजगी में उन्होंने मंत्री के लिए फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। कहा कि शाम को 6 बजे कैसे भी करके वजीर को फांसी दे देनी चाहिए।

सो मैंने भी सोचा कि चलो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स लेते हैं क्योंकि मेरी थ्योरी बहुत अच्छी है, तो मैंने वो स्टार्ट किया। तो जब स्टार्ट किया तो मेरा फर्स्ट लेवल क्लियर हो गया, करते करते साइड में मेरा बीकॉम भी चल रहा था और बीकॉम के मैं सेकंड ईयर में भी आ गई थी, तो कॉलेज में और इंटरेस्ट भी आता चला गया और इधर मतलब कि मैंने दोनों हाथों पे ले लिया, इधर से बीकॉम इधर से कंपनी सेक्रेटरी। तो मुझे ऐसे लगा कि हाँ मतलब कि एक टाइम पे एक चीज़ ही करनी चाहिए, तो मैंने थोड़ा उसको गैप दिया कि ठीक है कंपनी सेक्रेटरी अपना आफ्टर ग्रेजुएशन करते हैं। तो उस टाइम पे फिर सेकंड ईयर पे मैं कॉलेज में हमारे हुए थे यूनियन का, मैं पार्ट बन गई थी और मैं कॉलेज की वाइस प्रेसिडेंट बनी थी, तो वो भी एक फन पार्ट था। आप जब कॉलेज की को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हो तो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ कॉलेज में कैसे क्या होता है, फेस्ट कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, टीचर्स के साथ कैसे रहते हैं, वाइस चांसलर्स के साथ बैठ के हम मीटिंग कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो वो एक प्रॉपर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो लाइफ होती है हमने वो इंजॉय करी है। स्टडीज़ भी की है, ऐसा नहीं कि मस्ती एंड ऑल वगैरह करी है, तो साइड बाय साइड वो भी किया है। तो जैसे जैसे अपना डिग्री ख़त्म होता चला गया फिर सोचा चलो लाइफ के बारे में और सीरियस हो जाते हैं, तो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स मैंने कंटिन्यू किया। तो मेरा फिर सेकंड लेवल भी हो गया, तो सेकंड लेवल होते होते मेरी साइड बाय साइड एमकॉम भी हो गई कि बस करते चलना है। तो जब कोविड आया तो उसके बाद मतलब कि अपना स्टडीज़ वगैरह था तो साइकोलॉजिकली वो माइंड में आ गया था, बस सबकॉन्शियसली मतलब कि वो कहता था अंदर से कि मतलब कि पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हैं, बट वो एक्चुअल थिंग जो होती है, वर्किंग स्टाइल जो होती है वो नहीं आ रही, प्रोफेशनलिज्म लैक कर रहा है नॉर्मल उसमें। सो मैंने डिसाइड किया कि ये तो चल ही रहा है, तो साइड बाय साइड एक होता है कि अपना कॉर्पोरेट के लिए जो कहते हैं कि CS प्लस LLB बहुत अच्छा माना जाता है, तो मैंने ठीक है BCom हो गया, MCom हो गया, अब अपना CS चल ही रहा है, LLB भी स्टार्ट कर देते हैं। ग्रेजुअली जब मैं CS करती थी तो मैं कंपनी लॉ जो था वो हमारे लिए प्रायोरिटी होता था CS प्रोफेशन में, तो एक लॉ से गो थ्रू हो गए थे। जब मैंने वो लॉ पढ़ा, उसकी इंटरप्रिटेशन की, उसको अंडरस्टैंड किया कहाँ कैसे क्या रिलेट करते हैं, तो मुझे समझ में आया कि लॉ तो इससे भी ज़्यादा वाइड स्कोप का है। तो अगर मैं कुछ चीज अगर करती हूँ तो मेरी आदत है, हैबिट है कि मैं उसको इन डेप्थ करती हूँ, मतलब डीप स्टडी करती हूँ। मैंने मतलब लॉ में एडमिशन लिया है तो ये नहीं कि जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी मैंने उसको लिया, मैंने बुक्स एंड ऑल वगैरह ली, तो मैंने इन डेप्थ स्टडी करी। जब मैंने इन डेप्थ स्टडी करी मुझे अच्छा लगा पढ़ते पढ़ते मुझे इंटरेस्ट आ गया कि मैं डेस्टिनी जो है मुझे करते करते वहाँ तक ले आई। और जिससे मैंने मतलब कि कोर्ट में एंट्री की, मतलब कि अगर मेरे को ये होता है कि समझ लो कि मैं अपने पैशन के पास, अपनी डेस्टिनी के पास सही डायरेक्शन में खुद को लेते हुए मैं सही टाइम पे और अब राइट प्लेस पे आई हूँ, ऐसा मुझे अंदर से फील होता है। चाहे सामने से पब्लिक कुछ भी बोले कि आप कहाँ आ गए हो, किस प्रोफेशन में आ गए हो, इसमें बहुत स्ट्रगल्स है, चैलेंजेस है, वो उनकी बात है, लेकिन आप अंदर से मतलब कि खुश जब फील करते हो ना, हैप्पी फील करते हो कि हाँ भाई आप अपने लिए कर रहे हो, वो मैटर ज़्यादा करता है। ये नहीं कि आप जस्ट फॉर्मेलिटी करने जा रहे हो, तो मेरे लिए ये बेस्ट जो मैं अपने लिए मानती हूँ कि हाँ कोई बात नहीं कि ऐसे ऐसे स्टेज से मैं आई हूँ, लेकिन जो मेरी ये जर्नी रही है उसने मुझे यही सिखाया कि मेरे डिसीजन बिल्कुल सही हैं।

0: पता है बड़े बड़े लोगों के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो हम सबको इंस्पायर करती है। जैसे वो हमेशा आने वाले 10 साल की प्लानिंग पहले ही कर देते हैं। वो इस तरह से काम करते हैं कि उन्हें आने वाले 5 या 10 साल में कहाँ जाना है वो पहले से ही पूरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। अगर यही क्वालिटी आपके अंदर या हमारे अंदर आ जाए सोचो उसके बाद क्या होगा। जिन्होंने बड़े बड़े एम्पायर खड़े करे हैं, जो जीरो से हीरो बने हैं, उनके अंदर भी तो यही क्वालिटी थी।
1: हाय, मेरा नाम उपासना चौहान है एंड बाय प्रोफेशन आई एम एन एडवोकेट और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। सोशलाइजेशन जिसे हम कहते हैं एक कॉलेज लाइफ के बाद की जो होती है वो मैंने कभी नहीं देखी। जब मैंने कोर्ट में जाके देखा मेरे लिए फर्स्ट क्वेश्चन यही आया था, ऐसी भी दुनिया होती है, ऐसे भी लोग होते हैं। मैंने जाके घर पे पापा से डिस्कस किया, मेरे को पापा, क्योंकि उनको तो पता है, वो तो देखते हुए आ रहे हैं। हमारे लिए न्यू थिंग थी कि पैर तो रख दिया है जर्नी में, उस प्रोफेशन में, अब इन्हें भी देखो। तो वहाँ पे हम एक तरफ कहते हैं अपने कोर्ट से बाहर की जो लाइफ होती है कि हम इतने मॉडर्न हो गए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और लेकिन ये सारी चीजें जस्ट एक ना कहीं वर्बल हैं। मतलब कि आप अगर इनको मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखोगे तो वहां पे तो ठीक है, ये मॉडर्नाइजेशन हम सही हैं, हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीज। लेकिन जब आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज से अगर बाहर जाके देखोगे, गांव में जाओगे, बैकवर्ड उसमें जाओगे, विलेजेस वगैरह जाओगे, आज भी कहीं ना कहीं वहां पे वो चीज नहीं पहुंची है जो कि हम अपने थॉट्स में कहते हैं या फिर हम एक मैसेज पहुंचा रहे हैं मतलब लोगों तक कि लाइफ में मतलब कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो मतलब कि बहुत ही डिफरेंट थिंग है। कोर्ट के अंदर जो लोग आते हैं, जो एक सिस्टम है काम करने का तरीका, वो आज भी कहीं ना कहीं वो ही सिस्टम है जो एक अपना पहले हुआ करता था। तो समझने की बात तो ये है कि वो चीज मतलब पीक पॉइंट पे नहीं आया कि लोग आपस में समझ रहे हैं एक दूसरे को, वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी वाली थिंग है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हम बहुत हाई लेवल पे पहुंच गए हैं, ऐसा नहीं, अभी तो बहुत टाइम लगेगा उसके लिए। मतलब कि एक, अगर आप 10 जने हो तो 10 में से हार्डली 1 या 2 जने, अगर 1 या 2 जने को अगर थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज हो जाती है, वो अगर अपनी एजुकेशन दिखाता है तो उसको पागल बोल दिया जाता है। देखिए तो पागल बन रहा है, पागल है, कुछ नहीं है। ये एक चीज होता है अगर बोलते हैं कि चीजें अपनी देसी तरीके से चलती है। हरियाणा है, हरियाणा के अंदर चलो हम हैं, हम कॉर्पोरेट मतलब कि एजुकेटेड अपनी थोड़ी सी थिंकिंग लेवल मैच कर देते हैं। लेकिन जब बारी आ जाती है कि हाँ भाई एक एजुकेटेड इंसान है और एक अपना नॉर्मल इंसान है, देसी टाइप वाला है, वो तो अपनी चीज़ों से ही चलेगा। ये एक जनरेशन गैप भी जिसे हम कह देते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हो गया है। कहाँ कौन क्या कह रहा है, बस चल रहे हैं, दिन निकल रहा है, फिर नेक्स्ट डे आ जाता है, नए गोल आ जाते हैं, फिर दिन निकल जाता है, फिर नए गोल आ जाते हैं। कभी कोई कहता है कि आप ठीक है, क्योंकि हमारी आदत क्या है ना कि हम औरों को सुनना पसंद करते हैं। हमारी आदत है कि हम 3 जने बैठे हैं, 4 जने बैठे हैं, हम हर एक से वही क्वेश्चन पूछेंगे, या तू बता दे कि क्या सोल्यूशन है। वो एक आदत, हैबिट हो गई है पूछने की ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप सुनो सबकी, करो मन की, ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर आप 10 जने कहेंगे आप 10 डायरेक्शन में चले जाओगे, उनका कुछ नहीं जाएगा, जाएगा आपका, आपकी लाइफ मैस हो जाएगी, आप डायरेक्शन लेस हो जाओगे, आपको नहीं समझ में आएगा क्या हो जाएगा। चाहे जो मैंने अपनी जर्नी से ये सीखा है कि चाहे टाइम लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन अपनी गट फीलिंग ही फॉलो करनी चाहिए, ये मैंने देखा है।

0: बुक रीडिंग हम में से बहुत लोगों को बहुत ही बोरिंग एस्पेक्ट लगता है, पता है क्यों? टाइम नहीं है यार, बहुत कुछ करने का है, बिजनेस है, फोन है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीजें करनी है और लोगों से बातें करनी है, जगहें देखनी है। किसी सफर पे अकेले निकलना, हम सब लोग ग्रुप में निकलते हैं, दोस्तों के साथ निकलते हैं, परिवार के साथ निकलते हैं, बट खुद के साथ नहीं निकलते क्योंकि डर लगता है। हम अपने दोस्त थोड़े ना है, हमें अपना अकेलापन खा जाता है। अगर खुद को फील करना है तो अकेले निकलिए सफर पे और एक किताब लेके निकलिए। लेकिन एक जो रीडिंग हैबिट होती है ना, वो आपको आपसे कनेक्ट करती है।
1: कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से।
0: किसी इंसान ने अपने 60 साल 70 साल का तजुर्बा 60 से 150 पन्ने की किताब में डाल दिया आपके लिए। अगर आप उस किताब के साथ दोस्ती कर लेंगे तो यकीन मानिए ये दोस्ती आपकी खुद से हो जाएगी, क्योंकि ये समय आप

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: कई बार हम लाइफ में बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि किसके ऊपर भरोसा किया जाए और किसके ऊपर नहीं किया जाए, लेकिन दोस्तों भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी तीन बातें जान सके, हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का वो प्यार और आपके चुप रहने की वो वजह।
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: हम सबके बचपन में कुछ फेवरेट सुपर हीरोज होते थे, जैसे कि सुपरमैन, बैटमैन। हमें लगता था यार इनके जैसी पावर्स चाहिए, लेकिन जब धीरे धीरे बड़े हुए तो पता चला ये सब एक दिखावा है। असली हीरोज तो बॉर्डर पे हैं, हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन कुछ लोग ना शहर में रहते हुए भी हीरोज जैसा काम करते हैं। ऐसे ही एक हीरोज का ग्रुप है वेस्ट वॉरियर्स। वेस्ट वॉरियर्स ने पूरे शहर का, पूरी स्टेट का, पूरे हिमालय पर्वत का बेड़ा उठा रखा है, इनकी साफ सफाई का बेड़ा उठा रखा है। और आज वेस्ट वॉरियर से हमारे साथ हैं नवीन जी। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर।
3: थैंक यू गौतम, थैंक यू वेरी मच।
2: वॉक टॉक रेडियो में आप आए तो कैसा आपको लग रहा है यहाँ पर आके?
3: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आज इन्वाइट किया और मुझे अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और पब्लिक तक ये बात पहुंचेगी, इस चीज की मुझे बहुत खुशी है।
2: सर, वेस्ट वॉरियर्स के वर्ड खुद ही में इतना अट्रैक्टिव है, तो जो कि वेस्ट वॉरियर्स की जर्नी है, आपका मिशन है हिमालयस को साफ करने का, क्या चीज आपको इंस्पायर करती है और कितने टाइम से ये काम चल रहा है, ये सफाई का अभियान चल रहा है?
3: बताना चाहूंगा आपको कि 2012 में वेस्ट वॉरियर सोसाइटी जो है फॉर्म की गई थी। जोडी अंडरहिल और ताशी पारिक, ये दो लेडीज थी, महिलाएं थी, जिन्होंने मिल करके इसको पूरा फॉर्म किया। और उद्देश्य यही था कि जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, जो आप देखा जाए कि जहां पर से मेन जो पानी का स्रोत है हमारा, जो जंगल है, जो पर्वत है, उसमें कचरा जो है एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही थी, और उसी को ठीक करने के लिए, उस प्रबंधन के लिए ही जो है वेस्ट वॉरियर सोसाइटी को फॉर्म किया गया। और 2012 से इसकी शुरुआत की गई और आज 2023 हो चुका है, लगातार इस पे काम चल रहा है।
2: सर, बहुत ही अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं और इसमें ना, इस काम में लोकल कम्युनिटीज का बड़ा साथ चाहिए होता है, तो उनके साथ आप कैसे एंगेजमेंट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं उनके साथ आप?
3: देखिए, कचरा प्रबंधन जब कहा जाता है या किस पे कुछ काम किया जाता है तो लोगों में कहता है कि कचरे की जिम्मेदारी तो यार सरकार की है। लोगों का बस ये होता है कि हमने तो कचरा घर से अलग कर दिया, अब सरकार की, हाँ अब सरकार की जिम्मेदारी है, इसको अपने आप लेकर के जाएंगे, जैसे मर्जी इसको मैनेज करें। लेकिन आज ये एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है, क्योंकि कचरा जो है वो एक मिक्स फॉर्म में आ रहा है और मिक्स होने के कारण जो है उसका कोई समाधान मिल नहीं पा रहा है। तो हम लोगों ने कम्युनिटी के साथ जाकर के उनको अवेयर करना स्टार्ट किया, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से लोगों को बताया कि भाई कैसे इसको ठीक किया जा सकता है और कैसे ये गंभीर समस्या बनता जा रहा है, इसका समाधान क्या होना चाहिए, इसका प्रबंधन कैसे होना चाहिए, पब्लिक तक वो सब चीजें पहुंचाई। कम्युनिटी ने इसका बहुत साथ दिया। देहरादून में अगर हम बात करें तो वार्ड नंबर 97 हर्रावाला जिसे कहा जाता है, वहां के पूरे वार्ड का प्रबंधन अभी वेस्ट वॉरियर्स अपने आप कर रहा है, जहां पे हर घर के द्वारा जो है कूड़ा अलग करके दिया जाता है और वो कचरा अलग होने के बाद सीधा हमारा जो स्वच्छता केंद्र हर्रावाला पे स्थापित है वहां पर पहुंचता है। तो जब कचरा अलग होके जाता है तो उसका प्रबंधन भी उस तरह से अच्छे से किया जा पाता है। इसके साथ ही सेंसधारा हो गया, उसके लगते हुए गांव हो गए, मुनि की रेती हो गया, आपका कैंटी फॉल एरिया हो गया, हर की दून ट्रैक हो गया पूरा आपका, वहां के गांव हो गए, रामनगर जिम कॉर्बेट हो गया, तो उत्तराखंड में इन तमाम जगहों पर जो है हम लोग काम कर रहे हैं। और ये काम तभी सफल हो पा रहा है कि इसमें जो लोग हैं उनकी भागीदारी पूरी हमें मिल पा रही है।

0: महाभारत में द्रौपदी के स्वयंवर की कहानी हम सब ने सुनी है। अर्जुन ने मछली की आंख को निशाना बनाकर स्वयंवर जीत लिया था। इतने सारे योद्धा थे लेकिन सिर्फ अर्जुन ही क्यों जीते? इसका कारण है कि अर्जुन अपने गोल, अपने एम को लेकर बहुत फोकस्ड थे। उन्हें उस मछली की आंख के सिवाय और कुछ भी नहीं दिखा। ऐसा ही कुछ हमें अपने जीवन में करने की जरूरत है। जो भी आपका एम है, जो भी आपका गोल है, सिर्फ और सिर्फ उस पे फोकस करें, बाकी सब भूल जाएं। उस एम को पाने में क्या चैलेंज आएंगे, कितना टाइम लगेगा, इस बारे में सोचो ही मत, बस फोकस, फिर आपको जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता।
1: आपने अभी बात करी कचरा अलग रखने की। काफी लोगों को ना कचरे को सेग्रीगेट करने का मतलब नहीं पता, मतलब उनके लिए गीला कचरा भी एक ही बात है, सूखा कचरा भी एक ही बात है, तो इन दोनों को क्यों सेग्रीगेट करना चाहिए, ये आप बता दें।
2: एक शब्द जो कूड़े के लिए अक्सर इस्तेमाल होता है वो है कूड़ादान। तो हम लोगों से इसकी परिभाषा के लिए बात करते हैं कि कूड़ादान वर्ड क्यों बना है। और दान तभी होता है जब वो किसी अच्छे के भले के लिए होता है। तो जैसे आप नेत्र दान करते हैं, अंग दान करते हैं, रक्त दान करते हैं, कन्या दान करते हैं, गौ दान करते हैं, वैसे ही आप कूड़ा दान भी करते हैं। तो केवल कूड़े को इकट्ठा करके देना इज नॉट द दान, वो दान नहीं कहलाएगा। कूड़ा अगर अलग होगा तभी वो दान कहलाएगा। और अलग हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमें नेचर ने दी हैं, जो चीज़ें प्रकृति ने दी हैं, जिसमें आपका खाना हो गया, फल हो गए, सब्जियां हो गई, या फूल हो गए, पत्ते हो गए, ये वो चीज़ें, तमाम चीज़ें हैं जो अपने आप डीकम्पोज हो जाती हैं, अपने आप जो है वो नेचर में ख़त्म हो जाती हैं। उसको अगर अलग किया जाए और वापस नेचर को दे दिया जाए, इन द सेंस कि मिट्टी में उसको दफना दिया जाए, तो अपने आप वो खाद बन जाती है। और जितना भी रिसाइकलेबल है, जो कि मैन मेड है, जिसमें प्लास्टिक खासकर आता है, पेपर आता है, कार्डबोर्ड आता है, मेटल आता है, ग्लास आता है, उसको अगर ढंग से अलग किया जाए और रिसाइकलिंग कंपनी को दिया जाए तो वापस एक नई चीज़ बन जाती है। तो लोगों तक हमने इस चीज़ को, मैसेज को बहुत क्लियरली पहुंचाया कि कूड़ादान केवल कूड़े देने से नहीं होगा, कूड़े को विभाजित करके सही तरीके से देना ही कूड़ादान कहलाएगा।
1: आपने बात करी कि 2012 में आपने शुरुआत की थी
2: जी,
1: तो उस टाइम पे लोगों की क्या मानसिकता थी, और आज जब आप 2023 में बैठे हैं, आपने इतना काम करा है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं, तो लोगों में क्या बदलाव देखते हैं आप?
2: 2012 में भी समस्या थी और आज हम 2023 में, तो तब भी समस्या यही है।
1: बिल्कुल।
2: और समस्या अब बहुत गंभीर हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जिस तरह से उत्तराखंड में टूरिस्ट हमारा जो है इंक्रीज हुआ है, क्योंकि चारधाम यात्रा पे आपको पता है कि हर साल लाखों जो है पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं, और वैसे भी ये पर्यटक नगरी कही जाती है, देवों की नगरी कहा जाता है उत्तराखंड को, तो तमाम पूरे प्रदेश से, पूरे देश से जो है लोग यहाँ पहुँचते हैं, तो उसी तेजी से जो है यहाँ पर कचरा भी यहाँ पर पहुँच रहा है। तो उसके प्रबंधन के लिए जो है हमने काम करना शुरू किया। समस्या गंभीर है और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। साथ में मुझे खुशी है कि सरकार भी इसमें हमारा बहुत सहयोग कर रही है, जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो भी इसमें हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं। और लोगों में अब ये मैसेज बहुत क्लियरली जा रहा है कि कूड़े को अलग करके जब आप देंगे तो ही इसका प्रबंधन हो पाएगा, नहीं तो कूड़े के पहाड़ बनते जाएंगे।
1: बिल्कुल, कूड़े के पहाड़ों की बात करी आपने, ये पहाड़ आज भी हैं और कल भी शायद होंगे, लेकिन आने वाले समय में वेस्ट वॉरियर और वेस्ट मैनेजमेंट मिलकर फ्यूचर में क्या ऐसा चेंज लाने वाले हैं, या क्या आपका ऐसा गोल है फ्यूचर में?
2: दो चीजों पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। पहला तो है कि मॉडल वार्ड बनाना और साथ में MRF को सेटअप करना। MRF मतलब हुआ कि मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, या इसको कह सकते हैं तो स्वच्छता केंद्र। मतलब कि जहां पर भी आप कूड़े को बात करते हैं अलग करने की, तो जब तक आपको अलग करने के बाद उसका समाधान आप नहीं दे पाएंगे, तो फिर वो उसका कुछ अलग करने का जो पर्पस है वो सब खत्म हो जाएगा। हर्रावाला में ही, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, कि एक स्वच्छता केंद्र का निर्माण किया गया है, जो कि नगर निगम देहरादून के साथ मिलकर के किया गया है। वहां पर लोगों द्वारा अलग जो कूड़ा किया जाता है वो लेकर आया जाता है, गीले कचरे से वहां पर खाद बनाई जाती है, और जितना भी सूखा कचरा है उसको अलग अलग और विभाजित करने के बाद जो रिसाइकलर्स हैं वहां तक उनको पहुंचाया जाता है। तो हमारी पूरी कोशिश, पूरा प्रयास है कि ऐसे मॉडल्स को पूरे उत्तराखंड में, ना केवल पूरे भारत में, ऐसा एस्टैब्लिश किया जाए, ताकि जितना भी कूड़े का प्रबंधन है वो अच्छे तरीके, बेहतर तरीके से हो पाए। और कूड़ा जब तक एक मटेरियल रिकवरी सेंटर पे नहीं पहुंच पाएगा, या लोगों द्वारा अलग से उसको अलग नहीं किया जाएगा, तो ये कूड़े के पहाड़ जो है लगातार बनते जाएंगे। आने वाले समय में हम लोग इस पे

ज्यादा काम करने वाले हैं। इसके साथ साथ एक नया प्रोग्राम हम लोग लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम युवा है। युवा प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इसमें कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और जो हमारे स्कूल्स हैं उसमें इंटर कॉम्पिटिशन हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। अभी तक केवल वेस्ट वॉरियर्स या फिर ऐसे तमाम एनजीओस थे जो सफाई अभियान चलाया करते थे या फिर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया करते थे, बट अब एक नई पहल हम लोग करने जा रहे हैं कि कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स और जो हमारे स्कूल्स हैं वहाँ के जो बच्चे हैं उनको इतना मोटिवेट करें, उनको इतना एम्पावर करें कि वो खुद से अपने आप उठ करके आएं और अपने आप से वो सफाई अभियान चलाएं, अपने आप से वो लोग नुक्कड़ नाटक करें, इतने वो उनके अंदर इतनी पावर आ जाए कि वो अपने आप से जान सकें कैसे पीएल फाइल करनी है, कैसे आरटीआई फाइल करनी है, और उनकी आवाज़ इतनी बुलंद हो कि वो जो भी समस्याएं हैं खासकर कचरा प्रबंधन को लेकर के या पर्यावरण को लेकर जो भी चिंताएं जो व्यक्त की जा रही हैं उसको लेकर वो लोग काम कर सकें। तो 1 सितंबर से पूरा प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है और मार्च 2024 तक ये पूरे के पूरे क्षेत्र में जो है प्रोग्राम चलाया जाएगा।

0: इन सभी के बीच में थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा ईमान बचा पाया हूँ। ये क्या कम है कि मैं अपनी पहचान बचा पाया हूँ, कुछ उम्मीदें, कुछ सपने, कुछ महकती यादें बचा पाया हूँ। जीने के लिए बस इतना ही सामान बचा पाया हूँ, इसीलिए मटेरियलिस्टिक चीजों से अच्छा अपनी रियलिस्टिक चीजों के लिए भागिए। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ रियलिस्टिक चीजें काम आती है, मटेरियलिस्टिक तो थोड़े दिन में खराब हो जाती है। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।
1: हाय दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कपरवान, वन ऑफ द मेंबर ऑफ कॉमेडी क्लब देहरादून, और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पे। दो तीन बेरोजगारों ने सोचा क्यों ना कुछ करा जाए। कॉमेडी देहरादून में नहीं था, स्टैंड अप कॉमेडी आर्ट फॉर्म आई नहीं थी, पोएट्री चल रहा था, सिंगिंग चल रहा था, बट कॉमेडी की बड़ा जरूरत थी हम लोग को। तो उसके बाद डिसाइड करा कि क्यों ना मिलके कुछ करा जाए। तो ऐसे ही कलेक्टिवली सब लड़के मिलके एक क्लब खोल दिया, उसको कॉमेडी क्लब देहरादून बोलते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी का तो देखो सिंपल है, अगर आपको अपनी इज्जत से बहुत प्यार है तब तो मत ही करो, तो अच्छी बात है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप स्टेज में जाते हो और कोई नहीं हंसता, तो आपको तब अपने पे डाउट होने लग जाता है कि बेकार पढ़ाई करी, प्यार भी करा लड़की से, सब चीज में धोखा खाया और स्टैंड अप कॉमेडी भी खराब जा रही है। ये उसके लिए आई थिंक आपको बहुत फेलियर से इस पे फेस करना पड़ता है। आप 10 जोक लेके जाओगे स्टेज में और एक चलेगा, कभी एक भी नहीं चलेगा, तो आपको ऐसे उतरना पड़ेगा और बार बार ऐसे ओपन माइक करके आपके पास एक सेट बनता है, हम उसे 5 मिनट सेट कहते हैं। 5 मिनट के लिए आपके जोक्स बनते हैं, जिसे हम टाइट 5 बोलते हैं, फिर वो आप जाके स्टेज पे करते हो। फिर उसमें भी गारंटी नहीं है कि 100% किली होगा, 95 समथिंग का रेशियो रहता ही है, तो इतना ईजी नहीं है, वो ट्राई करके ही पता चलेगा। जो भी एक बार आएगा स्टेज पे उसे पता चल जाएगा कि ये ऐसा करना है या नहीं करना है, या पढ़ाई पे ही ध्यान देना है।

0: रेडियो।
1: समस्या का गुलाम बनने वाले कभी खुद के भाग्य का निर्माता नहीं बन पाते।
0: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

0: पहेलियों।
1: हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना।
0: वॉक टॉक रेडियो।
2: हाय दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कपड़ुवान, वन ऑफ द मेंबर ऑफ कॉमेडी क्लब देहरादून, और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पे। स्टैंड अप कॉमेडी का क्या है कि जैसे आपको कुछ कहना है, आपको जोक्स लिख के लाइव आपको कहना है डायरेक्टली, आपको माइक पकड़ा दिया जाएगा सामने पे, ओपन माइक में 8-10 लोग रहेंगे और आपको उनको सुनाना है। अब वो बहुत रैंडम लोग हैं, वो जानते नहीं आपको, आप कहाँ से हो क्या हो, तो वो आपका टैलेंट है जोक्स के थ्रू। नहीं तो बहुत पॉसिबल ही नहीं है किसी को, रैंडम इंसान को हंसाना, अगर आप पे जोक्स नहीं है तो उसके पीछे एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, एक राइटिंग स्ट्रक्चर होता है, तब जाके वो क्लिक होता है, तब लोग हंसते हैं। तो ऐसे रैंडम तो बहुत टफ हो जाता है। मैंने तो घर वालों की उम्मीद पहले ही तोड़ दी थी, पढ़ाई से ही तोड़ दी थी मैंने, ऐसी ज़्यादा उम्मीद बना के नहीं रखी उनसे। मेरे पापा खुद स्टेज से रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन ही रहे हैं, आर्मी में वो करते थे, अभी भी करते हैं, स्टेज बहुत करते हैं, तो उनको पता है कि स्टेज में कैसा होता है क्या होता है। वो खुद मानते हैं बहुत टफ होता है आपको स्टेज में जाके किसी को हंसाना, तो पहले बोल देते हैं कि बहुत बड़ी बात है कर रहे हो, तो ये वैसे ही बहुत बड़ी बात है, इसका आगे हम इतना नहीं सोचेंगे। मेरा तो बहुत सपोर्ट करते हैं एंड शायद यहाँ पे जितने हैं सबका ही करते हैं, ऑडियंस का थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। हमने बहुत से ऐसे शोज भी देखे, मुझे याद है एक शोज कर रहा था मैं यहाँ पे, 600 की ऑडियंस थी। अब मिडिल ऑफ द शो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, साइड से एक मैनेजमेंट का आदमी आया, मुझे कहता है कि भाई अनाउंस कर दो कि गर्मा गर्म चाय और नमकीन कुरकुरे आपका इंतजार कर रहे हैं, और मेरे को मिड ऑफ द परफॉर्मेंस ही बोलना पड़ा। और देहरादून की जनता इतनी प्यारी है, सब उठ के चले गई चाय पीने, ऐसे लोग। एंड देन उसके बाद मेरे को बोलते कि लाओ स्टार्ट करो तो मैं कह रही यार यूट्यूब पे थोड़ी देख रहे हो तुम, कि सब पॉज कर दिया फिर स्टार्ट कर दिया तो बहुत होता है कॉमेडी में, लाइक अप्स एंड डाउन। आपको कुछ शो बहुत अच्छे जाते हैं, कुछ शो बहुत खराब जाते हैं, ऑडियंस पे डिपेंड करता है। जोक्स बेसिकली सब ऑडियंस पे ही डिपेंड करता है। सरकैज़म क्या ऑडियंस को समझ में आ रहा है, अवेयर भी होना चाहिए ना ऑडियंस। मैंने बात में किसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, उनको कोई फर्क ही नहीं है, तो 50% गेम ऑडियंस का है। अगर वो अवेयर नहीं है, उनको कुछ चीज़ पता नहीं है, किसी को समझ में नहीं आते जोक्स। जैसे अगर मैं किसी को बोलूँ कि यार मैं एक हॉन्टेड हाउस गया था, तो लोग सीरियस हो जाते हैं, क्यों गए थे आप, क्यों वहाँ नहीं जाना चाहिए था, वो इतने सीरियस हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि आगे सुन ले क्या कह रहे हैं। नहीं, कॉन्टेक्स्ट से कोई मतलब नहीं, बहुत सीरियस होकर सुनते हैं लोग कॉमेडी। कुछ कुछ हैं ऑडियंस, कुछ कुछ नहीं है, तो जो है हम उनके पास पहुँचने की कोशिश करते हैं फिलहाल।

0: हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। मैं हूं आप सभी के साथ किरण, और पॉडकास्ट की सीरीज में आज एक और गेस्ट के साथ मैं हाजिर हो चुकी हूं आप सभी के बीच में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड गढ़वाल और कुमाऊं रीजन के नाम से बहुत ज्यादा जाना जाता है। हालांकि बहुत सारी बोली भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको ये देखने को मिले कि एक गढ़वाली मुंडा जो है, अब मैं मुंडा यूज क्यों कर रही हूँ वो आपको पता चल जाएगा, एक गढ़वाली मुंडा जो है वो भांगड़ा कर रहा है, और इतना गजब का भांगड़ा कर रहा है, तो थोड़ा सा हम अचंभित हो जाते हैं ना, थोड़ा सा हमें सरप्राइजिंग लगता है। हालांकि लगना नहीं चाहिए, कोई भी डांस फॉर्म कोई भी कर सकता है, बट यूजुअली हमें ऐसे देखने के लिए नहीं मिलता है। तो आज के जो गेस्ट है ना, वो भी थोड़ा सा हटके है, क्योंकि है तो ये गढ़वाली, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि ये गढ़वाली है, क्योंकि ये पंजाब की तरह इनकी पर्सनैलिटी है, पंजाबी लोगों की तरह पर्सनैलिटी है, पंजाबी भांगड़ा डांस फॉर्म ये इतनी बेहतरीन तरीके से करते हैं, लोगों को सिखाते भी हैं। तो बिना किसी देरी के आप सभी से मुलाकात करवाती हूँ अजय की, जो कि ये फाउंडर है देहरादून भांगड़ा क्लब की। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल अप करने के लिए देहरादून भांगड़ा क्लब को। बेसिकली मेरा नाम तो आपने बता दिया अजय, लेकिन इस डीबीसी के पीछे बहुत सारे लोग हैं, मतलब इंक्लूडिंग 50+ मेंबर्स हैं। तो उन सब की तरफ से मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि काफी लोगों को हमारे बारे में जानने को मिलेगा, और मोटिव जो हमारे इसके पीछे है तो वो आज जानने को मिलेगा। तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल से हमें एक मीडियम मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जहाँ से हम लोगों को चीजें बता सकते हैं।
0: बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हमें भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, हर पॉडकास्ट से मिलता भी है। और जैसे कि आपने बताया कि आज जो है हम लोगों के बीच में ये रखेंगे कि हमारा डीबीसी का मोटिव क्या है, हम क्या चाहते हैं, उन सारी बातों से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके बारे में पहले जानना चाहेंगे। अजय कौन है, कहाँ से आता है, क्या करता है, डीबीसी यानी कि देहरादून भांगड़ा क्लब कैसे स्टार्ट हुआ, इसके बारे में बताइए।
1: बेसिकली अगर जर्नी देखे जाए और मेरे बारे में देखा जाए, तो मैं डिफेंस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो अब एक डिफेंस फैमिली जब बिलोंग करती है, तो वो हर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से हम लोग देख के आए, और इस पंजाब से कनेक्टिविटी जब हुई थी, जब मेरे फादर जो थे वो पोस्टेड थे पंजाब में, तो वहां से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ, एक वाइब जो है वो मेरे अंदर आ गई है। और मेरी मम्मी की भी पढ़ाई पंजाबी लैंग्वेज में हुई है।
0: अच्छा,
1: यस। तो
0: ऐसे कैसे?
1: ये क्योंकि मेरे नाना जो थे वो एयरफोर्स में थे, तो अच्छा। उस समय वो चंडीगढ़ में पोस्टेड थे, तो वहां से ही मम्मी की पढ़ाई हुई, और मेरी मम्मी को पंजाबी में बोलना लिखना सब कुछ आता है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से एक वायरस तो नहीं कहूंगा मैं, एक छोटा सा कीड़ा कह सकते हैं, हाँ, जीन में आ जाता है वो चीज। जर्नी मेरी भंगड़ा को लेके हुई थी जब मैं ग्राफिकेरा में मैंने एडमिशन लिया था, ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी में, और हमारा पहला बैच था, मतलब 2011 का, उस समय फेस्ट होता था ग्राफिकेरा डीम्ड में। तो हिल में बस एक डिसीजन लिया गया कि यार चलो एक भंगड़ा भी हमारे यहाँ होना चाहिए। तो दो तीन चार लोग हम लोग दोस्त थे, तो उन्होंने बोला यार अजय चलो भंगड़ा करते हैं, एक ग्रुप है वो हमें सिखा देगा, बाकी हम वीडियो को देख के सीख लेंगे।
0: अच्छा।
1: तो मैंने चलो ठीक है, ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, और क्योंकि भंगड़े को सुन के ही सबके अंदर एक एनर्जी ऑलमोस्ट वो आई जाती है।
0: हाँ।
1: तो हमने वहां से इसको स्टार्ट किया, और बस ऐसे ही किया था कि चलो फेस्ट आउट कर लेते हैं, और बस यही था हमारी जर्नी स्टार्ट भंगड़े के साथ कनेक्टिविटी। बट धीरे धीरे जैसे कॉलेज में हम लोग करते गए, तो वो चीजें और आती गई कि हाँ यार अब तो और करना है, और करना है। तो जब कोई चीज कनेक्टिविटी बन जाती है एक डांस फॉर्म के साथ, तो डेफिनेटली इंसान उसको करने में पीछे हटता नहीं है, क्योंकि हमें भी करने में उसको अच्छा लगता था, लोगों को भी धीरे धीरे पसंद आ रहा था। तो मेरी जो जर्नी है वो भंगड़ा का लेके यहाँ से स्टार्ट हुई है।

सभी यहाँ एक मंजिल तक पहुँचने के लिए आए हैं जो पूरी तरह हमारी होगी। कुछ लोग इसे लक्ष्य कहते हैं, कुछ इसे प्रसिद्धि कहते हैं और कुछ इसे केवल जीवन कहते हैं। किसी भी तरह याद रखने वाली यह एक बात है कि भले ही अपने समय में यह कोई दौड़ नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं है, यह जो कुछ है एक क्षण है और जब आप पहुंचेंगे तो क्षणों का यह संचय आपके पास होगा। मैं स्वीकार करती हूँ कि कई बार निराशा चरम पर होती है और मेरा एक हिस्सा उस उन्मादी समय के मुंबई लोकल पर रहना चाहता है, लेकिन जिस चीज के लिए मैं सबसे अधिक आभारी हूँ वह यह है कि जब वह क्षण शांत हो जाता है और मैं खाली सुनसान मंच को देखती हूँ तो मुझे शांति का एहसास होता है कि जो मुझे सही चुनाव करने का आश्वासन देता है। मैं अपने आप को कहानीकार नहीं कहूंगी क्योंकि वास्तव में मैं सिर्फ एक कहानी हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझ में देखने और सुनने की उतनी ही क्षमता है जितनी मुझे देखने और सुनने की क्षमता है। इन द एंड ऑल आई रियली वॉन्ट टू से इज आई एब्सोल्यूटली लव द फैक्ट दैट यू एज माई लिसनर एम्पावर मी जस्ट एज मच एज आई एम्पावर यू एज योर स्पीकर।

0: तो आप इन शॉर्ट हमें भी थोड़ा सा बताना चाहोगे, क्योंकि बहुत सारे आम लोगों को सिर्फ ये पता है कि ठीक है जो है भांगड़ा ऐसे होता है, ऐसे होता है, हाई बीट पे होता है, ऐसे होता है, लेकिन उन्हें डांस फॉर्म के बारे में डिटेल में नहीं पता। बट इन शॉर्ट अगर आप थोड़ा सा उस पे लाइट डालना चाहो कि कितनी फॉर्म्स में होता है।
1: हाँ, अगर मैं वैसे देखूं, क्योंकि टेक्निकलिटी भी इसमें जा सकते हैं टेक्निकल, लेकिन मैं जाते हैं हम हमेशा देखते हैं कि ऑडियंस भी उसे, क्योंकि ऑडियंस एक भंगड़े को अलग अलग तरीके से देखना चाहता है
0: जी।
1: और जब भी हम कहीं परफॉर्म करते हैं तो हम उसी चीज को देखते हैं कि हमारी ऑडियंस क्या देखना चाहती है।
0: हाँ।
1: तो कई बार कई ऑडियंस, जैसे कि मोस्टली सबको ये पता है भंगड़ा गाना बजेगा, पंजाबी सॉन्ग बजेगा और नाचना है बस खुल के।
0: हाँ।
1: ठीक है, एक वो चीज होती है तो लोगों को वो भी पसंद है।
0: हाँ।
1: तो वो हम कॉन्सर्ट कराते हैं।
0: अच्छा।
1: ठीक है, बेसिकली अगर आप एक टेक्निकल उसमें जाओ तो भंगड़े के अंदर काफी स्टेप्स है। अब ऐसे ऐसे नाम है, पटाखा, फुल्का, आप कोई फुलके को देख के सोचता है कि रोटी है।
0: हाँ।
1: तो उसी से लेके वो स्टेप बना है,
0: आई थिंक फुलकारी जैसे दुपट्टा।
1: हाँ, राइट। तो वैसी है, गिद्दा है, मलवाई गिद्दा है, झूमर है। तो ये टेक्निकल वर्ड्स हैं और एक टेक्निकल सेगमेंट्स होता है। तो
0: अच्छा।
1: जब भी हम कंपटीशन में जाते हैं तो इंडिया के अंदर एक इंटरनेशनल भंगड़ा कंपटीशन होता है।
0: अच्छा।
1: तो उसमें भी हम कॉम्पीट करते हैं और वहां पे ये सारी चीजें यूज करते हैं, लेकिन इससे मैटर नहीं है। मैंने बताया कि लोग भंगड़े को किस तरीके से देखते हैं,
0: आपकी ऑडियंस,
1: ऑडियंस मैटर करती है कि ऑडियंस जिस तरीके से डीबीसी को देखना चाहता है, हम उनको वही भंगड़ा जो है उस फॉर्म पे उनको दिखाते हैं।
0: तो अभी तक जैसे आपने बताया कि कॉलेज में आप बीसीए कर रहे थे, तो जब आपने ये स्टार्ट किया, चलो ठीक है उस टाइम पे तो ये होता है कि आप पढ़ रहे हो कॉलेज में, एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो घर वालों को उस चीज से इतनी तकलीफ नहीं होती है। उनका बस ये रहता है कि ठीक है पढ़ाई पे भी ध्यान रखना और एक्टिविटी भी कर लो। बट उसके बाद जब आपका इसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया, आपकी पार्टिसिपेशन बढ़ती गई होगी, आप बहुत ज्यादा इंडल्ज उस चीज में हो रहे होंगे, तो घर वालों को लग रहा होगा कि ये गया तो उस चीज के लिए था, अभी क्या कर रहा है या किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो थोड़ा सा उन्होंने कुछ बोला इस चीज पे?
1: हाँ, मतलब फैमिली का अगर देखा जाए तो सपोर्ट इतना नहीं था, और हमारे भी काफी मेंबर्स होते, क्योंकि हमारे इंडिया में देखा जाता है कि हर कोई गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब इन चीजों में फोकस करता है, लेकिन काफी ऐसे बच्चे होते हैं जिनपे बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट है, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते।
0: हाँ।
1: मैं अपनी बात करूं और कि जैसे कि मैं ये चीजें करता था, तो मैं अपने कॉलेज टाइम पे बीसीए और एमसीए में मैं टॉपर लिस्ट में रहा हूं।
0: अच्छा।
1: तो मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से उस चीज को मैनेज कर रहे हो। तो जब आप उस चीज को मैनेज करने लग जाते हो तो डेफिनेटली आपके पेरेंट को कोई इशू नहीं होता है। हाँ, ये तो था कि यार आप डांस क्यों कर रहे हो, क्यों करना है भंगड़ा, ठीक है, लेकिन कैसे समझाएगी यार, अब कनेक्टिविटी बन गई है तो वो चीज तो छूट नहीं सकती है। तो बस मेरी पढ़ाई को लेके तो कभी वो नहीं रहा। बीसीए और एमसीए के बाद मेरे प्लेसमेंट भी हुए हैं, मैं डिफेंस फोर्सेज के लिए भी मैंने ट्राई किया, नौवर में एसएसबी में गया हूँ।
0: अच्छा।
1: तो ये सारी डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को किस तरीके से मैनेज करते हो। बट हाँ, फैमिली बिल्कुल भी सपोर्ट अभी भी नहीं करती है।
0: अच्छा।
1: तो कहीं ना कहीं ताने मारते हैं काफी, मतलब हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, लेकिन अब डिसीजन हमारा है और लाइफ में जब हमने डिसीजन लिया है कि इसमें कुछ करना है तो डेफिनेटली उस चीज को प्रूफ भी हमें करके दिखाना है।

0: Radio.
1: Boss has a title, but a leader has the people. हर कंपनी में, हर बिजनेस में एक बॉस यानी कि हेड ऑफ द कंपनी जरूर होता है. बाकी सारे एम्प्लॉयज उसके अंडर काम करते हैं. बॉस का टाइटल तो सब हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा लीडर वही होता है जो ना कि सिर्फ ऑर्डर्स दे बल्कि खुद एक एग्जाम्पल सेट करे, अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करे, एक पॉजिटिविटी का एनवायरमेंट क्रिएट करे. और ऐसा लीडर टाइटल के साथ साथ अपनी टीम का दिल भी जीतता है.

हाय, मैं हूं अंशुल भट्ट, फाउंडर एंड सीईओ फॉरेस्ट एको रिजॉर्ट ग्रुप, और आप मेरे को सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पे। जब हम बात करते हैं स्टार्टअप्स की और एंटरप्रेन्योरशिप की, तो बेसिकली स्टार्टअप, जब हम कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब हमारी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है किसी भी काम को करने में, और कुछ इनोवेशंस की वजह से किसी एंटरप्रेन्योर की कुछ काम करने के तरीके से अगर सोसाइटी की वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो वो बेसिकली एक स्टार्टअप होता है। ऑब्वियसली अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है सोसाइटी के किसी भी सेगमेंट में, किसी भी चीज में, तो ऑब्वियसली वो वहां से अर्न भी करता है, और जिसके वजह से वो धीरे धीरे ग्रो करता है। हमने देखा है क्या, इतने टाइम में इंडिया में ही काफी स्टार्टअप सब आ रहे हैं, 2014-13 के बाद से लेके कंटिन्यूस स्टार्टअप ग्रो कर ही रहे हैं अलग अलग सेक्टर में, और खास तौर पे सर्विस सेक्टर में तो स्टार्टअप की एक तरीके से अब बाढ़ आ रही है। लोग अलग अलग तरीके के सेक्टर में टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने अपने जो उनके आइडियाज हैं, जो उन्होंने सोचा हुआ है कि हम इस सेक्टर में ऐसे करके काम करेंगे, तो उसको ग्रो करवा रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं तो हर किसी का कभी ना कभी सपना रहता है कि वो कुछ बड़ा करे, वो कुछ स्टार्ट करे जिसके वजह से लोग उसको याद रखें, लोग उसको रिकॉग्नाइज करें, और इसी मोटिवेशन के साथ हर कोई कुछ ना कुछ काम स्टार्ट करता है। लेकिन काम स्टार्ट करना एक अलग है, और उस काम को एक बड़े लेवल पे ले जाना ये एक पूरा ही अलग, मतलब अगर आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, आपने एक शॉप स्टार्ट कर दी, कुछ भी ऐसा कि जिससे आपको अर्निंग हो रही, तो आप एक एंटरप्रेन्योर हो। लेकिन उस एंटरप्रेन्योरशिप को आप उस लेवल पे लेके जाओ जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल का, नहीं लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल का फायदा हो, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, बहुत सारे लोग जो आपकी टेक्नोलॉजी है या फिर जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे फायदा ले पा रहे हैं, तो उसके बाद ही आपको कहीं ना कहीं सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ, ये इसने ये स्टार्ट किया और इसका ये आइडिया था और ये बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहा है। तो इस पूरे जो जर्नी में बहुत सारी चीजें हैं कि जिसको आपको ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज तो अगर मैं, क्योंकि मैं भी खुद एक एंटरप्रेन्योर हूं और मैंने 2019 में स्टार्ट किया उत्तराखंड में, उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया में, क्योंकि मैं पहाड़ों से ही बिलोंग करता हूं। मैं यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन में पास आउट होने के बाद जो मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मेरे को दिखा और जहां पे अपॉर्चुनिटी भी दिखी, वो उत्तराखंड में ट्रैवल एंड टूरिज्म था, और मैं उत्तराखंड से बाहर भी जाके कुछ स्टार्ट नहीं करना चाहता था। तो मैंने देखा कि जिस फील्ड में यहाँ पे सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म में कोई काम नहीं कर रहे हैं या स्टार्टअप्स नहीं है, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं ट्रैवल या टूरिज्म में, उत्तराखंड का कोई अपना ब्रांड हो, ऐसा ब्रांड हो क्या, अगर कोई भी उत्तराखंड जा रहा है तो उसके दिमाग में सिर्फ वही चीज चले, तो ऐसा कुछ यहाँ पे था नहीं। तो एक अपॉर्चुनिटी भी थी राज्य के लिए, अपने ही होम टाउन के लिए आप कुछ कर सकते हो। तो मैंने 2019 में जनवरी में स्टार्ट किया कंपनी जिसका नाम था फॉरेस्ट एको रिजॉर्ट ग्रुप, और जो इसकी थीम थी वो ये थी कि हम सिर्फ एक अकोमोडेशन चेन नहीं होंगे, बट हम एक यूनिक अकोमोडेशन चेन होंगे। हम सिर्फ लोगों को कमरा नहीं बेचेंगे, हम सिर्फ लोगों को पैकेज नहीं बेचेंगे, बल्कि हम हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा वो एक्सपीरियंस देना रहेगा किसी भी ट्रैवलर को। तो इस थीम के साथ हमने स्टार्ट किया, और 2019 से 21 तक अभी हमारी 5 प्रॉपर्टीज उत्तराखंड में ऑपरेशनल है, 2 अभी विद इन अ मंथ शायद हम लोग कर लेंगे, ऑपरेशनल कर देंगे। तो ये वो था कि हमने मतलब कैसे करके स्टार्ट किया, इस बीच बहुत सारे चैलेंजेस भी आए। तो आई होप स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको हल्का सा आइडिया आया होगा कि क्या ये पूरी जर्नी होती है, कैसे करके आप कर सकते हो। तो दोस्तों, जल्द मुलाकात होगी नए एपिसोड में, तब तक के लिए आप सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

हाय, मेरा नाम है अंशुल भट्ट और मैं फॉरेस्ट इको रिजॉर्ट ग्रुप का फाउंडर एंड सीईओ हूं। और आज आप मेरे को सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। तो लास्ट एपिसोड में जो हमने बात की थी वो थी क्या स्टार्टअप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और कैसे ये पूरी जर्नी रहती है। आज आपको मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा क्या कैसे करके मैंने जो फॉरेस्ट इको रिजॉर्ट ग्रुप है उसको स्टार्ट किया है और कैसे करके हमारे जो स्टार्टअप ने एक तरीके से रेस पकड़ी है, कैसे करके हमने अपनी ही ग्रोथ देखी है, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। 2019 में हमने स्टार्ट किया था फॉरेस्ट इको रिजॉर्ट ग्रुप। हमारा जो मेन मोटिव था वो था कि हम उत्तराखंड में जितने ट्रैवलर आ रहे हैं उनको एक एक्सपीरियंस दें, क्योंकि हम जितने भी सारे ब्रांड यहाँ पे इंडिया में हैं जो हॉस्पिटैलिटी में टॉप के ब्रांड हैं वो अलग अलग तरीके से रूम सेल कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है। तो हमारा ये था कि हम एक तो जो हमारी प्रॉपर्टीज होंगी वो कहीं ना कहीं से एक यूनिक अकोमोडेशन होगा, क्या वो नॉर्मल कोई लॉज नहीं होगा या नॉर्मल कोई कमरा हम सेल नहीं करेंगे, हम एक एक्सपीरियंस सेल करेंगे। तो ऐसे करके हमने स्टार्ट किया। 2019 में हमने चोपता तुंगनाथ जो एक लोकेशन है वहाँ पे हमने अपनी एक यूनिट खोली और धीरे धीरे करके केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी, नैनीताल, अलग अलग जगह पे हमने यूनिट्स स्टार्ट करी हैं और अभी दो यूनिट हमारी उत्तराखंड के चमोली और टिहरी में हो जाएंगी। इसके अलावा जितने भी ट्रैवल से रिलेटेड पैकेजेस होते हैं अलग अलग प्रोडक्ट भी हम लोग सेल कर रहे हैं। बस ये चीज को हम मेन वो लेके चल रहे हैं जो हमारा यूएसपी है कि हम एक्सपीरियंसेस ही सेल करें। जो भी आ रहा है वो सिर्फ, क्योंकि जितना भी ट्रैवलर उत्तराखंड में आता है वो कहीं ना कहीं अपने पूरे साल भर की कुछ छुट्टियां बचा के आता है, बहुत जगह से पैसे अरेंज करके आता है, अपने बच्चों की स्कूल की छुट्टियां देख के आता है, तो उसका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, उसके पैसे बहुत ज्यादा कीमती है। और हमारा जो मेन मोटिव है क्या एज अ सिटीजन ऑफ हिल्स उत्तराखंड, क्या हम उसके जो पैसे का उसका पूरा वैल्यू उसको दे। तो बात करते हैं क्या हमारे स्टार्टअप ने कैसे रेस पकड़ी। तो स्टार्टअप में सबसे जो जरूरी है वो आपके लिए लोग हैं, लोग भी वो लोग जो आपके टीम में हैं, क्योंकि अगर आपकी टीम स्ट्रांग है और आपके टीम में अलग अलग माइंडसेट के साथ लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग फील्ड के लोग जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका स्टार्टअप स्पीड अप करेगा ग्रोथ को लेके। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, हमारे साथ कॉर्पोरेट से हमारे साथ अलग अलग फील्ड के कुछ लोग हमारी टीम में आना स्टार्ट किया और इससे ये हुआ कि हमें जो फंडिंग चाहिए थी स्टार्टअप के लिए वो फंडिंग हमें इजिली मिलने लगी, क्योंकि टीम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी स्टार्टअप के लिए। और जब कोई भी आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो सिर्फ आपका आइडिया देख के इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आइडिया बहुत सारे हैं। हम जिस कमरे में बैठे हुए हैं इस कमरे में भी मतलब हवा में ही इतने सारे आइडिया होंगे, लेकिन किसी भी आइडिया के ऊपर कोई भी ऐसा इन्वेस्ट नहीं करता है। कोई भी इन्वेस्टर है वो आपकी टीम देखता है, आपका मिशन देखता है, आपका विजन देखता है, आप किस फील्ड में इन्वेस्ट करवा रहे हो उससे और उसको कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, सारी चीजें कैलकुलेट करके ही कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। तो हमारे साथ भी जब हमारी लोगों ने टीम देखी और ये देखा कि ये फास्ट ग्रोथ कर रहे हैं तो लोगों ने धीरे धीरे धीरे धीरे करके हम पे पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करा। और जैसे जैसे हमारे पास फंडिंग आई तो हमें ऑब्वियसली हमने आईटी में इम्प्रूवमेंट करे, हमने अपने टेक्नोलॉजी से लेके ऑपरेशन तक हमने हर चीज में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करे। हमने जो फील्ड के एक्सपीरियंस लोग हैं उनको लेके आना शुरू किया टीम में और यहाँ से हमारे पूरे स्टार्टअप को एक पेस मिला। जो अभी हम अपने आप को कहते हैं वो हम कहते हैं कि हम इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिक अकोमोडेशन चेन है। और जो हमारा मिशन है वो है कि हम इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट यूनिक अकोमोडेशन चेन बने, क्योंकि लार्जेस्ट अकोमोडेशन चेन बहुत सारी हैं, लेकिन हम अपने आप को जो अपनी हमारी यूएसपी है वो है कि हम लार्जेस्ट यूनिक अकोमोडेशन चेन हो, क्योंकि हम सिर्फ रूम या सिर्फ होटल सेल नहीं कर रहे हैं, हम ट्रैवलर को एक एक्सपीरियंस उसको दे रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरे स्टार्टअप की ये जर्नी रही है और जो मैंने आपसे बातें शेयर करी हैं इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: कोई टूटे तो उसे बनाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। सीखो, रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। अगर ये आपको आ गया ना, तो आपके रिश्ते बहुत आगे तक जाएंगे।
0: वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक ट्यूनिंग फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो,
2: वॉक टॉक रेडियो।
3: हाय, दिस इज अनुकृति गुसाई रावत और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। ऐसा जो कंपैरिजन है कि वुमेन आर स्ट्रॉन्गर, मेन आर स्ट्रॉन्गर, आई डोंट थिंक सो कि ये कंपैरिजन होना चाहिए। वुमेन आर स्ट्रॉन्गर इन देयर ओन वे, मेन आर स्ट्रॉन्गर इन देयर ओन एस्पेक्ट्स। बिकॉज अगर आप देखोगे एक महिला के लिए जो जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय मैं कहूंगी, हर पूरी जीवन परिस्थितियां अलग अलग रहती हैं। एंड यस, आई विल से देर आर सम थिंग्स, सम इंस्टेंसेस वेयर वी कैन से कि हाँ, फीमेल्स आर वेरी स्ट्रांग। फॉर एग्जांपल, जब एक महिला माँ बनती है एंड व्हेन शी गिव्स बर्थ, देन वी फील कि हाँ यार, शी हैज सच अ स्ट्रांग यू नो जील। और जब आप मतलब दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील ऑल्सो विद मेन, आई फील दैट मेन आर स्ट्रांगर, क्योंकि वो कई बार जब आप ज्वाइंट फैमिलीज को अंडरस्टैंड करेंगे या इंडियन जो कल्चर फैमिली का रहा है व्हेन, और इंडियन कल्चर के आई थिंक अराउंड द वर्ल्ड, कि जब हम मेन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारे घर का जो बोझ है अपने कंधे पे रखे, मेन शुड बी अर्निंग मोर एंड ऑल ऑफ दैट एंड दे टेक केयर ऑफ द फैमिली ऑल्सो, तो ऐसा नहीं है कि दे आर लेस और वुमेन आर लेस। बोथ आर इक्वल एंड शुड बी ट्रीटेड इक्वल।
2: वॉक टॉक रेडियो।

Walk Talk Radio. Hi, this is Anukriti Gusai Rawat और आप मुझे सुन रहे हैं Walk Talk Radio पर. I've been hearing lot of cases कि यार ये बच्चा डिप्रेस हो गया, इस बच्चे को मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझको ये हो रहा है. देर आर केसेस एंड आई थिंक यू नो इसमें कोई बुरा लगने वाली बात नहीं. एंड आई अंडरस्टैंड कि कई बार ऐसा होता है कि फैमिलीज भी इस चीज को नहीं अंडरस्टैंड कर पाती, क्योंकि उनको लगता है कि अरे क्या होता है डिप्रेशन, मतलब ये एक जनरल लेमन चीज है, अरे क्या फालतू बात है. नहीं, डिप्रेशन इज सीरियसली बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट भी है. बट आई एम सेइंग कि उसमें जाना या ना जाना कई बार ऐसा होता है कि हमारे हाथ में नहीं होता. बट यू नो सी आई वांट टू टेल यू कि ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कोई ऐसा फील्ड हो जिसमें कम हार्ड वर्क लगे. हर जगह स्ट्रगल्स है और हर आदमी का अपना स्ट्रगल होता है, हर किसी की अपनी स्टोरी होती है. एवरीबडी कई बार लगता है अरे यार इसका तो आसानी से हो गया, इसका थोड़ा मुश्किल हो गया. नो, वी डू नॉट नो, हमें नहीं पता होता कि किसकी जिंदगी में कितना स्ट्रगल है और होता है. तो ओनली फैक्टर, मैंने जैसे पहले भी कहा, द ओनली थिंग इज यार अपने पे भरोसा करना चाहिए बिफोर ट्रस्टिंग एनीबडी. कई बार ऐसा होता है, डिप्रेशन भी अलग अलग टाइप के हो गए आजकल. कई बार डिप्रेशन इसलिए कि गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, कई बार डिप्रेशन इसलिए जॉब नहीं मिली. ठीक है यार, इफ रिलेशन वर्क्स आउट गुड, नहीं चला तो डिप्रेशन पे थोड़ी जाना है.

0: दोस्तों, कई बार हम अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हर चीज के लिए किस्मत पर निर्भर होते हैं। उन्हें लगता है कि वही होगा जो किस्मत में या हमारे हाथों की लकीरों में लिखा हुआ है। पर मैं आपको बता दूं कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मेहनत पर विश्वास करना होता है। किस्मत की आजमाइश तो जुआ खेलने वाले भी करते हैं, इसीलिए अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखें और उसके बाद ही किस्मत पर निर्भर हो। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहे वॉक टॉक रेडियो।
1: हेलो, मैं सुन नीरज भंडारी और मैं हूँ अभी वॉक टॉक रेडियो देहरादून उत्तराखंड में। सो आज तक टीवी में देखता आता था, आज तक यूट्यूब में देखता रहा था ये चीजें, बट आज ये अपने साथ एक्सपीरियंस करने वाला था। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। सो मैं हूँ नीरज भंडारी और मैं हूँ उत्तराखंड देहरादून से। मैं हूँ एक साइकिल एडवेंचरस गाय, यानी कि मैं साइकिल में करता हूँ टूरिंग। स्पेशल अबाउट मी इज दैट कि मुझे घूमना तो पसंद है, बट मेरे घूमने का जो मेरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है, जो कि है साइकिल। तो मैं पहले मतलब मुझे एडवेंचर का बहुत शौक था, मैं नॉर्मल ट्रैकिंग वगैरह में जाता था और स्पोर्ट्स का मुझे पहले से शौक था काफी, स्कूल टाइम से लेके। आई वाज अ स्कूल कैप्टन एंड आई वाज अ एथलीट ऑफ द ईयर ऑफ माय स्कूल। सो जब मैं कॉलेज

किया, आई हैव डन माय स्टडीज फ्रॉम एसजीआरआई यूनिवर्सिटी देहरादून। तो जब मैं सेकंड ईयर में था तो मेरे स्कूल के हमारे मेरे जो कॉलेज के सीनियर थे तो वो साइकिल में आया करते थे, मतलब वो मेरे साथ टेबल टेनिस खेलते थे पहले। तो मैंने उनको देखा कि वो साइकिल में आ रहे कॉलेज, तो कहीं ना कहीं मुझे मतलब लगा कि यार मजे तो हैं साइकिल में, ऑब्वियसली फ्यूल भी बच रहा है, यू आर सेविंग योर मनी। तो उसी दिन मैं घर गया और मैंने पापा से रिक्वेस्ट करी कि पापा मुझे साइकिल चाहिए किसी भी हाल में। तो माई फादर वॉज इन आर्मी एंड फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे, जिस दिन मैंने साइकिल ली उसके नेक्स्ट डे मैं अपने कॉलेज गया। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैंने साइकिल ली है, एंड वहाँ पे मैंने अपने कॉलेज के जो मेरे फ्रेंड्स थे वो साइकिल से बिल्कुल भी मतलब इंट्रोड्यूस नहीं थे। तो मैंने उनको बस इतना बोला, देखो गाइस हम कल घूमने जा रहे हैं सहस्त्रधारा, जो हमारी देहरादून का एक फेमस पिकनिक स्पॉट है। तो मैंने उनको कहा हम घूमने जा रहे हैं सहस्त्रधारा, मैंने उनको पूछा नहीं, मैंने उनको सीधा ऑर्डर दिया कि कल हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग अपनी बाइक लेके आएंगे, हम लोग अपनी स्कूटी लेके आएंगे। मैंने कहा ये सब नहीं है, अपनी अपनी साइकिल लेके आओगे। फिर देवाला एक साइकिल क्यों? तब मैंने उनको बताया कि मैंने एक साइकिल ली है। अच्छा तभी तू प्लान बना रहा है कि साइकिल में चलना है।

0: रेडियो।
1: जिस दिन आपको पता चल गया कि आप कर सकते हैं तो फिर आप कर लेंगे।
0: Walk Talk Radio, tune in for a better life. Walk Talk Radio.
2: क्योंकि मैं साइकिल से पहले अपने घर से मेरा जो सर्कल था अराउंड 15 किलोमीटर्स के बाहर मैं कभी नहीं गया अपनी लाइफ में। 12 जब मैं कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर में था, साइकिलिंग इंट्रोड्यूस जब मेरे से हुई उससे पहले से, तो जब हमने प्लान बनाया कि चलो ऋषिकेश चलते हैं, देन हम तीन लोग थे, हम लोग सुबह 4 बजे हम लोग ऋषिकेश निकले अंधेरे में जंगल के रास्ते से। बहुत मजा आया, भले ही ऋषिकेश से जब वापस देहरादून आ रहे थे हमारी वाट लग गई थी फुल, बिकॉज वी हैड नो आइडिया कि कैसे पैडलिंग होती है, धूप में कैसे चलाते हैं, क्या क्या खाना पड़ता है। हम लोग खा रहे छोले भटूरे और हमें सुस्ती आ गया आते वक्त, बट जैसे तैसे हम लोग घर आए। देन मुझे फिल्म मेकिंग का तो शौक था, फोटोग्राफी पिक्चर्स एंड ऑल, घर आते सारी फोटोज क्लिक करना, फोटोज एडिट करना, फोटोज अपलोड करना शुरू हो गया। जो रिस्पॉन्स मिला वो बहुत अमेजिंग था, मतलब मुझे खुद नहीं पता लग रहा था कि यार मैं ऋषिकेश गया साइकिल से और ऋषिकेश से वापस आ रहा हूँ। मेरे से पहले बहुत लोग थे देहरादून के जो मतलब मेरे से 3-4-5 साल पहले से साइकिलिंग करते आ रहे, देहरादून ऋषिकेश और धनौल्टी सब जाते रहते थे, बट मैंने कभी खुद देखा नहीं था, बिकॉज लोग करते तो थे बट दिखा नहीं पाते थे, है ना, दिखाएंगे तो ही दूसरों को पता चलेगा, जो दिखता है वही बिकता है, ये वही सेंस आ गया। तो जब मैंने किसी का देखा ही था तो मुझे पता कैसे चलता। यहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ कि मैं ऋषिकेश गया तो लोगों के रिस्पॉन्स आ रही, नीरज तू ऋषिकेश ला गया, तूने एक दिन में 80-90 किलोमीटर चला ली साइकिल, ऐसे हुआ। तो उसके बाद नॉर्मल राइड्स करने लग गया। फिर एक दिन संडे था तो मैंने जो मेरे साथ ऋषभ भट्टर है जो मेरे भैया थे, तो हमने प्लान बनाया लेट्स गो टू सुरकंडा देवी जो आता है धनौल्टी में, जो कि देहरादून के नियर बाय 70 किलोमीटर अपहिल है बहुत। तो हमने प्लान बनाया एंड हम लोग निकल गए। तो देखो साइकिल में ट्रैवल करना बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, मतलब एक साइकिलिस्ट भी नहीं सोच सकता कि एक साइकिलिस्ट अगर वो सिटीज़ में कितनी भी टूरिंग कर रहा हो, कितनी भी लॉन्ग टूरिंग कर रहा हो, और अगर वो अचानक से पहाड़ में, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि पहाड़ों में टूरिंग करना कैसा होता है। वो कितनी भी अगर सिटी में ट्रैवल कर ले,
3: वो वक्त कितना भी मुश्किल हो, दिल में हिम्मत रखकर आगे बढ़ते रहिए, वो वक्त भी गुजर जाएगा। हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह आती है।
0: Walk Talk Radio.

हाय, आई एम डॉक्टर अमित मेहरा. आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पे. जो ब्रेसेस हैं, ये जो 1.5 साल आपका ट्रीटमेंट है अप्रोक्सीमेटली ब्रेसेस का, उसमें कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं. डूज एंड डोंट्स भी कंपल्सरीली आपको कुछ चीजें नहीं खानी और कुछ चीजों को खाने का मेथड आपने बदल देना है. जो चीजें आपने नहीं खानी उसमें नंबर 1 आता है, आपको गन्ना नहीं चबाना, आपको नारियल नहीं खाना, आपको रोस्टेड एलमंड्स नहीं खाने. हम देहरादून वासियों को बहुत शौक है सर्दियों में चिक्की खाने का, गचक खाने का, वो सब चीजें नहीं खानी. आपने मुंह में कैरमलाइज टॉफीज नहीं खानी. इसलिए नहीं खानी क्योंकि ये हार्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं. जब हमारे दांतों पे कुछ चिपका होगा और हम एक हार्ड सब्सटेंस को बाइट करेंगे, तो वो जो ग्लू है, वो जो एडहेसिव है जिससे वो अप्लायंस चिपका हुआ है, वो निकल सकता है. अगर वो ग्लू ढीली पड़ गई तो वो अप्लायंस, जब तक आप दूसरी बारी उस डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो, तो वो यूजलेस है. दूसरा आता है मॉडिफिकेशंस ऑफ फूड. उसमें आपने ये ध्यान रखना है कि कुछ भी चीज जो हार्ड है उसको आपने डायरेक्टली बाइट नहीं करना. आपको नॉनवेज खाना है, आप जरूर खाइए, मगर आप लेग पीस या चिकन ब्रेस्ट या मटन के पीस में डायरेक्टली बाइट मत कीजिए. उसके छोटे टुकड़े कर लीजिए और निवाले के साथ खा लीजिए, मतलब बोनलेस छोटे टुकड़ों में खा लीजिए. आप किसी पार्टी में जाते हैं, वहाँ पे आपको पिज्जा मिलता है, आपको वहाँ पे बर्गर मिलता है, आप उसमें डायरेक्टली बाइट मत कीजिए, छोटे हिस्से करके उसको रोटी की तरह खा लीजिए. आप मूवी देखने गए हैं, वहाँ पे पॉपकॉर्न है, तो जरा सॉफ्ट वाला पॉपकॉर्न खा लीजिए, वो जो हार्ड पॉपकॉर्न कर्नल होता है उसको मत खाइए. दीज आर द वे यू मॉडिफाई. And the most important thing that you have to brush morning and evening, and you have to do rinsing after every meal. Walk Talk Radio.

वॉक टॉक रेडियो। दोस्तों, ऐसे बहुत से काम हैं जिनके लिए हमें कई लोगों ने कहा होगा कि तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। और जब कोई ये बात बार बार बोले, यही बात बार बार दोहराए, तो एक बार के लिए तो खुद के ऊपर भी डाउट होने लगता है कि यार क्या हम ये कर भी पाएंगे या नहीं। लेकिन आगे बढ़ते हुए कहीं भी आपको ऐसा ख्याल मन में आए तो दोस्त, याद करना उन सारे शब्दों को जो आपको हर वक्त डीमोटिवेट करते हैं, आपको गलत साबित करने में तुले होते हैं। लेकिन आपको उन लोगों को गलत प्रूफ करना है, उनकी बातों को, उनके शब्दों को गलत प्रूफ करना है कि आप नहीं कर पाएंगे। आपको ये प्रूफ करना है कि आप कर पाएंगे। आपको हारना नहीं है, बल्कि उन सबको हराना है जो आपकी हार में खुशी मनाते हैं।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: हाय, आई एम डॉक्टर अमित मेहरा। आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पे। लोगों को क्या होता है कि हम आज ब्रेसेस वाले डॉक्टर के पास आए हैं, उसके पास हैरी पॉटर जैसी कोई जादू की छड़ी होगी, वो कोई मंत्र बोलेगा और हमारे दांत ठीक हो जाएंगे। लोग उसको कोरिलेट करते हैं कि डॉक्टर साहब, जब दांत में दर्द होता है आप तो इंजेक्शन देके निकाल देते हो, वो तो एक बारी में खत्म हो जाता है, फिर तो हम आपके पास आते ही नहीं है। मगर ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि ब्रेसेस के इलाज में हम धीरे धीरे दांत को एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन में लेके जाते हैं। अगर मैं आपसे मैथमेटिक्स की बात करूं तो हम महीने में दांत को सिर्फ 1 mm तक ही मूव करते हैं, इसलिए ब्रेसेस का ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है। अप्रोक्सीमेटली 16 to 18 months इज द टाइम पीरियड दैट वी रिक्वायर टू गिव सैटिस्फैक्ट्री रिजल्ट। ये है एक्टिव ट्रीटमेंट, जिसके अंदर हमने दांत में ब्रेसेस लगाए हुए हैं और पेशेंट के खराब दांत की पोजीशन सही पोजीशन पे आ गए हैं दांत। इस एक्टिव ट्रीटमेंट के बाद एक रिटेंटिव फेज भी आता है, जिसके अंदर पेशेंट को एक प्लेट दी जाती है उतारने और चढ़ाने वाली। रिटेंटिव फेज भी 6 to 9 months का होता है। तो अगर आप ओवरऑल टोटल करो एक्टिव ट्रीटमेंट प्लस रिटेंटिव पीरियड, सो 2 to 2.5 years का इलाज है ये। तो रूल हम पेशेंट को क्या बोलते हैं, दैट यू हैव टू बी अ वेरी पेशेंट पेशेंट। आप में पेशेंस होनी चाहिए ये इलाज करवाने के लिए।

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio. Walk Talk Radio. Walk Talk. Walk Talk Radio.
1: हेलो, मेरा नाम है लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर. ड्रीम बिग एंड हाउ टू अचीव देम. सपने बड़े देखना आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है. ठीक वैसे ही जैसे हमें पहली बार स्कूल जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, मन नहीं लगता है, हम रोते हैं, मम्मी पापा को मिस करते हैं, लेकिन फाइनली हमें आदत लग जाती है. तो मेरा ऐसा ही मानना है कि कोई भी अचीवमेंट, कोई भी सक्सेस को पाने के लिए आपको पहले उस सक्सेस की सीढ़ी की आदत लगानी पड़ेगी. यू हैव टू वर्क हार्ड. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो पहली सीढ़ी पार करोगे जिसे कहते हैं सक्सेस की तरफ पहला कदम.

0: कभी दो पल खुद के साथ भी बिता के देखो, अच्छा लगता है। दुनिया की भीड़ से परे अपने अंदर की आवाज को सुन के देखो, अच्छा लगता है। सुबह से शाम ऑफिस में काम और घर आके आराम, इस सब से हट के बिना किसी टेंशन के कुछ देर अकेले बैठो और खुद से बातें करो। ट्रस्ट मी यार, आपसे बेहतर ना आपको कोई नहीं जान सकता। और सबसे अच्छी एडवाइस अगर लेनी हो तो खुद से पूछ के देखना, जवाब मिल जाएगा।
1: Walk Talk Radio, tune in for a better life.
2: इश्क तेरा तड़पावे। Hi everyone, this is Sukhbir और आप सुन रहे हैं

0: रेडियो।
1: हेलो, मेरा नाम है लकी मेहता। लाइफ में लर्निंग्स बहुत जरूरी है और हम ठोकर खा के ही लर्निंग सीखते हैं। कई बार हम भगवान को कोसते हैं, अपनों को कोसते हैं कि हमारे साथ ये क्यों हुआ, हमारा अपना हमसे क्यों रूठ गया, हमारा अपना हमसे क्यों छूट गया। एक्चुअली वो सब हमारी लर्निंग्स होती हैं। गॉड हमें थोड़ी थोड़ी देर में टेस्ट करते हैं। हमारी डेस्टिनी हमें हर जगह टेस्ट करती है। वो ये देखती है कि ये कितना तपा है, क्या ये कुंदन बनने लायक है। एग्जैक्टली, सो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू लर्न। और लर्न आप तभी करते हैं जब आपको ठोकरें मिलती हैं। और उसके लिए सबसे पहले आपको अपने एम के लिए लॉयल रहना बहुत जरूरी है। लॉयल्टी की तो बहुत इम्पोर्टेंस है। आपको जो अचीव करना है जिंदगी में, जो पाना है, जो आपका मकसद है, जो भी है, आपको जो भी बनना है, जो भी पाना है, जिस भी मुकाम तक पहुंचना है, उन सब को पाने के लिए उसके रास्ते की लॉयल्टी बहुत जरूरी है।
0: वॉक टॉक रेडियो,
2: ये है वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। मैं हूं कहानी वाला रजत और ये है मेरा शो सफरनामा। सफरनामा जहां पर हम कुछ ऐसे शहरों से आपको मिलवाते हैं जिनके इतिहास, जिनकी ज्योग्राफी, जिनकी बनावट और बसावट जान के आपको ऐसा लगेगा कि बस एक बार इस शहर तो जरूर जाना है। तो सफरनामा हमारा पहुंच गया है एक ऐसे शहर जिसे अजनबियों से मोहब्बत है। दुनिया में कुछ गिने चुने शहर ऐसे हैं जिन्हें इटर्नल सिटी कहा जाता है, यानी सनातन शहर। हमारे हिंदुस्तान की काशी नगरी या बनारस भी ऐसा ही एक शहर है। इसी तरह से यूरोप के रोम और एथेंस शहरों को इटर्नल सिटी का दर्जा दिया गया है। सनातन शहर या इटर्नल सिटी उन शहरों को कहा जाता है जो हजारों सालों से आबाद है। यहाँ पर लोगों के रहने के जो प्रमाण या सबूत हैं वो कई बरसों से मिलते हैं, मतलब कई हजारों सालों से। ग्रीस या यूनान की राजधानी एथेंस में भी हजारों साल पहले से इंसानों के रहने के सबूत मिले हैं। आज हम उसी एथेंस की बात करने जा रहे हैं। ऐतिहासिक शहरों की बात करें तो एथेंस का कोई सानी नहीं। यहाँ के हर खंडर में इतिहास छुपा है, न सिर्फ यूनान का बल्कि पूरे यूरोप का और मानवता हर एक का एक शुरुआती इतिहास नजर आता है। एथेंस की हर गली से जुड़े हैं हजारों किस्से, हजारों दास्तानें। एथेंस को यूरोप की सभ्यता का केंद्र यानी कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है। पश्चिमी देशों की सभ्यता की राजधानी कहा जाता है। एथेंस ने दुनिया को दार्शनिक दिए, लोकतंत्र दिया और नाटक कला की नेमत भी दी। एथेंस की इमारतें और खंडहर पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की बुनियाद मानी जाती है। एथेंस के खंडरों में ही आबाद है यूनान की बहुत पुरानी परंपरा। ग्रीक जबान में इसे फिलोजीनिया कहते हैं। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है अजनबियों से मोहब्बत, फिलोजीनिया। हालांकि स्थानीय लोग इसे अब विदेशियों के प्रति गर्मजोशी मानते हैं, यानी उनका एक अच्छे खुले मन से स्वागत करना। आपको एथेंस पहुंचते ही गजब की गर्मजोशी और अपनेपन का एहसास होगा। एथेंस हाथ फैलाकर खुले दिल से हर आने जाने वाले का सम्मान और स्वागत करता है। लंदन से आकर एथेंस में बसने वाली जूलिया विलियम्स ने एक जगह इंटरव्यू में लिखा है कि एथेंस बहुत दोस्ताना शहर है। एथेंस के शानदार इतिहास को निहारने के लिए हर साल दुनिया भर से करीब 45 लाख लोग यहाँ आते हैं, लेकिन एथेंस ने अपने शानदार इतिहास में आधुनिकता के पन्ने भी जोड़ रखे हैं। आखिर क्यों लोग एथेंस को इतना पसंद करते हैं? तो एथेंस की रहने वाली क्रिसी मेनका कहती है कि बाहर के लोग हों या इसी वतन के, सबको ये शहर बहुत प्यारा है। जब भी आप इसकी गलियों में घूमेंगे तो यहाँ के कैफे और बार लोगों से आबाद नजर आएंगे। क्रिसी को एथेंस के सिटी सेंटर प्लाका के आसपास घूमना पसंद है। क्रिसी कहती है कि आसपास सैलानियों की भीड़ यानी टूरिस्ट को देखकर आपको ऐसा लगता है कि छुट्टियां चल रही हैं और आप पिकनिक पर निकले। गर्मी का मौसम भी सैलानियों के लिए बहुत खुशगवार होता है। साल में कम से कम 250 दिन यहाँ सूरज खिला हुआ देखने को मिलता है। अमरीकी सैलानी मीना एग्नोस कहती है कि यहाँ अप्रैल से अक्टूबर तक मौसम एकदम साफ रहता है, इसी वजह से आप एथेंस के आसपास मौजूद जजीरों पर घूमने जा सकते हैं। मीना एग्रॉस लोगों को करीब 35 समुद्री मील दूर स्थित हाइड्रा द्वीप पर जाने की सलाह देती है, जो एथेंस के पास में है, और लोग वहाँ उस आइलैंड पर जाना चाहें तो बेशक जाएं। ये बिल्कुल शांत है, यहाँ पर कारों को ले जाने की मनाही है, तो आपके लिए पैदल चलना या फिर साइकिल से घूमना आसान होता है। बहुत से सैलानी यहाँ गधों और खच्चरों की सवारी करते नजर आते हैं। ये द्वीप जो है ये बड़ा शांत है और आराम तलबी के लिए मशहूर है। यू जस्ट गो एंड रिलैक्स देयर, कुछ नहीं, कोई गाड़ी का आवाज नहीं, कोई शोर नहीं। द्वीप पर मौजूद कैफे में भी भीड़ कम ही रहती है। हाइड्रा द्वीप दुनिया भर के सेलिब्रिटीज के बीच काफी पॉपुलर रहा है। मीना कहती है कि एथेंस से पहाड़ी और जंगली इलाके भी ज्यादा दूर नहीं है। अगर किसी को शहर के शोर शराबे से डर है तो शांत पहाड़ी और जंगली इलाकों का रुख कर सकता है। माउंट हाइमिटस एथेंस से महज 5 से 6 किलोमीटर दूर है और यहाँ बाइकिंग के लिए जा सकते हैं। आखिर एथेंस में रहना हो तो एक ऐसा तजुर्बा होता है। मीना कहती है कि एथेंस जैसे पुराने शहर में रहने पर आपको इतिहास से मोहब्बत हो जाती है। हर गली, हर चौराहे पर आपको इतिहास का एक टुकड़ा निहारना अच्छा लगता है। शहर के मशहूर खंडर जैसे कि एक्रोपोलिस या टेंपल ऑफ ज्यूस तो खैर दुनिया भर में मशहूर है। इनके अलावा एथेंस में नए इलाके भी आबाद हुए, जैसे कि काउकाकी नाम की बस्ती जो दुनिया की सबसे कूल नई बस्ती का दर्जा हासिल कर चुकी। हाल ही में एथेंस में आधुनिक कला का एक म्यूजियम भी खोला गया है। कुछ लोग एक्सार्किया नाम के इलाके को देखने जाने की सलाह देते हैं। ये इलाका ऐतिहासिक भी है और ग्रीस की हालिया सियासी उठापटक का गवाह भी। बाहर से आने वाले लोग यूं तो ऐतिहासिक ठिकानों और म्यूजियम के चक्कर ही लगाते रहते हैं, मगर एथेंस की गलियों में भी बहुत दिलचस्प राज छिपे हुए हैं। लंदन से आकर एथेंस में बसने वाली बसी कैलेटिन आल्प कहती हैं कि एथेंस के पास अंगूरों के भी कई बाग हैं। इनमें से कई जगह बहुत उम्दा वाइन तैयार की जाती है। यू नो दैट
ग्रीस में पिछले काफी दिनों से सियासी और आर्थिक उठापटक चल रही। पिछले दशक में आई मंदी का सबसे ज्यादा असर यही देखने को मिला था, इसलिए इन देशों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल गई। लोगों को उनके काम के एवज में ठीक से पैसे नहीं मिल रहे हैं। कुल मिलाकर ग्रीस के लोग अपने मौजूदा निजाम से यानी सरकार से और जो उन्हें चला रहे हैं उन लोगों से खुश नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एथेंस बहुत सस्ता शहर है। लंदन के मुकाबले यहाँ उसके आधे पैसे के खर्च में आपका काम चल जाता है। यहाँ घूमते हुए अगर आपको ग्रीक जबान नहीं भी आती तो काम चल जाएगा। बहुत से लोग यूनानी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, मगर गर्म जोशी बढ़ानी होगी यानी सबसे बातचीत करते रहना तो थोड़ी बहुत ग्रीक बोलने में हाथ आजमाइए ताकि बातचीत होती रहे। लोग विदेशियों के मुंह से अपनी भाषा सुनकर यहाँ बहुत खुश होते हैं। फिर हो सकता है कि वो आपको शहर के कुछ ऐसे राज बता दें जो सिर्फ यहाँ के लोकल्स जानते हैं और किसी को जानने को नहीं मिलता। तो आज का जो मेरा सफरनामा था ये एथेंस के नाम था, एक ऐसा शहर जिसे अजनबियों से मोहब्बत है। कमाल का शहर है, देखने जरूर जाइए। और कैसा रहा एक्सपीरियंस ये आप हमसे शेयर कर सकते हैं वॉक टॉक पर, वॉक टॉक रेडियो पर। मैं हूँ कहानी वाला रजत, ये है मेरा शो सफर।

हो सकता है हमने ये बातें सुनी हो सकता है कई एक बार कही भी होंगी कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। एट द सेम टाइम हम लोगों ने ये बात भी कही है कि करना चाहिए तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। आए मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। बट सोच करके देखिए, मतलब कितनी अलग हैं ये बातें कि एक तरफ तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता, यानी कि अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता। बट करने वालों ने तो अकेले बहुत कुछ किया है, अपने दम पर बहुत कुछ किया है। वो जज्बा होना चाहिए, वो आग होनी चाहिए, करने वाले कर लेते हैं। बट हाँ, जो काम टीम वर्क का है उसे टीम वर्क के साथ नहीं किया जा सकता है। मैं अगर जो कोशिश करूं कि मैं एक बिल्डिंग बनाऊंगा और मैं अकेले बनाऊंगा, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, तो शायद मुझे लंबा टाइम लगे, लंबा वक्त लगे, शायद वो क्वालिटी मैं ना दे पाऊं। बट ऐसा नहीं कि मैं बना नहीं सकता। मांझी जैसे इंसान ने पहाड़ अकेले ही काटा था, लेकिन वहीं पर अगर जो मांझी का सपोर्ट गांव वाले करते, आसपास वाले करते, तो यकीनन वो कम टाइम लगता और ज्यादा बेहतर काम हो सकता था। तो जो काम टीम के साथ में होता है उसमें क्वालिटी होती है। वापस लौट करके आते हैं अपने पॉइंट पर। पॉइंट ये था कि अकेला चना क्या कर सकता है या अकेले के से क्या हो सकता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। एक बार एक गांव में काफी लंबे टाइम तक बरसात बिल्कुल नहीं हुई थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था, उनकी फसलें खराब हो रही थी, बच्चे भूखे प्यासे मर रहे थे, मतलब एकदम अकाल वाली सिचुएशन होने वाली थी। उनको समझ नहीं आया कि क्या करना है। एंड फाइनली उसी गांव में एक विद्वान महात्मा रहते थे, वो सब गांव वाले मिलकर के उनके पास में गए। उन्होंने कहा कि इसका समाधान आप कुछ दीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, अब तो हमारे घर पे बच्चे प्यासे मरने लगे हैं। महात्मा ने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम कल मेरे पास में आना और मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल करके तुमको बताता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, ये मान लेना आप। तो बोले हाँ कोई बात नहीं, मैं कल तुमको बताता हूं। गांव वाले वापस चले गए। अगले दिन उन्हीं महात्मा के पास में गांव वाले वापस लौट करके आए। महात्मा ने कहा कि कल रात में मैंने सपना देखा है और सपने में भगवान आए हैं। भगवान ने यह कहा है कि गांव से बाहर का जो कुआं है उसमें सारे गांव वाले एक एक लोटा दूध अगर जो डालेंगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और उसके बाद में मैं बारिश करा दूंगा। गांव वालों ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो गांव वालों में से सब लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम एक एक लोटा दूध लेकर के जाएंगे और उस कुएं में डाल करके रात में आ जाएंगे। उनमें से एक गांव वाले ने सोचा कि मैं एक लोटा दूध क्यों बर्बाद करूं, मतलब बाकी के सारे लोग दूध डालने वाले हैं, अगर मैं एक लोटा पानी भी डाल दूंगा तो किसी को क्या पता चलेगा, दूध में पानी जाके मिलता है तो पानी भी तो दूध ही कहता है। तो उसने ये सोचा और वो एक लोटा पानी भर के लेके गया और कुएं में डाल दिया और चला आया। अगले दिन सुबह महात्मा के साथ में सारे गांव वाले जब कुएं के पास में पहुंचे तो लोगों ने देखा कि वहां पर एक सिंगल लोटा दूध का नहीं पड़ा हुआ था, पूरा कुआं पानी से भरा हुआ था। यानी कि पूरे गांव में किसी एक सिंगल इंसान ने दूध से भरा हुआ लोटा नहीं डाला था उस कुएं में। सबने यही सोचा कि बाकी सब तो दूध डालने वाले हैं, मेरे अकेले के से क्या हो जाएगा, तो मैं पानी डाल देता हूं। सोचिए, इसी तरह की गलतियां हम अक्सर हमारी रियल लाइफ में करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे एक के कुछ ना करने से क्या होगा, या मेरे अकेले करने से क्या होगा, मैं अकेले अगर जो कचरा नहीं फेंकूंगा तो क्या होगा, मैं अकेले अगर जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करूंगा तो क्या होगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है, और ये अकेले अकेले अकेले अकेले ऐसे मिलकर के कब जमाना हो जाता है, कब टीम हो जाती है, हमें पता नहीं चलता है। तो अगर आप वाकई में चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में बदलाव आए तो वो बदलाव हमें हमारे से शुरू करना पड़ेगा, अपने आप से शुरू करना पड़ेगा। सोचने वाली बात है ना ये, कि मतलब हम सब चाहते हैं कि हमारा जो देश है ये एकदम से अमेरिका जैसा हो जाए, ट्रैफिक रूल्स फॉलो हो, ट्रैफिक ना मिले, सड़कें चौड़ी हो, कहीं पर भी कचरा ना मिले, धूल मिट्टी ना मिले, हम ये सब चाहते हैं। लेकिन क्या उस डायरेक्शन में हम कदम उठाते हैं? कार का शीशा डाउन करके अक्सर हम पैकेट यूं ही फेंक देते हैं, कार का गेट खोल करके पिचक मुंह के अंदर का जो गुटखा था वो हम यूं ही सड़क पर थूक देते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अमेरिका जैसे बन जाएं। कोसते हैं हम सरकार को, सरकार के बस का ये नहीं है, सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती। बट क्या हम हमारे हिस्से का करते हैं? आई एम वेरी मच श्योर कि बाहर के जो देश हैं, जो साफ हैं, वहां पर सरकार से ज्यादा एफर्ट्स लोग डालते हैं। बचपन में मैंने ये कहानी सुनी थी, आई डोंट नो कितनी सच है, बट उन दिनों

0: है और बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो कभी भी किसी भी थॉट पर ये मत सोचिए कि सिर्फ मेरे करने से क्या होगा, क्योंकि आप ही के जैसे न जाने कितने लोग सिर्फ यही सोच के कुछ नहीं करते हैं कि सिर्फ मेरे करने से क्या होगा। आप करना शुरू करिए, जमाना करना शुरू कर देगा। मैं हूं समर शो, का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। स्टे ट्यून्ड।
1: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो,
2: वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक, ट्यूनिंग फॉर अ बेटर लाइफ।

0: इंसान पतला हो या फिर मोटा हो, सबके मन में एक ही सवाल होता है, अरे भैया मैं फिट कब होऊंगा, कब होगा, कैसे होगा। लेकिन भैया जैसे भी होगा, योगा से ही होने वाला है। हां जी, कितना सुन रहे हो, दिस इज आरजे गौतम। शो चल रहा है गपशप जंक्शन, लेकिन आज इस शो पे एक बड़ी खास बात है, क्योंकि आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे। और हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, जिनको लगभग 35 साल का एक्सपीरियंस है योगा सिखाने का, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे कि IIT रुड़की, RIMC, IIMA जैसे इंस्टीट्यूट में इन्होंने योगा सिखाया है। मिस्टर LS रावत, लाल सिंह रावत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉक टॉक रेडियो पर।
1: थैंक यू सर।
0: सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो इस दिन की।
1: जी।
0: और आज का दिन आपने कैसे सेलिब्रेट करा, कैसे आपका दिन शुरू हुआ, और कैसे आपके लिए दिन अलग है बाकी दिनों से?
1: आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये स्वास्थ्य के अनुकूल है। हमें अपना स्वास्थ्य साल में एक दिन तो बिल्कुल 100% ध्यान देना है कि हमें अपना स्वास्थ्य फिजिकली मेंटली बोथ साइड अच्छा बनाना है, तरोताजा बनाना है। तो इसके लिए इंटरनेशनल योगा डे जो 21 जून का दिन है, वेरी महत्वपूर्ण।

0: हेलो जी, मैं हूं राजीव ठाकुर और आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर द बेटर लाइफ।
1: वॉक टॉक रेडियो।

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio. Tune in for a better life. Tune in for a better life.
1: हाय हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार मैं हूं शान और आप सुन रहे हैं मेरे गाने ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो एंजॉय द म्यूजिक एंड

0: एक बात हमने हमेशा से सुनी है कि अगर हम वर्जिश करते हैं मतलब एक्सरसाइज करते हैं तो बाहर का शरीर बनता है, लेकिन हम जब योगा करते हैं तो हमारे अंदर के शरीर में शुद्धि हो जाती है। वो कैसे होती है सर?
1: बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात कही आपने। स्थूल शरीर से बड़ा है सूक्ष्म शरीर, तो जो अंदर का शरीर है उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का डेवलपमेंट होगा तो हमारे स्थूल शरीर का और अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो भीतर के जो सूक्ष्म शरीर है इसकी कुछ क्रियाएं हैं, प्रैक्टिकल भी है, जैसे कुंजल क्रिया है, सूत्र नीति है, जल नीति है, और उसके बाद लगभग 48 लाइट माइक्रो एक्सरसाइज है।
0: अच्छा,
1: जो हमारे सूक्ष्म शरीर का डेवलपमेंट करती हैं। और जो ये हमारे सूक्ष्म शरीर हैं, प्रत्येक पार्ट्स हमारी बॉडी के जितने भी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स 48 हैं, और 48 ही एक्सरसाइज हैं। उन्हीं पे ध्यान लगाते हुए फिर ब्रीथिंग के साथ वो एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं। तो जैसे जैसे वहाँ ब्रीथिंग पहुँचेगी, ध्यान पहुँचेगा, उस शरीर का डेवलपमेंट होगा। जैसे वोकल कार्ड्स है, इम्प्रूवमेंट योर मेमोरी है, फॉर डेवलपमेंट योर इंटेलिजेंसी है, फॉर इम्प्रूवमेंट योर आईसाइट है, फॉर डेवलपमेंट योर चीक मसल्स है, फॉर डेवलपमेंट पावर ऑफ हियरिंग है, कर्ण शक्ति विकास है, संस्कृत में बोलते हैं उसको, तो उनका डेवलपमेंट होगा। लेकिन ये एक्सरसाइज किसी अनुभवी योगचार्य की देख रेख में ही करें।
0: अच्छा, कोई भी इनमें से एक क्रियाएं जो आपने बताई, कोई भी अगर एक छोटी सी क्रिया आप करके दिखा सके अभी हमारे लिसनर्स के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए?
1: बिल्कुल दिखा सकते हैं। इसमें आप ऐसा करें कि खड़े होके खड़े हो सकते हैं, अगर बैठे बैठे भी करें तो बैठे बैठे भी हो सकते हैं, लेकिन खड़े होके करेंगे तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
0: अच्छा,
1: इसमें जैसे मैं भी खड़ा हो जाता हूँ, दोनों पैर मिला के खड़े होना पड़ता है, दोनों पंजों में बराबर वेट, और दोनों हाथ थाइस पे चिपका के, जैसे पहली एक्सरसाइज है उच्चारण शक्ति स्थल विशेषज्ञ के लिए, यानी फॉर इम्प्रूवमेंट योर ट्रीटमेंट योर वोकल कार्ड्स, वोकल कार्ड की एक्सरसाइज पे ध्यान लगाते हुए, अपने विशुद्ध चक्र पे ध्यान लगाते हुए 25 टाइम्स क्विकली ब्रीथिंग इस तरह से। फिर सेकंड एक्सरसाइज फॉर इम्प्रूवमेंट योर मेमोरी पावर, लुक अप, आईब्रो को देखते हुए 25 टाइम्स क्विकली ब्रीथिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर डेवलपमेंट योर इंटेलिजेंसी पावर, चिन को थॉट पे लगा के एंड डीप ब्रीथिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी फॉर इम्प्रूवमेंट योर आई साइट, लुक अप, ऊपर देखते हुए एक जगह पे पलके नहीं झपकानी है और सांस नॉर्मल। एक मिनट तक इस एक्सरसाइज को अगर 40 डेज आप रेगुलर कर लें तो आपके जो लगा हुआ चश्मा है वो उतर सकता है और आपकी आंखें 6x6 की हो जाएंगी।
0: क्या बात है,
1: बिल्कुल। इसमें आप अपना न्यूज़पेपर वगैरह आराम से बिना चश्मे के पढ़ सकते हो, लेकिन 40 डेज आपको ये एक्सरसाइज करनी है,
0: लगातार करनी है।
1: फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है फॉर डेवलपमेंट योर चीक मसल्स, आपके जो गाल हैं ये एकदम रसीले रहेंगे और पिचके हुए नहीं रहेंगे। इसके लिए हाथ को ऐसे करिए, मुंह से सांस को पीना है यूं, और फिर मुंह फुलाना है, सांस रोकनी है मुंह के अंदर, और फिर थोड़ी देर बाद नाक से सांस छोड़नी है। ये चीक मसल्स की एक्सरसाइज है। हियरिंग पावर के लिए दोनों कान आपके बंद रहेंगे, सांस लेंगे मुंह से, फिर मुंह फुलाएंगे, सांस रोकेंगे, कान आंख बिल्कुल बंद, इस तरह से प्रैक्टिकली भी देखते जाए, धीरे धीरे नाक से छोड़ेंगे, तो आपकी जो हियरिंग पावर है उसका इम्प्रूवमेंट होगा, इनका जो सुनने की शक्ति है वो बढ़ेगी।
0: मतलब सांस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आप आराम से थोड़ा सा बैठें, आपसे एक आधा सवाल और करें, और मुझे लगता है दर्शकों ने काफी सीख ली होंगी एक्सरसाइज।
1: बिल्कुल, नेक और नेक से ऊपर की एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट।

वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक ट्यूनिंग फॉर अ बेटर लाइफ।

सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: दोस्तों, हमारी जिंदगी कभी भी कुछ मिनटों की मेहमान नहीं होती जो गिनती के पलों में बदल जाए। पर हाँ, अगर आप अपने फैसले कुछ मिनटों के आधार पर लेते हैं तो वो आपकी जिंदगी को बदलने की पूरी क्षमता रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है, अपनी लाइफ के छोटे या बड़े फैसले हमेशा सोच समझ कर लेने चाहिए, तभी आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।
1: अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कुछ बातों का ध्यान रख के कैसे आप अपनी सॉफ्ट स्किल को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो सुनिए सॉफ्ट स्किल डेवलपर मानिक कौर को सिर्फ और सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक
2: रेडियो। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम ऐसा क्या करें प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हों और हम लोगों को बहुत इजीली इम्प्रेस कर सके। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, बी योरसेल्फ, डोंट ट्राई टू बी समवन एल्स। आप ये मत सोचिए कि कोई और बहुत सक्सेसफुल है, मुझे उसके जैसे चलना है, उसके जैसे बात करनी है, उसके जैसे पॉइंट ड्रेसअप होना है। बिल्कुल नहीं। हैव योर ओन यूनिक सेंस ऑफ स्टाइल, बी कॉन्फिडेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं शेयर करना चाहूंगी वो ये है दैट समथिंग लाइक इंग्लिश, especially in a country like ours, English is not our first language, but it has become very important in communication. Let's face it, ये सच्चाई है कि English एक बहुत बड़ा tool बन चुका है, but at the end of the day एक language ही है। ये हम सबको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप English में बहुत ज्यादा proficient नहीं है तो professionally आप उसे use कम करिए। आप हिंदी बोलिए या कोई भी ऐसी language बोलिए जो आपके office में easily acceptable है, rather than making it, you know, like making it too obvious that you're not good with the language. उससे आपका नुकसान हो सकता है। आप हिंदी यूज कीजिए या कोई भी ऐसी लैंग्वेज यूज करिए, लेकिन अगर इंग्लिश इज रिक्वायर्ड, इन दैट केस आप इन अ प्रोफेशनल सेटअप इंग्लिश इन टर्म्स ऑफ वॉट काइंड ऑफ यूजेज इज देयर इन योर प्रोफेशन, आप उन फ्रेजेस को याद करिए और उसमें अपनी मास्टरी कीजिए। इट्स अ वेरी बिग टिप।
3: वॉक टॉक रेडियो।

0: जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है।
1: इश्क तेरा तड़पावे।
2: Hi everyone, this is Sukhbir, और आप सुन रहे हैं।

0: हमेशा से ही एक बात हमें बहुत सताती है कि हमारा फ्यूचर कब ब्राइट होगा, हमारे सपने कब पूरे होंगे। लेकिन उससे पहले अगर ये समझा जाए कि तुम्हारे सपने क्या हैं और तुम प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, तो जिंदगी के आधे मसले यहीं पर खत्म हो जाएंगे।
1: वॉक टॉक रेडियो।

0: हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर भानुशाली यानी कि आपका देवानंद जूनियर। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला इंस्पिरेशनल ऐप वॉक टॉक रेडियो। जल्दी से जाओ और गूगल पे डाउनलोड करो प्ले स्टोर से।
1: अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कुछ बातों का ध्यान रखे कैसे आप अपनी सॉफ्ट स्किल को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो सुनिए सॉफ्ट स्किल डेवलपर मानिक कौर को सिर्फ और सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक
2: रेडियो। ये सोचना चाहिए कि हम जब लोगों के लिए मीन बातें बोलते हैं या उनके बारे में गॉसिप करते हैं बिहाइंड देयर बैक्स, या फेस पे उनके अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं लेकिन थोड़े टाइम के बाद पता लगता है कि दे हैव चीटेड ऑन यू और दे वर टॉकिंग बैड अबाउट यू और यू शेयर्ड समथिंग विद देम एंड इट्स ऑल ओवर द टाउन। सो ये सब बातें दे आर बैड प्रैक्टिसेस। द स्किल्स इन्वॉल्वड हियर आर एज सिंपल एज बेसिक ह्यूमैनिटी। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट स्पेशल स्किल्स। आई जस्ट फील दैट बेसिक ह्यूमैनिटी इज गोइंग मिसिंग। वी नीड टू रिवाइव दैट एंड हैव गुड कंडक्ट विद पीपल। अगर आपको कोई पसंद नहीं भी है तो भी आप उनके साथ पोलाइटली बात करें, कम बात कीजिए। अगर आपको कोई इंसान पसंद नहीं है, आपको जरूरी नहीं है उसको बताना है कि आपको दैट यू डोंट लाइक हिम और हर। बी पोलाइट इन योर कंडक्ट, बी केयरफुल इन योर कंडक्ट, बी माइंडफुल इन योर कंडक्ट। डोंट गैंग अप विद अदर पीपल एंड इंसल्ट दैट पर्सन। आज जितनी सोशल एंग्जाइटी है कभी नहीं थी। 10 लोगों के ग्रुप में से 9 लोगों को बुला के एक लोग बंदे को छोड़ देते हैं। पीपल हैव बिकम सो इनसेंसिटिव। लेकिन कोई 10 लोगों में आपको छोड़ के बाकी 9 को बुला ले तो आपको कैसा लगेगा? दिस इज समथिंग वेरी वेरी कॉमन अगेन इन सोशल सर्कल्स दैट इज हैपनिंग। पीपल आर फीलिंग, पीपल आर डूइंग दिस टू देम पर्पसली। वॉक टॉक रेडियो।

उम्मीद कहते हैं उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए आपकी जिंदगी में। अगर आपको किसी मंजिल से मोहब्बत है, अब वो कोई काम हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई ख्वाहिश हो सकती है, तो बस उससे जुड़े रहो। उतार चढ़ाव आएंगे, अच्छा बुरा वक्त भी आएगा, लेकिन एक ना एक दिन आपकी मंजिल आपको

आजकल हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को जीने का ढंग बदल लेते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि अपनी पसंद का जीवन जीने के समान कोई जीवन नहीं। तो लाइफ अपने हिसाब से जिए, ना कि दूसरों के। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: लोगों को जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें होती हैं। अपनी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी प्यारी लगती है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि ये मत पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो वो भी करते हैं जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।
1: हाय गाइस, मेरा नाम है खुसरो AKA टेक नाइट और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। वेल, जॉब और पैशन दोनों ही चीजें ऐसी हैं कि इंसान की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वेल, जॉब से आपका ब्रेड एंड बटर चलता है और पैशन जो है वो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है, जिसको मैं बोलता हूँ। तो अगर आप जॉब के साथ साथ अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जॉब के साथ पैशन फॉलो करना, लेकिन अगर आपके अंदर सच में एक आग है अपने पैशन को फॉलो करने की, आप सच में अपने पैशन को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप किसी ना किसी तरह से अपने पैशन को फॉलो कर पाएंगे। चाहे आप भले ही कितना भी थके हुए हो, चाहे आपको नींद आ रही हो, आप भले ही एक घंटा कम सोएंगे, लेकिन आप अपने पैशन को टाइम जरूर दे पाएंगे। तो मैं भी अपने जॉब के साथ अपने पैशन यानी कि टेक कंटेंट क्रिएशन को कैसे मैनेज करता हूँ, तो मेरा भी यही सीन है। मैं ऑफिस से आने के बाद सबसे पहले, फ्रेश होने के बाद सबसे पहले अपना काम लेके बैठता हूँ, वीडियोस की प्लानिंग करता हूँ अगली वीडियोस की, कि क्या स्क्रिप्टिंग करना है, किस टॉपिक पर वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले मैं वो वीडियो स्क्रिप्ट करने के बाद अगर हो सकता है तो रिकॉर्ड कर लेता हूँ अगर टाइम होता है। उसके बाद फिर सोने के बाद जब मैं वापस उठता हूँ ऑफिस जाने से पहले, तब मैं उस वीडियो को एडिट करने के बाद अपलोड करता हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने जॉब के साथ अपना पैशन मैनेज कर पाता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप सच में अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं तो आप कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ ही लेंगे। वॉक टॉक रेडियो।

0: हेलो जी, मैं हूं राजीव ठाकुर और आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर द बेटर लाइफ।
1: दोस्तों, हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार हम सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ के सक्सेस का इंतजार करने लगते हैं कि किस्मत में होगा तो मिलेगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और कोशिश करना छोड़ देते हैं। पर हमेशा याद रखिए, मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। इसलिए अगर आप भी सपनों का खिताब जीतना चाहते हो तो मेहनत के मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आजकल के दौर में तो सलाह भी यानी एडवाइस भी फ्री में नहीं मिलती। हो सकता है बिना मांगे दी जा रही फ्री की एडवाइस आपको रास्ते में भटकाने के लिए हो, या हो सकता है कि वो फ्री की एडवाइस आपके द्वारा अपना काम निकालने की कोशिश में हो रही हो। और ये भी जरूरी नहीं कि जो सलाह वो दे रहे हैं क्या वो सही भी है। दोस्तों, सही एडवाइस हमें वही देते हैं जो हमारी परवाह करते हैं। ढूंढना है तो परवाह करने वाले को ढूंढिए, इस्तेमाल करने वाले तो खुद ही आपको ढूंढ लेंगे।
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो।
2: हाय गाइस, मेरा नाम है खुसरो, AKA टेक नाइट, और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। सो टेक कंटेंट क्रिएटर जो होता है वो एक्चुअली जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट्स वगैरह आती हैं, जैसे कोई नया गैजेट आया तो उसके बारे में ऑडियंस को बताना, या कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नया अपडेट आया जैसे कि कोई वेबसाइट है जो कि आपके काम आ सकती है, या कोई ऐसी चीज जो कि आपकी डेली लाइफ में हेल्प कर सकती है आपकी लाइफ को आसान बनाने में, तो उसके बारे में बताना टेक कंटेंट क्रिएटर कहा जाता है। मतलब जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, जैसे मैं हूँ, मेरा जो चैनल है वो पेज है वो सब टेक्नोलॉजी के ऊपर है। सारी टेक से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ मैं, जिसमें वेबसाइट, गैजेट्स, टेक न्यूज, इस तरह की चीजें मैं कवर करता हूँ। वेल, नॉलेज इम्पोर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि नॉलेज अगर नहीं होगी तो आपको पता नहीं होगा कि आप क्या करने वाले हैं अपनी लाइफ में। नॉलेज से आपकी लाइफ आसान होती है, आपका डिसीजन मेकिंग का नजरिया बदल जाता है, आप काफी क्रिएटिव चीजें कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और अगर बिना नॉलेज के तो आप एक तरीके से भटके हुए तीर की तरह हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको जाना कहाँ है। तो नॉलेज, किसी भी चीज की नॉलेज होना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, और मेरा मानना यह है कि इंसान को लगातार नॉलेज गेन करते रहना चाहिए जहां से भी उसे मिले।
1: जिंदगी में दो चीजों का घमंड कभी भी मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती, और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता, इसीलिए घमंड कभी भी ना करें।

0: थैंक्सगिविंग के बारे में जानते हैं ना आप? थैंक्सगिविंग डे एक बहुत ही स्पेशल मौका है जिस दिन आप उन चीजों के लिए थैंकफुल होते हो जो आपको दुनिया में मिली, जिंदगी में मिली और चाहते हो आपके यार शुक्रिया अदा किया जाए। तो ये थैंक्सगिविंग डे आने वाला था। फर्स्ट ग्रेड टीचर जो थी उसने अपनी क्लास को एक फन असाइनमेंट दिया। उसने कहा कि एक ऐसी पिक्चर, ऐसी तस्वीर बनाओ जिसे तुम थैंकफुल हो या जिसको थैंक्स कहना चाहते हो। मोस्ट ऑफ द क्लास माइट बी कंसिडर्ड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड बट स्टिल मेनी वुड सेलिब्रेट द हॉलीडे विद टर्की एंड अदर ट्रेडिशनल गुडीज ऑफ द सीजन। इस टीचर ने उनको सिखाया था कि मोस्ट ऑफ हर स्टूडेंट्स वर ऑफ आर्ट्स एंड सब जने ये चीज जानते थे कि किसी के पास बहुत ज्यादा पैसे हो या ना हो, हर शख्स इस चीज का थैंकफुल होना चाहिए कि उसके पास कुछ तो है। ये उस टीचर ने अपने सारे स्टूडेंट्स को सिखाया। उसके सारे स्टूडेंट्स जो थे वो ये बात मानते भी थे, लेकिन एक लड़का जरा अलग था। उसने एक अलग तरह की तस्वीर ड्रॉ करी, डगलस। डगलस एक अलग बच्चा था। ही वॉज द टीचर्स ट्रू चाइल्ड ऑफ मिजरी, फ्रेल एंड अनहैप्पीनेस। बाकी लोग जब रिसेस में खेला करते थे, डगलस वॉज लाइकली टू स्टैंड क्लोज बाय हर साइड। डगलस को जो दर्द था वो उसकी आंखों में साफ नजर आता था। वो अपने घर की कंडीशन से, अपने पेरेंट्स की कंडीशन से बहुत ज्यादा दुखी था। उसे पता था कि उसके पास उतने पैसे नहीं, उतनी खुशियां नहीं है, पर उसने एक पिक्चर बनाई थैंक्सगिविंग के लिए, एक स्पेशल पिक्चर बनाई एज एन असाइनमेंट। इट वॉज डिफरेंट। जब इस तस्वीर को दिखाया गया सबको तो उसने एक हाथ बनाया था, नथिंग एल्स, सिर्फ एक खाली हाथ। ये एब्स्ट्रैक्ट इमेज थी जिसे देखकर उसके साथी जो थे वो इमेजिन करने लगे, Whose hand could it be? किसी को लगा ये किसी फार्मर का हाथ है क्योंकि वो हमारे लिए टर्कीज को रेस करता है, उन्हें बड़ा करता है। दूसरे ने कहा नहीं, पुलिस ऑफिसर का है क्योंकि पुलिस हमें प्रोटेक्ट करती है। तीसरे ने कहा नहीं, भगवान का हाथ है जो हमें खाना देता है। जब चिल्ड्रंस अपना असाइनमेंट देकर चले गए तो उस टीचर ने डगलस से पूछा कि डगलस ये किसका हाथ है। डगलस ने दूसरी तरफ देखा, बच्चों की तरफ देखा और धीरे से बोला, ये आपका हाथ है टीचर। उस टीचर को याद आया कि कैसे वो उसका हाथ पकड़कर ही यहाँ वहां चला करता था। वो हमेशा कहती थी कि टेक माय हैंड डगलस, वी विल गो आउटसाइड, लेट मी शो यू हाउ टू होल्ड योर पेंसिल, लेट्स डू दिस टुगेदर। डगलस थैंकफुल था कि उसकी टीचर ने उसका हाथ पकड़ा, उसे सिखाया और उसकी आंखों से आंसू पहुंचे। अगर वो ना होती तो शायद चीजें उसके लिए बहुत मुश्किल होती। सो इट्स सेड दैट कीप रीचिंग आउट बिकॉज यू मे हेल्प पुल समवन आउट ऑफ डार्कनेस एंड गाइड देम इनटू द लाइट। ये भी एक बहुत बड़ा काम है, किसी को उस अंधेरे से बाहर निकाल लेना। ये कहानी कहलाती है द टीचर्स हैंड। टीचर्स के हाथ भी बहुत जरूरी हैं, चाहे वो कॉपी पर हो या आपके गाल पर, हर तरह से टीचर्स हैंड आर रियली इंपॉर्टेंट। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूँ कहानी वाला रजत।
1: हाय, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं हूँ शान और आप सुन रहे हैं मेरे गाने ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो। एंजॉय द म्यूजिक एंड

अपने सपनों के पीछे भागते हैं, उनके सपने वे सपने बने रह जाते हैं। पर कोई बात नहीं, जो होता था अच्छे के लिए होता था।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो और आप सुन रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम विद गिरेंद्र भारती।
1: हेलो, कैसे हैं आप सब? आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और मैं हूँ गिरेंद्र भारती। वर्ड्स ऑफ विजडम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक दिन जब बारिश हो रही थी तो एक 15 साल का लड़का जिसका नाम जॉन गोडार्ड था, वो अपने घर में अपनी किचन टेबल पे बैठा लॉस एंजलिस के अंदर, और उसने एक येलो कलर का पैड लिया जिसके टॉप पे उसने लिखा माई लाइफ लिस्ट, और उस लिस्ट के नीचे उसने 127 गोल्स लिखे। जी हाँ, 127 गोल्स उसने लिखे। हम कहेंगे कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, लोग ऐसे गोल्स लिखते ही रहते हैं, खास तौर पे बच्चों में तो ये बहुत शौक होता है। लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं था। इस इंसान ने अपनी जिंदगी में उन 127 में से मोर देन 109 यानी 109 से भी ज्यादा गोल्स पूरे कर लिए। अब आप कहेंगे ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लोग गोल्स लिखते हैं उन्हें पूरा भी कर लेते हैं। लेकिन आपको ये सुन के तब आश्चर्य होगा जब आपको पता चलेगा कि जो गोल्स उसने लिखे थे वो कोई सिंपल या इजी गोल्स नहीं थे। उनमें ऐसे ऐसे गोल्स थे जो कहते थे कि मेरे को दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन्स पर चढ़ना है, मेरे को दुनिया के जो बड़े से बड़े रिवर्स हैं, जो नदियां हैं, उनको सोर्स से लेकर उनके एंड तक एक्सप्लोर करना है, मेरे को दुनिया के जो बड़े से बड़े जो सबसे तेज चलने वाले एयरक्राफ्ट हैं, हवाई जहाज हैं, उनको चलाना है, यानी ही वांट्स टू बिकम अ पायलट आल्सो, मेरे को 1 मील 5 मिनट से भी कम समय में भागना है, और मेरे को पूरी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़नी है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा, ये जो इंसान था, ये जो लड़का था, इसका नाम था जॉन गोडार्ड, और बाद में लॉस एंजलिस टाइम्स ने इसको रियल लाइफ इंडियाना जोन्स का खिताब दिया। जी हाँ मित्रों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इनको ही हैज बिकम एक्चुअली ये जॉन गोडार्ड जो थे बाद में वर्ल्ड रिनोन्ड एडवेंचरर बने, एक्सप्लोरर बने, ऑथर बने, लेक्चरर बने। इन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर बहुत से लोगों को प्रेरित किया, मोटिवेट किया, दो किताबें भी लिखी। 2013 में इनकी डेथ हो गई, लेकिन ये दुनिया के सामने एक ऐसी मिसाल छोड़ गए जो हम सबको हमेशा याद दिलाती रहेगी कि हमारे अंदर कितनी पावर है और हम क्या कर सकते हैं अगर हम करने पर आए तो। मैं यहाँ पर आपको उनके गोल्स की लिस्ट नहीं बताने वाला क्योंकि वो बहुत लंबी है और मेरा सारा टाइम उसी में निकल जाएगा, वो आप गूगल पे जाकर कभी भी देख सकते हैं। आप जॉन गोडार्ड टाइप कीजिए, आपके सामने उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी जो 127 गोल्स उन्होंने लिखे थे। आप कहेंगे हम सब लोग अब गोल्स लिखते रहते हैं। देखिए, लिखने की पावर बहुत ज्यादा है। आप गोल्स अपने मन में रखते हैं या उसे लिखते हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। गुड मॉर्निंग अमेरिका एक शो है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमारी सबकी आदत होती है कि नया साल आते ही हम लोग नए नए गोल्स बनाते हैं, रिजोल्यूशन, हमने उसको नाम दिया अपना कि इस साल मैं ये चीज अचीव करूंगा, इस साल मैं हर रोज जिम जाऊंगा, अपनी बॉडी बनाऊंगा, या खाना ठीक से खाऊंगा, सिगरेट छोड़ दूंगा, वॉट एवर इट इज। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि 15 फरवरी के आसपास यानी हार्डली आफ्टर 45 डेज उन्होंने ऐसे लोगों को इंटरव्यू किया जिन्होंने अपने रिजोल्यूशंस बनाए थे। तो उन्होंने देखा कि जो लोग सिर्फ अपने मन में सोचकर रिजोल्यूशंस बनाए हुए थे कि हमने ऐसा करना है इस साल, उसमें से सिर्फ 4% पीपल यानी 4% लोग ही ऐसे थे जो कंटिन्यू कर रहे थे, बाकी 96% लोग छोड़ चुके थे। लेकिन जिन लोगों ने अपने गोल्स नोट डाउन किए हुए थे यानी जिन्होंने ये लिखा हुआ था कि हमने इस साल ऐसा ऐसा करना है, यानी ठीक वही काम जो जॉन गोडार्ड ने किया था 15 साल की उम्र में जब उसने 127 गोल्स की लिस्ट बनाई थी, तो जिन लोगों ने भी लिख रखे थे अपने गोल्स को, उसमें से मोर देन 46% वर स्टिल कंटिन्यूइंग। जी हाँ, 46% लोग उस समय भी कंटिन्यू कर रहे थे जो गोल्स उन्होंने लिखे हुए थे। तो रिसर्चर्स शॉक्ड रह गए जानकर कि आपके सिर्फ किसी गोल को लिख लेने से उसके पूरे होने की संभावना 1100% तक बढ़ जाती है। इट इज वेरी पावरफुल थिंग। तो एक बहुत सरल टेक्निक मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब भी आप अपने गोल्स लिखें, पहली बात तो प्रेजेंट टेंस में लिखें, और उनको लिखने के बाद उसकी एक कॉपी आप अपनी पॉकेट में जरूर रखें और दिन में कम से कम 3 बार उसको जरूर पढ़ें। तब आपको पता चलेगा कि एक फोकस्ड लाइफ को जीने का क्या मतलब होता है। एक्चुअली अगर आपने गोल्स लिख भी दिए और आप दोबारा उसको खोल कर नहीं देखते कई महीनों तक, तो उसके लिखे या ना लिखे होने का कोई बहुत ज्यादा महत्व रह नहीं जाता। हम अगर किसी गोल को लिखते हैं तो हमें उसको दिन में कम से कम 3 बार उसे खोलकर देखना है और उसे पढ़ना है। उससे होगा क्या कि आप तीर की तरह से फोकस रहोगे उस गोल की तरफ जिधर आपको जाना है, और बाकी वो सारी अनवांटेड चीजें जो आपको खींचती रहती हैं और आपकी एनर्जी को और आपके टाइम को खाती रहती हैं, उनसे आप बचते रहेंगे। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि जॉन गॉडर्ड की लाइफ से हम लोग इस इंस्पिरेशन को लें, हम ये देखें कि अगर एक इंसान अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर सकता है। मैं चाहूंगा आप लोग गूगल पे जाएं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, एक दो पेज में ही आपको उसकी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अगर कोई इंसान इतने टफ गोल्स को अचीव कर सकता है अपनी एक ही जीवन काल में, तो हमारे तो जो गोल्स हैं वो इतने टफ भी नहीं है, बहुत आसान गोल्स हैं हमारे। उसको देखकर आपको बहुत हिम्मत मिलेगी, बहुत ताकत मिलेगी और आप पूरी ताकत से अपने गोल्स पे लग जाएंगे। आपको बहुत आशा मिलेगी, बहुत होप मिलेगी कि अगर वो ये सब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और होप इज एक्चुअली प्लेइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट व्हेन इट कम्स द अचीविंग ऑफ गोल्स। बातें जारी रहेंगी, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं बोल रहा हूँ गिरेंद्र भारती, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
0: एक बेटर जिंदगी के लिए सुनते रहिए वर्ड्स ऑफ विजडम गिरेंद्र भारती के साथ, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: मजबूत होने का मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तुली हो। अपने आसपास बहुत लोग हो सकते हैं आपके जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हो, डरा रहे हो, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। क्या फर्क पड़ता है, शायद वो जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाए या उसी सिचुएशन में उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसी सोच और ऐसे लोगों से अपने आप को सतर्क रखिए, क्योंकि उनसे सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिविटी, डराना यही मिल सकता है। अगर किसी के पास सॉल्यूशन है तो वो आप खुद हैं। खुद से बात करिए, खुद की सोच और खुद के निर्णय पे यकीन करिए, उस पे आगे बढ़िए और देखिए आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी आपके खुद के भरोसे से, जो आपका खुद पे होगा।
0: Walk Talk Radio.

0: Your first workout will be bad. Your first podcast will be bad. Your first speech will be bad. Your first video will be bad. Your first anything will be bad. But you can't make it 100 without making your first. So put everything aside and just start doing it. No matter what happens, no matter what the consequences will be, just keep doing it without the fear of failure.
1: जो आदमी हमेशा कूल रहता हो, काम रहता हो और एक दिन आपको बहुत टेंस दिखे तो आपको क्या होगा? ऑब्वियसली हंसी आएगी. आप सुन रहे हैं रेडियो वॉक टॉक, ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ. मैं हूं मुस्कान और ये शो है अनसंग चैंपियंस का, जिसमें हम और आप बात करते हैं उन चैंपियंस की जो अपनी लाइफ में ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, मेडल ला रहे हैं और साथ ही साथ हमें ऐसा लगता है कि आखिर भारत अब खेलों में कितना आगे बढ़ चुका है. सो आज बात कर रहे हैं पुलेला गोपीचंद की और एक इंटरव्यू में साइना नेहवाल ने बताया कि जब कॉमनवेल्थ गेम 2018 हो रहा था तब उन्होंने देखा कि वो किस तरह से पुलेला गोपीचंद को इतना टेंस्ड देख रही थी. यहां तक कि कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पुलेला गोपीचंद बीच में से ऐसा कह रहे हो कि ये क्या कर रहे हो, नहीं ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है. बट उस गेम में पुलेला गोपीचंद एक्चुअली बहुत टेंस थे और बिल्कुल एज पर बैठे हुए थे कि ये क्या हो रहा है आखिर. और जब गेम है तब मलेशिया के बिल्कुल अगेंस्ट चल रहा था और साइना नेहवाल खेल रही थी और साइना नेहवाल ने देखा कि पहली बार पुलेला गोपीचंद इतने टेंस थे. इंडिया ने अपना पहली बार फर्स्ट एवर मतलब मिक्स्ड टीम इवेंट था जिसमें गोल्ड लेकर आए थे कॉमनवेल्थ गेम्स में और जिसमें इंडिविजुअल्स इवेंट में साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, कादम्बी श्रीकांत, अश्विनी और एन सिक्की रेड्डी एंड सात्विक साईराज सब लोग लौटे थे मेडल्स के साथ. और साइना एंड सिंधु ने तो फाइनल में खेला था वुमेन सिंगल में एंड वेयर साइना वॉन द गोल्ड मेडल. बट गोपीचंद टोल्ड इंडिया टुडे दैट ही डिड नॉट सी द गेम क्योंकि वो बहुत टेंस थे. सैटरडे ही था उस दिन और साइना ने बताया कि गोपीचंद वॉज एट द एज ऑफ हिज सीट. साइना उस टाइम मलेशिया की प्लेयर सोनिया के अगेंस्ट खेल रही थी और इस टाइम पे जो फीलिंग वो शेयर कर रही थी और उनको लग रहा था कि गोपीचंद बिल्कुल सोच के बैठे हैं कि आज तो हम हार जाएंगे और वो इतना टेंस थे मतलब ये पहली बार ऐसा हो रहा था क्योंकि इससे पहले उन्होंने हमेशा उनको कूल देखा था, काम देखा था, पर कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पर ही वॉज डिफरेंट, मतलब बिल्कुल अलग दिख रहे थे. गोपीचंद की एक कहावत मुझे आज भी याद है. उन्होंने कहा था कि विनर को कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, विनर शुड नॉट सेटिस्फाइड, और लूजर को कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए. इन दोनों बातों को जब आप बारीकी से सोचते हैं तब आपको लगता है कितनी गहरी बात है. मतलब अगर आप जीत भी जाते हो तो अब आपको सोचना चाहिए कि अभी सीखने के लिए और बहुत कुछ बाकी है, अभी जीतने के लिए और बहुत कुछ बाकी है. और अगर आप किसी खेल में हार भी जाते हो तब आपको लगना चाहिए कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस आपका डगमगाना नहीं चाहिए क्योंकि खेल में एक की जीत होना तय है और एक की हार होना तय है. तो ऑब्वियसली कभी आप जीतोगे, कभी आप हारोगे, लेकिन कभी कभी जब आपने बहुत सारे सपने देखे होते हैं और आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है तब आप आगे नहीं बढ़ पाते हो. तो इस बात का ध्यान रखना है. और अगर आपने जस्ट अभी खेलना शुरू किया है तो ट्रस्ट मी, सिर्फ कॉन्फिडेंट रहिए और अपने आप को बस लगातार उस काम के लिए झोंक दीजिए. उसके बाद देखिएगा कि क्या रिजल्ट आएंगे. और अभी के लिए बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि थोड़ी देर के लिए जा रही हूं, लौट कर आऊंगी. सुनते रहिए रेडियो वॉक टॉक. मैं हूं मुस्कान. ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ.

0: Walk Talk Radio.
1: Come, shall we do a radio talk with a radio called Say What? Walk Talk. Hi, मैं हूँ अनुष्का. I'm a singer, songwriter and rapper. और आप मुझे सुन रहे हैं Walk Talk Radio पर.
0: Walk Talk Radio.
2: हाय, मेरा नाम है शार्दुल कोटियाल और आज मैं आया हूँ वॉक टॉक रेडियो में. सो बेसिकली मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो है थोड़ा बहुत अब ट्रैवलिंग की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है. सो मैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हूँ, जो मतलब मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो 2 लाख प्लस हैं फिलहाल, और ये मैंने कमाए हैं सिर्फ 1 से 2 महीने के अंदर पे. और कैसे कमाई है तो मुझे खुद भी नहीं पता. खैर, बस कर रहा हूँ जो लोगों को पसंद आ रहा है और उसी वजह से मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो मुझे काफी ज्यादा मिल रहे हैं. बेसिकली मैं अगर आपको सच बताऊं ना, तो आइडिया तो मुझे 2015 में आ गया था, जब मैं कॉलेज में था. तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था बेसिकली, और मतलब था भैया कुछ ऐसा करना है कि मतलब मुझे फेमस होना है, बस कुछ भी करूं, चाहे मुझे और मतलब कुछ भी ऐसा काम करना है जिससे मैं फेमस हो जाऊं बस. तो उस टाइम पे दिमाग में सिर्फ आया रैप, क्योंकि उस टाइम पे चला था रैप वाला ट्रेंड. तो रैप करने का बड़ा शौक चढ़ा था मुझे, तो लिखता था मैं, और लिखने के बाद फिर गाता था, रैप करता था, लेकिन फ्लॉप हो गया भैया मैं तो. फिर उसके बाद जैसे ही मेरा मैकेनिकल कंप्लीट हुआ, उसके बाद जॉब वाली जिंदगी में आया, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं भैया हम. तो मिडिल क्लास फैमिली वालों का क्या होता है ना, बस जॉब के अलावा कुछ नहीं होता भाई. सुबह उठो, निकल जाओ जॉब पे, शाम को आओ, खाना खाओ और सुबह फिर से निकल जाओ जॉब पे. तो बेसिकली ऐसी जिंदगी देखी, लेकिन कुछ टाइम बाद ना ये जिंदगी मुझे झंड से लगने लग गई थी पूरी की पूरी. तब दिमाग में आया भैया कि ट्रैवलिंग तो कर ही रहे, तो क्यों ना ट्रैवल व्लॉगर बना जाए, क्योंकि अब ट्रैवल व्लॉग वाला ट्रेंड आने लग गया ना. तो सोचा अब चलो ट्रैवल व्लॉगर ही बनते हैं. लेकिन जो मेरी ट्रैवल व्लॉगिंग की जर्नी थी बेसिकली, वो स्टार्ट हुई थी 2019 नवंबर में. 1 साल हो गया, कंप्लीट हो गया, बहुत खर्चा वर्चा कर लिया भैया, घूम लिया, लाखों रुपए उड़ा दिए, गोप्रो ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन कुछ नहीं, सब्सक्राइबर कुछ नहीं मिले हमें. मतलब 1000 से 1500 सब्सक्राइबर हुए. तो अभी बेसिकली ये है कि जैसी हमारा मतलब 1 साल कंप्लीट हो गया, तो मतलब अब दिमाग में आया कि भैया अब क्या करें, बढ़ तो रहे नहीं हम, मतलब क्या हम इसके लिए भी नहीं बने हुए क्या, तो बने किस चीज के लिए, वही नौकरी करने के लिए बने क्या 9 से 6 वाली. तब दिमाग में आया, मतलब कई हमने वीडियोस वगैरह देखी जिसमें लोग बता रहे हैं कि मतलब लोगों को बोलने का तरीका अच्छा लगता था मुझे कई कुछ वीडियोस में, और क्या हो पा रहा था कि हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे बेस. लेकिन ये चीज समझ में आ गई थी कि भैया कई लोगों को ट्रैवल करना है और पर कर वहां तक पहुंचना कैसा है वो किसी को पता नहीं है बेसिकली. तब मेरे दिमाग में प्लान आया कि भैया चलो एक काम करते हैं, हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे, लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे, तो हम वीडियो उठाते हैं भैया और बताते हैं, लेकिन अपने स्टाइल में.

हाय, मेरा नाम है शार्दुल कोटियाल और आज मैं आया हूँ वॉक टॉक रेडियो में। मैं आपको सच बताऊँ, 2022 गया अभी ना, तो 2022 दिसंबर में ना हमें कुछ नहीं पता था। 2022 दिसंबर में हमारे जो चैनल पे ना 2000 सब्सक्राइबर थे, वो भी रोध हो गए। हमने एक चैलेंज चलाया था 30 दिन का, तो उसमें हमने मतलब 2000 गेन कर लिए थे। तो हमें लगा भैया कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन इस चीज को, जो ये शॉर्ट बनाने वाली चीज है ना, इसको रेगुलर रखते हैं। मतलब भाई जनवरी के बाद से जैसी हमने कंटेंट डालना शुरू करा, एकदम से हाइप। भाई मैं अगले से पूछ रहा कहीं ये मतलब फेक तो नहीं है भैया, देख ले ढंग से। मुझे तो क्योंकि फेक लग रहा, एकदम से रातों रात कहां से आ गई उठ के। तो वो चीज सच बताऊं तो हमने ना प्लान करी थी ना सोची थी, और मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि भैया सच में 2 लाख है हमारे। मुझे अभी भी वो जैसे सपना जैसा ही लगता है, भैया ये फर्जी तो नहीं है कुछ। तो मैं कुछ ऐसा, क्योंकि अब मैं वही रेगुलर चीज डालता ना, तो मुझे पता था कि भाई चलने वाला है नहीं, क्योंकि मुझ जैसे तो पता नहीं कितने हर गली और नुक्कड़ में बैठे हुए, हर घर में ऐसा कॉन्टेंट क्रिएटर तो बैठा है। तो मैं अपनी उस रैप वाली चीज को जो मैं लिखता था उसको और इस ट्रैवल को मिक्स करना चाह रहा था बेसिकली, लेकिन अपने अंदाज में। कई लोगों ने मुझे बोला है कि भाई मैं बोलता बड़ा प्यारा हूँ, अब पता नहीं ऐसा है कि नहीं है, पर कई लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। तब मेरे दिमाग में था कि भाई मैं लिखता भी अच्छा हूँ और बोलता भी अच्छा हूँ, एडिटर तो मेरे पे है ही बढ़िया वाला। तो फिर उस चीज से मतलब कई वीडियोस देखी मैंने कई लोगों की, तो वो मेरे दिमाग में बैठी और मैंने उसको करना शुरू कर दिया। थोड़ा वो मजाक करने वाला ह्यूमर भी है मेरे अंदर, तो स्क्रिप्ट में वो मजाक भी डाली, नॉलेज भी डाला, मजाक नॉलेज को मिक्स करके मैंने कॉन्टेंट बना दिया।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: मैं कर्नल अजय कोठिया हूँ। अगर आपके पास कोई अपनी स्टोरी होती है, कोई एक्सक्लूसिव फीलिंग होती है, तो आप वॉक टॉक रेडियो में आए और यहाँ पे आकर के अपना आइडिया शेयर करें और डाउनलोड करें वॉक टॉक रेडियो, बहुत सारे लोगों की अच्छी जानकारियों को जानने के लिए।
0: वॉक टॉक रेडियो,
2: वॉक टॉक रेडियो,
0: वॉक टॉक रेडियो।
3: मेरा नाम सिद्धार्थ है और आप मुझको सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पे। मैं बेसिकली अपैरल इंडस्ट्री में काम करता हूँ। कोरोना काल में लोग वापस उन जगहों पे गए, उन चीजों में गए, उन हैबिट्स में गए जो हम छोड़ चुके थे। तो मैंने भी कोविड के दौरान ही ये साइकिलिंग का एक दौर मेरा शुरू हुआ, जहाँ मैंने बहुत ही निचले स्तर से शुरू करा, बिकॉज साइकिलिंग बिल्कुल छोड़ चुका था मैं। तो बस तब से साइकिलिंग करना स्टार्ट करा और मुझे साइकिलिंग करते अभी आई थिंक 1.5 साल के आसपास हुए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन 1.5 साल में मैंने इतनी जगहों को एक्सप्लोर कर लिया है अपने देहरादून सिटी के अंदर ही। अभी स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ शहर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे इतने हिडन स्पॉट्स हैं, इतने अच्छे ट्रेल्स हैं, जहाँ आप जाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, आप नेचर के करीब जाते हैं। और चाहे वो मन की शांति हो, चाहे इंस्पिरेशनल, आप खुद एक इंस्पिरेशन बन जाते हो काफी लोगों के लिए और लोगों से इंस्पिरेशन लेके। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा 1.5 साल का, और मुझे एक बहुत बड़ा फोमो बोल सकते हैं ये रहेगा और है, जो कभी टाइम वापस नहीं आ सकता कि मैंने साइकिलिंग और जल्दी शुरू क्यों नहीं करी। तो मैं अभी यहाँ पे हूँ तो आप सबको एक छोटा सा मैसेज ये देना चाहूंगा कि आप लोगों को ऐसा फोमो ना हो, तो देर आए दुरुस्त आए, जल्दी से अगर साइकिलिंग नहीं है आपके पास तो लीजिए, परचेस कीजिए, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट्स में आती है, कोई बहुत महंगी साइकिल भी नहीं आती, आप ले सकते हैं और अपनी जर्नी साइकिलिंग की स्टार्ट कर सकते हैं। आई एम श्योर यू विल बी रियली हैप्पी आफ्टर डूइंग सर्टेन साइकिल ग्रुप राइड्स और सोलो राइड्स, आपको बहुत अच्छा लगेगा 4-5 राइड करने के बाद। एक वो एक्सपीरियंस ही बहुत ही अच्छा होता है जब आप सुबह सुबह 4 बजे उठ के घर से निकलते हैं और आपको खाली सड़क दिखती है, सूर्य उदय हो रहा होता है या अंधेरा होता है, तारों की छाँव में आप साइकिलिंग चला रहे होते हैं, वो एक एक्सपीरियंस जो है वो शायद हमें अपने कमरे में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के, टीवी के सामने शायद हमें कभी वो लुत्फ और वो एक्सपीरियंस कभी नहीं मिलेगा। और भी आपसे बातें करेंगे बस जरा सी देर में।
0: वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो।
4: इस दुनिया में सबसे अलग दिखोगे, अभी जितना अंधेरे में हो कल उतना ही उजाले में रहोगे।
0: वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: मेरा नाम सिद्धार्थ है और आप मुझको सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पे। मोटिवेशन मुझे बहुत सारी चीजों से आया, बट अगर मैं बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बोलूं तो मैं बहुत मोटिवेटेड स्पेशली साइकिलिंग करने की, मुझे साइकिलिंग ही करनी है। मैं थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हूं, आई हैव बीन वर्किंग आउट ऑन एंड ऑफ, बट हैवी वेट्स वगैरह नहीं, बट नॉर्मल कुछ ना कुछ मेरा रूटीन रहता है। लाइक आई एम मोर इन टू डांस ऑल्सो, मैं डांस वगैरह करता हूँ। तो मेरे बर्थडे में मेरे भाई ने बोला कि साइकिल लेनी है या ट्रेडमिल लेनी है, तो मेरा आंसर था कि ट्रेडमिल लेंगे तो फिर हम घर तक सीमित रहेंगे, और अगर हमने साइकिल ली तो हम साइकिलिंग तो करेंगे, नेचर के करीब जाएंगे, अलग अलग रूट्स फॉलो करेंगे। सेकंड, हमारी रोजाना जिंदगी में जो हमारे कुछ छोटे मोटे काम होते हैं, जो हम एक या तो टू व्हीलर या कार पे या वॉक करते जाते हैं, वॉक तो फॉर श्योर कर सकते हैं, बट वो टू व्हीलर या कार भी हम ट्रैफिक ऐड करते हैं अपनी सिटी में, अपनी सोसाइटी में, अपने एनवायरमेंट में, तो हम वो फुटप्रिंट्स कम कर सकते हैं और हम साइकिल को फॉलो कर सकते हैं। तो ये मेन मेरे दिमाग में ये था कि हम साइकिल लेके बहुत सारे फायदे हैं। दूसरा, देहरादून सिटी में हमारे ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे लोग साइकिलिंग से जुड़े हुए हैं। तो अभी इंस्टाग्राम एक अगर बोलें कि यहाँ से लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो वो थोड़ा देख के मुझे इंस्पिरेशन सा मिला, मोटिवेशन सा मिला कि यार जब हमारे रिटायर्ड लोग, 60 साल से प्लस लोग ये सब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो जो लोग ये सुनेंगे उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी जो हैं उन्होंने अपना एक लंबी उम्र तक साइकिल ही चलाई है, और उन्होंने वैष्णो देवी जैसे टूर 3 बार साइकिल पर ही करे हैं, और उन्होंने भी अपनी लाइफ में सब स्ट्रगल किया है। तो उनकी जब 25th वेडिंग एनिवर्सरी थी तब हमने उनको पहली बार एक टू व्हीलर विच इज एक्टिवा गिफ्ट करी थी। उससे पहले वो अप्रॉक्स 50 साल की एज तक अपनी रोजाना जिंदगी में जो दौड़ भाग करते थे वो सिर्फ साइकिल पे करते थे। और आज मुझे इस बात का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पश्चाताप बोल सकते हैं कि एक पीयर प्रेशर बोल सकते हैं, स्कूलिंग एनवायरमेंट बोल सकते हैं, कि मुझे कहीं ना कहीं शर्म सी आती थी कि मेरे स्कूल में मेरे पिताजी मुझको साइकिल पे छोड़ने आ रहे हैं, जबकि औरों के पिताजी में भी कार में आ रहे हैं या टू व्हीलर में आ रहे हैं। तो मेरी पेरेंट्स मीटिंग होती थी या स्कूल की कोई एक्टिविटी होती थी, मैं कहीं ना कहीं प्रेफर करता था कि मेरी मदर आए। मेरी मदर ऑब्वियसली साइकिल पे नहीं आ रही है, बट वो चाहे पैदल आ रही है, बट वो साइकिल कहीं ना कहीं गायब है उस सीन से। तो वो मैं अवॉइड करता था कि साइकिल वहां पे ना रहे, क्योंकि तब थोड़ी सोच हमारी उतनी मैच्योर नहीं रहती, हम छोटे बच्चों की तरह ही होते हैं 12th स्टैंडर्ड तक। तो पीयर प्रेशर में जो दिख रहा है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो वो मैं आज के जो भी हमारे यूथ हैं, स्कूल गोइंग यूथ हैं, तो ये तो ऑलमोस्ट बहुत ही कोई इक्का दुक्का ऐसा बच्चा स्कूल का निकलेगा जिसके पिताजी अभी तक साइकिल यूज कर रहे हैं। मेन शहर में आपको नहीं दिखेगा कि उनकी फैमिली में किसी का साइकिल है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप खुद तो प्लीज यूज करें, और अगर आपके बुजुर्ग लोग जो पहले कभी यूज करते थे वो यूज करना चाहते हैं, और आपने कभी उनको ये बोल के कि साइकिल साइड रखवा दे कि शर्म आती है, हमारा स्टैंडर्ड लो होता है, ऐसा कुछ भी आपकी सोच थी, मुझे गारंटी नहीं पता बट शायद हो सकती है, तो प्लीज आप रिक्वेस्ट कीजिए उनको कि आप वापस साइकिलिंग करना स्टार्ट करें, और आप खुद भी अपने घर में, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, फ्रेंड्स, फैमिली, सब जगह पे साइकिलिंग का मैसेज लाएं और साइकिल यूज करें।
1: वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो।
2: जिंदगी में देखा जाए तो टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है।

0: शैतान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।
1: मेरा नाम उपासना चौहान है एंड बाय प्रोफेशन आई एम एन एडवोकेट और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। बेसिकली आई एम फ्रॉम पानीपत, डिस्ट्रिक्ट पानीपत एंड बोर्न एंड ब्रॉट अप इन गुरुग्राम हरियाणा। सो आई डिड माय स्कूलिंग कॉलेज एंड ऑल फ्रॉम हेयर एंड बाय द टाइम स्टार्टिंग मैंने अपनी जर्नी जो है ग्रेजुएशन की वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी थी, क्योंकि उस टाइम पे क्रेज था कि हाँ भाई डी यू में जाना है, तो हम उसको बहुत हाई मानते थे। तो उस टाइम पे सारा फोकस जो था वो ये था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो वो मैंने ले लिया। तो वो मेरे लिए एक फर्स्ट सक्सेस पॉइंट था। एंड देन जब बीकॉम एडमिशन लिया तो फिर ये सोचा है कि चलो कुछ अपने ही फील्ड का मतलब हाई कुछ करते हैं, like, अपना प्रोफेशन में हाई माना जाता है सी ए सी एस कोर्स अकाउंटेंसी। सो मैंने भी सोचा कि चलो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स लेते हैं क्योंकि मेरी थ्योरी बहुत अच्छी है, तो मैंने वो स्टार्ट किया। तो जब स्टार्ट किया तो मेरा फर्स्ट लेवल क्लियर हो गया, करते करते साइड में मेरा बीकॉम भी चल रहा था और बीकॉम के मैं सेकंड ईयर में भी आ गई थी, तो कॉलेज में और इंटरेस्ट भी आधा चला गया और इधर मतलब कि मैंने दोनों हाथों में ले लिया, इधर से बीकॉम इधर से कंपनी सेक्रेटरी। तो मुझे ऐसे लगा कि हाँ मतलब कि एक टाइम पे एक चीज ही करनी चाहिए, तो मैंने थोड़ा उसको गैप दिया कि ठीक है कंपनी सेक्रेटरी अपना आफ्टर ग्रेजुएशन करते हैं। तो उस टाइम पे फिर सेकंड ईयर पे मैं कॉलेज में हमारे हुए थे यूनियन का मैं पार्ट बन गई थी और मैं कॉलेज की वाइस प्रेसिडेंट बनी थी, तो वो भी एक फन पार्ट था। आप जब कॉलेज की को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हो तो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ कॉलेज में कैसे क्या होता है, फेस्ट कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, टीचर्स के साथ कैसे रहते हैं, वाइस चांसलर्स के साथ बैठ के हम मीटिंग कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो वो एक प्रॉपर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो लाइफ होती है हमने वो इंजॉय करी है। स्टडीज भी की है, ऐसा नहीं कि मस्ती एंड ऑल वगैरह करी है, तो साइड बाय साइड वो भी किया है। तो जैसे जैसे अपना डिग्री खत्म होता चला गया फिर सोचा चलो लाइफ के बारे में और सीरियस हो जाते हैं, तो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स मैंने कंटिन्यू किया। तो मेरा फिर सेकंड लेवल भी हो गया, तो सेकंड लेवल होते होते मेरी साइड बाय साइड एम कॉम भी हो गई कि बस करते चलना है। तो जब कोविड आया तो उसके बाद मतलब कि अपना स्टडीज वगैरह था तो साइकोलॉजिकली वो माइंड में आ गया था, बस सबकॉन्शियसली मतलब कि वो कहता था अंदर से कि मतलब कि पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हैं, बट वो एक्चुअल थिंग जो होती है, वर्किंग स्टाइल जो होती है वो नहीं आ रही, प्रोफेशनलिज्म लैक कर रहा है नॉर्मल उसमें। सो मैंने डिसाइड किया कि ये तो चल ही रहा है, तो साइड बाय साइड एक होता है कि अपना कॉर्पोरेट के लिए जो कहते हैं कि सी एस प्लस एल एल बी बहुत अच्छा माना जाता है, तो मैंने ठीक है बी कॉम हो गया एम कॉम हो गया, अब अपना सी एस चल ही रहा है, एल एल बी भी स्टार्ट कर देते हैं। ग्रेजुअली जब मैं सी एस करती थी तो मैं कंपनी लॉ जो था वो हमारे लिए प्रायोरिटी होता था सी एस प्रोफेशन में, तो एक लॉ से गो थ्रू हो गए थे। जब मैंने वो लॉ पढ़ा, उसकी इंटरप्रिटेशन की, उसको अंडरस्टैंड किया कहाँ कैसे क्या रिलेट करते हैं, तो मुझे समझ में आया कि लॉ तो इससे भी ज़्यादा वाइड स्कोप का है। तो अगर मैं कुछ चीज अगर करती हूँ तो मेरी आदत है, हैबिट है कि मैं उसको इन डेप्थ करती हूँ, मतलब डीप स्टडी करती हूँ। मैंने मतलब लॉ में एडमिशन लिया तो ये नहीं कि जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी मैंने उसको लिया, मैंने बुक्स एंड ऑल वगैरह ली, तो मैंने इन डेप्थ स्टडी करी। जब मैंने इन डेप्थ स्टडी करी मुझे अच्छा लगा पढ़ना, पढ़ते पढ़ते पढ़ते मुझे इंटरेस्ट आ गया कि मैं डेस्टिनी जो है मुझे करते करते वहां तक ले। और जिससे मैंने मतलब कि कोर्ट में एंट्री की, मतलब कि अगर मेरे को ये होता है कि समझ लो कि मैं अपने पैशन के पास, अपनी डेस्टिनी के पास सही डायरेक्शन में खुद को लेते हुए मैं सही टाइम पे और अब राइट प्लेस पे आई हूँ, ऐसा मुझे अंदर से फील होता है। चाहे सामने से पब्लिक कुछ भी बोले कि आप कहाँ आ गए हो, किस प्रोफेशन में आ गए हो, इसमें बहुत स्ट्रगल्स है, चैलेंजेस है, वो उनकी बात है, लेकिन आप अंदर से मतलब कि खुश जब फील करते हो ना, हैप्पी फील करते हो कि हाँ भाई आप अपने लिए कर रहे हो, वो मैटर ज्यादा करता है। ये नहीं कि आप जस्ट फॉर्मेलिटी करने जा रहे हो, तो मेरे लिए ये बेस्ट जो मैं अपने लिए मानती हूँ कि हाँ कोई बात नहीं कि ऐसे ऐसे स्टेज से मैं आई हूँ, लेकिन जो मेरी ये जर्नी रही है उसने मुझे यही सिखाया कि मेरे डिसीजन बिल्कुल सही हैं।

0: पता है, बड़े बड़े लोगों के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो हम सबको इंस्पायर करती है। जैसे वो हमेशा आने वाले 10 साल की प्लानिंग पहले ही कर देते हैं। वो इस तरह से काम करते हैं कि उन्हें आने वाले 5 या 10 साल में कहाँ जाना है वो पहले से ही पूरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। अगर यही क्वालिटी आपके अंदर या हमारे अंदर आ जाए, सोचो उसके बाद क्या होगा। जिन्होंने बड़े बड़े एम्पायर खड़े करे हैं, जो जीरो से हीरो बने हैं, उनके अंदर भी तो यही क्वालिटी थी।
1: हाय, मेरा नाम उपासना चौहान है एंड बाय प्रोफेशन आई एम एन एडवोकेट और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। सोशलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, एक कॉलेज लाइफ के बाद की जो होती है वो मैंने कभी नहीं देखी। जब मैंने कोर्ट में जाके देखा, मेरे लिए फर्स्ट क्वेश्चन यही आया था, ऐसी भी दुनिया होती है, ऐसे भी लोग होते हैं। मैंने जाके घर पे पापा से डिस्कस किया, पापा, क्योंकि उनको तो पता है, वो तो देखते हुए आ रहे हैं। हमारे लिए न्यू थिंग थी कि पैर तो रख दिया है जर्नी में, उस प्रोफेशन में, अब इन्हें भी देखो। तो वहाँ पे हम एक तरफ कहते हैं अपने कोर्ट से बाहर की जो लाइफ होती है कि हम इतने मॉडर्न हो गए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और लेकिन ये सारी चीजें जस्ट एक ना कहीं वर्बल हैं। मतलब कि आप अगर इनको मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखोगे तो वहां पे तो ठीक है, ये मॉडर्नाइजेशन, हम सही हैं, हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीजें। लेकिन जब आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज से अगर बाहर जाके देखोगे, गांव में जाओगे, बैकवर्ड उसमें जाओगे, विलेजेस वगैरह जाओगे, आज भी कहीं ना कहीं यहाँ वहां पे वो चीज नहीं पहुंची है जो कि हम अपने थॉट्स में कहते हैं या फिर हम एक मैसेज पहुंचा रहे हैं मतलब लोगों तक कि लाइफ में मतलब कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो मतलब कि बहुत ही डिफरेंट थिंग है। कोर्ट के अंदर जो लोग आते हैं, जो एक सिस्टम है काम करने का तरीका, वो आज भी कहीं ना कहीं वो ही सिस्टम है जो एक अपना पहले हुआ करता था। तो समझने की बात तो ये है कि वो चीज मतलब पीक पॉइंट पे नहीं आए कि लोग आपस में समझ रहे हैं एक दूसरे को, वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी वाली थिंग है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हम बहुत हाई लेवल पे पहुंच गए हैं, ऐसा नहीं, अभी तो बहुत टाइम लगेगा उसके लिए। मतलब कि एक, अगर आप 10 जने हो तो 10 में से हार्डली एक या दो जने, अगर एक या दो जने को अगर थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज हो जाती है, वो अगर अपनी एजुकेशन दिखाता है तो उसको पागल बोल दिया जाता है, देखिए तो पागल बन रहा है, पागल है, कुछ नहीं है। ये एक चीज होता है, अगर बोलते हैं कि चीजें अपनी देसी तरीके से चलती है। हरियाणा है, हरियाणा के अंदर चलो हम हैं, हम कॉर्पोरेट मतलब कि एजुकेटेड अपनी थोड़ी सी थिंकिंग लेवल मैच कर देते हैं। लेकिन जब बारी आ जाती है कि हाँ भाई एक एजुकेटेड इंसान है और एक अपना नॉर्मल इंसान है, देसी टाइप वाला है, वो तो अपनी चीज़ों से ही चलेगा। ये एक जनरेशन गैप भी जिसे हम कह देते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हो गया है। कहाँ कौन क्या कह रहा है, बस चल रहे हैं, दिन निकल रहा है, फिर नेक्स्ट डे आ जाता है, नए गोल आ जाते हैं, फिर दिन निकल जाता है, फिर नए गोल आ जाते हैं। कभी कोई कहता है कि आप ठीक है, क्योंकि हमारी आदत क्या है ना कि हम औरों को सुनना पसंद करते हैं। हमारी आदत है कि हम 3 जने बैठे हैं, 4 जने बैठे हैं, हम हर एक से वही क्वेश्चन पूछेंगे, या तू बता दे कि क्या सोल्यूशन है। वो एक आदत, हैबिट हो गई है पूछने की ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप सुनो सबकी, करो मन की, ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर आप 10 जने कहेंगे, आप 10 डायरेक्शन में चले जाओगे, उनका कुछ नहीं जाएगा, जाएगा आपका, आपकी लाइफ मैस हो जाएगी, आप डायरेक्शन लेस हो जाओगे, आपको नहीं समझ में आएगा क्या हो जाएगा। चाहे जो मैंने अपनी जर्नी से ये सीखा है कि चाहे टाइम लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन अपनी गट फीलिंग ही फॉलो करनी चाहिए, ये मैंने देखा है।

0: बुक रीडिंग हम में से बहुत लोगों को बहुत ही बोरिंग एस्पेक्ट लगता है, पता है क्यों? टाइम नहीं है यार, बहुत कुछ करने का है, बिजनेस है, फोन है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीजें करनी है और लोगों से बातें करनी है, जगहें देखनी है। किसी सफर पे अकेले निकलना, हम सब लोग ग्रुप में निकलते हैं, दोस्तों के साथ निकलते हैं, परिवार के साथ निकलते हैं, बट खुद के साथ नहीं निकलते क्योंकि डर लगता है। हम अपने दोस्त थोड़े ना है, हमें अपना अकेलापन खा जाता है। अगर खुद को फील करना है तो अकेले निकलिए सफर पे और एक किताब लेके निकलिए। लेकिन एक जो रीडिंग हैबिट होती है ना, वो आपको आपसे कनेक्ट करती है।
1: कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से।
0: किसी इंसान ने अपने 60 साल 70 साल का तजुर्बा 60 से 150 पन्ने की किताब में डाल दिया आपके लिए। अगर आप उस किताब के साथ दोस्ती कर लेंगे तो यकीन मानिए ये दोस्ती आपकी खुद से हो जाएगी, क्योंकि ये समय आप

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: कई बार हम लाइफ में बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि किसके ऊपर भरोसा किया जाए और किसके ऊपर नहीं किया जाए, लेकिन दोस्तों भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी तीन बातें जान सके, हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का वो प्यार और आपके चुप रहने की वो वजह।
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: हम सबके बचपन में कुछ फेवरेट सुपर हीरोज होते थे, जैसे कि सुपरमैन, बैटमैन। हमें लगता था यार इनके जैसी पावर्स चाहिए, लेकिन जब धीरे धीरे बड़े हुए तो पता चला ये सब एक दिखावा है। असली हीरोज तो बॉर्डर पे हैं, हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन कुछ लोग ना शहर में रहते हुए भी हीरोज जैसा काम करते हैं। ऐसे ही एक हीरोज का ग्रुप है वेस्ट वॉरियर्स। वेस्ट वॉरियर्स ने पूरे शहर का, पूरी स्टेट का, पूरे हिमालय पर्वत का बेड़ा उठा रखा है, इनकी साफ सफाई का बेड़ा उठा रखा है। और आज वेस्ट वॉरियर्स से हमारे साथ हैं नवीन जी। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर।
3: थैंक यू गौतम, थैंक यू वेरी मच।
2: वॉक टॉक रेडियो में आप आए तो कैसा आपको लग रहा है यहाँ पर आके?
3: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आज इन्वाइट किया और मुझे अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और पब्लिक तक ये बात पहुंचेगी, इस चीज की मुझे बहुत खुशी है।
2: सर, वेस्ट वॉरियर्स के वर्ड खुद ही में इतना अट्रैक्टिव है, तो जो कि वेस्ट वॉरियर्स की जर्नी है, आपका मिशन है हिमालयस को साफ करने का, क्या चीज आपको इंस्पायर करती है और कितने टाइम से ये काम चल रहा है, ये सफाई का अभियान चल रहा है?
3: बताना चाहूंगा आपको कि 2012 में वेस्ट वॉरियर सोसाइटी जो है फॉर्म की गई थी। जोडी अंडरहिल और ताशी पारिक, ये दो लेडीज थी, महिलाएं थी, जिन्होंने मिल करके इसको पूरा फॉर्म किया। और उद्देश्य यही था कि जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, जो आप देखा जाए कि जहां पर से मेन जो पानी का स्रोत है हमारा, जो जंगल है, जो पर्वत है, उसमें कचरा जो है एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही थी, और उसी को ठीक करने के लिए, उस प्रबंधन के लिए ही जो है वेस्ट वॉरियर सोसाइटी को फॉर्म किया गया। और 2012 से इसकी शुरुआत की गई और आज 2023 हो चुका है, लगातार इस पे काम चल रहा है।
2: सर, बहुत ही अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं और इसमें ना, इस काम में लोकल कम्युनिटीज का बड़ा साथ चाहिए होता है, तो उनके साथ आप कैसे एंगेजमेंट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं उनके साथ आप?
3: देखिए, कचरा प्रबंधन जब कहा जाता है या किस पे कुछ काम किया जाता है तो लोगों में कहता है कि कचरे की जिम्मेदारी तो यार सरकार की है। लोगों का बस ये होता है कि हमने तो कचरा घर से अलग कर दिया, अब सरकार की, हाँ, अब सरकार की जिम्मेदारी है, इसको अपने आप लेकर के जाएंगे, जैसे मर्जी इसको मैनेज करें। लेकिन आज ये एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है, क्योंकि कचरा जो है वो एक मिश्रित मिक्स फॉर्म में आ रहा है और मिक्स होने के कारण जो है उसका कोई समाधान मिल नहीं पा रहा है। तो हम लोगों ने कम्युनिटी के साथ जाकर के उनको अवेयर करना स्टार्ट किया, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से लोगों को बताया कि भाई कैसे इसको ठीक किया जा सकता है और कैसे ये गंभीर समस्या बनता जा रहा है, इसका समाधान क्या होना चाहिए, इसका प्रबंधन कैसे होना चाहिए। पब्लिक तक वो सब चीजें पहुंचाई, कम्युनिटी ने इसका बहुत साथ दिया। देहरादून में अगर हम बात करें तो वार्ड नंबर 97 हर्रावाला जिसे कहा जाता है, वहां के पूरे वार्ड का प्रबंधन अभी वेस्ट वॉरियर्स अपने आप कर रहा है, जहां पे हर घर के द्वारा जो है कूड़ा अलग करके दिया जाता है और वो कचरा अलग होने के बाद सीधा हमारा जो स्वच्छता केंद्र हर्रावाला पे स्थापित है वहां पर पहुंचता है। तो जब कचरा अलग होके जाता है तो उसका प्रबंधन भी उस तरह से अच्छे से किया जा पाता है। इसके साथ ही सेंसधारा हो गया, उसके लगते हुए गांव हो गए, मुनि की रेती हो गया, आपका कैंपटी फॉल एरिया हो गया, हर की दून ट्रैक हो गया पूरा आपका, वहां के गांव हो गए, रामनगर जिम कॉर्बेट हो गया। तो उत्तराखंड में इन तमाम जगहों पर जो है हम लोग काम कर रहे हैं और ये काम तभी सफल हो पा रहा है कि इसमें जो लोग हैं उनकी भागीदारी पूरी हमें मिल पा रही है।

0: महाभारत में द्रौपदी के स्वयंवर की कहानी हम सब ने सुनी है। अर्जुन ने मछली की आंख को निशाना बनाकर स्वयंवर जीत लिया था। इतने सारे योद्धा थे लेकिन सिर्फ अर्जुन ही क्यों जीते? इसका कारण है कि अर्जुन अपने गोल, अपने एम को लेकर बहुत फोकस्ड थे। उन्हें उस मछली की आंख के सिवाय और कुछ भी नहीं दिखा। ऐसा ही कुछ हमें अपने जीवन में करने की जरूरत है। जो भी आपका एम है, जो भी आपका गोल है, सिर्फ और सिर्फ उस पे फोकस करें, बाकी सब भूल जाएं। उस एम को पाने में क्या चैलेंज आएंगे, कितना टाइम लगेगा, इस बारे में सोचो ही मत, बस फोकस, फिर आपको जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता।
1: आपने अभी बात करी कचरा अलग रखने की। काफी लोगों को ना कचरे को सेग्रीगेट करने का मतलब नहीं पता, मतलब उनके लिए गीला कचरा भी एक ही बात है, सूखा कचरा भी एक ही बात है, तो इन दोनों को क्यों सेग्रीगेट करना चाहिए, ये आप बता दें।
2: एक शब्द जो कूड़े के लिए अक्सर इस्तेमाल होता है वो है कूड़ादान। तो हम लोगों से इसकी परिभाषा के लिए बात करते हैं कि कूड़ादान वर्ड क्यों बना है। और दान तभी होता है जब वो किसी अच्छे के भले के लिए होता है। तो जैसे आप नेत्र दान करते हैं, अंग दान करते हैं, रक्त दान करते हैं, कन्या दान करते हैं, गौ दान करते हैं, वैसे ही आप कूड़ा दान भी करते हैं। तो केवल कूड़े को इकट्ठा करके देना इज नॉट द दान, वो दान नहीं कहलाएगा। कूड़ा अगर अलग होगा तभी वो दान कहलाएगा। और अलग हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमें नेचर ने दी हैं, जो चीज़ें प्रकृति ने दी हैं, जिसमें आपका खाना हो गया, फल हो गए, सब्जियां हो गई, या फूल हो गए, पत्ते हो गए, ये वो चीज़ें, तमाम चीज़ें हैं जो अपने आप डीकम्पोज हो जाती हैं, अपने आप जो है वो नेचर में ख़त्म हो जाती हैं। उसको अगर अलग किया जाए और वापस नेचर को दे दिया जाए, इन द सेंस कि मिट्टी में उसको दफना दिया जाए, तो अपने आप वो खाद बन जाती है। और जितना भी रिसाइकलेबल है, जो कि मैन मेड है, जिसमें प्लास्टिक खासकर आता है, पेपर आता है, कार्डबोर्ड आता है, मेटल आता है, ग्लास आता है, उसको अगर ढंग से अलग किया जाए और रिसाइकलिंग कंपनी को दिया जाए तो वापस एक नई चीज़ बन जाती है। तो लोगों तक हमने इस चीज़ को, मैसेज को बहुत क्लियरली पहुंचाया कि कूड़ादान केवल कूड़े देने से नहीं होगा, कूड़े को विभाजित करके सही तरीके से देना ही कूड़ादान कहलाएगा।
1: आपने बात करी कि 2012 में आपने शुरुआत की थी
2: जी,
1: तो उस टाइम पे लोगों की क्या मानसिकता थी, और आज जब आप 2023 में बैठे हैं, आपने इतना काम करा है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं, तो लोगों में क्या बदलाव देखते हैं आप?
2: 2012 में भी समस्या थी और आज हम 2023 में, तो तब भी समस्या यही है।
1: बिल्कुल।
2: और समस्या अब बहुत गंभीर हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जिस तरह से उत्तराखंड में टूरिस्ट हमारा जो है इंक्रीज हुआ है, क्योंकि चारधाम यात्रा पे आपको पता है कि हर साल लाखों जो है पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं, और वैसे भी ये पर्यटक नगरी कही जाती है, देवों की नगरी कहा जाता है उत्तराखंड को, तो तमाम पूरे प्रदेश से, पूरे देश से जो है लोग यहाँ पहुँचते हैं, तो उसी तेजी से जो है यहाँ पर कचरा भी यहाँ पर पहुँच रहा है। तो उसके प्रबंधन के लिए जो है हमने काम करना शुरू किया। समस्या गंभीर है और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, साथ में मुझे खुशी है कि सरकार भी इसमें हमारा बहुत सहयोग कर रही है, जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो भी इसमें हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं, और लोगों में अब ये मैसेज बहुत क्लियरली जा रहा है कि कूड़े को अलग करके जब आप देंगे तो ही इसका प्रबंधन हो पाएगा, नहीं तो कूड़े के पहाड़ बनते जाएंगे।
1: बिल्कुल, कूड़े के पहाड़ों की बात करी आपने, ये पहाड़ आज भी हैं और कल भी शायद होंगे, लेकिन आने वाले समय में वेस्ट वॉरियर और वेस्ट मैनेजमेंट मिलकर फ्यूचर में क्या ऐसा चेंज लाने वाले हैं, या क्या आपका ऐसा गोल है फ्यूचर में?
2: दो चीजों पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। पहला तो है कि मॉडल वार्ड बनाना और साथ में MRF को सेटअप करना। MRF मतलब हुआ कि मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, या इसको कह सकते हैं तो स्वच्छता केंद्र, मतलब कि जहां पर भी आप कूड़े को बात करते हैं अलग करने की, तो जब तक आपको अलग करने के बाद उसका समाधान आप नहीं दे पाएंगे, तो फिर वो उसका कुछ अलग करने का जो पर्पस है वो सब खत्म हो जाएगा। हर्रावाला में ही, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, कि एक स्वच्छता केंद्र का निर्माण किया गया है, जो कि नगर निगम देहरादून के साथ मिलकर के किया गया है, वहां पर लोगों द्वारा अलग जो कूड़ा किया जाता है वो लेकर आया जाता है, गीले कचरे से वहां पर खाद बनाई जाती है, और जितना भी सूखा कचरा है उसको अलग अलग और विभाजित करने के बाद जो रिसाइकलर्स हैं वहां तक उनको पहुंचाया जाता है। तो हमारी पूरी कोशिश, पूरा प्रयास है कि ऐसे मॉडल्स को पूरे उत्तराखंड में, ना केवल पूरे भारत में, ऐसा एस्टैब्लिश किया जाए, ताकि जितना भी कूड़े का प्रबंधन है वो अच्छे तरीके, बेहतर तरीके से हो पाए। और कूड़ा जब तक एक मटेरियल रिकवरी सेंटर पे नहीं पहुंच पाएगा, या लोगों द्वारा अलग से इसको अलग नहीं किया जाएगा, तो ये कूड़े के पहाड़ जो है लगातार बनते जाएंगे। आने वाले समय में हम लोग इस पे ज्यादा काम करने वाले हैं। इसके साथ साथ एक नया प्रोग्राम हम लोग लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम युवा है। युवा प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इसमें कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और जो हमारे स्कूल्स हैं उसमें इंटर कॉम्पिटिशन हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। अभी तक केवल वेस्ट वॉरियर्स या फिर ऐसे तमाम एनजीओस थे जो सफाई अभियान चलाया करते थे या फिर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया करते थे, बट अब एक नई पहल हम लोग करने जा रहे हैं कि कॉलेज इंस्टीट्यूट्स और जो हमारे स्कूल्स हैं वहाँ के जो बच्चे हैं उनको इतना मोटिवेट करें, उनको इतना एम्पावर करें कि वो खुद से अपने आप उठ करके आएं और अपने आप से वो सफाई अभियान चलाएं, अपने आप से वो लोग नुक्कड़ नाटक करें, इतने वो उनके अंदर इतनी पावर आ जाए कि वो अपने आप से जान सकें कैसे पीएल फाइल करनी है, कैसे आरटीआई फाइल करनी है, और उनकी आवाज़ इतनी बुलंद हो कि वो जो भी समस्याएं हैं खासकर कचरा प्रबंधन को लेकर के या पर्यावरण को लेकर के जो

0: इन सभी के बीच में थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा ईमान बचा पाया हूँ। ये क्या कम है कि मैं अपनी पहचान बचा पाया हूँ, कुछ उम्मीदें, कुछ सपने, कुछ महकती यादें बचा पाया हूँ। जीने के लिए बस इतना ही सामान बचा पाया हूँ, इसीलिए मटेरियलिस्टिक चीजों से अच्छा अपनी रियलिस्टिक चीजों के लिए भागिए। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ रियलिस्टिक चीजें काम आती है, मटेरियलिस्टिक तो थोड़े दिन में खराब हो जाती है। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।
1: हाय दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कपरवान, वन ऑफ द मेंबर ऑफ कॉमेडी क्लब देहरादून, और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पे। दो तीन बेरोजगारों ने सोचा क्यों ना कुछ करा जाए। कॉमेडी देहरादून में नहीं था, स्टैंड अप कॉमेडी आर्ट फॉर्म आई नहीं थी, पोएट्री चल रहा था, सिंगिंग चल रहा था, बट कॉमेडी की बड़ा जरूरत थी हम लोगों को। तो उसके बाद डिसाइड करा कि क्यों ना मिलके कुछ करा जाए। तो ऐसे ही कलेक्टिवली सब लड़के मिलके एक क्लब खोल दिया, उसको कॉमेडी क्लब देहरादून बोलते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी का तो देखो सिंपल है, अगर आपको अपनी इज्जत से बहुत प्यार है तब तो मत ही करो, तो अच्छी बात है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप स्टेज में जाते हो और कोई नहीं हंसता, तो आपको तब अपने पे डाउट होने लग जाता है कि बेकार पढ़ाई करी, प्यार भी करा लड़की से, सब चीज में धोखा खाया और स्टैंड अप कॉमेडी भी खराब जा रही है। ये उसके लिए आई थिंक आपको बहुत फेलियर से इस पे फेस करना पड़ता है। आप 10 जोक लेके जाओगे स्टेज में और एक चलेगा, कभी एक भी नहीं चलेगा, तो आपको ऐसे उतरना पड़ेगा और बार बार ऐसे ओपन माइक करके आपके पास एक सेट बनता है, हम उसे 5 मिनट सेट कहते हैं। 5 मिनट के लिए आपके जोक्स बनते हैं जिसे हम टाइट 5 बोलते हैं, फिर वो आप जाके स्टेज पे करते हो। फिर इसमें भी गारंटी नहीं है कि 100% के लिए होगा, 95 समथिंग का रेशियो रहता है ये टाइप, तो इतना ईजी नहीं है, वो ट्राई करके ही पता चलेगा। जो भी एक बार आएगा स्टेज पे उसे पता चल जाएगा कि ये ऐसा करना है या नहीं करना है, या पढ़ाई पे ही ध्यान देना है।

0: रेडियो।
1: समस्या का गुलाम बनने वाले कभी खुद के भाग्य का निर्माता नहीं बन पाते।
0: Talk Radio, tune in for a better life.

0: हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना।
1: Walk Talk Radio.
2: हाय दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कपरवान, वन ऑफ द मेंबर ऑफ कॉमेडी क्लब देहरादून, और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पे। स्टैंड अप कॉमेडी का क्या है कि जैसे आपको कुछ कहना है, आपको जोक्स लिख के लाइव, आपको कहना है डायरेक्टली, आपको माइक पकड़ा दिया जाएगा सामने पे, ओपन माइक में 8-10 लोग रहेंगे और आपको उनको सुनाना है। अब वो बहुत रैंडम लोग हैं, वो जानते नहीं आपको, आप कहाँ से हो क्या हो, तो वो आपका टैलेंट है जोक्स के थ्रू। नहीं तो बहुत पॉसिबल ही नहीं है किसी को रैंडम इंसान को हंसाना, अगर आपके जोक्स नहीं है तो उसके पीछे एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, एक राइटिंग स्ट्रक्चर होता है, तब जाके वो क्लिक होता है, तब लोग हंसते हैं। मतलब ऐसा रैंडम तो बहुत टफ हो जाता है। मैंने तो घर वालों की उम्मीद पहले ही तोड़ दी थी, पढ़ाई से ही तोड़ दी थी मैंने, ऐसे ज़्यादा उम्मीद बना के नहीं रखी उनसे। मेरे पापा खुद स्टेज से रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन ही रहे हैं, आर्मी में वो करते थे, अभी भी करते हैं, स्टेज बहुत करते हैं, तो उनको पता है कि स्टेज में कैसा होता है क्या होता है। वो खुद मानते हैं बहुत टफ होता है आपको स्टेज में जाके किसी को हंसाना, तो पहले बोल देते हैं कि बहुत बड़ी बात है कर रहे हो, तो ये वैसे ही बहुत बड़ी बात है, इसका आगे हम इतना नहीं सोचेंगे। मेरा तो बहुत सपोर्ट करते हैं एंड शायद यहाँ पे जितने हैं सबका ही करते हैं, ऑडियंस का थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। हमने बहुत से ऐसे शोज भी देखे, मुझे याद है एक शोज कर रहा था मैं यहाँ पे, 600 की ऑडियंस थी। अब मिडिल ऑफ द शो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, साइड से एक मैनेजमेंट का आदमी आया, मुझे कहता है कि भाई अनाउंस कर दो कि गर्मा गर्म चाय और नमकीन कुरकुरे आपका इंतजार कर रहे हैं, और मेरे को मिड ऑफ द परफॉर्मेंस ही बोलना पड़ा। और देहरादून की जनता इतनी प्यारी है, सब उठ के चले गई चाय पीने, ऐसे लोग। एंड देन उसके बाद मेरे को बोलते कि लाओ स्टार्ट करो तो मैं कह रहा यार यूट्यूब पे थोड़ी देख रहे हो तुम, कि सब पॉज कर दिया फिर स्टार्ट कर दिया तो बहुत होता है कॉमेडी में, लाइक अप्स एंड डाउन। आपको कुछ शो बहुत अच्छे जाते हैं, कुछ शो बहुत खराब जाते हैं, ऑडियंस पे डिपेंड करता है। जोक्स बेसिकली सब ऑडियंस पे ही डिपेंड करता है। सरकैज़म क्या ऑडियंस को समझ में आ रहा है, अवेयर भी होना चाहिए ना ऑडियंस। मैंने बात में किसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, उनको कोई फर्क ही नहीं है, तो 50% गेम ऑडियंस का है। अगर वो अवेयर नहीं है, उनको कुछ चीज़ पता नहीं है, किसी को समझ में नहीं आते जोक्स। जैसे अगर मैं किसी को बोलूँ कि यार मैं एक हॉन्टेड हाउस गया था, तो लोग सीरियस हो जाते हैं, क्यों गए थे आप, क्यों वहाँ नहीं जाना चाहिए था, वो इतने सीरियस हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि आगे सुन ले क्या कह रहे हैं। नहीं, कॉन्टेक्स्ट से कोई मतलब नहीं, बहुत सीरियस होके सुनते हैं लोग कॉमेडी। कुछ कुछ है ऑडियंस, कुछ कुछ नहीं है, तो जो है हम उनके पास पहुँचने की कोशिश करते हैं फिलहाल।

0: हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। मैं हूं आप सभी के साथ किरण, और पॉडकास्ट की सीरीज में आज एक और गेस्ट के साथ मैं हाजिर हो चुकी हूं आप सभी के बीच में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड गढ़वाल और कुमाऊं रीजन के नाम से बहुत ज्यादा जाना जाता है। हालांकि बहुत सारी बोली भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको ये देखने को मिले कि एक गढ़वाली मुंडा जो है, अब मैं मुंडा यूज क्यों कर रही हूँ वो आपको पता चल जाएगा, एक गढ़वाली मुंडा जो है वो भांगड़ा कर रहा है, और इतना गजब का भांगड़ा कर रहा है, तो थोड़ा सा हम अचंभित हो जाते हैं ना, थोड़ा सा हमें सरप्राइजिंग लगता है। हालांकि लगना नहीं चाहिए, कोई भी डांस फॉर्म कोई भी कर सकता है, बट यूजुअली हमें ऐसे देखने के लिए नहीं मिलता है। तो आज के जो गेस्ट है ना, वो भी थोड़ा सा हटके है, क्योंकि है तो ये गढ़वाली, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि ये गढ़वाली है, क्योंकि ये पंजाब की तरह इनकी पर्सनालिटी है, पंजाबी लोगों की तरह पर्सनालिटी है, पंजाबी भांगड़ा डांस फॉर्म ये इतनी बेहतरीन तरीके से करते हैं, लोगों को सिखाते भी हैं। तो बिना किसी देरी के आप सभी से मुलाकात करवाती हूँ अजय की, जो कि ये फाउंडर है देहरादून भांगड़ा क्लब की। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल अप करने के लिए देहरादून भांगड़ा क्लब को। बेसिकली मेरा नाम तो आपने बता दिया अजय, लेकिन इस डीबीसी के पीछे बहुत सारे लोग हैं, मतलब इंक्लूडिंग 50+ मेंबर्स हैं। तो उन सब की तरफ से मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि काफी लोगों को हमारे बारे में जानने को मिलेगा, और मोटिव जो हमारे इसके पीछे है तो वो आज जानने को मिलेगा। तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल से हमें एक मीडियम मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जहाँ से हम लोगों को चीजें बता सकते हैं।
0: बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हमें भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, हर पॉडकास्ट से मिलता भी है। और जैसे कि आपने बताया कि आज जो है हम लोगों के बीच में ये रखेंगे कि हमारा डीबीसी का मोटिव क्या है, हम क्या चाहते हैं, उन सारी बातों से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके बारे में पहले जानना चाहेंगे। अजय कौन है, कहाँ से आता है, क्या करता है, डीबीसी यानी कि देहरादून भांगड़ा क्लब कैसे स्टार्ट हुआ, इसके बारे में बताइए।
1: बेसिकली अगर जर्नी देखे जाए और मेरे बारे में देखा जाए, तो मैं डिफेंस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो अब एक डिफेंस फैमिली जब बिलोंग करती है, तो वो हर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से हम लोग देख के आए, और इस पंजाब से कनेक्टिविटी जब हुई थी, जब मेरे फादर जो थे वो पोस्टेड थे पंजाब में, तो वहां से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ, एक वाइब जो है वो मेरे अंदर आ गई है। और मेरी मम्मी की भी पढ़ाई पंजाबी लैंग्वेज में हुई है।
0: अच्छा,
1: यस। तो
0: ऐसे कैसे?
1: ये क्योंकि मेरे नाना जो थे वो एयरफोर्स में थे, तो उस समय वो चंडीगढ़ में पोस्टेड थे, तो वहां से ही मम्मी की पढ़ाई हुई, और मेरी मम्मी को पंजाबी में बोलना लिखना सब कुछ आता है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से एक वायरस तो नहीं कहूंगा मैं, एक छोटा सा कीड़ा कह सकते हैं, हाँ, जीन में आ जाता है वो चीज। जर्नी मेरी भंगड़ा को लेके हुई थी जब मैं ग्राफिकेरा में मैंने एडमिशन लिया था, ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी में, और हमारा पहला बैच था मतलब 2011 का, उस समय फेस्ट होता था ग्राफिकेरा डीम्ड में। तो हिल में बस एक डिसीजन लिया गया कि यार चलो एक भंगड़ा भी हमारे यहाँ होना चाहिए। तो दो तीन चार लोग हम लोग दोस्त थे, तो उन्होंने बोला यार अजय चलो भंगड़ा करते हैं, एक ग्रुप है वो हमें सिखा देगा, बाकी हम वीडियो को देख के सीख लेंगे।
0: अच्छा।
1: तो मैंने चलो ठीक है, ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, और क्योंकि भंगड़े को सुन के ही सबके अंदर एक एनर्जी ऑलमोस्ट वो आई जाती है।
0: हाँ।
1: तो हमने वहां से इसको स्टार्ट किया, और बस ऐसे ही किया था कि चलो फेस्ट आउट कर लेते हैं, और बस यही था हमारी जर्नी स्टार्ट भंगड़े के साथ कनेक्टिविटी। बट धीरे धीरे जैसे कॉलेज में हम लोग करते गए, तो वो चीजें और आती गई कि हाँ यार अब तो और करना है और करना है। तो जब कोई चीज कनेक्टिविटी बन जाती है एक डांस फॉर्म के साथ, तो डेफिनेटली इंसान उसको करने में पीछे हटता नहीं है, क्योंकि हमें भी करने में उसको अच्छा लगता था, लोगों को भी धीरे धीरे पसंद आ रहा था। तो मेरी जो जर्नी है वो भंगड़ा का लेके यहाँ से स्टार्ट हुई है।

हम सभी यहाँ एक मंजिल तक पहुँचने के लिए आए हैं जो पूरी तरह हमारी होगी। कुछ लोग इसे लक्ष्य कहते हैं, कुछ इसे प्रसिद्धि कहते हैं और कुछ इसे केवल जीवन कहते हैं। किसी भी तरह याद रखने वाली यह एक बात है कि भले ही अपने समय में यह कोई दौड़ नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं है, यह जो कुछ है एक क्षण है और जब आप पहुँचेंगे तो क्षणों का यह संचय आपके पास होगा। मैं स्वीकार करती हूँ कि कई बार निराशा चरम पर होती है और मेरा एक हिस्सा उस उन्मादी समय के मुंबई लोकल पर रहना चाहता है, लेकिन जिस चीज के लिए मैं सबसे अधिक आभारी हूँ वह यह है कि जब वह क्षण शांत हो जाता है और मैं खाली सुनसान मंच को देखती हूँ तो मुझे शांति का एहसास होता है कि जो मुझे सही चुनाव करने का आश्वासन देता है। मैं अपने आप को कहानीकार नहीं कहूंगी क्योंकि वास्तव में मैं सिर्फ एक कहानी हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझ में देखने और सुनने की उतनी ही क्षमता है जितनी मुझे देखने और सुनने की क्षमता है। इन द एंड ऑल आई रियली वॉन्ट टू से इज आई एब्सोल्यूटली लव द फैक्ट दैट यू एज माई लिसनर एम्पावर मी जस्ट एज मच एज आई एम्पावर यू एज योर स्पीकर।

0: तो आप इन शॉर्ट हमें भी थोड़ा सा बताना चाहोगे, क्योंकि बहुत सारे आम लोगों को सिर्फ ये पता है कि ठीक है जो है भांगड़ा ऐसे होता है, हाई बीट पे होता है, ऐसे होता है, लेकिन उन्हें डांस फॉर्म के बारे में डिटेल में नहीं पता। बट इन शॉर्ट अगर आप थोड़ा सा उस पे लाइट डालना चाहो कि कितनी फॉर्म्स में होता है।
1: हाँ, अगर मैं वैसे देखूं, क्योंकि टेक्निकलिटी भी इसमें जा सकते हैं टेक्निकल, लेकिन मैं जाते हैं, हम हमेशा देखते हैं कि ऑडियंस व्यू से, क्योंकि ऑडियंस एक भंगड़े को अलग अलग तरीके से देखना चाहता है
0: जी।
1: और जब भी हम कहीं परफॉर्म करते हैं तो हम उसी चीज को देखते हैं कि हमारी ऑडियंस क्या देखना चाहती है।
0: हाँ।
1: तो कई बार कई ऑडियंस, जैसे कि मोस्टली सबको ये पता है भंगड़ा गाना बजेगा, पंजाबी सॉन्ग बजेगा और नाचना है बस खुल के।
0: हाँ।
1: ठीक है, एक वो चीज होती है तो लोगों को वो भी पसंद है।
0: हाँ।
1: तो वो हम कॉन्सर्ट कराते हैं।
0: अच्छा।
1: ठीक है, बेसिकली अगर आप एक टेक्निकल उसमें जाओ तो भंगड़े के अंदर काफी स्टेप्स है। अब ऐसे ऐसे नाम है, पटाखा, फुलका, आप कोई फुलके को देख के सोचता है कि रोटी है।
0: हाँ।
1: तो उसी से लेके वो स्टेप बना है,
0: आई थिंक फुलकारी जैसे दुपट्टा।
1: हाँ, राइट। तो वैसी है, गिद्दा है, मलवाई गिद्दा है, झूमर है। तो ये टेक्निकल वर्ड्स हैं और एक टेक्निकल सेगमेंट्स होता है। तो
0: अच्छा।
1: जब भी हम कंपटीशन में जाते हैं तो इंडिया के अंदर एक इंटरनेशनल भंगड़ा कंपटीशन होता है।
0: अच्छा।
1: तो उसमें भी हम कॉम्पीट करते हैं और वहां पे ये सारी चीजें यूज करते हैं, लेकिन इससे मैटर नहीं है। मैंने बताया कि लोग भंगड़े को किस तरीके से देखते हैं,
0: आपकी ऑडियंस,
1: ऑडियंस मैटर करती है कि ऑडियंस जिस तरीके से डीबीसी को देखना चाहता है, हम उनको वही भंगड़ा जो है उस फॉर्म पे उनको दिखाते हैं।
0: तो अभी तक जैसे आपने बताया कि कॉलेज में आप बीसीए कर रहे थे, तो जब आपने ये स्टार्ट किया, चलो ठीक है उस टाइम पे तो ये होता है कि आप पढ़ रहे हो कॉलेज में, एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो घर वालों को उस चीज से इतनी तकलीफ नहीं होती है। उनका बस ये रहता है कि ठीक है पढ़ाई पे भी ध्यान रखना और एक्टिविटी भी कर लो। बट उसके बाद जब आपका इसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया, आपकी पार्टिसिपेशन बढ़ती गई होगी, आप बहुत ज्यादा इंडल्ज उस चीज में हो रहे होंगे, तो घर वालों को लग रहा होगा कि ये गया तो उस चीज के लिए था, अभी क्या कर रहा है या किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो थोड़ा सा उन्होंने कुछ बोला इस चीज पे?
1: हाँ, मतलब फैमिली का अगर देखा जाए तो सपोर्ट इतना नहीं था, और हमारे भी काफी मेंबर्स होते, क्योंकि हमारे इंडिया में देखा जाता है कि हर कोई गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब इन चीजों में फोकस करता है, लेकिन काफी ऐसे बच्चे होते हैं जिनपे बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट है, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते।
0: हाँ।
1: मैं अपनी बात करूं और कि जैसे कि मैं ये चीजें करता था, तो मैं अपने कॉलेज टाइम पे बीसीए और एमसीए में मैं टॉपर लिस्ट में रहा हूं।
0: अच्छा।
1: तो मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से उस चीज को मैनेज कर रहे हो। तो जब आप उस चीज को मैनेज करने लग जाते हो तो डेफिनेटली आपके पेरेंट को कोई इशू नहीं होता है। हाँ, ये तो था कि यार आप डांस क्यों कर रहे हो, क्यों करना है भंगड़ा। ठीक है, लेकिन कैसे समझाए कि यार अब कनेक्टिविटी बन गई है तो वो चीज तो छूट नहीं सकती है। तो बस मेरी पढ़ाई को लेके तो कभी वो नहीं रहा। बीसीए और एमसीए के बाद मेरे प्लेसमेंट भी हुए हैं, मैं डिफेंस फोर्सेस के लिए भी मैंने ट्राई किया, नौवार में एसएसबी में गया हूँ।
0: अच्छा।
1: तो ये सारी डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को किस तरीके से मैनेज करते हो। बट हाँ, फैमिली बिल्कुल भी सपोर्ट अभी भी नहीं करती है।
0: अच्छा।
1: तो कहीं ना कहीं ताने मारते हैं काफी, मतलब हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, लेकिन अब डिसीजन हमारा है और लाइफ में जब हमने डिसीजन लिया है कि इसमें कुछ करना है तो डेफिनेटली उस चीज को प्रूफ भी हमें करके दिखाना है।

Boss has a title, but a leader has the people. हर कंपनी में, हर बिजनेस में एक बॉस यानी कि हेड ऑफ द कंपनी जरूर होता है. बाकी सारे एम्प्लॉयज उसके अंडर काम करते हैं. बॉस का टाइटल तो सब हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा लीडर वही होता है जो ना कि सिर्फ ऑर्डर्स दे बल्कि खुद एक एग्जाम्पल सेट करे, अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करे, एक पॉजिटिविटी का एनवायरमेंट क्रिएट करे. और ऐसा लीडर टाइटल के साथ साथ अपनी टीम का दिल भी जीतता है.

हाय, मैं हूं अंशुल भट्ट, फाउंडर एंड सीईओ फॉरेस्टिको रिजॉर्ट ग्रुप, और आप मेरे को सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पे। जब हम बात करते हैं स्टार्टअप्स की और एंटरप्रेन्योरशिप की, तो बेसिकली स्टार्टअप, जब हम कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब हमारी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है किसी भी काम को करने में, और कुछ इनोवेशंस की वजह से किसी एंटरप्रेन्योर की कुछ काम करने के तरीके से अगर सोसाइटी की वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो वो बेसिकली एक स्टार्टअप होता है। ऑब्वियसली अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है सोसाइटी के किसी भी सेगमेंट में, किसी भी चीज में, तो ऑब्वियसली वो वहां से अर्न भी करता है, और जिसके वजह से वो धीरे धीरे ग्रो करता है। हमने देखा है क्या, इतने टाइम में इंडिया में ही काफी स्टार्टअप सब आ रहे हैं, 2014-13 के बाद से लेके कंटिन्यूस स्टार्टअप्स ग्रो कर ही रहे हैं अलग अलग सेक्टर में, और खास तौर पे सर्विस सेक्टर में तो स्टार्टअप की एक तरीके से अब बाढ़ आ रही है। लोग अलग अलग तरीके के सेक्टर में टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने अपने जो उनके आइडियाज हैं, जो उन्होंने सोचा हुआ है कि हम इस सेक्टर में ऐसे करके काम करेंगे, तो उसको ग्रो करवा रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं तो हर किसी का कभी ना कभी सपना रहता है कि वो कुछ बड़ा करे, वो कुछ स्टार्ट करे जिसके वजह से लोग उसको याद रखें, लोग उसको रिकॉग्नाइज करें, और इसी मोटिवेशन के साथ हर कोई कुछ ना कुछ काम स्टार्ट करता है। लेकिन काम स्टार्ट करना एक अलग है, और उस काम को एक बड़े लेवल पे ले जाना ये एक पूरा ही अलग, मतलब अगर आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, आपने एक शॉप स्टार्ट कर दी, कुछ भी ऐसा कि जिससे आपको अर्निंग हो रही, तो आप एक एंटरप्रेन्योर हो। लेकिन उस एंटरप्रेन्योरशिप को आप उस लेवल पे लेके जाओ जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल का, नहीं लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल का फायदा हो, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, बहुत सारे लोग जो आपकी टेक्नोलॉजी है या फिर जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे फायदा ले पा रहे हैं, तो उसके बाद ही आपको कहीं ना कहीं सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ, ये इसने ये स्टार्ट किया और इसका ये आइडिया था और ये बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहा है। तो इस पूरे जो जर्नी में बहुत सारी चीजें हैं कि जिसको आपको ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज तो अगर मैं, क्योंकि मैं भी खुद एक एंटरप्रेन्योर हूं और मैंने 2019 में स्टार्ट किया उत्तराखंड में, उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया में, क्योंकि मैं पहाड़ों से ही बिलोंग करता हूं। मैं यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन में पास आउट होने के बाद जो मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मेरे को दिखा और जहां पे अपॉर्चुनिटी भी दिखी, वो उत्तराखंड में ट्रैवल एंड टूरिज्म था, और मैं उत्तराखंड से बाहर भी जाके कुछ स्टार्ट नहीं करना चाहता था। तो मैंने देखा कि जिस फील्ड में यहां पे सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म है, और यहां पे ऐसा नहीं है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म में कोई काम नहीं कर रहे हैं या स्टार्टअप्स नहीं है, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं ट्रैवल या टूरिज्म में, उत्तराखंड का कोई अपना ब्रांड हो, ऐसा ब्रांड हो क्या, अगर कोई भी उत्तराखंड जा रहा है तो उसके दिमाग में सिर्फ वही चीज चले, तो ऐसा कुछ यहाँ पे था नहीं। तो एक अपॉर्चुनिटी भी थी राज्य के लिए, अपने ही होम टाउन के लिए आप कुछ कर सकते हो। तो मैंने 2019 में जनवरी में स्टार्ट किया कंपनी जिसका नाम था फॉरेस्टिको रिजॉर्ट ग्रुप, और जो इसकी थीम थी वो ये थी कि हम सिर्फ एक अकोमोडेशन चेन नहीं होंगे, बट हम एक यूनिक अकोमोडेशन चेन होंगे। हम सिर्फ लोगों को कमरा नहीं बेचेंगे, हम सिर्फ लोगों को पैकेज नहीं बेचेंगे, बल्कि हम हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा वो एक्सपीरियंस देना रहेगा किसी भी ट्रैवलर को। तो इस थीम के साथ हमने स्टार्ट किया, और 2019 से 21 तक अभी हमारी 5 प्रॉपर्टीज उत्तराखंड में ऑपरेशनल है, 2 अभी विद इन अ मंथ शायद हम लोग कर लेंगे, ऑपरेशनल कर देंगे। तो ये वो था कि हमने मतलब कैसे करके स्टार्ट किया, इस बीच बहुत सारे चैलेंजेस भी आए। तो आई होप स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको हल्का सा आइडिया आया होगा कि क्या ये पूरी जर्नी होती है, कैसे करके आप कर सकते हो। तो दोस्तों, जल्द मुलाकात होगी नए एपिसोड में, तब तक के लिए आप सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

हाय, मेरा नाम है अंशुल भट्ट और मैं फॉरेस्टिको रिजॉर्ट ग्रुप का फाउंडर एंड सीईओ हूं और आज आप मेरे को सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। तो लास्ट एपिसोड में जो हमने बात की थी वो थी क्या स्टार्टअप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और कैसे ये पूरी जर्नी रहती है। आज आपको मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा क्या कैसे करके मैंने जो फॉरेस्टिको रिजॉर्ट ग्रुप है उसको स्टार्ट किया है और कैसे करके हमारे जो स्टार्टअप ने एक तरीके से रेस पकड़ी है, कैसे करके हमने अपनी ही ग्रोथ देखी है, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। 2019 में हमने स्टार्ट किया था फॉरेस्टिको रिजॉर्ट ग्रुप। हमारा जो मेन मोटिव था वो था कि हम उत्तराखंड में जितने ट्रैवलर आ रहे हैं उनको एक एक्सपीरियंस दें, क्योंकि हम जितने भी सारे ब्रांड यहाँ पे इंडिया में हैं जो हॉस्पिटैलिटी में टॉप के ब्रांड हैं वो अलग अलग तरीके से रूम सेल कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है। तो हमारा ये था कि हम एक तो जो हमारी प्रॉपर्टीज होंगी वो कहीं ना कहीं से एक यूनिक अकोमोडेशन होगा, क्या वो नॉर्मल कोई लॉज नहीं होगा या नॉर्मल कोई कमरा हम सेल नहीं करेंगे, हम एक एक्सपीरियंस सेल करेंगे। तो ऐसे करके हमने स्टार्ट किया। 2019 में हमने चोपता तुंगनाथ जो एक लोकेशन है वहाँ पे हमने अपनी एक यूनिट खोली और धीरे धीरे करके केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी, नैनीताल, अलग अलग जगह पे हमने यूनिट्स स्टार्ट करी हैं और अभी दो यूनिट हमारी उत्तराखंड के चमोली और टिहरी में हो जाएंगे। इसके अलावा जितने भी ट्रैवल से रिलेटेड पैकेजेस होते हैं अलग अलग प्रोडक्ट भी हम लोग सेल कर रहे हैं। बस ये चीज को हम मेन वो लेके चल रहे हैं जो हमारा यूएसपी है कि हम एक्सपीरियंसेस ही सेल करें। जो भी आ रहा है वो सिर्फ, क्योंकि जितना भी ट्रैवलर उत्तराखंड में आता है वो कहीं ना कहीं अपने पूरे साल भर की कुछ छुट्टियां बचा के आता है, बहुत जगह से पैसे अरेंज करके आता है, अपने बच्चों की स्कूल की छुट्टियां देख के आता है, तो उसका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, उसके पैसे बहुत ज्यादा कीमती है। और हमारा जो मेन मोटिव है क्या एज अ सिटीजन ऑफ हिल्स उत्तराखंड, क्या हम उसके जो पैसे का उसका पूरा वैल्यू उसको दे। तो बात करते हैं क्या हमारे स्टार्टअप ने कैसे रेस पकड़ी। तो स्टार्टअप में सबसे जो जरूरी है वो आपके लिए लोग हैं, लोग भी वो लोग जो आपके टीम में हैं, क्योंकि अगर आपकी टीम स्ट्रांग है और आपके टीम में अलग अलग माइंडसेट के साथ लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग फील्ड के लोग जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका स्टार्टअप स्पीड अप करेगा ग्रोथ को लेके। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, हमारे साथ कॉर्पोरेट से हमारे साथ अलग अलग फील्ड के कुछ लोग हमारी टीम में आना स्टार्ट किया और इससे ये हुआ कि हमें जो फंडिंग चाहिए थी स्टार्टअप के लिए वो फंडिंग हमें इजिली मिलने लगी, क्योंकि टीम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी स्टार्टअप के लिए। और जब कोई भी आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो सिर्फ आपका आइडिया देख के इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आइडिया बहुत सारे हैं। हम जिस कमरे में बैठे हुए हैं इस कमरे में भी मतलब हवा में ही इतने सारे आइडिया होंगे, लेकिन किसी भी आइडिया के ऊपर कोई भी ऐसा इन्वेस्ट नहीं करता है। कोई भी इन्वेस्टर है वो आपकी टीम देखता है, आपका मिशन देखता है, आपका विजन देखता है, आप किस फील्ड में इन्वेस्ट करवा रहे हो उससे और उसको कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, ये सारी चीजें कैलकुलेट करके ही कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। तो हमारे साथ भी जब हमारी लोगों ने टीम देखी और ये देखा कि ये फास्ट ग्रोथ कर रहे हैं तो लोगों ने धीरे धीरे धीरे धीरे करके हम पे पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करा। और जैसे जैसे हमारे पास फंडिंग्स आई तो हमें ऑब्वियसली हमने आईटी में इम्प्रूवमेंट करे, हमने अपने टेक्नोलॉजी से लेके ऑपरेशन तक हमने हर चीज में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करे, हमने जो फील्ड के एक्सपीरियंस लोग हैं उनको लेके आना शुरू किया टीम में और यहाँ से हमारे पूरे स्टार्टअप को एक पेस मिला। जो अभी हम अपने आप को कहते हैं वो हम कहते हैं कि हम इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिक अकोमोडेशन चेन है और जो हमारा मिशन है वो है कि हम इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट यूनिक अकोमोडेशन चेन बने, क्योंकि लार्जेस्ट अकोमोडेशन चेन बहुत सारी हैं लेकिन हम अपने आप को जो अपनी हमारी यूएसपी है वो है कि हम लार्जेस्ट यूनिक अकोमोडेशन चेन हों, क्योंकि हम सिर्फ रूम या सिर्फ होटल सेल नहीं कर रहे हैं, हम ट्रैवलर को एक एक्सपीरियंस उसको दे रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरी स्टार्टअप की ये जर्नी रही है और जो मैंने आपसे बातें शेयर करी हैं इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: कोई टूटे तो उसे बनाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। सीखो, रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। अगर ये आपको आ गया ना, तो आपके रिश्ते बहुत आगे तक जाएंगे।
0: वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक, ट्यूनिंग फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो,
2: वॉक टॉक रेडियो।
3: हाय, दिस इज अनुकृति गुसाई रावत और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। ऐसा जो कंपैरिजन है कि वुमेन आर स्ट्रॉन्गर, मेन आर स्ट्रॉन्गर, आई डोंट थिंक सो कि ये कंपैरिजन होना चाहिए। वुमेन आर स्ट्रॉन्गर इन देयर ओन वे, मेन आर स्ट्रॉन्गर इन देयर ओन एस्पेक्ट्स। बिकॉज अगर आप देखोगे एक महिला के लिए जो जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय मैं कहूंगी, हर पूरी जीवन परिस्थितियां अलग अलग रहती हैं। एंड यस, आई विल से देर आर सम थिंग्स, सम इंस्टेंसेस वेयर वी कैन से कि हाँ, फीमेल्स आर वेरी स्ट्रांग। फॉर एग्जांपल, जब एक महिला माँ बनती है एंड व्हेन शी गिव्स बर्थ, देन वी फील कि हाँ यार, शी हैज सच अ स्ट्रांग यू नो जील। और जब आप, मतलब दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील ऑल्सो विद मेन, आई फील दैट मेन आर स्ट्रांगर, क्योंकि वो कई बार जब आप ज्वाइंट फैमिलीज को अंडरस्टैंड करेंगे या इंडियन जो कल्चर फैमिली का रहा है व्हेन, और इंडियन कल्चर के आई थिंक अराउंड द वर्ल्ड, कि जब हम मेन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारे घर का जो बोझ है अपने कंधे पे रखे, मेन शुड बी अर्निंग मोर एंड ऑल ऑफ दैट एंड दे टेक केयर ऑफ द फैमिली ऑल्सो, तो ऐसा नहीं है कि दे आर लेस और वुमेन आर लेस। बोथ आर इक्वल एंड शुड बी ट्रीटेड इक्वल।
2: वॉक टॉक रेडियो।

Walk Talk Radio. Hi, this is Anukriti Gusai Rawat और आप मुझे सुन रहे हैं Walk Talk Radio पर. I've been hearing lot of cases कि यार ये बच्चा डिप्रेस हो गया, इस बच्चे को मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझको ये हो रहा है. देर आर केसेस एंड आई थिंक यू नो इसमें कोई बुरा लगने वाली बात नहीं. एंड आई अंडरस्टैंड कि कई बार ऐसा होता है कि फैमिलीज भी इस चीज को नहीं अंडरस्टैंड कर पाती, क्योंकि उनको लगता है कि अरे क्या होता है डिप्रेशन, मतलब ये एक जनरल लेमन चीज है, अरे क्या फालतू बात है. नहीं, डिप्रेशन इज सीरियसली बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट भी है. बट आई एम सेइंग कि उसमें जाना या ना जाना कई बार ऐसा होता है कि हमारे हाथ में नहीं होता. बट यू नो सी, आई वांट टू टेल यू कि ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कोई ऐसा फील्ड हो जिसमें कम हार्ड वर्क लगे. हर जगह स्ट्रगल्स है और हर आदमी का अपना स्ट्रगल होता है, हर किसी की अपनी स्टोरी होती है. एवरीबडी, कई बार लगता है अरे यार इसका तो आसानी से हो गया, इसका थोड़ा मुश्किल हो गया. नो, वी डू नॉट नो, हमें नहीं पता होता कि किसकी जिंदगी में कितना स्ट्रगल है और होता है. तो ओनली फैक्टर, मैंने जैसे पहले भी कहा, द ओनली थिंग इज यार अपने पे भरोसा करना चाहिए बिफोर ट्रस्टिंग एनीबडी. कई बार ऐसा होता है, डिप्रेशन भी अलग अलग टाइप के हो गए आजकल. कई बार डिप्रेशन इसलिए कि गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, कई बार डिप्रेशन इसलिए जॉब नहीं मिली. ठीक है यार, इफ रिलेशन वर्क्स आउट गुड, नहीं चला तो डिप्रेशन पे थोड़ी जाना है.

0: दोस्तों, कई बार हम अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हर चीज के लिए किस्मत पर निर्भर होते हैं। उन्हें लगता है कि वही होगा जो किस्मत में या हमारे हाथों की लकीरों में लिखा हुआ है। पर मैं आपको बता दूं कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मेहनत पर विश्वास करना होता है। किस्मत की आजमाइश तो जुआ खेलने वाले भी करते हैं, इसीलिए अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखें और उसके बाद ही किस्मत पर निर्भर हो। ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहे वॉक टॉक रेडियो।
1: हेलो, मैं सर नीरज भंडारी और मैं हूँ अभी वॉक टॉक रेडियो देहरादून उत्तराखंड में। सो आज तक टीवी में देखता आता था, आज तक यूट्यूब में देखता आ रहा था ये चीजें, बट आज ये अपने साथ एक्सपीरियंस करने वाला, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। सो मैं हूँ नीरज भंडारी और मैं हूँ उत्तराखंड देहरादून से। मैं हूँ एक साइकिल एडवेंचरस गाय, यानी कि मैं साइकिल में करता हूँ टूरिंग। स्पेशल अबाउट मी इज दैट कि मुझे घूमना तो पसंद है, बट मेरे घूमने का जो मेरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है, जो कि है साइकिल। तो मैं पहले, मतलब मुझे एडवेंचर का बहुत शौक था, मैं नॉर्मल ट्रैकिंग वगैरह में जाता था और स्पोर्ट्स का मुझे पहले से शौक था काफी, स्कूल टाइम से लेके। आई वाज अ स्कूल कैप्टन एंड आई वाज अ एथलीट ऑफ द ईयर ऑफ माय स्कूल। सो जब मैं कॉलेज गया, आई हैव डन माय स्टडीज फ्रॉम एसजीआरआई यूनिवर्सिटी देहरादून। तो जब मैं सेकंड ईयर में था, तो मेरे स्कूल के मेरे जो कॉलेज के सीनियर थे, तो वो साइकिल में आया करते थे, मतलब वो मेरे साथ टेबल टेनिस खेलते थे पहले। तो मैंने उनको देखा कि वो साइकिल में आ रहे कॉलेज, तो कहीं ना कहीं मुझे मतलब लगा कि यार मजे तो हैं साइकिल में, ऑब्वियसली फ्यूल भी बच रहा है, यू आर सेविंग योर मनी। तो उसी दिन मैं घर गया और मैंने पापा से रिक्वेस्ट करी कि पापा मुझे साइकिल चाहिए किसी भी हाल में। तो माई फादर वॉज इन आर्मी एंड फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे, जिस दिन मैंने साइकिल ली उसके नेक्स्ट डे मैं अपने कॉलेज गया। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैंने साइकिल ली है, एंड वहाँ पे मैंने अपने कॉलेज के जो मेरे फ्रेंड्स थे वो साइकिल से बिल्कुल भी मतलब इंट्रोड्यूस नहीं थे। तो मैंने उनको बस इतना बोला, देखो गाइस हम कल घूमने जा रहे हैं सहस्त्रधारा, जो हमारी देहरादून का एक फेमस पिकनिक स्पॉट है। तो मैंने उनको कहा हम घूमने जा रहे हैं सहस्त्रधारा, मैंने उनको पूछा नहीं।

0: जिस दिन आपको पता चल गया कि आप कर सकते हैं तो फिर आप कर लेंगे।
1: Walk Talk Radio, tune in for a better life. Walk Talk Radio.
2: क्योंकि मैं साइकिल से पहले अपने घर से मेरा जो सर्कल था अराउंड 15 किलोमीटर के बाहर मैं कभी नहीं गया अपनी लाइफ में। 12 जब मैं कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर में था, साइकिलिंग इंट्रोड्यूस जब मेरे से हुई उससे पहले से, तो जब हमने प्लान बनाया कि चलो ऋषिकेश चलते हैं, देन हम तीन लोग थे, हम लोग सुबह 4 बजे हम लोग ऋषिकेश के निकले अंधेरे में जंगल के रास्ते से। बहुत मज़ा आया, भले ही ऋषिकेश से जब वापस देहरादून आ रहे थे हमारी वाट लग गई थी फुल, बिकॉज वी हैड नो आइडिया कि कैसे पैडलिंग होती है, धूप में कैसे चलाते हैं, क्या क्या खाना पड़ता है। हम लोग खा रहे छोले भटूरे और हमें सुस्ती आ गई आते वक्त, बट जैसे तैसे हम लोग घर आए। देन मुझे फिल्मिंग का तो शौक था, फोटोग्राफी पिक्चर्स एंड ऑल, घर आते सारी फोटोज क्लिक करना, फोटोज एडिट करना, फोटोज अपलोड करना शुरू हो गया। जो रिस्पॉन्स मिला वो बहुत अमेजिंग था, मतलब मुझे खुद नहीं पता लग रहा था कि यार मैं ऋषिकेश गया साइकिल से और ऋषिकेश से वापस आ रहा हूँ। मेरे से पहले बहुत लोग थे देहरादून के जो मतलब मेरे से 3-4-5 साल पहले से साइकिलिंग करते आ रहे, देहरादून ऋषिकेश और धनौल्टी सब जाते रहते थे, बट मैंने कभी खुद देखा नहीं था, बिकॉज लोग करते तो थे बट दिखा नहीं पाते थे, है ना, दिखाएंगे तो ही दूसरों को पता चलेगा, जो दिखता है वही बिकता है, ये वही सेंस आ गया। तो जब मैंने किसी का देखा नहीं था तो मुझे पता कैसे चलता। यहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ कि मैं ऋषिकेश गया तो लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे, नीरज तू ऋषिकेश ला गया, तूने एक दिन में 80-90 किलोमीटर चला ली साइकिल, ऐसे हुआ। तो उसके बाद फिर नॉर्मल राइड्स करने लग गया। फिर एक दिन संडे था तो मैंने और जो मेरे साथ ऋषभ भट्टर है जो मेरे भैया थे, तो हमने प्लान बनाया लेट्स गो टू सुरकंडा देवी जो आता है धनौल्टी में, जो कि देहरादून के नियर बाय 70 किलोमीटर अपहिल है बहुत। तो हमने प्लान बनाया एंड हम लोग निकल गए। तो देखो साइकिल में ट्रैवल करना बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, मतलब एक साइकिलिस्ट भी नहीं सोच सकता कि एक साइकिलिस्ट अगर वो सिटीज़ में कितनी भी टूरिंग कर रहा हो, कितनी भी लॉन्ग टूरिंग कर रहा हो, और अगर वो अचानक से पहाड़ में, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि पहाड़ों में टूरिंग करना कैसा होता है, वो कितनी भी अगर सिटी में ट्रैवल कर ले

रेडियो। वो वक्त कितना भी मुश्किल हो, दिल में हिम्मत रखकर आगे बढ़ते रहिए। वो वक्त भी गुजर जाएगा। हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह आती है। वक्त रेडियो।

0: Hi, I'm Dr. Amit Mehra. आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पे. जो ब्रेसेस हैं, ये जो 1.5 साल आपका ट्रीटमेंट है अप्रोक्सीमेटली ब्रेसेस का, उसमें कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं. डूज एंड डोंट्स भी कंपल्सरीली आपको कुछ चीजें नहीं खानी और कुछ चीजों को खाने का मेथड आपने बदल देना है. जो चीजें आपने नहीं खानी उसमें नंबर 1 आता है, आपको गन्ना नहीं चबाना, आपको नारियल नहीं खाना, आपको रोस्टेड एलमंड्स नहीं खाने. हम देहरादून वासियों को बहुत शौक है सर्दियों में चिक्की खाने का, गचक खाने का, वो सब चीजें नहीं खानी. आपने मुंह में कैरमलाइज्ड टॉफीज नहीं खानी. इसलिए नहीं खानी क्योंकि ये हार्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं. जब हमारे दांतों पे कुछ चिपका होगा और हम एक हार्ड सब्सटेंस को बाइट करेंगे, तो वो जो ग्लू है, वो जो एडहेसिव है जिससे वो अप्लायंस चिपका हुआ है, वो निकल सकता है. अगर वो ग्लू ढीली पड़ गई तो वो अप्लायंस, जब तक आप दूसरी बारी उस डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो, तो वो यूजलेस है. दूसरा आता है मॉडिफिकेशंस ऑफ फूड. उसमें आपने ये ध्यान रखना है कि कुछ भी चीज जो हार्ड है उसको आपने डायरेक्टली बाइट नहीं करना. आपको नॉनवेज खाना है, आप जरूर खाइए, मगर आप लेग पीस या चिकन ब्रेस्ट या मटन के पीस में डायरेक्टली बाइट मत कीजिए. उसके छोटे टुकड़े कर लीजिए और निवाले के साथ खा लीजिए, मतलब बोनलेस छोटे टुकड़ों में खा लीजिए. आप किसी पार्टी में जाते हैं, वहाँ पे आपको पिज्जा मिलता है, आपको वहाँ पे बर्गर मिलता है, आप उसमें डायरेक्टली बाइट मत कीजिए, छोटे हिस्से करके उसको रोटी की तरह खा लीजिए. आप मूवी देखने गए हैं, वहाँ पे पॉपकॉर्न है, तो जरा सॉफ्ट वाला पॉपकॉर्न खा लीजिए. वो जो हार्ड पॉपकॉर्न कर्नल होता है उसको मत खाइए. दीज आर द वे यू मॉडिफाई. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू ब्रश मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड यू हैव टू डू रिंसिंग आफ्टर एवरी मील.
1: वॉक टॉक रेडियो.

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: दोस्तों, ऐसे बहुत से काम हैं जिनके लिए हमें कई लोगों ने कहा होगा कि तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। और जब कोई ये बात बार बार बोले, यही बात बार बार दोहराए, तो एक बार के लिए तो खुद के ऊपर भी डाउट होने लगता है कि यार क्या हम ये कर भी पाएंगे या नहीं। लेकिन आगे बढ़ते हुए कहीं भी आपको ऐसा ख्याल मन में आए तो दोस्त, याद करना उन सारे शब्दों को जो आपको हर वक्त डीमोटिवेट करते हैं, आपको गलत साबित करने में तुले होते हैं। लेकिन आपको उन लोगों को गलत प्रूफ करना है, उनकी बातों को, उनके शब्दों को गलत प्रूफ करना है कि आप नहीं कर पाएंगे। आपको ये प्रूफ करना है कि आप कर पाएंगे। आपको हारना नहीं है, बल्कि उन सबको हराना है जो आपकी हार में खुशी मनाते हैं।

Hi, I'm Dr. Amit Mehra. आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पे. लोगों को क्या होता है कि हम आज ब्रेसेस वाले डॉक्टर के पास आए हैं, उसके पास हैरी पॉटर जैसी कोई जादू की छड़ी होगी, वो कोई मंत्र बोलेगा और हमारे दांत ठीक हो जाएंगे. लोग उसको कोरिलेट करते हैं कि डॉक्टर साहब जब दांत में दर्द होता है आप तो इंजेक्शन देके निकाल देते हो, वो तो एक बारी में खत्म हो जाता है, फिर तो हम आपके पास आते ही नहीं है. मगर ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि ब्रेसेस के इलाज में हम धीरे धीरे दांत को एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन में लेके जाते हैं. अगर मैं आपसे मैथमेटिक्स की बात करूं तो हम महीने में दांत को सिर्फ 1 mm तक ही मूव करते हैं, इसलिए ब्रेसेस का ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है. अप्रोक्सीमेटली 16 to 18 months इज द टाइम पीरियड दैट वी रिक्वायर टू गिव सैटिस्फैक्ट्री रिजल्ट. ये है एक्टिव ट्रीटमेंट जिसके अंदर हमने दांत में ब्रेसेस लगाए हुए हैं और पेशेंट के खराब दांत की पोजीशन सही पोजीशन पे आ गए हैं दांत. इस एक्टिव ट्रीटमेंट के बाद एक रिटेंटिव फेज भी आता है जिसके अंदर पेशेंट को एक प्लेट दी जाती है उतारने और चढ़ाने वाली. रिटेंटिव फेज भी 6 to 9 months का होता है. तो अगर आप ओवरऑल टोटल करो एक्टिव ट्रीटमेंट प्लस रिटेंटिव पीरियड, सो 2 to 2.5 years का इलाज है ये. तो रूल हम पेशेंट को क्या बोलते हैं, दैट यू हैव टू बी अ वेरी पेशेंट पेशेंट. आप में पेशेंस होनी चाहिए ये इलाज करवाने के लिए.

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio. Walk Talk Radio. Walk Talk. Walk Talk Radio.
1: हेलो, मेरा नाम है लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर. ड्रीम बिग एंड हाउ टू अचीव देम. सपने बड़े देखना आसान होता है लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है. ठीक वैसे ही जैसे हमें पहली बार स्कूल जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, मन नहीं लगता है, हम रोते हैं, मम्मी पापा को मिस करते हैं, लेकिन फाइनली हमें आदत लग जाती है. तो मेरा ऐसा ही मानना है कि कोई भी अचीवमेंट, कोई भी सक्सेस को पाने के लिए आपको पहले उस सक्सेस की सीढ़ी की आदत लगानी पड़ेगी. यू हैव टू वर्क हार्ड. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो पहली सीढ़ी पार करोगे जिसे कहते हैं सक्सेस की तरफ पहला कदम.

0: कभी दो पल खुद के साथ भी बिता के देखो, अच्छा लगता है। दुनिया की भीड़ से परे अपने अंदर की आवाज को सुन के देखो, अच्छा लगता है। सुबह से शाम ऑफिस में काम और घर आके आराम, इस सब से हट के बिना किसी टेंशन के कुछ देर अकेले बैठो और खुद से बातें करो। ट्रस्ट मी यार, आपसे बेहतर ना आपको कोई नहीं जान सकता। और सबसे अच्छी एडवाइस अगर लेनी हो तो खुद से पूछ के देखना, जवाब मिल जाएगा।
1: Walk Talk Radio, tune in for a better life.
2: इश्क तेरा तड़पा दे। Hi everyone, this is Sukhbir, और आप सुन रहे

0: हेलो, मेरा नाम है लकी मेहता। लाइफ में लर्निंग्स बहुत जरूरी है और हम ठोकर खा के ही लर्निंग सीखते हैं। कई बार हम भगवान को कोसते हैं, अपनों को कोसते हैं कि हमारे साथ ये क्यों हुआ, हमारा अपना हमसे क्यों रूठ गया, हमारा अपना हमसे क्यों छूट गया। एक्चुअली वो सब हमारी लर्निंग्स होती हैं। गॉड हमें थोड़ी थोड़ी देर में टेस्ट करते हैं। हमारी डेस्टिनी हमें हर जगह टेस्ट करती है। वो ये देखती है कि ये कितना तपा है, क्या ये कुंदन बनने लायक है। एग्जैक्टली, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। और लर्न आप तभी करते हैं जब आपको ठोकरें मिलती हैं। और उसके लिए सबसे पहले आपको अपने एम के लिए लॉयल रहना बहुत जरूरी है। लॉयल्टी की तो बहुत इम्पोर्टेंस है। आपको जो अचीव करना है जिंदगी में, जो पाना है, जो आपका मकसद है, जो भी है, आपको जो भी बनना है, जो भी पाना है, जिस भी मुकाम तक पहुंचना है, उन सब को पाने के लिए उसके रास्ते की लॉयल्टी बहुत जरूरी है।
1: Walk Talk Radio. Tune in for a better life.

आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं कहानी वाला रजत और ये है मेरा शो सफरनामा। सफरनामा जहां पर हम कुछ ऐसे शहरों से आपको मिलवाते हैं जिनके इतिहास, जिनकी ज्योग्राफी, जिनकी बनावट और बसावट जान के आपको ऐसा लगेगा कि बस एक बार इस शहर तो जरूर जाना है। तो सफरनामा हमारा पहुँच गया है एक ऐसे शहर जिसे अजनबियों से मोहब्बत है। दुनिया में कुछ गिने चुने शहर ऐसे हैं जिन्हें इटर्नल सिटी कहा जाता है, यानी सनातन शहर। हमारे हिंदुस्तान की काशी नगरी या बनारस भी ऐसा ही एक शहर है। इसी तरह से यूरोप के रोम और एथेंस शहरों को इटर्नल सिटी का दर्जा दिया गया है। सनातन शहर या इटर्नल सिटी उन शहरों को कहा जाता है जो हजारों सालों से आबाद है। यहाँ पर लोगों के रहने के जो प्रमाण या सबूत है वो कई बरसों से मिलते हैं, मतलब कई हजारों सालों से। ग्रीस या यूनान की राजधानी एथेंस में भी हजारों साल पहले से इंसानों के रहने के सबूत मिले हैं। आज हम उसी एथेंस की बात करने जा रहे हैं। ऐतिहासिक शहरों की बात करें तो एथेंस का कोई सानी नहीं। यहाँ के हर खंडर में इतिहास छुपा है, न सिर्फ यूनान का बल्कि पूरे यूरोप का और मानवता हर एक का एक शुरुआती इतिहास नजर आता है। एथेंस की हर गली से जुड़े हैं हजारों किस्से, हजारों दास्तानें। एथेंस को यूरोप की सभ्यता का केंद्र यानी कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है। पश्चिमी देशों की सभ्यता की राजधानी कहा जाता है। एथेंस ने दुनिया को दार्शनिक दिए, लोकतंत्र दिया और नाटक कला की नेमत भी दी। एथेंस की इमारतें और खंडहर पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की बुनियाद मानी जाती है। एथेंस के खंडरों में ही आबाद है यूनान की बहुत पुरानी परंपरा। ग्रीक जबान में इसे फिलोजीनिया कहते हैं। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है अजनबियों से मोहब्बत, फिलोजीनिया। हालांकि स्थानीय लोग इसे अब विदेशियों के प्रति गर्म जोशी मानते हैं, यानी उनका एक अच्छे खुले मन से स्वागत करना। आपको एथेंस पहुंचते ही गजब की गर्म जोशी और अपनेपन का एहसास होगा। एथेंस हाथ फैलाकर खुले दिल से हर आने जाने वाले का सम्मान और स्वागत करता है। लंदन से आकर एथेंस में बसने वाली जूलिया विलियम्स ने एक जगह इंटरव्यू में लिखा है कि एथेंस बहुत दोस्ताना शहर है। एथेंस के शानदार इतिहास को निहारने के लिए हर साल दुनिया भर से करीब 45 लाख लोग यहाँ आते हैं, लेकिन एथेंस ने अपने शानदार इतिहास में आधुनिकता के पन्ने भी जोड़ रखे हैं। आखिर क्यों लोग एथेंस को इतना पसंद करते हैं? तो एथेंस की रहने वाली क्रिसी मेनका कहती है कि बाहर के लोग हों या इसी वतन के, सबको ये शहर बहुत प्यारा है। जब भी आप इसकी गलियों में घूमेंगे तो यहाँ के कैफे और बार लोगों से आबाद नजर आएंगे। क्रिसी को एथेंस के सिटी सेंटर प्लाका के आसपास घूमना पसंद है। क्रिसी कहती है कि आसपास सैलानियों की भीड़ यानी टूरिस्ट को देखकर आपको ऐसा लगता है कि छुट्टियां चल रही हैं और आप पिकनिक पर निकले। गर्मी का मौसम भी सैलानियों के लिए बहुत खुशगवार होता है। साल में कम से कम 250 दिन यहाँ सूरज खिला हुआ देखने को मिलता है। अमरीकी सैलानी मीना एग्नोस कहती है कि यहाँ अप्रैल से अक्टूबर तक मौसम एकदम साफ रहता है, इसी वजह से आप एथेंस के आसपास मौजूद जजीरों पर घूमने जा सकते हैं। मीना एग्नोस लोगों को करीब 35 समुद्री मील दूर स्थित हाइड्रा द्वीप पर जाने की सलाह देती है, जो एथेंस के पास में है, और लोग वहाँ उस आइलैंड पर जाना चाहें तो बेशक जाएं। ये बिल्कुल शांत है, यहाँ पर कारों को ले जाने की मनाही है, तो आपके लिए पैदल चलना या फिर साइकिल से घूमना आसान होता है। बहुत से सैलानी यहाँ गधों और खच्चरों की सवारी करते नजर आते हैं। ये द्वीप जो है ये बड़ा शांत है और आराम तलबी के लिए मशहूर है। यू जस्ट गो एंड रिलैक्स देयर, कुछ नहीं, कोई गाड़ी का आवाज नहीं, कोई शोर नहीं। द्वीप पर मौजूद कैफे में भी भीड़ कम ही रहती है। हाइड्रा द्वीप दुनिया भर के सेलिब्रिटीज के बीच काफी पॉपुलर रहा है। मीना कहती है कि एथेंस से पहाड़ी और जंगली इलाके भी ज्यादा दूर नहीं है। अगर किसी को शहर के शोर शराबे से डर है तो शांत पहाड़ी और जंगली इलाकों का रुख कर सकता है। माउंट हाइमिटस एथेंस से महज 5-6 किलोमीटर दूर है और यहाँ बाइकिंग के लिए जा सकते हैं। अगर एथेंस में रहना हो तो एक ऐसा तजुर्बा होता है। मीना कहती है कि एथेंस जैसे पुराने शहर में रहने पर आपको इतिहास से मोहब्बत हो जाती है। हर गली, हर चौराहे पर आपको इतिहास का एक टुकड़ा निहारना अच्छा लगता है। शहर के मशहूर खंडर जैसे कि एक्रोपोलिस या टेंपल ऑफ ज्यूस तो खैर दुनिया भर में मशहूर है। इनके अलावा एथेंस में नए इलाके भी आबाद हुए, जैसे कि काउकाकी नाम की बस्ती जो दुनिया की सबसे कूल नई बस्ती का दर्जा हासिल कर चुकी। हाल ही में एथेंस में आधुनिक कला का एक म्यूजियम भी खोला गया है। कुछ लोग एक्सार्किया नाम के इलाके को देखने जाने की सलाह देते हैं। ये इलाका ऐतिहासिक भी है और ग्रीस की हालिया सियासी उठापटक का गवाह भी। बाहर से आने वाले लोग यूं तो ऐतिहासिक ठिकानों और म्यूजियम के चक्कर ही लगाते रहते हैं, मगर एथेंस की गलियों में भी बहुत दिलचस्प राज छिपे हुए हैं। लंदन से आकर एथेंस में बसने वाली बसी कैलेटिन आल्प कहती हैं कि एथेंस के पास अंगूरों के भी कई बाग हैं। इनमें से कई जगह बहुत उम्दा वाइन तैयार की जाती है। यू नो दैट
ग्रीस में पिछले काफी दिनों से सियासी और आर्थिक उठापटक चल रही। पिछले दशक में आई मंदी का सबसे ज्यादा असर यही देखने को मिला था, इसलिए इन देशों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल गई। लोगों को उनके काम के एवज में ठीक से पैसे नहीं मिल रहे हैं। कुल मिलाकर ग्रीस के लोग अपने मौजूदा निजाम से यानी सरकार से और जो उन्हें चला रहे हैं उन लोगों से खुश नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एथेंस बहुत सस्ता शहर है। लंदन के मुकाबले यहाँ उसके आधे पैसे के खर्च में आपका काम चल जाता है। यहाँ घूमते हुए अगर आपको ग्रीक जबान नहीं भी आती तो काम चल जाएगा। बहुत से लोग यूनानी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, मगर गर्मजोशी बढ़ानी होगी यानी सबसे बातचीत करते रहना, तो थोड़ी बहुत ग्रीक बोलने में हाथ आजमाइए ताकि बातचीत होती रहे। लोग विदेशियों के मुंह से अपनी भाषा सुनकर यहाँ बहुत खुश होते हैं। फिर हो सकता है कि वो आपको शहर के कुछ ऐसे राज बता दें जो सिर्फ यहाँ के लोकल्स जानते हैं और किसी को जानने को नहीं मिलता। तो आज का जो मेरा सफरनामा था ये एथेंस के नाम था, एक ऐसा शहर जिसे अजनबियों से मोहब्बत है। कमाल का शहर है, देखने जरूर जाइए। और कैसा रहा एक्सपीरियंस ये आप हमसे शेयर कर सकते हैं वॉक टॉक पर। वॉक टॉक रेडियो पर मैं हूँ कहानी वाला बजट, ये है मेरा शो सफर।

0: हो सकता है हमने ये बातें सुनी हो सकता है कई एक बार कही भी होंगी कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। एट द सेम टाइम हम लोगों ने ये बात भी कही है कि करना चाहिए तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। हाय, मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। बट सोच करके देखिए, मतलब कितनी अलग हैं ये बातें कि एक तरफ तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता, यानी कि अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता। बट करने वालों ने तो अकेले बहुत कुछ किया है, अपने दम पर बहुत कुछ किया है। वो जज्बा होना चाहिए, वो आग होनी चाहिए, करने वाले कर लेते हैं। बट हाँ, जो काम टीम वर्क का है उसे टीम वर्क के साथ नहीं किया जा सकता है। मैं अगर जो कोशिश करूं कि मैं एक बिल्डिंग बनाऊंगा और मैं अकेले बनाऊंगा, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, तो शायद मुझे लंबा टाइम लगे, लंबा वक्त लगे, शायद वो क्वालिटी मैं ना दे पाऊं। बट ऐसा नहीं है कि मैं बना नहीं सकता। मांझी जैसे इंसान ने पहाड़ अकेले ही काटा था, लेकिन वहीं पर अगर जो मांझी का सपोर्ट गांव वाले करते, आसपास वाले करते, तो यकीनन वो कम टाइम लगता और ज्यादा बेहतर काम हो सकता था। तो जो काम टीम के साथ में होता है उसमें क्वालिटी होती है। वापस लौट करके आते हैं अपने पॉइंट पर। पॉइंट ये था कि अकेला चना क्या कर सकता है या अकेले के से क्या हो सकता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। एक बार एक गांव में काफी लंबे टाइम तक बरसात बिल्कुल नहीं हुई थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था, उनकी फसलें खराब हो रही थी, बच्चे भूखे प्यासे मर रहे थे, मतलब एकदम अकाल वाली सिचुएशन होने वाली थी। उनको समझ नहीं आया कि क्या करना है। एंड फाइनली उसी गांव में एक विद्वान महात्मा रहते थे, वो सब गांव वाले मिलकर के उनके पास में गए। उन्होंने कहा कि इसका समाधान आप कुछ दीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, यहां पर तो हमारे घर पे बच्चे प्यासे मरने लगे हैं। महात्मा ने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम कल मेरे पास में आना और मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल करके तुमको बताता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, ये मान लेना आप। तो बोले हाँ कोई बात नहीं, मैं कल तुमको बताता हूं। गांव वाले वापस चले गए। अगले दिन उन्हीं महात्मा के पास में गांव वाले वापस लौट करके आए। महात्मा ने कहा कि कल रात में मैंने सपना देखा है और सपने में भगवान आए हैं। भगवान ने यह कहा है कि गांव से बाहर का जो कुआं है उसमें सारे गांव वाले एक एक लोटा दूध अगर जो डालेंगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और उसके बाद में मैं बारिश करा दूंगा। गांव वालों ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो गांव वालों में से सब लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम एक एक लोटा दूध लेकर के जाएंगे और उस कुएं में डाल करके रात में आ जाएंगे। उनमें से एक गांव वाले ने सोचा कि मैं एक लोटा दूध क्यों बर्बाद करूं, मतलब बाकी के सारे लोग दूध डालने वाले हैं, अगर मैं एक लोटा पानी भी डाल दूंगा तो किसी को क्या पता चलेगा, दूध में पानी जाके मिलता है तो पानी भी तो दूध ही कहता है। तो उसने ये सोचा और वो एक लोटा पानी भर के लेके गया और कुएं में डाल दिया और चला आया। अगले दिन सुबह महात्मा के साथ में सारे गांव वाले जब कुएं के पास में पहुंचे तो लोगों ने देखा कि वहां पर एक सिंगल लोटा दूध का नहीं पड़ा हुआ था, पूरा कुआं पानी से भरा हुआ था। यानी कि पूरे गांव में किसी एक सिंगल इंसान ने दूध से भरा हुआ लोटा नहीं डाला था उस कुएं में। सबने यही सोचा कि बाकी सब तो दूध डालने वाले हैं, मेरे अकेले के से क्या हो जाएगा, तो मैं पानी डाल देता हूं। सोचिए, इसी तरह की गलतियां हम अक्सर हमारी रियल लाइफ में करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे एक के कुछ ना करने से क्या होगा, या मेरे अकेले करने से क्या होगा, मैं अकेले अगर जो कचरा नहीं फेंकूंगा तो क्या होगा, मैं अकेले अगर जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करूंगा तो क्या होगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है, और ये अकेले अकेले अकेले अकेले ऐसे मिलकर के कब जमाना हो जाता है, कब टीम हो जाती है, हमें पता नहीं चलता है। तो अगर आप वाकई में चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में बदलाव आए तो वो बदलाव हमें हमारे से शुरू करना पड़ेगा, अपने आप से शुरू करना पड़ेगा। सोचने वाली बात है ना ये, कि मतलब हम सब चाहते हैं कि हमारा जो देश है ये एकदम से अमेरिका जैसा हो जाए, ट्रैफिक रूल्स फॉलो हो, ट्रैफिक ना मिले, सड़कें चौड़ी हो, कहीं पर भी कचरा ना मिले, धूल मिट्टी ना मिले, हम ये सब चाहते हैं। लेकिन क्या उस डायरेक्शन में हम कदम उठाते हैं? कार का शीशा डाउन करके अक्सर हम पैकेट यूं ही फेंक देते हैं, कार का गेट खोल करके पिचक मुंह के अंदर का जो गुटखा था वो हम यूं ही सड़क पर थूक देते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अमेरिका जैसे बन जाएं। कोसते हैं हम सरकार को, सरकार के बस का ये नहीं है, सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती, बट क्या हम हमारे हिस्से का करते हैं? आई एम वेरी मच श्योर कि बाहर के जो देश हैं, जो साफ हैं, वहां पर सरकार से ज्यादा एफर्ट्स लोग डालते हैं। बचपन में मैंने ये कहानी सुनी थी, आई डोंट नो कितनी सच है, बट उन दिनों किताबों में आया करता था कि जापान में जो लोग हैं वो अपने बैग में सुई धागा लेके चलते हैं, अगर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं पर किसी भी बस का सीट फटा हुआ है तो वो लोग उस सुई धागे की मदद से उस सीट को सिल देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये उनके पैसे से खरीदी हुई बस है जिसका इस्तेमाल उनको ही करना है। और हमारे यहां क्या होता है, हमें हमारा विरोध जताना है, एक काम करो ट्रेन जला दो, पटरियां उखाड़ दो, हॉस्पिटल जला दो, बस जला दो, हम ये करते हैं और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हम प्रोग्रेस करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। कैसे? सिंपल सी बात कहने की इस पूरे एपिसोड में यही थी कि अगर आप चाहे तो सब कुछ हो सकता है, अकेला चना भी भार फोड़ सकता है और बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो कभी भी किसी भी थॉट पर यह मत सोचिए कि सिर्फ मेरे करने से क्या होगा, क्योंकि आप ही के जैसे न जाने कितने लोग सिर्फ यही सोच के कुछ नहीं करते हैं कि सिर्फ मेरे करने से क्या होगा। आप करना शुरू करिए, जमाना करना शुरू कर देगा। मैं हूं समर शो, का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। स्टे ट्यून्ड।
1: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक ट्यूनिंग फॉर अ बेटर।

0: इंसान पतला हो या फिर मोटा हो, सबके मन में एक ही सवाल होता है, अरे भैया मैं फिट कब होऊंगा, कब होगा, कैसे होगा। लेकिन भैया जैसे भी होगा, योगा से ही होने वाला है। हाँ जी, किद्दा सुन रहे हो, दिस इज आरजे गौतम, शो चल रहा है गपशप जंक्शन। लेकिन आज इस शो पे एक बड़ी खास बात है, क्योंकि आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे, और हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जिनको लगभग 35 साल का एक्सपीरियंस है योगा सिखाने का, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे कि IIT रुड़की, RIMC, IIMA जैसे इंस्टीट्यूट में इन्होंने योगा सिखाया है। मिस्टर LS रावत, लाल सिंह रावत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉक टॉक रेडियो पर।
1: थैंक यू सर।
0: सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो इस दिन की
1: जी,
0: और आज का दिन आपने कैसे सेलिब्रेट करा, कैसे आपका दिन शुरू हुआ और कैसे आपके लिए दिन अलग है बाकी दिनों से?
1: आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्वास्थ्य के अनुकूल है कि हमें अपना स्वास्थ्य साल में एक दिन तो बिल्कुल 100% ध्यान देना है कि हमें अपना स्वास्थ्य फिजिकली मेंटली बोथ साइड अच्छा बनाना है, तरोताजा बनाना है। तो इसके लिए इंटरनेशनल योगा डे जो 21 जून का दिन है वेरी महत्वपूर्ण।

0: हेलो जी, मैं हूं राजीव ठाकुर और आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर द बेटर लाइफ।
1: वॉक टॉक रेडियो। वॉक

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio. Tune in for a better life. Tune in for a better life.
1: हाय हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार मैं हूं शान और आप सुन रहे हैं मेरे गाने ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो एंजॉय द म्यूजिक एंड

0: सर, एक बात हमने हमेशा से सुनी है कि अगर हम वर्जिश करते हैं, मतलब एक्सरसाइज करते हैं, तो बाहर का शरीर बनता है, लेकिन हम जब योगा करते हैं तो हमारे अंदर के शरीर में शुद्धि हो जाती है। वो कैसे होती है सर?
1: बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात कही आपने। स्थूल शरीर से बड़ा है सूक्ष्म शरीर, जो अंदर का शरीर है उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का डेवलपमेंट होगा तो हमारे स्थूल शरीर का और अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो भीतर के जो सूक्ष्म शरीर है इसकी कुछ क्रियाएं हैं, प्रैक्टिकल भी है, जैसे कुंजल क्रिया है, सूत्र नीति है, जल नीति है, और उसके बाद लगभग 48 लाइट माइक्रो एक्सरसाइज है।
0: अच्छा,
1: जो हमारे सूक्ष्म शरीर का डेवलपमेंट करती हैं। और जो ये हमारे सूक्ष्म शरीर हैं, प्रत्येक पार्ट्स हमारी बॉडी के जितने भी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स 48 हैं, और 48 ही एक्सरसाइज हैं। उन्हीं पे ध्यान लगाते हुए फिर ब्रीथिंग के साथ वो एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं। तो जैसे जैसे वहाँ ब्रीथिंग पहुँचेगी, ध्यान पहुँचेगा, उस शरीर का डेवलपमेंट होगा। जैसे वोकल कार्ड्स है, इम्प्रूवमेंट योर मेमोरी है, फॉर डेवलपमेंट योर इंटेलिजेंसी है, फॉर इम्प्रूवमेंट योर आईसाइट है, फॉर डेवलपमेंट योर चीक मसल्स है, फॉर डेवलपमेंट पावर ऑफ हियरिंग है, कर्ण शक्ति विकास है, संस्कृत में बोलते हैं उसको, तो उनका डेवलपमेंट होगा। लेकिन ये एक्सरसाइज किसी अनुभवी योगचार्य की देख रेख में ही करें।
0: अच्छा, कोई भी इनमें से एक क्रिया है जो आपने बताई, कोई भी अगर एक छोटी सी क्रिया आप करके दिखा सके अभी हमारे लिसनर्स के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए?
1: बिल्कुल दिखा सकते हैं। इसमें आप ऐसा करें कि खड़े होके, खड़े हो सकते हैं, अगर बैठे बैठे भी करें तो बैठे बैठे भी हो सकते हैं, लेकिन खड़े होके करेंगे तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
0: अच्छा,
1: इसमें जैसे मैं भी खड़ा हो जाता हूँ, दोनों पैर मिला के खड़े होना पड़ता है, दोनों पंजों में बराबर वेट, और दोनों हाथ थाइस पे चिपका के, जैसे पहली एक्सरसाइज है उच्चारण शक्ति स्थल विशेषज्ञ के लिए, यानी फॉर इम्प्रूवमेंट योर ट्रीटमेंट योर वोकल कार्ड्स। वोकल कार्ड की एक्सरसाइज पे ध्यान लगाते हुए, अपने विशुद्ध चक्र पे ध्यान लगाते हुए 25 टाइम्स क्विकली ब्रीथिंग इस तरह से। फिर सेकंड एक्सरसाइज फॉर इम्प्रूवमेंट योर मेमोरी पावर, लुक अप आईब्रो को देखते हुए 25 टाइम्स क्विकली ब्रीथिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर डेवलपमेंट योर इंटेलिजेंसी पावर, चिन को थॉट पे लगा के एंड डीप ब्रीथिंग। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी फॉर इम्प्रूवमेंट योर आई साइट, लुक अप ऊपर देखते हुए एक जगह पे पलके नहीं झपकानी है और सांस नॉर्मल। एक मिनट तक इस एक्सरसाइज को अगर 40 डेज आप रेगुलर कर लें तो आपके जो लगा हुआ चश्मा है वो उतर सकता है और आपकी आंखें 6x6 की हो जाएंगी।
0: क्या बात है,
1: बिल्कुल। इसमें आप अपना न्यूज़पेपर वगैरह आराम से बिना चश्मे के पढ़ सकते हो, लेकिन 40 डेज आपको ये एक्सरसाइज करनी है,
0: लगातार करनी है।
1: फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है फॉर डेवलपमेंट योर चीक मसल्स, आपके जो गाल है ये एकदम रसीले रहेंगे और पिचके हुए नहीं रहेंगे। इसके लिए हाथ को ऐसे करिए, मुंह से सांस को पीना है यूं, और फिर मुंह फुलाना है, सांस रोकनी है मुंह के अंदर, और फिर थोड़ी देर बाद नाक से सांस छोड़नी है। ये चीक मसल्स की एक्सरसाइज है। हियरिंग पावर के लिए दोनों कान आपके बंद रहेंगे, सांस लेंगे मुंह से, फिर मुंह फुलाएंगे, सांस रोकेंगे, कान आंख बिल्कुल बंद, इस तरह से प्रैक्टिकली भी देखते जाए, धीरे धीरे नाक से छोड़ेंगे तो आपकी जो हियरिंग पावर है उसका इम्प्रूवमेंट होगा, इनका जो सुनने की शक्ति है वो बढ़ेगी।
0: मतलब सांस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आप आराम से थोड़ा सा बैठें, आपसे एक आधा सवाल और करें, और मुझे लगता है दर्शकों ने काफी सीख ली होंगी एक्सरसाइज।
1: बिल्कुल, नेक और नेक से ऊपर की एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट।

वॉक टॉक रेडियो सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: दोस्तों, हमारी जिंदगी कभी भी कुछ मिनटों की मेहमान नहीं होती जो गिनती के पलों में बदल जाए। पर हाँ, अगर आप अपने फैसले कुछ मिनटों के आधार पर लेते हैं तो वो आपकी जिंदगी को बदलने की पूरी क्षमता रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है, अपनी लाइफ के छोटे या बड़े फैसले हमेशा सोच समझ कर लेने चाहिए, तभी आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।
1: अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कुछ बातों का ध्यान रख के कैसे आप अपनी सॉफ्ट स्किल को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो सुनिए सॉफ्ट स्किल डेवलपर मानिक कौर को सिर्फ और सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक
2: रेडियो। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम ऐसा क्या करें प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हों और हम लोगों को बहुत इजीली इम्प्रेस कर सके। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, बी योर सेल्फ, डोंट ट्राई टू बी समवन एल्स। आप ये मत सोचिए कि कोई और बहुत सक्सेसफुल है, मुझे उसके जैसे चलना है, उसके जैसे बात करनी है, उसके जैसे पॉइंट ड्रेसअप होना है। बिल्कुल नहीं। हैव योर ओन यूनिक सेंस ऑफ स्टाइल, बी कॉन्फिडेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं शेयर करना चाहूंगी वो ये है दैट समथिंग लाइक इंग्लिश, especially in a country like ours, English is not our first language, but it has become very important in communication. Let's face it. ये सच्चाई है कि English एक बहुत बड़ा tool बन चुका है, but at the end of the day एक language ही है। ये हम सबको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप English में बहुत ज्यादा proficient नहीं है तो professionally आप उसे यूज कम करिए। आप हिंदी बोलिए या कोई भी ऐसी लैंग्वेज बोलिए जो आपके ऑफिस में इजिली एक्सेप्टेबल है, rather than making it, you know, like making it too obvious that you're not good with the language. उससे आपका नुकसान हो सकता है। आप हिंदी यूज कीजिए या कोई भी ऐसी लैंग्वेज यूज करिए, लेकिन अगर इंग्लिश इज रिक्वायर्ड, इन दैट केस आप इन अ प्रोफेशनल सेटअप इंग्लिश इन टर्म्स ऑफ वॉट काइंड ऑफ यूजेज इज देयर इन योर प्रोफेशन, आप उन फ्रेजेस को याद करिए और उसमें अपनी मास्टरी कीजिए। इट्स अ वेरी बिग टिप।
3: वॉक टॉक रेडियो।

0: जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होके बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है।
1: इश्क तेरा तड़पावे। Hi everyone, this is Sukhbir और आप सुन रहे हैं

0: पहेलियों।
1: हमेशा से ही एक बात हमें बहुत सताती है कि हमारा फ्यूचर कब ब्राइट होगा, हमारे सपने कब पूरे होंगे। लेकिन उससे पहले अगर ये समझा जाए कि तुम्हारे सपने क्या हैं और तुम प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, तो जिंदगी के आधे मसले यहीं पर खत्म हो जाएंगे।
0: वॉक टॉक रेडियो।

0: हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर भानुशाली यानी कि आपका देवन जूनियर। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला इंस्पिरेशनल ऐप वॉक टॉक रेडियो। जल्दी से जाओ और गूगल पे डाउनलोड करो प्ले स्टोर से।
1: अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कुछ बातों का ध्यान रख के कैसे आप अपनी सॉफ्ट स्किल को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो सुनिए सॉफ्ट स्किल डेवलपर मानिक कौर को सिर्फ और सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक
2: रेडियो। ये सोचना चाहिए कि हम जब लोगों के लिए मीन बातें बोलते हैं या उनके बारे में गॉसिप करते हैं बिहाइंड देयर बैक्स, या फेस पे उनके अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं लेकिन थोड़े टाइम के बाद पता लगता है कि दे हैव चीटेड ऑन यू और दे वर टॉकिंग बैड अबाउट यू और यू शेयर्ड समथिंग विद देम एंड इट्स ऑल ओवर द टाउन। सो ये सब बातें दे आर बैड प्रैक्टिसेस। द स्किल्स इन्वॉल्वड हियर आर एज सिंपल एज बेसिक ह्यूमैनिटी। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट स्पेशल स्किल्स। आई जस्ट फील दैट बेसिक ह्यूमैनिटी इज गोइंग मिसिंग। We need to revive that and have good conduct with people. अगर आपको कोई पसंद नहीं भी है तो भी आप उनके साथ politely बात करें, कम बात कीजिए। अगर आपको कोई इंसान पसंद नहीं है, आपको जरूरी नहीं है उसको बताना है कि आपको that you don't like him or her. Be polite in your conduct. Be careful in your conduct. Be mindful in your conduct. Don't gang up with other people and insult that person. आज जितनी सोशल एंजाइटी है कभी नहीं थी। 10 लोगों के ग्रुप में से 9 लोगों को बुला के एक लोग बंदे को छोड़ देते हैं। पीपल हैव बिकम सो इनसेंसिटिव। लेकिन कोई 10 लोगों में आपको छोड़ के बाकी 9 को बुला ले तो आपको कैसा लगेगा? दिस इज समथिंग वेरी वेरी कॉमन अगेन इन सोशल सर्कल्स दैट इज हैपनिंग। पीपल आर फीलिंग, पीपल आर डूइंग दिस टू देम पर्पसली।

उम्मीद कहते हैं उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए आपकी जिंदगी में। अगर आपको किसी मंजिल से मोहब्बत है, अब वो कोई काम हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई ख्वाहिश हो सकती है, तो बस उससे जुड़े रहो। उतार चढ़ाव आएंगे, अच्छा बुरा वक्त भी आएगा, लेकिन एक ना एक दिन

आजकल हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को जीने का ढंग बदल लेते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि अपनी पसंद का जीवन जीने के समान कोई जीवन नहीं। तो लाइफ अपने हिसाब से जिए, ना कि दूसरों के। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: लोगों को जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें होती हैं। अपनी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी प्यारी लगती है, तो मेरा आपसे यही कहना है कि ये मत पूछना कि जिंदगी खुशी गप देती है, क्योंकि शिकायतें तो वो भी करते हैं जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।
1: हाय गाइस, मेरा नाम है खुसरो AKA टेक नाइट और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। वेल, जॉब और पैशन दोनों ही चीजें ऐसी हैं कि इंसान की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वेल, जॉब से आपका ब्रेड एंड बटर चलता है और पैशन जो है वो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है, जिसको मैं बोलता हूँ। तो अगर आप जॉब के साथ साथ अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जॉब के साथ पैशन फॉलो करना, लेकिन अगर आपके अंदर सच में एक आग है अपने पैशन को फॉलो करने की, आप सच में अपने पैशन को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप किसी ना किसी तरह से अपने पैशन को फॉलो कर पाएंगे। चाहे आप भले ही कितना भी थके हुए हो, चाहे आपको नींद आ रही हो, आप भले ही एक घंटा कम सोएंगे, लेकिन आप अपने पैशन को टाइम जरूर दे पाएंगे। तो मैं भी अपने जॉब के साथ अपने पैशन यानी कि टेक कंटेंट क्रिएशन को कैसे मैनेज करता हूँ, तो मेरा भी यही सीन है। मैं ऑफिस से आने के बाद सबसे पहले, फ्रेश होने के बाद सबसे पहले अपना काम लेके बैठता हूँ, वीडियोस की प्लानिंग करता हूँ अगली वीडियोस की, कि क्या स्क्रिप्टिंग करना है, किस टॉपिक पर वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले मैं वो वीडियो स्क्रिप्ट करने के बाद अगर हो सकता है तो रिकॉर्ड कर लेता हूँ अगर टाइम होता है। उसके बाद फिर सोने के बाद जब मैं वापस उठता हूँ ऑफिस जाने से पहले, तब मैं उस वीडियो को एडिट करने के बाद अपलोड करता हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने जॉब के साथ अपना पैशन मैनेज कर पाता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप सच में अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं तो आप कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ ही लेंगे।

0: हेलो जी, मैं हूं राजीव ठाकुर और आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर द बेटर लाइफ।
1: दोस्तों, हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार हम सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ के सक्सेस का इंतजार करने लगते हैं कि किस्मत में होगा तो मिलेगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और कोशिश करना छोड़ देते हैं। पर हमेशा याद रखिए, मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। इसलिए अगर आप भी सपनों का खिताब जीतना चाहते हो तो मेहनत के मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आजकल के दौर में तो सलाह भी यानी एडवाइस भी फ्री में नहीं मिलती। हो सकता है बिना मांगे दी जा रही फ्री की एडवाइस आपको रास्ते में भटकाने के लिए हो, या हो सकता है कि वो फ्री की एडवाइस आपके द्वारा अपना काम निकालने की कोशिश में हो रही हो। और ये भी जरूरी नहीं कि जो सलाह वो दे रहे हैं क्या वो सही भी है। दोस्तों, सही एडवाइस हमें वही देते हैं जो हमारी परवाह करते हैं। ढूंढना है तो परवाह करने वाले को ढूंढिए, इस्तेमाल करने वाले तो खुद ही आपको ढूंढ लेंगे।
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो।
2: हाय गाइस, मेरा नाम है खुसरो, AKA टेक नाइट, और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। सो टेक कंटेंट क्रिएटर जो होता है वो एक्चुअली जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट्स वगैरह आती हैं, जैसे कोई नया गैजेट आया तो उसके बारे में ऑडियंस को बताना, या कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नया अपडेट आया जैसे कि कोई वेबसाइट है जो कि आपके काम आ सकती है, या कोई ऐसी चीज जो कि आपकी डेली लाइफ में हेल्प कर सकती है आपकी लाइफ को आसान बनाने में, तो उसके बारे में बताना टेक कंटेंट क्रिएटर कहा जाता है। मतलब जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, जैसे मैं हूँ, मेरा जो चैनल है वो पेज है वो सब टेक्नोलॉजी के ऊपर है। सारी टेक से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ मैं, जिसमें वेबसाइट, गैजेट्स, टेक न्यूज, इस तरह की चीजें मैं कवर करता हूँ। वेल, नॉलेज इम्पोर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि नॉलेज अगर नहीं होगी तो आपको पता नहीं होगा कि आप क्या करने वाले हैं अपनी लाइफ में। नॉलेज से आपकी लाइफ आसान होती है, आपका डिसीजन मेकिंग का नजरिया बदल जाता है, आप काफी क्रिएटिव चीजें कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और अगर बिना नॉलेज के तो आप एक तरीके से भटके हुए तीर की तरह हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको जाना कहाँ है। तो नॉलेज, किसी भी चीज़ की नॉलेज होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा मानना यह है कि इंसान को लगातार नॉलेज गेन करते रहना चाहिए जहाँ से भी उसे मिले।
1: जिंदगी में दो चीजों का घमंड कभी भी मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता, इसीलिए घमंड कभी भी ना करें।

0: थैंक्सगिविंग के बारे में जानते हैं ना आप? थैंक्सगिविंग डे एक बहुत ही स्पेशल मौका जिस दिन आप उन चीजों के लिए थैंकफुल होते हो जो आपको दुनिया में मिली, जिंदगी में मिली और चाहते हो आपके यार शुक्रिया अदा किया जाए। तो ये थैंक्सगिविंग डे आने वाला था। फर्स्ट ग्रेड टीचर जो थी उसने अपनी क्लास को एक फन असाइनमेंट दिया। उसने कहा कि एक ऐसी पिक्चर, ऐसी तस्वीर बनाओ जिसे तुम थैंकफुल हो या जिसको थैंक्स कहना चाहते हो। मोस्ट ऑफ द क्लास माइट बी कंसिडर्ड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड बट स्टिल मेनी वुड सेलिब्रेट द हॉलीडे विद टर्की एंड अदर ट्रेडिशनल गुडीज ऑफ द सीजन। टीचर ने उनको सिखाया था कि मोस्ट ऑफ हर स्टूडेंट्स वर ऑफ आर्ट्स एंड सब जने ये चीज जानते थे कि किसी के पास बहुत ज्यादा पैसे हो या ना हो, हर शख्स इस चीज का थैंकफुल होना चाहिए कि उसके पास कुछ तो है। ये उस टीचर ने अपने सारे स्टूडेंट्स को सिखाया। उसके सारे टी स्टूडेंट्स जो थे वो ये बात मानते भी थे, लेकिन एक लड़का जरा अलग था। उसने एक अलग तरह की तस्वीर ड्रॉ करी, डगलस। डगलस एक अलग बच्चा था। ही वॉज द टीचर्स ट्रू चाइल्ड ऑफ मिजरी, फ्रेल एंड अनहैप्पीनेस। बाकी लोग जब रिसेस में खेला करते थे, डगलस वॉज लाइकली टू स्टैंड क्लोज बाय हर साइड। डगलस को जो दर्द था वो उसकी आंखों में साफ नजर आता था। वो अपने घर की कंडीशन से, अपने पेरेंट्स की कंडीशन से बहुत ज्यादा दुखी था। उसे पता था कि उसके पास उतने पैसे नहीं, उतनी खुशियां नहीं है, पर उसने एक पिक्चर बनाई थैंक्सगिविंग के लिए, एक स्पेशल पिक्चर बनाई एज एन असाइनमेंट। इट वॉज डिफरेंट। जब इस तस्वीर को दिखाया गया सबको तो उसने एक हाथ बनाया था, नथिंग एल्स, सिर्फ एक खाली हाथ। ये एब्स्ट्रैक्ट इमेज थी जिसे देखकर उसके साथी जो थे वो इमेजिन करने लगे, हूज हैंड कुड इट बी। किसी को लगा ये किसी फार्मर का हाथ है क्योंकि वो हमारे लिए टर्कीज को रेस करता है, उन्हें बड़ा करता है। दूसरे ने कहा नहीं, पुलिस ऑफिसर का है क्योंकि पुलिस हमें प्रोटेक्ट करती है। तीसरे ने कहा नहीं, भगवान का हाथ है जो हमें खाना देता है। जब चिल्ड्रन अपना असाइनमेंट देकर चले गए तो उस टीचर ने डगलस से पूछा कि डगलस ये किसका हाथ है। डगलस ने दूसरी तरफ देखा, बच्चों की तरफ देखा और धीरे से बोला, ये आपका हाथ है टीचर। उस टीचर को याद आया कि कैसे वो उसका हाथ पकड़कर ही यहाँ वहां चला करता था। वो हमेशा कहती थी कि टेक माय हैंड डगलस, वी'ल गो आउटसाइड, लेट मी शो यू हाउ टू होल्ड योर पेंसिल, लेट्स डू दिस टुगेदर। डगलस थैंकफुल था कि उसकी टीचर ने उसका हाथ पकड़ा, उसे सिखाया और उसकी आंखों से आंसू पहुंचे। अगर वो ना होती तो शायद चीजें उसके लिए बहुत मुश्किल होती। सो इट्स सेड दैट कीप रीचिंग आउट बिकॉज यू मे हेल्प पुल समवन आउट ऑफ डार्कनेस एंड गाइड देम इनटू द लाइट। ये भी एक बहुत बड़ा काम है, किसी को उस अंधेरे से बाहर निकाल लेना। ये कहानी कहलाती है द टीचर्स हैंड। टीचर्स के हाथ भी बहुत जरूरी हैं, चाहे वो कॉपी पर हो या आपके गाल पर, हर तरह से टीचर्स हैंड आर रियली इंपॉर्टेंट। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूँ कहानी वाला रजत।
1: हाय, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं हूँ शान और आप सुन रहे हैं मेरे गाने ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो। एंजॉय द म्यूजिक एंड

अपने सपनों के पीछे भागते हैं, उनके सपने वे सपने बने रह जाते हैं।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो और आप सुन रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम विद गिरेंद्र भारती।
1: हेलो, कैसे हैं आप सब? आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और मैं हूँ गिरेंद्र भारती। वर्ड्स ऑफ विजडम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक दिन जब बारिश हो रही थी तो एक 15 साल का लड़का जिसका नाम जॉन गोडार्ड था, वो अपने घर में अपने किचन टेबल पे बैठा लॉस एंजलिस के अंदर, और उसने एक येलो कलर का पैड लिया जिसके टॉप पे उसने लिखा माय लाइफ लिस्ट, और उस लिस्ट के नीचे उसने 127 गोल्स लिखे। जी हाँ, 127 गोल्स उसने लिखे। हम कहेंगे कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, लोग ऐसे गोल्स लिखते ही रहते हैं, खास तौर पे बच्चों में तो ये बहुत शौक होता है, लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं था। इस इंसान ने अपनी जिंदगी में उन 127 में से मोर देन 109 यानी 109 से भी ज्यादा गोल्स पूरे कर लिए। अब आप कहेंगे ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लोग गोल्स लिखते हैं उन्हें पूरा भी कर लेते हैं, लेकिन आपको ये सुन के तब आश्चर्य होगा जब आपको पता चलेगा कि जो गोल्स उसने लिखे थे वो कोई सिंपल या इजी गोल्स नहीं थे। उनमें ऐसे ऐसे गोल्स थे जो कहते थे कि मेरे को दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन्स पर चढ़ना है, मेरे को दुनिया के जो बड़े से बड़े रिवर्स हैं, जो नदियां हैं, उनको सोर्स से लेकर उनके एंड तक एक्सप्लोर करना है, मेरे को दुनिया के जो बड़े से बड़े जो सबसे तेज चलने वाले एयरक्राफ्ट्स हैं, हवाई जहाज हैं, उनको चलाना है, यानी ही वांट्स टू बिकम अ पायलट आल्सो, मेरे को 1 मील 5 मिनट से भी कम समय में भागना है, और मेरे को पूरी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़नी है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा, ये जो इंसान था, ये जो लड़का था, इसका नाम था जॉन गोडार्ड, और बाद में लॉस एंजलिस टाइम्स ने इसको रियल लाइफ इंडियाना जोन्स का खिताब दिया। जी हाँ मित्रों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इनको ही हैज बिकम एक्चुअली ये जॉन गोडार्ड जो थे बाद में वर्ल्ड रिनोन्ड एडवेंचरर बने, एक्सप्लोरर बने, ऑथर बने, लेक्चरर बने। इन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर बहुत से लोगों को प्रेरित किया, मोटिवेट किया, दो किताबें भी लिखी। 2013 में इनकी डेथ हो गई, लेकिन ये दुनिया के सामने एक ऐसी मिसाल छोड़ गए जो हम सबको हमेशा याद दिलाती रहेगी कि हमारे अंदर कितनी पावर है और हम क्या कर सकते हैं अगर हम करने पर आए तो। मैं यहाँ पर आपको उनके गोल्स की लिस्ट नहीं बताने वाला क्योंकि वो बहुत लंबी है और मेरा सारा टाइम उसी में निकल जाएगा, वो आप गूगल पे जाकर कभी भी देख सकते हैं। आप जॉन गोडार्ड टाइप कीजिए, आपके सामने उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी जो 127 गोल्स उन्होंने लिखे थे। आप कहेंगे हम सब लोग अब गोल्स लिखते रहते हैं, देखिए लिखने की पावर बहुत ज्यादा है। आप गोल्स अपने मन में रखते हैं या उसे लिखते हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। गुड मॉर्निंग अमेरिका एक शो है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमारी सबकी आदत होती है कि नया साल आते ही हम लोग नए नए गोल्स बनाते हैं, रिजोल्यूशन, हमने उसको नाम दिया अपना कि इस साल मैं ये चीज अचीव करूंगा, इस साल मैं हर रोज जिम जाऊंगा, अपनी बॉडी बनाऊंगा, या खाना ठीक से खाऊंगा, सिगरेट छोड़ दूंगा, वॉट एवर इट इज। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि 15 फरवरी के आसपास यानी हार्डली आफ्टर 45 डेज उन्होंने ऐसे लोगों को इंटरव्यू किया जिन्होंने अपने रिजोल्यूशंस बनाए थे। तो उन्होंने देखा कि जो लोग सिर्फ अपने मन में सोचकर रिजोल्यूशंस बनाए हुए थे कि हमने ऐसा करना है इस साल, उसमें से सिर्फ 4% पीपल यानी 4% लोग ही ऐसे थे जो कंटिन्यू कर रहे थे, बाकी 96% लोग छोड़ चुके थे। लेकिन जिन लोगों ने अपने गोल्स नोट डाउन किए हुए थे यानी जिन्होंने ये लिखा हुआ था कि हमने इस साल ऐसा ऐसा करना है, यानी ठीक वही काम जो जॉन गोडार्ड ने किया था 15 साल की उम्र में जब उसने 127 गोल्स की लिस्ट बनाई थी, तो जिन लोगों ने भी लिख रखे थे अपने गोल्स को, उसमें से मोर देन 46% वर स्टिल कंटिन्यूइंग। जी हाँ, 46% लोग उस समय भी कंटिन्यू कर रहे थे जो गोल्स उन्होंने लिखे हुए थे। तो रिसर्चर्स शॉक्ड रह गए जानकर कि आपके सिर्फ किसी गोल को लिख लेने से उसके पूरे होने की संभावना 1100% तक बढ़ जाती है। इट इज वेरी पावरफुल थिंग। तो एक बहुत सरल टेक्निक मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब भी आप अपने गोल्स लिखें, पहली बात तो प्रेजेंट टेंस में लिखें, और उनको लिखने के बाद उसकी एक कॉपी आप अपनी पॉकेट में जरूर रखें और दिन में कम से कम 3 बार उसको जरूर पढ़ें। तब आपको पता चलेगा कि एक फोकस्ड लाइफ को जीने का क्या मतलब होता है। एक्चुअली अगर आपने गोल्स लिख भी दिए और आप दोबारा उसको खोल कर नहीं देखते कई महीनों तक, तो उसके लिखे या ना लिखे होने का कोई बहुत ज्यादा महत्व रह नहीं जाता। हम अगर किसी गोल को लिखते हैं तो हमें उसको दिन में कम से कम 3 बार उसे खोल कर देखना है और उसे पढ़ना है। उससे होगा क्या कि आप तीर की तरह से फोकस रहोगे उस गोल की तरफ जिधर आपको जाना है, और बाकी वो सारी अनवांटेड चीजें जो आपको खींचती रहती हैं और आपकी एनर्जी को और आपके टाइम को खाती रहती हैं, उनसे आप बचते रहेंगे। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि जॉन गॉडर्ड की लाइफ से हम लोग इस इंस्पिरेशन को लें, हम ये देखें कि अगर एक इंसान अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर सकता है। मैं चाहूंगा आप लोग गूगल पे जाएं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, एक दो पेज में ही आपको उसकी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अगर कोई इंसान इतने टफ गोल्स को अचीव कर सकता है अपनी एक ही जीवन काल में, तो हमारे तो जो गोल्स है वो इतने टफ भी नहीं है, बहुत आसान गोल्स है हमारे। उसको देखकर आपको बहुत हिम्मत मिलेगी, बहुत ताकत मिलेगी और आप पूरी ताकत से अपने गोल्स पे लग जाएंगे। आपको बहुत आशा मिलेगी, बहुत होप मिलेगी कि अगर वो ये सब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और होप इज एक्चुअली प्लेइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट व्हेन इट कम्स द अचीविंग ऑफ गोल्स। बातें जारी रहेंगी, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं बोल रहा हूँ गिरेंद्र भारती, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
0: एक बेटर जिंदगी के लिए सुनते रहिए वर्ड्स ऑफ विजडम गिरेंद्र भारती के साथ, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: मजबूत होने का मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तुली हो। अपने आसपास बहुत लोग हो सकते हैं आपके जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हो, डरा रहे हो, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। क्या फर्क पड़ता है, शायद वो जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाए या उसी सिचुएशन में उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसी सोच और ऐसे लोगों से अपने आप को सतर्क रखिए, क्योंकि उनसे सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिविटी, डराना यही मिल सकता है। अगर किसी के पास सॉल्यूशन है तो वो आप खुद हैं। खुद से बात करिए, खुद की सोच और खुद के निर्णय पे यकीन करिए, उस पे आगे बढ़िए और देखिए आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी आपके खुद के भरोसे से, जो आपका खुद पे होगा।
0: Walk Talk

0: Your first workout will be bad. Your first podcast will be bad. Your first speech will be bad. Your first video will be bad. Your first anything will be bad. But you can't make it 100 without making your first. So put everything aside and just start doing it. No matter what happens, no matter what the consequences will be, just keep doing it without the fear of failure.
1: जो आदमी हमेशा कूल रहता हो, काम रहता हो और एक दिन आपको बहुत टेंस दिखे तो आपको क्या होगा? ऑब्वियसली हंसी आएगी. आप सुन रहे हैं रेडियो वॉक टॉक, ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ. मैं हूं मुस्कान और ये शो है अनसंग चैंपियंस का, जिसमें हम और आप बात करते हैं उन चैंपियंस की जो अपनी लाइफ में ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, मेडल ला रहे हैं और साथ ही साथ हमें ऐसा लगता है कि आखिर भारत अब खेलों में कितना आगे बढ़ चुका है. सो आज बात कर रहे हैं पुलेला गोपीचंद की और एक इंटरव्यू में साइना नेहवाल ने बताया कि जब कॉमनवेल्थ गेम 2018 हो रहा था तब उन्होंने देखा कि वो किस तरह से पुलेला गोपीचंद को इतना टेंस्ड देख रही थी. यहां तक कि कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पुलेला गोपीचंद बीच में से ऐसा कह रहे हो कि ये क्या कर रहे हो, नहीं ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है. बट उस गेम में पुलेला गोपीचंद एक्चुअली बहुत टेंस थे और बिल्कुल एज पर बैठे हुए थे कि ये क्या हो रहा है आखिर. और जब गेम है तब मलेशिया के बिल्कुल अगेंस्ट चल रहा था और साइना नेहवाल खेल रही थी और साइना नेहवाल ने देखा कि पहली बार पुलेला गोपीचंद इतने टेंस थे. इंडिया में अपना पहली बार फर्स्ट एवर मतलब मिक्स टीम इवेंट था जिसमें गोल्ड लेकर आए थे कॉमनवेल्थ गेम्स में और जिसमें इंडिविजुअल्स इवेंट में साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, कादम्बी श्रीकांत, अश्विनी और एन सिक्की रेड्डी एंड सात्विक साईराज सब लोग लौटे थे मेडल्स के साथ. और साइना एंड सिंधु ने तो फाइनल में खेला था वुमेन सिंगल में एंड वेयर साइना वॉन द गोल्ड मेडल. बट गोपीचंद टोल्ड इंडिया टुडे दैट ही डिड नॉट सी द गेम क्योंकि वो बहुत टेंस्ड थे. सैटरडे ही था उस दिन और साइना ने बताया कि गोपीचंद वॉज एट द एज ऑफ हिज सीट. साइना उस टाइम मलेशिया की प्लेयर सोनिया के अगेंस्ट खेल रही थी और इस टाइम पे जो फीलिंग वो शेयर कर रही थी और उनको लग रहा था कि गोपीचंद बिल्कुल सोच के बैठे हैं कि आज तो हम हार जाएंगे और वो इतना टेंस थे. मतलब ये पहली बार ऐसा हो रहा था क्योंकि इससे पहले उन्होंने हमेशा उनको कूल देखा था, काम देखा था, पर कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पर ही वॉज डिफरेंट, मतलब बिल्कुल अलग दिख रहे थे. गोपीचंद की एक कहावत मुझे आज भी याद है. उन्होंने कहा था कि विनर को कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, विनर शुड नॉट सेटिस्फाइड, और लूजर को कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए. इन दोनों बातों को जब आप बारीकी से सोचते हैं तब आपको लगता है कितनी गहरी बात है. मतलब अगर आप जीत भी जाते हो तो अब आपको सोचना चाहिए कि अभी सीखने के लिए और बहुत कुछ बाकी है, अभी जीतने के लिए और बहुत कुछ बाकी है. और अगर आप किसी खेल में हार भी जाते हो तब आपको लगना चाहिए कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस आपका डगमगाना नहीं चाहिए क्योंकि खेल में एक की जीत होना तय है और एक की हार होना तय है. तो ऑब्वियसली कभी आप जीतोगे, कभी आप हारोगे, लेकिन कभी कभी जब आपने बहुत सारे सपने देखे होते हैं और आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है तब आप आगे नहीं बढ़ पाते हो. तो इस बात का ध्यान रखना है. और अगर आपने जस्ट अभी खेलना शुरू किया है तो ट्रस्ट मी, सिर्फ कॉन्फिडेंट रहिए और अपने आप को बस लगातार उस काम के लिए झोंक दीजिए. उसके बाद देखिएगा कि क्या रिजल्ट आएंगे. और अभी के लिए बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि थोड़ी देर के लिए जा रही हूं, लौट कर आऊंगी. सुनते रहिए रेडियो वॉक टॉक. मैं हूं मुस्कान. ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ.

0: Walk Talk Radio.
1: Come, shall we do a radio talk with a radio called Say What? Walk Talk. Hi, मैं हूँ अनुष्का. I'm a singer, songwriter and rapper. और आप मुझे सुन रहे हैं Walk Talk Radio पर.
0: Walk Talk Radio.
2: हाय, मेरा नाम है शार्दुल कोटियाल और आज मैं आया हूँ वॉक टॉक रेडियो में. सो बेसिकली मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो है थोड़ा बहुत अब ट्रैवलिंग की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है. सो मैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हूँ, जो मतलब मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो 2 लाख प्लस हैं फिलहाल. और ये मैंने कमाए हैं सिर्फ 1 से 2 महीने के अंदर पे. और कैसे कमाई है तो मुझे खुद भी नहीं पता. खैर, बस कर रहा हूँ जो लोगों को पसंद आ रहा है और उसी वजह से मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो मुझे काफी ज्यादा मिल रहे हैं. बेसिकली मैं अगर आपको सच बताऊं ना, तो आइडिया तो मुझे 2015 में आ गया था, जब मैं कॉलेज में था. तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था बेसिकली. और मतलब था भैया कुछ ऐसा करना है कि मतलब मुझे फेमस होना है, बस कुछ भी करूं, चाहे मुझे और मतलब कुछ भी ऐसा काम करना है जिससे मैं फेमस हो जाऊं बस. तो उस टाइम पे दिमाग में सिर्फ आया रैप, क्योंकि उस टाइम पे चला था रैप वाला ट्रेंड. तो रैप करने का बड़ा शौक चढ़ा था मुझे. तो लिखता था मैं, और लिखने के बाद फिर गाता था, रैप करता, लेकिन फ्लॉप हो गया भैया मैं तो. फिर उसके बाद जैसे ही मेरा मैकेनिकल कंप्लीट हुआ, उसके बाद जॉब वाली जिंदगी में आया, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं भैया हम. तो मिडिल क्लास फैमिली वालों का क्या होता है ना, बस जॉब के अलावा कुछ नहीं होता भाई. सुबह उठो, निकल जाओ जॉब पे, शाम को आओ, खाना खाओ और सुबह फिर से निकल जाओ जॉब पे. तो बेसिकली ऐसी जिंदगी देखी. लेकिन कुछ टाइम बाद ना ये जिंदगी मुझे झंड से लगने लग गई थी पूरी की पूरी. तब दिमाग में आया भैया कि ट्रैवलिंग तो कर ही रहे हैं, तो क्यों ना ट्रैवल व्लॉगर बना जाए, क्योंकि अब ट्रैवल व्लॉग वाला ट्रेंड आने लग गया ना. तो सोचा अब चलो ट्रैवल व्लॉगर ही बनते हैं. लेकिन जो मेरी ट्रैवल व्लॉगिंग की जर्नी थी बेसिकली, वो स्टार्ट हुई थी 2019 नवंबर में. 1 साल हो गया, कंप्लीट हो गया, बहुत खर्चा वर्चा कर लिया भैया, घूम लिया, लाखों रुपए उड़ा दिए, गोप्रो ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन कुछ नहीं, सब्सक्राइबर कुछ नहीं मिले हमें. मतलब 1000 से 1500 सब्सक्राइबर हुए. तो अभी बेसिकली ये है कि जैसे हमारा मतलब 1 साल कंप्लीट हो गया, तो मतलब अब दिमाग में आया कि भैया अब क्या करें, बढ़ तो रहे नहीं हम, मतलब क्या हम इसके लिए भी नहीं बने हुए क्या? तो बने किस चीज के लिए? वही नौकरी करने के लिए बने क्या, 9 से 6 वाली? तब दिमाग में आया, मतलब कई हमने वीडियोस वगैरह देखी जिसमें लोग बता रहे हैं कि मतलब लोगों को बोलने का तरीका अच्छा लगता था मुझे कई कुछ वीडियोस में. और क्या हो पा रहा था कि हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे बेस. लेकिन ये चीज समझ में आ गई थी कि भैया कई लोगों को ट्रैवल करना है और पर कर वहां तक पहुंचना कैसा है वो किसी को पता नहीं है बेसिकली. तब मेरे दिमाग में प्लान आया कि भैया चलो एक काम करते हैं, हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे, लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे, तो हम वीडियो उठाते हैं भैया और बताते हैं, लेकिन अपने स्टाइल में.
0: What?

0: हाय, मेरा नाम है शार्दुल कोटियाल और आज मैं आया हूँ वॉक टॉक रेडियो में। मैं आपको सच बताऊँ, 2022 गया अभी ना, तो 2022 दिसंबर में ना हमें कुछ नहीं पता था। 2022 दिसंबर में हमारे जो चैनल पे ना 2000 सब्सक्राइबर थे, वो भी रोध हो गए। हमने एक चैलेंज चलाया था 30 दिन का, तो उसमें हमने मतलब 2000 गेन कर लिए थे। तो हमें लगा भैया कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन इस चीज को जो ये शॉर्ट बनाने वाली चीज है ना, इसको रेगुलर रखते हैं। मतलब भाई जनवरी के बाद से जैसी हमने कंटेंट डालना शुरू करा, एकदम से हाइव। भाई मैं अगले से पूछ रहा कहीं ये मतलब फेक तो नहीं है भैया, देख ले ढंग से, मुझे तो क्योंकि फेक लग रहा है एकदम से। रातों रात कहां से आ गए उठ के। तो वो चीज सच बताऊं तो हमने ना प्लान करी थी ना सोची थी, और मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि भैया सच में 2 लाख है हमारे। मुझे अभी भी वो जैसे सपना जैसा ही लगता है, भैया फर्जी तो नहीं है कुछ। तो मैं कुछ ऐसा, क्योंकि अब मैं वही रेगुलर चीज डालता ना, तो मुझे पता था कि भाई चलने वाला है नहीं, क्योंकि मुझ जैसा तो पता नहीं कितने हर गली और नुक्कड़ में बैठे हुए, हर घर में ऐसा कंटेंट क्रिएटर तो बैठा है। तो मैं अपनी उस रैप वाली चीज को जो मैं लिखता था उसको और इस ट्रैवल को मिक्स करना चाह रहा था बेसिकली, लेकिन अपने अंदाज में। कई लोगों ने मुझे ये बोला है कि भाई मैं बोलता बड़ा प्यारा हूँ, अब पता नहीं ऐसा है कि नहीं है, पर कई लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। तब मेरे दिमाग में था कि भाई मैं लिखता भी अच्छा हूँ और बोलता भी अच्छा हूँ, एडिटर तो मेरे पे है ही बढ़िया वाला। तो फिर उस चीज से मतलब कई वीडियोस देखी मैंने कई लोगों की, तो वो मेरे दिमाग में बैठी और मैंने उसको करना शुरू कर दिया। थोड़ा वो मजाक करने वाला ह्यूमर भी है मेरे अंदर, तो स्क्रिप्ट में वो मजाक भी डाली, नॉलेज भी डाला, मजाक नॉलेज को मिक्स करके मैंने कॉन्टेंट बना दिया।
1: वाह।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: मैं कर्नल अजय कोटिया हूँ। अगर आपके पास कोई अपनी स्टोरी होती है, कोई एक्सक्लूसिव फीलिंग होती है, तो आप वॉक टॉक रेडियो में आए और यहाँ पे आकर के अपना आइडिया शेयर करें और डाउनलोड करें वॉक टॉक रेडियो, बहुत सारे लोगों की अच्छी जानकारियों को जानने के लिए।
2: मेरा नाम सिद्धार्थ है और आप मुझको सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पे। मैं बेसिकली अपैरल इंडस्ट्री में काम करता हूँ। कोरोना काल में लोग वापस उन जगहों पे गए, उन चीजों में गए, उन हैबिट्स में गए जो हम छोड़ चुके थे। तो मैंने भी कोविड के दौरान ही ये साइकिलिंग का एक दौर मेरा शुरू हुआ, जहाँ मैंने बहुत ही निचले स्तर से शुरू करा, बिकॉज साइकिलिंग बिल्कुल छोड़ चुका था मैं। तो बस तब से साइकिलिंग करना स्टार्ट करा और मुझे साइकिलिंग करते हुए अभी आई थिंक 1.5 साल के आसपास हुए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन 1.5 साल में मैंने इतनी जगहों को एक्सप्लोर कर लिया है अपने देहरादून सिटी के अंदर ही। अभी स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ शहर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे इतने हिडन स्पॉट्स हैं, इतने अच्छे ट्रेल्स हैं, जहाँ आप जाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, आप नेचर के करीब जाते हैं। और चाहे वो मन की शांति हो, चाहे इंस्पिरेशनल, आप खुद एक इंस्पिरेशन बन जाते हो काफी लोगों के लिए और लोगों से इंस्पिरेशन लेके। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा 1.5 साल का, और मुझे एक बहुत बड़ा फोमो बोल सकते हैं ये रहेगा और है, जो कभी टाइम वापस नहीं आ सकता, कि मैंने साइकिलिंग और जल्दी शुरू क्यों नहीं करी। तो मैं अभी यहाँ पे हूँ, तो आप सबको एक छोटा सा मैसेज ये देना चाहूंगा कि आप लोगों को ऐसा फोमो ना हो, तो देर आए दुरुस्त आए, जल्दी से अगर साइकिलिंग नहीं है आपके पास तो लीजिए, परचेस कीजिए, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट्स में आती है, कोई बहुत महंगी साइकिल भी नहीं आती, आप ले सकते हैं और अपनी जर्नी साइकिलिंग की स्टार्ट कर सकते हैं। आई एम श्योर यू विल बी रियली हैप्पी आफ्टर डूइंग सर्टेन साइकिल ग्रुप राइड्स और सोलो राइड्स, आपको बहुत अच्छा लगेगा 4-5 राइड करने के बाद। एक वो एक्सपीरियंस ही बहुत ही अच्छा होता है जब आप सुबह सुबह 4 बजे उठ के घर से निकलते हैं और आपको खाली सड़क दिखती है, सूर्य उदय हो रहा होता है या अंधेरा होता है, तारों की छाँव में आप साइकिलिंग चला रहे होते हैं, वो एक एक्सपीरियंस जो है वो शायद हमें अपने कमरे में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के, टीवी के सामने शायद हमें कभी वो लुत्फ और वो एक्सपीरियंस कभी नहीं मिलेगा। और भी आपसे बातें करेंगे बस जरा सी देर में।
0: वॉक टॉक रेडियो।
3: इस दुनिया में सबसे अलग दिखोगे, अभी जितना अंधेरे में हो कल उतना ही उजाले में रहोगे।
0: वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: मेरा नाम सिद्धार्थ है और आप मुझको सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पे। मोटिवेशन मुझे बहुत सारी चीजों से आया, बट अगर मैं बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बोलूं तो मैं बहुत मोटिवेटेड स्पेशली साइकिलिंग करने की, मुझे साइकिलिंग ही करनी है। मैं थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हूं, आई हैव बीन वर्किंग आउट ऑन एंड ऑफ, बट हैवी वेट्स वगैरह नहीं, बट नॉर्मल कुछ ना कुछ मेरा रूटीन रहता है। लाइक आई एम मोर इन टू डांस ऑल्सो, मैं डांस वगैरह करता हूँ। तो मेरे बर्थडे में मेरे भाई ने बोला कि साइकिल लेनी है या ट्रेडमिल लेनी है, तो मेरा आंसर था कि ट्रेडमिल लेंगे तो फिर हम घर तक सीमित रहेंगे, और अगर हमने साइकिल ली तो हम साइकिलिंग तो करेंगे, नेचर के करीब जाएंगे, अलग अलग रूट्स फॉलो करेंगे। सेकंड, हमारी रोजाना जिंदगी में जो हमारे कुछ छोटे मोटे काम होते हैं, जो हम एक या तो टू व्हीलर या कार पे या वॉक करते जाते हैं, वॉक तो फॉर श्योर कर सकते हैं, बट वो टू व्हीलर या कार भी हम ट्रैफिक ऐड करते हैं अपनी सिटी में, अपनी सोसाइटी में, अपने एनवायरमेंट में, तो हम वो फुटप्रिंट्स कम कर सकते हैं और हम साइकिल को फॉलो कर सकते हैं। तो ये मेन मेरे दिमाग में ये था कि हम साइकिल लेके बहुत सारे फायदे हैं। दूसरा, देहरादून सिटी में हमारे ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे लोग साइकिलिंग से जुड़े हुए हैं। तो अभी इंस्टाग्राम एक अगर बोलें कि यहाँ से लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो वो थोड़ा देख के मुझे इंस्पिरेशन सा मिला, मोटिवेशन सा मिला कि यार जब हमारे रिटायर्ड लोग, 60 साल से प्लस लोग ये सब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो जो लोग ये सुनेंगे उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी जो हैं उन्होंने अपना एक लंबी उम्र तक साइकिल ही चलाई है, और उन्होंने वैष्णो देवी जैसे टूर 3 बार साइकिल पर ही करे हैं, और उन्होंने भी अपनी लाइफ में सब स्ट्रगल किया है। तो उनकी जब 25th वेडिंग एनिवर्सरी थी तब हमने उनको पहली बार एक टू व्हीलर विच इज एक्टिवा गिफ्ट करी थी। उससे पहले वो अप्रॉक्स 50 साल की एज तक अपनी रोजाना जिंदगी में जो दौड़ भाग करते थे वो सिर्फ साइकिल पे करते थे। और आज मुझे इस बात का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पश्चाताप बोल सकते हैं, कि एक पीयर प्रेशर बोल सकते हैं, स्कूलिंग एनवायरमेंट बोल सकते हैं, कि मुझे कहीं ना कहीं शर्म सी आती थी कि मेरे स्कूल में मेरे पिताजी मुझको साइकिल पे छोड़ने आ रहे हैं, जबकि औरों के पिताजी मे भी कार में आ रहे हैं या टू व्हीलर में आ रहे हैं। तो मेरी पेरेंट्स मीटिंग होती थी या स्कूल की कोई एक्टिविटी होती थी, मैं कहीं ना कहीं प्रेफर करता था कि मेरी मदर आए। मेरी मदर ऑब्वियसली साइकिल पे नहीं आ रही है, बट वो चाहे पैदल आ रही है, बट वो साइकिल कहीं ना कहीं गायब है उस सीन से। तो वो मैं अवॉइड करता था कि साइकिल वहां पे ना रहे, क्योंकि तब थोड़ी सोच हमारी उतनी मैच्योर नहीं रहती, हम छोटे बच्चों की तरह ही होते हैं 12th स्टैंडर्ड तक। तो पीयर प्रेशर में जो दिख रहा है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो वो मैं आज के जो भी हमारे यूथ हैं, स्कूल गोइंग यूथ हैं, तो ये तो ऑलमोस्ट बहुत ही कोई इक्का दुक्का ऐसा बच्चा स्कूल का निकलेगा जिसके पिताजी अभी तक साइकिल यूज कर रहे हैं। मेन शहर में आपको नहीं दिखेगा कि उनकी फैमिली में किसी का साइकिल है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप खुद तो प्लीज यूज करें, और अगर आपके बुजुर्ग लोग जो पहले कभी यूज करते थे वो यूज करना चाहते हैं, और आपने कभी उनको ये बोल के कि साइकिल साइड रखवा दे कि शर्म आती है, हमारा स्टैंडर्ड लो होता है, ऐसा कुछ भी आपकी सोच थी, मुझे गारंटी नहीं पता बट शायद हो सकती है, तो प्लीज आप रिक्वेस्ट कीजिए उनको कि आप वापस साइकिलिंग करना स्टार्ट करें, और आप खुद भी अपने घर में, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, फ्रेंड्स, फैमिली, सब जगह पे साइकिलिंग का मैसेज लाएं और साइकिल यूज करें।
0: वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो।
2: जिंदगी में देखा जाए तो टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है।
0: वॉक टॉक रेडियो।

0: शैतान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।
1: मेरा नाम उपासना चौहान है एंड बाय प्रोफेशन आई एम एन एडवोकेट और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। बेसिकली आई एम फ्रॉम पानीपत, डिस्ट्रिक्ट पानीपत एंड बोर्न एंड ब्रॉट अप इन गुरुग्राम हरियाणा। सो आई डिड माय स्कूलिंग कॉलेज एंड ऑल फ्रॉम हेयर एंड बाय द टाइम स्टार्टिंग मैंने अपनी जर्नी जो है ग्रेजुएशन की वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी थी, क्योंकि उस टाइम पे क्रेज था कि हाँ भाई डी यू में जाना है, तो हम उसको बहुत हाई मानते थे। तो उस टाइम पे सारा फोकस जो था वो ये था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो वो मैंने ले लिया। तो वो मेरे लिए एक फर्स्ट सक्सेस पॉइंट था। एंड देन जब बीकॉम एडमिशन लिया तो फिर ये सोचा है कि चलो कुछ अपने ही फील्ड का मतलब हाई कुछ करते हैं, लाइक अपना प्रोफेशन में हाई माना जाता है CA, CS, कोस्ट अकाउंटेंसी। सो मैंने भी सोचा कि चलो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स लेते हैं, क्योंकि मेरी थ्योरी बहुत अच्छी है। तो मैंने वो स्टार्ट किया। तो जब स्टार्ट किया तो मेरा फर्स्ट लेवल क्लियर हो गया। करते करते साइड में मेरा बीकॉम भी चल रहा था और बीकॉम के मैं सेकंड ईयर में भी आ गई थी, तो कॉलेज में और इंटरेस्ट भी आधा चला गया। और इधर मतलब कि मैंने दोनों हाथों पे ले लिया, इधर से बीकॉम इधर से कंपनी सेक्रेटरी। तो मुझे ऐसे लगा कि हाँ मतलब कि एक टाइम पे एक चीज़ ही करनी चाहिए। तो मैंने थोड़ा उसको गैप दिया कि ठीक है कंपनी सेक्रेटरी अपना आफ्टर ग्रेजुएशन करते हैं। तो उस टाइम पे फिर सेकंड ईयर पे मैं कॉलेज में हमारे हुए थे यूनियन का, मैं पार्ट बन गई थी और मैं कॉलेज की वाइस प्रेसिडेंट बनी थी। तो वो भी एक फन पार्ट था। आप जब कॉलेज की को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हो तो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ कॉलेज में कैसे क्या होता है, फेस्ट कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, टीचर्स के साथ कैसे रहते हैं, वाइस चांसलर्स के साथ बैठ के हम मीटिंग कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो वो एक प्रॉपर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो लाइफ होती है हमने वो इंजॉय करी है। स्टडीज़ भी की है, ऐसा नहीं कि मस्ती एंड ऑल वगैरह करी है, तो साइड बाय साइड वो भी किया है। तो जैसे जैसे अपना डिग्री ख़त्म होता चला गया फिर सोचा चलो लाइफ के बारे में और सीरियस हो जाते हैं, तो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स मैंने कंटिन्यू किया। तो मेरा फिर सेकंड लेवल भी हो गया। तो सेकंड लेवल होते होते मेरी साइड बाय साइड एमकॉम भी हो गई कि बस करते चलना है। तो जब कोविड आया तो उसके बाद मतलब कि अपना स्टडीज़ वगैरह था तो साइकोलॉजिकली वो माइंड में आ गया था, बस सबकॉन्शियसली मतलब कि वो कहता था अंदर से कि मतलब कि पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हैं, बट वो एक्चुअल थिंग जो होती है, वर्किंग स्टाइल जो होती है वो नहीं आ रही, प्रोफेशनलिज्म लैक कर रहा है नॉर्मल उसमें। सो मैंने डिसाइड किया कि ये तो चल ही रहा है, तो साइड बाय साइड एक होता है कि अपना कॉर्पोरेट के लिए जो कहते हैं कि CS प्लस LLB बहुत अच्छा माना जाता है, तो मैंने ठीक है बीकॉम हो गया एमकॉम हो गया, अब अपना CS चल ही रहा है, LLB भी स्टार्ट कर देते हैं। ग्रेजुअली जब मैं CS करती थी तो मैं कंपनी लॉ जो था वो हमारे लिए प्रायोरिटी होता था CS प्रोफेशन में, तो एक लॉ से गो थ्रू हो गए थे। जब मैंने वो लॉ पढ़ा, उसकी इंटरप्रिटेशन की, उसको अंडरस्टैंड किया कहाँ कैसे क्या रिलेट करते हैं, तो मुझे समझ में आया कि लॉ तो इससे भी ज़्यादा वाइड स्कोप का है। तो अगर मैं कुछ चीज अगर करती हूँ तो मेरी आदत है, हैबिट है कि मैं उसको इन डेप्थ करती हूँ, मतलब डीप स्टडी करती हूँ। मैंने मतलब लॉ में एडमिशन लिया है तो ये नहीं कि जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी मैंने उसको लिया, मैंने बुक्स एंड ऑल वगैरह ली, तो मैंने इन डेप्थ स्टडी करी। जब मैंने इन डेप्थ स्टडी करी मुझे अच्छा लगा पढ़ते पढ़ते मुझे इंटरेस्ट आ गया कि मैं डेस्टिनी जो है मुझे करते करते वहाँ तक ले आई। और जिससे मैंने मतलब कि कोर्ट में एंट्री की, मतलब कि अगर मेरे को ये होता है कि समझ लो कि मैं अपने पैशन के पास, अपनी डेस्टिनी के पास सही डायरेक्शन में खुद को लेते हुए मैं सही टाइम पे और अब राइट प्लेस पे आई हूँ, ऐसा मुझे अंदर से फील होता है। चाहे सामने से पब्लिक कुछ भी बोले कि आप कहाँ आ गए हो, किस प्रोफेशन में आ गए हो, इसमें बहुत स्ट्रगल्स है, चैलेंजेस है, वो उनकी बात है, लेकिन आप अंदर से मतलब कि खुश जब फील करते हो ना, हैप्पी फील करते हो कि हाँ भाई आप अपने लिए कर रहे हो, वो मैटर ज़्यादा करता है। ये नहीं कि आप जस्ट फॉर्मेलिटी करने जा रहे हो, तो मेरे लिए ये बेस्ट जो मैं अपने लिए मानती हूँ कि हाँ कोई बात नहीं कि ऐसे ऐसे स्टेज से मैं आई हूँ, लेकिन जो मेरी ये जर्नी रही है उसने मुझे यही सिखाया कि मेरे डिसीजन बिल्कुल सही हैं।

0: पता है बड़े बड़े लोगों के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो हम सबको इंस्पायर करती है, जैसे वो हमेशा आने वाले 10 साल की प्लानिंग पहले ही कर देते हैं। वो इस तरह से काम करते हैं कि उन्हें आने वाले 5 या 10 साल में कहाँ जाना है वो पहले से ही पूरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। अगर यही क्वालिटी आपके अंदर या हमारे अंदर आ जाए, सोचो उसके बाद क्या होगा। जिन्होंने बड़े बड़े एम्पायर खड़े करे हैं, जो जीरो से हीरो बने हैं, उनके अंदर भी तो यही क्वालिटी थी।
1: हाय, मेरा नाम उपासना चौहान है एंड बाय प्रोफेशन आई एम एन एडवोकेट, और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। सोशलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, एक कॉलेज लाइफ के बाद की जो होती है वो मैंने कभी नहीं देखी। जब मैंने कोर्ट में जाके देखा, मेरे लिए फर्स्ट क्वेश्चन यही आया था, ऐसी भी दुनिया होती है, ऐसे भी लोग होते हैं। मैंने जाके घर पे पापा से डिस्कस किया, मेरे को पापा, क्योंकि उनको तो पता है, वो तो देखते हुए आ रहे हैं। हमारे लिए न्यू थिंग थी कि पैर तो रख दिया है जर्नी में, उस प्रोफेशन में, अब इन्हें भी देखो। तो वहाँ पे हम एक तरफ कहते हैं अपने कोर्ट से बाहर की जो लाइफ होती है कि हम इतने मॉडर्न हो गए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और लेकिन ये सारी चीजें जस्ट एक ना कहीं वर्बल हैं। मतलब कि आप अगर इनको मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखोगे तो वहां पे तो ठीक है, ये मॉडर्नाइजेशन, हम सही हैं, वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीज। लेकिन जब आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज से अगर बाहर जाके देखोगे, गांव में जाओगे, बैकवर्ड उसमें जाओगे, विलेजेस वगैरह जाओगे, आज भी कहीं ना कहीं वहां पे वो चीज नहीं पहुंची है जो कि हम अपने थॉट्स में कहते हैं या फिर हम एक मैसेज पहुंचा रहे हैं मतलब लोगों तक कि लाइफ में मतलब कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो मतलब कि बहुत ही डिफरेंट थिंग है। कोर्ट के अंदर जो लोग आते हैं, जो एक सिस्टम है काम करने का तरीका, वो आज भी कहीं ना कहीं वो ही सिस्टम है जो एक अपना पहले हुआ करता था। तो समझने की बात तो ये है कि वो चीज मतलब पीक पॉइंट पे नहीं आए कि लोग आपस में समझ रहे हैं एक दूसरे को, वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी वाली थिंग है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हम बहुत हाई लेवल पे पहुंच गए हैं, ऐसा नहीं, अभी तो बहुत टाइम लगेगा उसके लिए। मतलब कि एक, अगर आप 10 जने हो तो 10 में से हार्डली 1 या 2 जने, अगर 1 या 2 जने को अगर थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज हो जाती है, वो अगर अपनी एजुकेशन दिखाता है तो उसको पागल बोल दिया जाता है। देखिए तो पागल बन रहा है, पागल है, कुछ नहीं है ये। एक चीज होता है अगर बोलते हैं कि चीजें अपनी देसी तरीके से चलती है, हरियाणा है, हरियाणा के अंदर चलो हम हैं, हम कॉर्पोरेट मतलब कि एजुकेटेड अपनी थोड़ी सी थिंकिंग लेवल मैच कर देते हैं। लेकिन जब बारी आ जाती है कि हाँ भाई एक एजुकेटेड इंसान है और एक अपना नॉर्मल इंसान है, देसी टाइप वाला है, वो तो अपनी चीज़ों से ही चलेगा। ये एक जनरेशन गैप भी जिसे हम कह देते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हो गया है। कहाँ कौन क्या कह रहा है, बस चल रहे हैं, दिन निकल रहा है, फिर नेक्स्ट डे आ जाता है, नए गोल आ जाते हैं, फिर दिन निकल जाता है, फिर नए गोल आ जाते हैं। कभी कोई कहता है कि आप ठीक है, क्योंकि हमारी आदत क्या है ना कि हम औरों को सुनना पसंद करते हैं। हमारी आदत है कि हम 3 जने बैठे हैं, 4 जने बैठे हैं, हम हर एक से वही क्वेश्चन पूछेंगे, या तू बता दे कि क्या सोल्यूशन है। वो एक आदत, हैबिट हो गई है पूछने की ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप सुनो सबकी, करो मन की, ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर आप 10 जने कहेंगे, आप 10 डायरेक्शन में चले जाओगे, उनका कुछ नहीं जाएगा, जाएगा आपका, आपकी लाइफ मैस हो जाएगी, आप डायरेक्शन लेस हो जाओगे, आपको नहीं समझ में आएगा क्या हो जाएगा। चाहे जो मैंने अपनी जर्नी से ये सीखा है कि चाहे टाइम लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन अपनी गट फीलिंग ही फॉलो करनी चाहिए, ये मैंने देखा है।

0: बुक रीडिंग हम में से बहुत लोगों को बहुत ही बोरिंग एस्पेक्ट लगता है, पता है क्यों? टाइम नहीं है यार, बहुत कुछ करने का है। बिजनेस है, फोन है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीजें करनी है और लोगों से बातें करनी है, जगहें देखनी है। किसी सफर पे अकेले निकलना, हम सब लोग ग्रुप में निकलते हैं, दोस्तों के साथ निकलते हैं, परिवार के साथ निकलते हैं, बट खुद के साथ नहीं निकलते क्योंकि डर लगता है। हम अपने दोस्त थोड़े ना है, हमें अपना अकेलापन खा जाता है। अगर खुद को फील करना है तो अकेले निकलिए सफर पे और एक किताब लेके निकलिए। लेकिन एक जो रीडिंग हैबिट होती है ना, वो आपको आपसे कनेक्ट करती है।
1: कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से।
0: किसी इंसान ने अपने 60 साल 70 साल का तजुर्बा 60 से 150 पन्ने की किताब में डाल दिया आपके लिए। अगर आप उस किताब के साथ दोस्ती कर लेंगे तो यकीन मानिए ये दोस्ती आपकी खुद से हो जाएगी, क्योंकि ये समय

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: कई बार हम लाइफ में बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि किसके ऊपर भरोसा किया जाए और किसके ऊपर नहीं किया जाए, लेकिन दोस्तों भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी तीन बातें जान सके, हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का वो प्यार और आपके चुप रहने की वो वजह।
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: हम सबके बचपन में कुछ फेवरेट सुपर हीरोज होते थे, जैसे कि सुपरमैन, बैटमैन। हमें लगता था यार इनके जैसी पावर्स चाहिए, लेकिन जब धीरे धीरे बड़े हुए तो पता चला ये सब एक दिखावा है। असली हीरोज तो बॉर्डर पे हैं, हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन कुछ लोग ना शहर में रहते हुए भी हीरोज जैसा काम करते हैं। ऐसे ही एक हीरोज का ग्रुप है वेस्ट वॉरियर्स। वेस्ट वॉरियर्स ने पूरे शहर का, पूरी स्टेट का, पूरे हिमालय पर्वत का बेड़ा उठा रखा है, इनकी साफ सफाई का बेड़ा उठा रखा है। और आज वेस्ट वॉरियर से हमारे साथ हैं नवीन जी। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर।
3: थैंक यू गौतम, थैंक यू वेरी मच।
2: वॉक टॉक रेडियो में आप आए हैं तो कैसा आपको लग रहा है यहाँ पर आके?
3: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आज इन्वाइट किया और मुझे अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और पब्लिक तक ये बात पहुंचेगी, इस चीज की मुझे बहुत खुशी है।
2: सर, वेस्ट वॉरियर्स के वर्ड खुद ही में इतना अट्रैक्टिव है, तो जो कि वेस्ट वॉरियर्स की जर्नी है, आपका मिशन है हिमालयस को साफ करने का, क्या चीज आपको इंस्पायर करती है और कितने टाइम से ये काम चल रहा है, ये सफाई का अभियान चल रहा है?
3: बताना चाहूंगा आपको कि 2012 में वेस्ट वॉरियर सोसाइटी जो है फॉर्म की गई थी। जोडी अंडरहिल और ताशी पारिक, ये दो लेडीज थी, महिलाएं थी, जिन्होंने मिल करके इसको पूरा फॉर्म किया। और उद्देश्य यही था कि जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, जो आप देखा जाए कि जहां पर से मेन जो पानी का स्रोत है हमारा, जो जंगल है, जो पर्वत है, उसमें कचरा जो है एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही थी, और उसी को ठीक करने के लिए, उस प्रबंधन के लिए ही जो है वेस्ट वॉरियर सोसाइटी को फॉर्म किया गया। और 2012 से इसकी शुरुआत की गई और आज 2023 हो चुका है, लगातार इस पे काम चल रहा है।
2: सर, बहुत ही अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं और इसमें ना, इस काम में लोकल कम्युनिटीज का बड़ा साथ चाहिए होता है, तो उनके साथ आप कैसे एंगेजमेंट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं उनके साथ आप?
3: देखिए, कचरा प्रबंधन जब कहा जाता है या किस पे कुछ काम किया जाता है तो लोगों में कहता है कि कचरे की जिम्मेदारी तो यार सरकार की है। लोगों का बस ये होता है कि हमने तो कचरा घर से अलग कर दिया, अब सरकार की, हाँ, अब सरकार की जिम्मेदारी है, इसको अपने आप लेकर के जाएंगे, जैसे मर्जी इसको मैनेज करें। लेकिन आज ये एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है, क्योंकि कचरा जो है वो एक मिश्रित, मिक्स फॉर्म में आ रहा है और मिक्स होने के कारण जो है उसका कोई समाधान मिल नहीं पा रहा है। तो हम लोगों ने कम्युनिटी के साथ जाकर के उनको अवेयर करना स्टार्ट किया, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से लोगों को बताया कि भाई कैसे इसको ठीक किया जा सकता है और कैसे ये गंभीर समस्या बनता जा रहा है, इसका समाधान क्या होना चाहिए, इसका प्रबंधन कैसे होना चाहिए, पब्लिक तक वो सब चीजें पहुंचाई। कम्युनिटी ने इसका बहुत साथ दिया। देहरादून में अगर हम बात करें तो वार्ड नंबर 97 हर्रावाला जिसे कहा जाता है, वहां के पूरे वार्ड का प्रबंधन अभी वेस्ट वॉरियर्स अपने आप कर रहा है, जहां पे हर घर के द्वारा जो है कूड़ा अलग करके दिया जाता है और वो कचरा अलग होने के बाद सीधा हमारा जो स्वच्छता केंद्र हर्रावाला पे स्थापित है वहां पर पहुंचता है। तो जब कचरा अलग होके जाता है तो उसका प्रबंधन भी उस तरह से अच्छे से किया जा पाता है। इसके साथ ही सेंसधारा हो गया, उसके लगते हुए गांव हो गए, मुनी की रेती हो गया, आपका कैंटी फॉल एरिया हो गया, हर की दून ट्रैक हो गया पूरा आपका, वहां के गांव हो गए, रामनगर जिम कॉर्बेट हो गया, तो उत्तराखंड में इन तमाम जगहों पर जो है हम लोग काम कर रहे हैं। और ये काम तभी सफल हो पा रहा है कि इसमें जो लोग हैं उनकी भागीदारी पूरी हमें मिल पा रही है।

0: महाभारत में द्रौपदी के स्वयंवर की कहानी हम सब ने सुनी है। अर्जुन ने मछली की आंख को निशाना बनाकर स्वयंवर जीत लिया था। इतने सारे योद्धा थे लेकिन सिर्फ अर्जुन ही क्यों जीते? इसका कारण है कि अर्जुन अपने गोल, अपने एम को लेकर बहुत फोकस्ड थे। उन्हें उस मछली की आंख के सिवाय और कुछ भी नहीं दिखा। ऐसा ही कुछ हमें अपने जीवन में करने की जरूरत है। जो भी आपका एम है, जो भी आपका गोल है, सिर्फ और सिर्फ उस पे फोकस करें, बाकी सब भूल जाएं। उस एम को पाने में क्या चैलेंज आएंगे, कितना टाइम लगेगा, इस बारे में सोचो ही मत, बस फोकस। फिर आपको जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता।
1: आपने अभी बात करी कचरा अलग रखने की। काफी लोगों को ना कचरे को सेग्रीगेट करने का मतलब नहीं पता, मतलब उनके लिए गीला कचरा भी एक ही बात है, सूखा कचरा भी एक ही बात है, तो इन दोनों को क्यों सेग्रीगेट करना चाहिए, ये आप बता दें।
2: एक शब्द जो कूड़े के लिए अक्सर इस्तेमाल होता है वो है कूड़ादान। तो हम लोगों से इसकी परिभाषा के लिए बात करते हैं कि कूड़ादान वर्ड क्यों बना है। और दान तभी होता है जब वो किसी अच्छे के भले के लिए होता है। तो जैसे आप नेत्र दान करते हैं, अंग दान करते हैं, रक्त दान करते हैं, कन्या दान करते हैं, गौ दान करते हैं, वैसे ही आप कूड़ा दान भी करते हैं। तो केवल कूड़े को इकट्ठा करके देना इज नॉट द दान, वो दान नहीं कहलाएगा। कूड़ा अगर अलग होगा तभी वो दान कहलाएगा। और अलग हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमें नेचर ने दी हैं, जो चीज़ें प्रकृति ने दी हैं, जिसमें आपका खाना हो गया, फल हो गए, सब्जियां हो गई, या फूल हो गए, पत्ते हो गए, ये वो चीज़ें, तमाम चीज़ें हैं जो अपने आप डीकम्पोज हो जाती हैं, अपने आप जो है वो नेचर में ख़त्म हो जाती हैं। उसको अगर अलग किया जाए और वापस नेचर को दे दिया जाए, इन द सेंस कि मिट्टी में उसको दफना दिया जाए, तो अपने आप वो खाद बन जाती है। और जितना भी रिसाइकलेबल है, जो कि मैन मेड है, जिसमें प्लास्टिक खासकर आता है, पेपर आता है, कार्डबोर्ड आता है, मेटल आता है, ग्लास आता है, उसको अगर ढंग से अलग किया जाए और रिसाइकलिंग कंपनी को दिया जाए तो वापस एक नई चीज़ बन जाती है। तो लोगों तक हमने इस चीज़ को, मैसेज को बहुत क्लियरली पहुंचाया कि कूड़ादान केवल कूड़े देने से नहीं होगा, कूड़े को विभाजित करके सही तरीके से देना ही कूड़ादान कहलाएगा।
1: आपने बात करी कि 2012 में आपने शुरुआत की थी
2: जी,
1: तो उस टाइम पे लोगों की क्या मानसिकता थी, और आज जब आप 2023 में बैठे हैं, आपने इतना काम करा है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं, तो लोगों में क्या बदलाव देखते हैं आप?
2: 2012 में भी समस्या थी और आज हम 2023 में, तो तब भी समस्या यही है।
1: बिल्कुल।
2: और समस्या अब बहुत गंभीर हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जिस तरह से उत्तराखंड में टूरिस्ट हमारा जो है इंक्रीज हुआ है, क्योंकि चारधाम यात्रा पे आपको पता है कि हर साल लाखों जो है पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं, और वैसे भी ये पर्यटक नगरी कही जाती है, देवों की नगरी कहा जाता है उत्तराखंड को, तो तमाम पूरे प्रदेश से, पूरे देश से जो है लोग यहाँ पहुँचते हैं, तो उसी तेजी से जो है यहाँ पर कचरा भी यहाँ पर पहुँच रहा है। तो उसके प्रबंधन के लिए जो है हमने काम करना शुरू किया। समस्या गंभीर है और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, साथ में मुझे खुशी है कि सरकार भी इसमें हमारा बहुत सहयोग कर रही है, जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो भी इसमें हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं। और लोगों में अब ये मैसेज बहुत क्लियरली जा रहा है कि कूड़े को अलग करके जब आप देंगे तो ही इसका प्रबंधन हो पाएगा, नहीं तो कूड़े के पहाड़ बनते जाएंगे।
1: बिल्कुल, कूड़े के पहाड़ों की बात करी आपने, ये पहाड़ आज भी हैं और कल भी शायद होंगे, लेकिन आने वाले समय में वेस्ट वॉरियर और वेस्ट मैनेजमेंट मिलकर फ्यूचर में क्या ऐसा चेंज लाने वाले हैं, या क्या आपका ऐसा गोल है फ्यूचर में?
2: दो चीजों पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। पहला तो है कि मॉडल वार्ड बनाना और साथ में MRF को सेटअप करना। MRF मतलब हुआ कि मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, या इसको कह सकते हैं तो स्वच्छता केंद्र, मतलब कि जहां पर भी आप कूड़े को बात करते हैं अलग करने की, तो जब तक आपको अलग करने के बाद उसका समाधान आप नहीं दे पाएंगे, तो फिर वो उसका कुछ अलग करने का जो पर्पस है वो सब खत्म हो जाएगा। हर्रावाला में ही, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, कि एक स्वच्छता केंद्र का निर्माण किया गया है, जो कि नगर निगम देहरादून के साथ मिलकर के किया गया है, वहां पर लोगों द्वारा अलग जो कूड़ा किया जाता है वो लेकर आया जाता है, गीले कचरे से वहां पर खाद बनाई जाती है, और जितना भी सूखा कचरा है उसको अलग अलग और विभाजित करने के बाद जो रिसाइकलर्स हैं वहां तक उनको पहुंचाया जाता है। तो हमारी पूरी कोशिश, पूरा प्रयास है कि ऐसे मॉडल्स को पूरे उत्तराखंड में, ना केवल पूरे भारत में, ऐसा एस्टैब्लिश किया जाए, ताकि जितना भी कूड़े का प्रबंधन है वो अच्छे तरीके, बेहतर तरीके से हो पाए। और कूड़ा जब तक एक मटेरियल रिकवरी सेंटर पे नहीं पहुंच पाएगा, या लोगों द्वारा अलग से इसको अलग नहीं किया जाएगा, तो ये कूड़े के पहाड़ जो है लगातार बनते जाएंगे। आने वाले समय में हम लोग इस पे ज्यादा काम करने वाले हैं। इसके साथ साथ एक नया प्रोग्राम हम लोग लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम युवा है। युवा प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इसमें कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और जो हमारे स्कूल्स हैं उसमें इंटर कॉम्पिटिशन हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। अभी तक केवल वेस्ट वॉरियर्स या फिर ऐसे तमाम एनजीओस थे जो सफाई अभियान चलाया करते थे या फिर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया करते थे, बट अब एक नई पहल हम लोग करने जा रहे हैं कि कॉलेज इंस्टीट्यूट्स और जो हमारे स्कूल्स हैं वहाँ के जो बच्चे हैं उनको इतना मोटिवेट करें, उनको इतना एम्पावर करें कि वो खुद से अपने आप उठ करके आएं और अपने आप से वो सफाई अभियान चलाएं, अपने आप से वो लोग नुक्कड़ नाटक करें, इतने वो उनके अंदर इतनी पावर आ जाए कि वो अपने आप से जान सकें कैसे पीएल फाइल करनी है, कैसे आरटीआई फाइल करनी है, और उनकी आवाज़ इतनी बुलंद हो कि वो जो भी समस्याएं हैं खासकर कचरा प्रबंधन को लेकर के या पर्यावरण को लेकर जो भी चिंताएं जो व्यक्त की जा रही हैं उसको लेकर वो लोग काम कर सकें। तो 1 सितंबर से पूरा प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है और मार्च 2024 तक ये पूरे के पूरे क्षेत्र में जो है प्रोग्राम चलाया जाएगा।

0: इन सभी के बीच में थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा ईमान बचा पाया हूँ। ये क्या कम है कि मैं अपनी पहचान बचा पाया हूँ, कुछ उम्मीदें, कुछ सपने, कुछ महकती यादें बचा पाया हूँ। जीने के लिए बस इतना ही सामान बचा पाया हूँ, इसीलिए मटेरियलिस्टिक चीजों से अच्छा अपनी रियलिस्टिक चीजों के लिए भागिए। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ रियलिस्टिक चीजें काम आती है, मटेरियलिस्टिक तो थोड़े दिन में खराब हो जाती है। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।
1: हाय दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कपरवान, वन ऑफ द मेंबर ऑफ कॉमेडी क्लब देहरादून, और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पे। दो तीन बेरोजगारों ने सोचा क्यों ना कुछ करा जाए। कॉमेडी देहरादून में नहीं था, स्टैंड अप कॉमेडी आर्ट फॉर्म आई नहीं थी, पोइट्री चल रहा था, सिंगिंग चल रहा था, बट कॉमेडी की बड़ी जरूरत थी हम लोगों को। तो उसके बाद डिसाइड करा कि क्यों ना मिलके कुछ करा जाए। तो ऐसे ही कलेक्टिवली सब लड़के मिलके एक क्लब खोल दिया, उसको कॉमेडी क्लब देहरादून बोलते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी का तो देखो सिंपल है, अगर आपको अपनी इज्जत से बहुत प्यार है तब तो मत ही करो, तो अच्छी बात है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप स्टेज में जाते हो और कोई नहीं हंसता, तो आपको तब अपने पे डाउट होने लग जाता है कि बेकार पढ़ाई करी, प्यार भी करा लड़की से, सब चीज में धोखा खाया और स्टैंड अप कॉमेडी भी खराब जा रही है। ये उसके लिए आई थिंक आपको बहुत फेलियर से इस पे फेस करना पड़ता है। आप 10 जोक लेके जाओगे स्टेज में और एक चलेगा, कभी एक भी नहीं चलेगा, तो आपको ऐसे उतरना पड़ेगा और बार बार ऐसे ओपन माइक करके आपके पास एक सेट बनता है, हम उसे 5 मिनट सेट कहते हैं। 5 मिनट के लिए आप पे जोक्स बनते हैं जिसे हम टाइट 5 बोलते हैं, फिर वो आप जाके स्टेज पे करते हो, फिर उसमें भी गारंटी नहीं है कि 100% के लिए होगा, 95 समथिंग का रेशियो रहता है टाइम, तो इतना ईजी नहीं है, वो ट्राई करके ही पता चलेगा। जो भी एक बार आएगा स्टेज पे उसे पता चल जाएगा कि ये ऐसा करना है या नहीं करना है, या पढ़ाई पे ही ध्यान देना है।

0: रेडियो।
1: समस्या का गुलाम बनने वाले कभी खुद के भाग्य का निर्माता नहीं बन पाते।
0: Talk Radio, tune in for a better life.

0: पहेलियों।
1: हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना।
0: वॉक टॉक रेडियो।
2: हाय दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कपड़ुवान, वन ऑफ द मेंबर ऑफ कॉमेडी क्लब देहरादून, और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पे। स्टैंड अप कॉमेडी का क्या है कि जैसे आपको कुछ कहना है, आपको जोक्स लिख के लाए हो, आपको कहना है डायरेक्टली, आपको माइक पकड़ा दिया जाएगा सामने पे, ओपन माइक में 8-10 लोग रहेंगे और आपको उनको सुनाना है। अब वो बहुत रैंडम लोग हैं, वो जानते नहीं आपको, आप कहाँ से हो क्या हो, तो वो आपका टैलेंट है जोक्स के थ्रू। नहीं तो बहुत पॉसिबल ही नहीं है किसी को रैंडम इंसान को हंसाना अगर आपके जोक्स नहीं है, तो उसके पीछे पूरा स्ट्रक्चर होता है, राइटिंग स्ट्रक्चर होता है, तब जाके वो क्लिक होता है, तब लोग हंसते हैं। तो ऐसे रैंडम तो बहुत टफ हो जाता है फिर। मैंने तो घर वालों की उम्मीद पहले ही तोड़ दी थी, पढ़ाई से ही तोड़ दी थी मैंने, ऐसी ज़्यादा उम्मीद बना के नहीं रखी उनसे। मेरे पापा खुद स्टेज से रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन ही रहे हैं, आर्मी में वो करते थे, अभी भी करते हैं, स्टेज बहुत करते हैं, तो उनको पता है कि स्टेज में कैसा होता है क्या होता है। वो खुद मानते हैं बहुत टफ होता है आपको स्टेज में जाके किसी को हंसाना, तो पहले बोल देते हैं कि बहुत बड़ी बात है कर रहे हो, तो ये वैसे ही बहुत बड़ी बात है, इसका आगे हम इतना नहीं सोचेंगे। मेरा तो बहुत सपोर्ट करते हैं एंड शायद यहाँ पे जितने हैं सबका ही करते हैं, ऑडियंस का थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। अपने बहुत से ऐसे शोज भी देखे, मुझे याद है एक शोज कर रहा था मैं, यहाँ पे 600 की ऑडियंस थी। अब मिडिल ऑफ द शो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, साइड से एक मैनेजमेंट का आदमी आया, मुझे कहता है कि भाई अनाउंस कर दो कि गर्मा गर्म चाय और नमकीन कुरकुरे आपका इंतजार कर रहे हैं, और मेरे को मिड ऑफ द परफॉर्मेंस ही बोलना पड़ा। और देहरादून की जनता इतनी प्यारी है, सब उठ के चले गई चाय पीने, ऐसे लोग। एंड देन उसके बाद मेरे को बोलते कि लाओ स्टार्ट करो तो मैं कह रही यार यूट्यूब पे थोड़ी देख रहे हो तुम, कि सब पॉज कर दिया फिर स्टार्ट कर दिया तो बहुत होता है कॉमेडी में, लाइक अप्स एंड डाउन। आपको कुछ शो बहुत अच्छे जाते हैं, कुछ शो बहुत खराब जाते हैं, ऑडियंस पे डिपेंड करता है। जोक्स बेसिकली सब ऑडियंस पे ही डिपेंड करता है। सरकैज़म क्या ऑडियंस को समझ में आ रहा है, अवेयर भी होना चाहिए ना ऑडियंस। मैंने बात में किसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, उनको कोई फर्क ही नहीं है, तो 50% गेम ऑडियंस का है। अगर वो अवेयर नहीं है, उनको कुछ चीज़ पता नहीं है, किसी को समझ में नहीं आते जोक्स। जैसे अगर मैं किसी को बोलूँ कि यार मैं एक हॉन्टेड हाउस गया था, तो लोग सीरियस हो जाते हैं कि क्यों गए थे आप, क्यों वहाँ नहीं जाना चाहिए था, वो इतने सीरियस हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि आगे सुन ले क्या कह रहे हैं। नहीं, कॉन्टेक्स्ट से कोई मतलब नहीं, बहुत सीरियस होके सुनते हैं लोग कॉमेडी। कुछ कुछ हैं ऑडियंस, कुछ कुछ नहीं है, तो जो है हम उनके पास पहुँचने की कोशिश करते हैं फिलहाल।

0: हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। मैं हूं आप सभी के साथ किरण, और पॉडकास्ट की सीरीज में आज एक और गेस्ट के साथ मैं हाजिर हो चुकी हूं आप सभी के बीच में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड गढ़वाल और कुमाऊं रीजन के नाम से बहुत ज्यादा जाना जाता है। हालांकि बहुत सारी बोली भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको ये देखने को मिले कि एक गढ़वाली मुंडा जो है, अब मैं मुंडा यूज क्यों कर रही हूँ वो आपको पता चल जाएगा, एक गढ़वाली मुंडा जो है वो भांगड़ा कर रहा है, और इतना गजब का भांगड़ा कर रहा है, तो थोड़ा सा हम अचंभित हो जाते हैं ना, थोड़ा सा हमें सरप्राइजिंग लगता है। हालांकि लगना नहीं चाहिए, कोई भी डांस फॉर्म कोई भी कर सकता है, बट यूजुअली हमें ऐसे देखने के लिए नहीं मिलता है। तो आज के जो गेस्ट है ना, वो भी थोड़ा सा हटके है, क्योंकि है तो ये गढ़वाली, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि ये गढ़वाली है, क्योंकि ये पंजाब की तरह इनकी पर्सनैलिटी है, पंजाबी लोगों की तरह पर्सनैलिटी है, पंजाबी भांगड़ा डांस फॉर्म ये इतनी बेहतरीन तरीके से करते हैं, लोगों को सिखाते भी हैं। तो बिना किसी देरी के आप सभी से मुलाकात करवाती हूँ अजय की, जो कि ये फाउंडर है देहरादून भांगड़ा क्लब की। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल अप करने के लिए देहरादून भांगड़ा क्लब को। बेसिकली मेरा नाम तो आपने बता दिया अजय, लेकिन इस डीबीसी के पीछे बहुत सारे लोग हैं, मतलब इंक्लूडिंग 50+ मेंबर्स हैं। तो उन सब की तरफ से मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि काफी लोगों को हमारे बारे में जानने को मिलेगा, और मोटिव जो हमारे इसके पीछे है तो वो आज जानने को मिलेगा। तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल से हमें एक मीडियम मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जहाँ से हम लोगों को चीजें बता सकते हैं।
0: बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हमें भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, हर पॉडकास्ट से मिलता भी है। और जैसे कि आपने बताया कि आज जो है हम लोगों के बीच में ये रखेंगे कि हमारा डीबीसी का मोटिव क्या है, हम क्या चाहते हैं, उन सारी बातों से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके बारे में पहले जानना चाहेंगे। अजय कौन है, कहाँ से आता है, क्या करता है, डीबीसी यानी कि देहरादून भांगड़ा क्लब कैसे स्टार्ट हुआ, इसके बारे में बताइए।
1: बेसिकली अगर जर्नी देखा जाए और मेरे बारे में देखा जाए, तो मैं डिफेंस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो अब एक डिफेंस फैमिली जब बिलोंग करती है, तो वो हर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से हम लोग देख के आए, और इस पंजाब से कनेक्टिविटी जब हुई थी, जब मेरे फादर जो थे वो पोस्टेड थे पंजाब में, तो वहां से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ, एक वाइब जो है वो मेरे अंदर आ गई है। और मेरी मम्मी की भी पढ़ाई पंजाबी लैंग्वेज में हुई है।
0: अच्छा,
1: यस। तो
0: कैसे?
1: ये क्योंकि मेरे नाना जो थे वो एयरफोर्स में थे, तो उस समय वो चंडीगढ़ में पोस्टेड थे, तो वहां से ही मम्मी की पढ़ाई हुई, और मेरी मम्मी को पंजाबी में बोलना लिखना सब कुछ आता है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से एक वायरस तो नहीं कहूंगा मैं, एक छोटा सा कीड़ा कह सकते हैं, हाँ, एक जीन में आ जाता है वो चीज। जर्नी मेरी भांगड़ा को लेके हुई थी जब मैं ग्राफिकेरा में मैंने एडमिशन लिया था, ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी में, और हमारा पहला बैच था वाला 2011 का। उस समय फेस्ट होता था ग्राफिकेरा डीम्ड में, तो हिल में बस एक डिसीजन लिया गया कि यार चलो एक भांगड़ा भी हमारे यहाँ होना चाहिए। तो दो तीन चार लोग हम लोग दोस्त थे, तो उन्होंने बोला यार अजय चलो भांगड़ा करते हैं, एक ग्रुप है वो हमें सिखा देगा, बाकी हम वीडियो को देख के सीख लेंगे।
0: अच्छा।
1: तो मैंने यार चलो ठीक है, ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, और क्योंकि भांगड़े को सुन के ही सबके अंदर एक एनर्जी ऑलमोस्ट वो आई जाती है।
0: हाँ।
1: तो हमने वहां से उसको स्टार्ट किया, और बस ऐसे ही किया था कि चलो फेस्ट आउट कर लेते हैं, और बस यही था हमारी जर्नी स्टार्ट भांगड़े के साथ कनेक्टिविटी। बट धीरे धीरे जैसे कॉलेज में हम लोग करते गए, तो वो चीजें और आती गई कि हाँ यार अब तो और करना है और करना है। तो जब कोई चीज कनेक्टिविटी बन जाती है एक डांस फॉर्म के साथ, तो डेफिनेटली इंसान उसको करने में पीछे हटता नहीं है, क्योंकि हमें भी करने में उसको अच्छा लगता था, लोगों को भी धीरे धीरे पसंद आ रहा था। तो मेरी जो जर्नी है वो भांगड़ा का लेके यहाँ से स्टार्ट हुई है।

सभी यहाँ एक मंजिल तक पहुँचने के लिए आए हैं जो पूरी तरह हमारी होगी। कुछ लोग इसे लक्ष्य कहते हैं, कुछ इसे प्रसिद्धि कहते हैं और कुछ इसे केवल जीवन कहते हैं। किसी भी तरह याद रखने वाली यह एक बात है कि भले ही अपने समय में यह कोई दौड़ नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं है, यह जो कुछ है एक क्षण है और जब आप पहुंचेंगे तो क्षणों का यह संचय आपके पास होगा। मैं स्वीकार करती हूं कि कई बार निराशा चरम पर होती है और मेरा एक हिस्सा उस उन्मादी समय के मुंबई लोकल पर रहना चाहता है, लेकिन जिस चीज के लिए मैं सबसे अधिक आभारी हूँ वह यह है कि जब वह क्षण शांत हो जाता है और मैं खाली सुनसान मंच को देखती हूँ तो मुझे शांति का एहसास होता है कि जो मुझे सही चुनाव करने का आश्वासन देता है। मैं अपने आप को कहानीकार नहीं कहूंगी क्योंकि वास्तव में मैं सिर्फ एक कहानी हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझ में देखने और सुनने की उतनी ही क्षमता है जितनी मुझे देखने और सुनने की क्षमता है। इन द एंड ऑल आई रियली वॉन्ट टू से इज आई एब्सोल्यूटली लव द फैक्ट दैट यू एज माई लिसनर एम्पावर मी जस्ट एज मच एज आई एम्पावर यू एज योर स्पीकर।

0: तो आप इन शॉर्ट हमें भी थोड़ा सा बताना चाहोगे, क्योंकि बहुत सारे आम लोगों को सिर्फ ये पता है कि ठीक है जो है भांगड़ा ऐसे होता है, ऐसे होता है, हाई बीट पे होता है, ऐसे होता है, लेकिन उन्हें डांस फॉर्म के बारे में डिटेल में नहीं पता। बट इन शॉर्ट अगर आप थोड़ा सा उस पे लाइट डालना चाहो कि कितनी फॉर्म्स में होता है।
1: हाँ, अगर मैं वैसे देखूं, क्योंकि टेक्निकलिटी भी इसमें जा सकते हैं टेक्निकल, लेकिन मैं जाते हैं हम हमेशा देखते हैं कि ऑडियंस व्यू से, क्योंकि ऑडियंस एक भंगड़े को अलग अलग तरीके से देखना चाहता है
0: जी।
1: और जब भी हम कहीं परफॉर्म करते हैं तो हम उसी चीज को देखते हैं कि हमारी ऑडियंस क्या देखना चाहती है।
0: हाँ।
1: तो कई बार कई ऑडियंस, जैसे कि मोस्टली सबको ये पता है भंगड़ा गाना बजेगा, पंजाबी सॉन्ग बजेगा और नाचना है बस खुल के।
0: हाँ।
1: ठीक है, एक वो चीज होती है तो लोगों को वो भी पसंद है।
0: हाँ।
1: तो वो हम कॉन्सर्ट कराते हैं।
0: अच्छा।
1: ठीक है, बेसिकली अगर आप एक टेक्निकल उसमें जाओ तो भंगड़े के अंदर काफी स्टेप्स है। अब ऐसे ऐसे नाम है, पटाखा, फुलका, आप कोई फुलके को देख के सोचता है कि रोटी है।
0: हाँ।
1: तो उसी से लेके वो स्टेप बना है,
0: आई थिंक फुलकारी जैसे दुपट्टा।
1: हाँ, राइट। तो वैसी है, गिद्दा है, मलवाई गिद्दा है, झूमर है। तो ये टेक्निकल वर्ड्स हैं और एक टेक्निकल सेगमेंट्स होता है। तो
0: अच्छा।
1: जब भी हम कंपटीशन में जाते हैं तो इंडिया के अंदर एक इंटरनेशनल भंगड़ा कंपटीशन होता है।
0: अच्छा।
1: तो उसमें भी हम कॉम्पीट करते हैं और वहां पे ये सारी चीजें यूज करते हैं, लेकिन इससे मैटर नहीं है। मैंने बताया कि लोग भंगड़े को किस तरीके से देखते हैं,
0: आपकी ऑडियंस,
1: ऑडियंस मैटर करती है कि ऑडियंस जिस तरीके से डीबीसी को देखना चाहता है, हम उनको वही भंगड़ा जो है उस फॉर्म पे उनको दिखाते हैं।
0: तो अभी तक जैसे आपने बताया कि कॉलेज में आप बीसीए कर रहे थे, तो जब आपने ये स्टार्ट किया, चलो ठीक है उस टाइम पे तो ये होता है कि आप पढ़ रहे हो कॉलेज में, एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो घर वालों को उस चीज से इतनी तकलीफ नहीं होती है। उनका बस ये रहता है कि ठीक है पढ़ाई पे भी ध्यान रखना और एक्टिविटी भी कर लो। बट उसके बाद जब आपका इसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया, आपकी पार्टिसिपेशन बढ़ती गई होगी, आप बहुत ज्यादा इंडल्ज उस चीज में हो रहे होंगे, तो घर वालों को लग रहा होगा कि ये गया तो उस चीज के लिए था, अभी क्या कर रहा है या किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो थोड़ा सा उन्होंने कुछ बोला इस चीज पे?
1: हाँ, मतलब फैमिली का अगर देखा जाए तो सपोर्ट इतना नहीं था, और हमारे भी काफी मेंबर्स होते, क्योंकि हमारे इंडिया में देखा जाता है कि हर कोई गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब इन चीजों में फोकस करता है, लेकिन काफी ऐसे बच्चे होते हैं जिनपे बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट है, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते।
0: हाँ।
1: मैं अपनी बात करूं और कि जैसे कि मैं ये चीजें करता था, तो मैं अपने कॉलेज टाइम पे बीसीए और एमसीए में मैं टॉपर लिस्ट में रहा हूं।
0: अच्छा।
1: तो मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से उस चीज को मैनेज कर रहे हो। तो जब आप उस चीज को मैनेज करने लग जाते हो तो डेफिनेटली आपके पेरेंट को कोई इशू नहीं होता है। हाँ, ये तो था कि यार आप डांस क्यों कर रहे हो, क्यों करना है भंगड़ा। ठीक है, लेकिन कैसे समझाएगी यार, अब कनेक्टिविटी बन गई है तो वो चीज तो छूट नहीं सकती है। तो बस मेरी पढ़ाई को लेके तो कभी वो नहीं रहा। बीसी और एमसी के बाद मेरे प्लेसमेंट भी हुए हैं, मैं डिफेंस फोर्सेस के लिए भी मैंने ट्राई किया, नौ बार में एसएसबी में गया हूँ।
0: अच्छा।
1: तो ये सारी डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को किस तरीके से मैनेज करते हो। बट हाँ, फैमिली बिल्कुल भी सपोर्ट अभी भी नहीं करती है।
0: अच्छा।
1: तो कहीं ना कहीं ताने मारते हैं काफी, मतलब हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, लेकिन अब डिसीजन हमारा है और लाइफ में जब हमने डिसीजन लिया कि इसमें कुछ करना है तो डेफिनेटली उस चीज को प्रूफ भी हमें करके दिखाना है।

0: Radio.
1: Boss has a title, but a leader has the people. हर कंपनी में, हर बिजनेस में एक बॉस यानी कि हेड ऑफ द कंपनी जरूर होता है. बाकी सारे एम्प्लॉयज उसके अंडर काम करते हैं. बॉस का टाइटल तो सब हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा लीडर वही होता है जो ना कि सिर्फ ऑर्डर्स दे बल्कि खुद एक एग्जाम्पल सेट करे, अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करे, एक पॉजिटिविटी का एनवायरमेंट क्रिएट करे. और ऐसा लीडर टाइटल के साथ साथ अपनी टीम का दिल भी जीतता है.

हाय, मैं हूं अंशुल भट्ट, फाउंडर एंड सीईओ फॉरेस्टिको रिजॉर्ट ग्रुप, और आप मेरे को सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पे। जब हम बात करते हैं स्टार्टअप्स की और एंटरप्रेन्योरशिप की, तो बेसिकली स्टार्टअप, जब हम कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब हमारी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है किसी भी काम को करने में, और कुछ इनोवेशंस की वजह से किसी एंटरप्रेन्योर की कुछ काम करने के तरीके से अगर सोसाइटी की वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो वो बेसिकली एक स्टार्टअप होता है। ऑब्वियसली अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है सोसाइटी के किसी भी सेगमेंट में, किसी भी चीज में, तो ऑब्वियसली वो वहां से अर्न भी करता है, और जिसके वजह से वो धीरे धीरे ग्रो करता है। हमने ये देखा है क्या, इतने टाइम में इंडिया में ही काफी स्टार्टअप सब आ रहे हैं, 2014-13 के बाद से लेके कंटिन्यूस स्टार्टअप्स ग्रो कर ही रहे हैं अलग अलग सेक्टर में, और खास तौर पे सर्विस सेक्टर में तो स्टार्टअप की एक तरीके से अब बाढ़ आ रही है। लोग अलग अलग तरीके के सेक्टर में टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने अपने जो उनके आइडियाज हैं, जो उन्होंने सोचा हुआ है कि हम इस सेक्टर में ऐसे करके काम करेंगे, तो उसको ग्रो करवा रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं तो हर किसी का कभी ना कभी सपना रहता है कि वो कुछ बड़ा करे, वो कुछ स्टार्ट करे जिसके वजह से लोग उसको याद रखें, लोग उसको रिकॉग्नाइज करें, और इसी मोटिवेशन के साथ हर कोई कुछ ना कुछ काम स्टार्ट करता है। लेकिन काम स्टार्ट करना एक अलग है, और उस काम को एक बड़े लेवल पे ले जाना ये एक पूरा ही अलग, मतलब अगर आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, आपने एक शॉप स्टार्ट कर दी, कुछ भी ऐसा कि जिससे आपको अर्निंग हो रही, तो आप एक एंटरप्रेन्योर हो। लेकिन उस एंटरप्रेन्योरशिप को आप उस लेवल पे लेके जाओ जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल का, नहीं लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल का फायदा हो, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, बहुत सारे लोग जो आपकी टेक्नोलॉजी है या फिर जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे फायदा ले पा रहे हैं, तो उसके बाद ही आपको कहीं ना कहीं सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ, ये इसने ये स्टार्ट किया और इसका ये आइडिया था और ये बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहा है। तो इस पूरे जो जर्नी में बहुत सारी चीजें हैं कि जिसको आपको ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज तो अगर मैं, क्योंकि मैं भी खुद एक एंटरप्रेन्योर हूं और मैंने 2019 में स्टार्ट किया उत्तराखंड में, उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया में, क्योंकि मैं पहाड़ों से ही बिलोंग करता हूं। मैं यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन में पास आउट होने के बाद जो मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मेरे को दिखा और जहां पे अपॉर्चुनिटी भी दिखी, वो उत्तराखंड में ट्रैवल एंड टूरिज्म था, और मैं उत्तराखंड से बाहर भी जाके कुछ स्टार्ट नहीं करना चाहता था। तो मैंने देखा कि जिस फील्ड में यहाँ पे सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म में कोई काम नहीं कर रहे हैं या स्टार्टअप्स नहीं है, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं ट्रैवल या टूरिज्म में, उत्तराखंड का कोई अपना ब्रांड हो, ऐसा ब्रांड हो क्या, अगर कोई भी उत्तराखंड जा रहा है तो उसके दिमाग में सिर्फ वही चीज चले, तो ऐसा कुछ यहाँ पे था नहीं। तो एक अपॉर्चुनिटी भी थी राज्य के लिए, अपने ही होम टाउन के लिए आप कुछ कर सकते हो। तो मैंने 2019 में जनवरी में स्टार्ट किया कंपनी जिसका नाम था फॉरेस्टिको रिजॉर्ट ग्रुप, और जो इसकी थीम थी वो ये थी कि हम सिर्फ एक अकोमोडेशन चेन नहीं होंगे, बट हम एक यूनिक अकोमोडेशन चेन होंगे। हम सिर्फ लोगों को कमरा नहीं बेचेंगे, हम सिर्फ लोगों को पैकेज नहीं बेचेंगे, बल्कि हम हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा वो एक्सपीरियंस देना रहेगा किसी भी ट्रैवलर को। तो इस थीम के साथ हमने स्टार्ट किया, और 2019 से 21 तक अभी हमारी 5 प्रॉपर्टीज उत्तराखंड में ऑपरेशनल है, 2 अभी विद इन अ मंथ शायद हम लोग कर लेंगे, ऑपरेशनल कर देंगे। तो ये वो था कि हमने मतलब कैसे करके स्टार्ट किया, इस बीच बहुत सारे चैलेंजेस भी आए। तो आई होप स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको हल्का सा आइडिया आया होगा कि क्या ये पूरी जर्नी होती है, कैसे करके आप कर सकते हो। तो दोस्तों, जल्द मुलाकात होगी नए एपिसोड में, तब तक के लिए आप सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

हाय, मेरा नाम है अंशुल भट्ट और मैं फॉरेस्ट इको रिजॉर्ट ग्रुप का फाउंडर एंड सीईओ हूं। और आज आप मेरे को सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। तो लास्ट एपिसोड में जो हमने बात की थी वो थी क्या स्टार्टअप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और कैसे ये पूरी जर्नी रहती है। आज आपको मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा कि कैसे करके मैंने जो फॉरेस्ट इको रिजॉर्ट ग्रुप है उसको स्टार्ट किया है और कैसे करके हमारे जो स्टार्टअप ने एक तरीके से रेस पकड़ी है, कैसे करके हमने अपनी ही ग्रोथ देखी है, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। 2019 में हमने स्टार्ट किया था फॉरेस्ट इको रिजॉर्ट ग्रुप। हमारा जो मेन मोटिव था वो था कि हम उत्तराखंड में जितने ट्रैवलर आ रहे हैं उनको एक एक्सपीरियंस दें, क्योंकि हम जितने भी सारे ब्रांड यहाँ पे इंडिया में हैं जो हॉस्पिटैलिटी में टॉप के ब्रांड हैं वो अलग अलग तरीके से रूम सेल कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है। तो हमारा ये था कि हम एक तो जो हमारी प्रॉपर्टीज होंगी वो कहीं ना कहीं से एक यूनिक अकोमोडेशन होगा, क्या वो नॉर्मल कोई लॉज नहीं होगा या नॉर्मल कोई कमरा हम सेल नहीं करेंगे, हम एक एक्सपीरियंस सेल करेंगे। तो ऐसे करके हमने स्टार्ट किया। 2019 में हमने चोपता तुंगनाथ जो एक लोकेशन है वहाँ पे हमने अपनी एक यूनिट खोली और धीरे धीरे करके केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी, नैनीताल, अलग अलग जगह पे हमने यूनिट्स स्टार्ट करी है और अभी दो यूनिट हमारी उत्तराखंड के चमोली और टिहरी में हो जाएंगी। इसके अलावा जितने भी ट्रैवल से रिलेटेड पैकेजेस होते हैं अलग अलग प्रोडक्ट भी हम लोग सेल कर रहे हैं। बस ये चीज को हम मेन वो लेके चल रहे हैं जो हमारा यूएसपी है कि हम एक्सपीरियंसेस ही सेल करें। जो भी आ रहा है वो सिर्फ, क्योंकि जितना भी ट्रैवलर उत्तराखंड में आता है वो कहीं ना कहीं अपने पूरी साल भर की कुछ छुट्टियां बचा के आता है, बहुत जगह से पैसे अरेंज करके आता है, अपने बच्चों के स्कूल की छुट्टियां देख के आता है, तो उसका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, उसके पैसे बहुत ज्यादा कीमती है। और हमारा जो मेन मोटिव है क्या एज अ सिटीजन ऑफ हिल्स उत्तराखंड, क्या हम उसके जो पैसे का उसका पूरा वैल्यू उसको दे। तो बात करते हैं क्या हमारे स्टार्टअप ने कैसे रेस पकड़ी। तो स्टार्टअप में सबसे जो जरूरी है वो आपके लिए लोग हैं, लोग भी वो लोग जो आपके टीम में हैं, क्योंकि अगर आपकी टीम स्ट्रांग है और आपके टीम में अलग अलग माइंडसेट के साथ लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग फील्ड के लोग जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका स्टार्टअप स्पीड अप करेगा ग्रोथ को लेके। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, हमारे साथ कॉर्पोरेट से हमारे साथ अलग अलग फील्ड के कुछ लोग हमारी टीम में आना स्टार्ट किया और इससे ये हुआ कि हमें जो फंडिंग चाहिए थी स्टार्टअप के लिए वो फंडिंग हमें इजिली मिलने लगी, क्योंकि टीम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी स्टार्टअप के लिए। और जब कोई भी आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो सिर्फ आपका आइडिया देख के इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आइडिया बहुत सारे हैं। हम जिस कमरे में बैठे हुए हैं इस कमरे में भी मतलब हवा में ही इतने सारे आइडिया होंगे, लेकिन किसी भी आइडिया के ऊपर कोई भी ऐसा इन्वेस्ट नहीं करता है। कोई भी इन्वेस्टर है वो आपकी टीम देखता है, आपका मिशन देखता है, आपका विजन देखता है, आप किस फील्ड में इन्वेस्ट करवा रहे हो उससे और उसको कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, ये सारी चीजें कैलकुलेट करके ही कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। तो हमारे साथ भी जब हमारी लोगों ने टीम देखी और ये देखा कि ये फास्ट ग्रोथ कर रहे हैं तो लोगों ने धीरे धीरे धीरे धीरे करके हम पे पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करा। और जैसे जैसे हमारे पास फंडिंग्स आई तो हमें ऑब्वियसली हमने आईटी में इम्प्रूवमेंट करे, हमने अपने टेक्नोलॉजी से लेके ऑपरेशंस तक हमने हर हर चीज में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करे, हमने जो फील्ड के एक्सपीरियंस लोग हैं उनको लेके आना शुरू किया टीम में और यहाँ से हमारे पूरे स्टार्टअप को एक पेस मिला। जो अभी हम अपने आप को कहते हैं वो हम कहते हैं कि हम इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिक अकोमोडेशन चेन है और जो हमारा मिशन है वो है कि हम इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट यूनिक अकोमोडेशन चेन बने, क्योंकि लार्जेस्ट अकोमोडेशन चेन बहुत सारी हैं लेकिन हम अपने आप को जो अपनी हमारी यूएसपी है वो है कि हम लार्जेस्ट यूनिक अकोमोडेशन चेन हों, क्योंकि हम सिर्फ रूम या सिर्फ होटल सेल नहीं कर रहे हैं, हम ट्रैवलर को एक एक्सपीरियंस उसको दे रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरे स्टार्टअप की ये जर्नी रही है और जो मैंने आपसे बातें शेयर करी हैं इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: टॉक टॉक रेडियो।
1: कोई टूटे तो उसे बनाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। सीखो, रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। अगर ये आपको आ गया ना, तो आपके रिश्ते बहुत आगे तक जाएंगे।
0: टॉक टॉक रेडियो, टॉक टॉक, ट्यूनिंग फॉर अ बेटर लाइफ। टॉक टॉक रेडियो,
2: टॉक टॉक रेडियो।
3: हाय, दिस इज अनुकृति गुसाई रावत और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। ऐसा जो कंपैरिजन है कि वुमेन आर स्ट्रॉन्गर, मेन आर स्ट्रॉन्गर, आई डोंट थिंक सो कि ये कंपैरिजन होना चाहिए। वुमेन आर स्ट्रॉन्गर इन देयर ओन वे, मेन आर स्ट्रॉन्गर इन देयर ओन एस्पेक्ट्स। बिकॉज अगर आप देखोगे एक महिला के लिए जो जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय मैं कहूंगी, हर पूरी जीवन परिस्थितियां अलग अलग रहती हैं। एंड येस, आई विल से देर आर सम थिंग, सम इंस्टेंसेज वेयर वी कैन से कि हाँ, फीमेल्स आर वेरी स्ट्रांग। फॉर एग्जाम्पल, जब एक महिला माँ बनती है एंड वेन शी गिव्स बर्थ, देन वी फील कि हाँ यार, शी हैज सच अ स्ट्रांग यू नो जील। और जब आप मतलब दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील ऑल्सो विद मेन, आई फील दैट मेन आर स्ट्रांगर, क्योंकि वो कई बार जब आप ज्वाइंट फैमिलीज को अंडरस्टैंड करेंगे या इंडियन जो कल्चर फैमिली का रहा है, और इंडियन कल्चर के आई थिंक अराउंड द वर्ल्ड, कि जब हम मेन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारे घर का जो बोझ है अपने कंधे पे रखे, मेन शुड बी अर्निंग मोर एंड ऑल ऑफ दैट, एंड दे टेक केयर ऑफ द फैमिली ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि दे आर लेस और वुमेन आर लेस, बोथ आर इक्वल एंड शुड बी ट्रीटेड इक्वल।
2: वॉक टॉक रेडियो।

हाय, दिस इज अनुकृति गुसाई रावत और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। आई बीन हियरिंग लॉट ऑफ केसेस कि यार ये बच्चा डिप्रेस हो गया, इस बच्चे को मुझे एनजाइटी हो रही है, मुझको ये हो रहा है। देर आर केसेस एंड आई थिंक यू नो इसमें कोई बुरा लगने वाली बात नहीं। एंड आई अंडरस्टैंड कि कई बार ऐसा होता है कि फैमिलीज भी इस चीज को नहीं अंडरस्टैंड कर पाती क्योंकि उनको लगता है कि अरे क्या होता है डिप्रेशन, मतलब ये एक जनरल लेमन चीज है, अरे क्या फालतू बात है। नहीं, डिप्रेशन इज सीरियसली बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट भी है। बट आई एम सेइंग कि उसमें जाना या ना जाना कई बार ऐसा होता है कि हमारे हाथ में नहीं होता। बट यू नो सी आई वांट टू टेल यू कि ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कोई ऐसा फील्ड हो जिसमें कम हार्ड वर्क लगे। हर जगह स्ट्रगल्स है और हर आदमी का अपना स्ट्रगल होता है, हर किसी की अपनी स्टोरी होती है। एवरीबडी, कई बार लगता है अरे यार इसका तो आसानी से हो गया, इसका थोड़ा मुश्किल हो गया। नो, वी डू नॉट नो, हमें नहीं पता होता कि किसकी जिंदगी में कितना स्ट्रगल है और होता है। तो ओनली फैक्टर, मैंने जैसे पहले भी कहा, द ओनली थिंग इज यार अपने पे भरोसा करना चाहिए बिफोर ट्रस्टिंग एनीबडी। कई बार ऐसा होता है, डिप्रेशन भी अलग अलग टाइप के हो गए आजकल। कई बार डिप्रेशन इसलिए कि गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, कई बार डिप्रेशन इसलिए जॉब नहीं मिली। ठीक है यार, इफ रिलेशन वर्क्स आउट गुड, नहीं चला तो डिप्रेशन पे थोड़ी जाना है। वॉक टॉक रेडियो।

0: दोस्तों, कई बार हम अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हर चीज के लिए किस्मत पर निर्भर होते हैं। उन्हें लगता है कि वही होगा जो किस्मत में या हमारी हाथों की लकीरों में लिखा हुआ है। पर मैं आपको बता दूं कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मेहनत पर विश्वास करना होता है। किस्मत की आजमाइश तो जुआ खेलने वाले भी करते हैं, इसीलिए अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखें और उसके बाद ही किस्मत पर निर्भर हो। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहे वॉक टॉक रेडियो।
1: हेलो, मैं सुन नीरज भंडारी और मैं हूँ अभी वॉक टॉक रेडियो देहरादून उत्तराखंड में। सो आज तक टीवी में देखता आता था, आज तक यूट्यूब में देखता आ रहा था ये चीजें, बट आज ये अपने साथ एक्सपीरियंस करने वाला था। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। सो मैं हूँ नीरज भंडारी और मैं हूँ उत्तराखंड देहरादून से। मैं हूँ एक साइकिल एडवेंचरस गाय, यानी कि मैं साइकिल में करता हूँ टूरिंग। तो स्पेशल अबाउट मी इज दैट कि मुझे घूमना तो पसंद है, बट मेरे घूमने का जो मेरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है, जो कि है साइकिल। तो मैं पहले मतलब मुझे एडवेंचर का बहुत शौक था, मैं नॉर्मल ट्रैकिंग वगैरह में जाता था और स्पोर्ट्स का मुझे पहले से शौक था काफी, स्कूल टाइम से लेके। आई वाज अ स्कूल कैप्टन एंड आई वाज अ एथलीट ऑफ द ईयर ऑफ माय स्कूल। सो जब मैं कॉलेज गया, आई हैव डन माय स्टडीज फ्रॉम एसजीआरआई यूनिवर्सिटी देहरादून। तो जब मैं सेकंड ईयर में था तो मेरे स्कूल के मेरे जो कॉलेज के सीनियर थे तो वो साइकिल में आया करते थे, मतलब वो मेरे साथ टेबल टेनिस खेलते थे पहले। तो मैंने उनको देखा कि वो साइकिल में आ रहे कॉलेज, तो कहीं ना कहीं मुझे मतलब लगा कि यार मजे तो है साइकिल में, ऑब्वियसली फ्यूल भी बच रहा है, यू आर सेविंग योर मनी। तो उसी दिन मैं घर गया और मैंने पापा से रिक्वेस्ट करी कि पापा मुझे साइकिल चाहिए किसी भी हाल में। तो माय फादर वाज इन आर्मी एंड फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे, जिस दिन मैंने साइकिल ली उसके नेक्स्ट डे मैं अपने कॉलेज गया। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैंने साइकिल लिया है एंड वहाँ पे मैंने अपने कॉलेज के जो मेरे फ्रेंड्स थे वो साइकिल से बिल्कुल भी मतलब इंट्रोड्यूस नहीं थे। तो मैंने उनको बस इतना बोला, देखो गाइस हम कल घूमने जा रहे हैं सहस्त्रधारा, जो हमारी देहरादून का एक फेमस पिकनिक स्पॉट है। तो मैंने उनको कहा हम घूमने जा रहे हैं सहस्त्रधारा। मैंने उनको पूछा नहीं, मैंने उनको सीधा ऑर्डर दिया कि कल हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग अपनी बाइक लेकेंगे, हम लोग अपनी स्कूटी लेंगे। मैंने कहा ये सब नहीं है, अपनी अपनी साइकिल लेके आओगे। तो देवाला एक साइकिल क्यों? तब मैंने उनको बताया कि मैंने एक साइकिल ली है। तो देवाला एक अच्छा, तभी तू प्लान बना रहा है कि साइकिल में चलना है।

0: जिस दिन आपको पता चल गया कि आप कर सकते हैं तो फिर आप कर लेंगे।
1: Walk Talk Radio, tune in for a better life. Walk Talk Radio.
2: क्योंकि मैं साइकिल से पहले अपने घर से मेरा जो सर्कल था अराउंड 15 किलोमीटर्स के बाहर मैं कभी नहीं गया अपनी लाइफ में। 12th जब मैं कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर में था, साइकिलिंग इंट्रोड्यूस जब मेरे से हुई उससे पहले से, तो जब हमने प्लान बनाया कि चलो ऋषिकेश चलते हैं, देन हम तीन लोग थे, हम लोग सुबह 4 बजे हम लोग ऋषिकेश के निकले अंधेरे में जंगल के रास्ते से। बहुत मज़ा आया, भले ही ऋषिकेश से जब वापस देहरादून आ रहे थे हमारी वाट लग गई थी फुल, बिकॉज वी हैड नो आइडिया कि कैसे पेडलिंग होती है, धूप में कैसे चलाते हैं, क्या क्या खाना पड़ता है। हम लोग खा रहे छोले भटूरे और हमें सुस्ती आ गई आते वक्त, बट जैसे तैसे हम लोग घर आए। देन मुझे फिल्मेकिंग का तो शौक था, फोटोग्राफी पिक्चर्स एंड ऑल, घर आते सारी फोटोज क्लिक करना, फोटोज एडिट करना, फोटोज अपलोड करना शुरू हो गया। जो रिस्पॉन्स मिला वो बहुत अमेजिंग था, मतलब मुझे खुद नहीं पता लग रहा था कि यार मैं ऋषिकेश या साइकिल से और ऋषिकेश से वापस आ रहा हूँ। मेरे से पहले बहुत लोग थे देहरादून के जो मतलब मेरे से 3-4-5 साल पहले से साइकिलिंग करते आ रहे, देहरादून ऋषिकेश और धनौल्टी सब जाते रहते थे, बट मैंने कभी खुद देखा नहीं था, बिकॉज लोग करते तो थे बट दिखा नहीं पाते थे, है ना, दिखाएंगे तो ही दूसरों को पता चलेगा, जो दिखता है वही बिकता है, ये वही सेंस आ गया। तो जब मैंने किसी का देखा नहीं था तो मुझे पता कैसे चलता। यहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ कि मैं ऋषिकेश गया तो लोगों के रिस्पॉन्स आ रही, नीरज तू ऋषिकेश ला गया, तूने एक दिन में 80-90 किलोमीटर चला ली साइकिल, ऐसे हुआ। तो उसके बाद नॉर्मल राइड्स करने लग गया। फिर एक दिन संडे था तो मैंने जो मेरे साथ ऋषभ भट्टर है जो मेरे भैया थे, तो हमने प्लान बनाया लेट्स गो टू सुरकंडा देवी जो आता है धनौल्टी में, जो कि देहरादून के नियर बाय 70 किलोमीटर अपहिल है बहुत। तो हमने प्लान बनाया एंड हम लोग निकल गए। तो देखो साइकिल में ट्रैवल करना बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, मतलब एक साइकिलिस्ट भी नहीं सोच सकता कि एक साइकिलिस्ट अगर वो सिटीज़ में कितनी भी टूरिंग कर रहा हो, कितनी भी लॉन्ग टूरिंग कर रहा हो, और अगर वो अचानक से पहाड़ में, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि पहाड़ों में टूरिंग करना कैसा होता है। वो कितनी भी अगर सिटी में ट्रैवल कर ले,
1: वो वक्त कितना भी मुश्किल हो दिल में हिम्मत रखकर आगे बढ़ते रहिए, वो वक्त भी गुजर जाएगा, हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह आती है। Walk Talk Radio.

हाय, आई एम डॉक्टर अमित मेहरा। आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पे। जो ब्रेसेस हैं, ये जो 1.5 साल आपका ट्रीटमेंट है अप्रोक्सीमेटली ब्रेसेस का, उसमें कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं। डूज एंड डोंट्स भी कंपल्सरीली आपको कुछ चीजें नहीं खानी और कुछ चीजों को खाने का मेथड आपने बदल देना है। जो चीजें आपने नहीं खानी उसमें नंबर 1 आता है, आपको गन्ना नहीं चबाना, आपको नारियल नहीं खाना, आपको रोस्टेड एलमंड्स नहीं खाने। हम देहरादून वासियों को बहुत शौक है सर्दियों में चिक्की खाने का, गचक खाने का, वो सब चीजें नहीं खानी। आपने मुंह में कैरमलाइज टॉफीज नहीं खानी। इसलिए नहीं खानी क्योंकि ये हार्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं। जब हमारे दांतों पे कुछ चिपका होगा और हम एक हार्ड सब्सटेंस को बाइट करेंगे, तो वो जो ग्लू है, वो जो एडहेसिव है जिससे वो अप्लायंस चिपका हुआ है, वो निकल सकता है। अगर वो ग्लू ढीली पड़ गई तो वो अप्लायंस, जब तक आप दूसरी बारी उस डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो, तो वो यूजलेस है। दूसरा आता है मॉडिफिकेशंस ऑफ फूड। उसमें आपने ये ध्यान रखना है कि कुछ भी चीज जो हार्ड है उसको आपने डायरेक्टली बाइट नहीं करना। आपको नॉनवेज खाना है, आप जरूर खाइए, मगर आप लेग पीस या चिकन ब्रेस्ट या मटन के पीस में डायरेक्टली बाइट मत कीजिए। उसके छोटे टुकड़े कर लीजिए और निवाले के साथ खा लीजिए, मतलब बोनलेस छोटे टुकड़ों में खा लीजिए। आप किसी पार्टी में जाते हैं, वहाँ पे आपको पिज्जा मिलता है, आपको वहाँ पे बर्गर मिलता है, आप उसमें डायरेक्टली बाइट मत कीजिए, छोटे हिस्से करके उसको रोटी की तरह खा लीजिए।

आप मूवी देखने गए हैं, वहां पे पॉपकॉर्न है, तो जरा सॉफ्ट वाला पॉपकॉर्न खा लीजिए, वो जो हार्ड पॉपकॉर्न कर्नल होता है उसको मत खाइए. दीज आर द वे यू मॉडिफाई. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू ब्रश मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड यू हैव टू डू रिंसिंग आफ्टर एवरी मील.

वॉक टॉक रेडियो। दोस्तों, ऐसे बहुत से काम हैं जिनके लिए हमें कई लोगों ने कहा होगा कि तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। और जब कोई ये बात बार बार बोले, यही बात बार बार दोहराए, तो एक बार के लिए तो खुद के ऊपर भी डाउट होने लगता है कि यार क्या हम ये कर भी पाएंगे या नहीं। लेकिन आगे बढ़ते हुए कहीं भी आपको ऐसा ख्याल मन में आए तो दोस्त, याद करना उन सारे शब्दों को जो आपको हर वक्त डीमोटिवेट करते हैं, आपको गलत साबित करने में तुले होते हैं। लेकिन आपको उन लोगों को गलत प्रूफ करना है, उनकी बातों को, उनके शब्दों को गलत प्रूफ करना है कि आप नहीं कर पाएंगे। आपको ये प्रूफ करना है कि आप कर पाएंगे। आपको हारना नहीं है बल्कि उन सबको हराना है जो आपकी हार में खुशी मनाते हैं।

Hi, I'm Dr. Amit Mehra. आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पे. लोगों को क्या होता है कि हम आज ब्रेसेस वाले डॉक्टर के पास आए हैं, उसके पास हैरी पॉटर जैसी कोई जादू की छड़ी होगी, वो कोई मंत्र बोलेगा और हमारे दांत ठीक हो जाएंगे. लोग उसको कोरिलेट करते हैं कि डॉक्टर साहब जब दांत में दर्द होता है आप तो इंजेक्शन देके निकाल देते हो, वो तो एक बारी में खत्म हो जाता है, फिर तो हम आपके पास आते ही नहीं है. मगर ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि ब्रेसेस के इलाज में हम धीरे धीरे दांत को एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन में लेके जाते हैं. अगर मैं आपसे मैथमेटिक्स की बात करूं तो हम महीने में दांत को सिर्फ 1 mm तक ही मूव करते हैं, इसलिए ब्रेसेस का ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है. अप्रोक्सीमेटली 16 to 18 months इज द टाइम पीरियड दैट वी रिक्वायर टू गिव सैटिस्फैक्ट्री रिजल्ट. ये है एक्टिव ट्रीटमेंट, जिसके अंदर हमने दांत में ब्रेसेस लगाए हुए हैं और पेशेंट के खराब दांत की पोजीशन सही पोजीशन पे आ गए हैं दांत. इस एक्टिव ट्रीटमेंट के बाद एक रिटेंटिव फेज भी आता है, जिसके अंदर पेशेंट को एक प्लेट दी जाती है उतारने और चढ़ाने वाली. रिटेंटिव फेज भी 6 to 9 months का होता है. तो अगर आप ओवरऑल टोटल करो एक्टिव ट्रीटमेंट प्लस रिटेंटिव पीरियड, सो 2 to 2.5 years का इलाज है ये. तो रूल हम पेशेंट को क्या बोलते हैं, दैट यू हैव टू बी अ वेरी पेशेंट पेशेंट. आप में पेशेंस होनी चाहिए ये इलाज करवाने के लिए.

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio. Walk Talk Radio. Walk Talk. Walk Talk Radio.
1: हेलो, मेरा नाम है लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर. ड्रीम बिग एंड हाउ टू अचीव देम. सपने बड़े देखना आसान होता है लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है. ठीक वैसे ही जैसे हमें पहली बार स्कूल जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, मन नहीं लगता है, हम रोते हैं, मम्मी पापा को मिस करते हैं, लेकिन फाइनली हमें आदत लग जाती है. तो मेरा ऐसा ही मानना है कि कोई भी अचीवमेंट, कोई भी सक्सेस को पाने के लिए आपको पहले उस सक्सेस की सीढ़ी की आदत लगानी पड़ेगी. यू हैव टू वर्क हार्ड. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो पहली सीढ़ी पार करोगे जिसे कहते हैं सक्सेस की तरफ पहला कदम.

0: कभी दो पल खुद के साथ भी बिता के देखो, अच्छा लगता है। दुनिया की भीड़ से परे अपने अंदर की आवाज को सुन के देखो, अच्छा लगता है। सुबह से शाम ऑफिस में काम और घर आके आराम, इस सब से हट के बिना किसी टेंशन के कुछ देर अकेले बैठो और खुद से बातें करो। ट्रस्ट मी यार, आपसे बेहतर ना आपको कोई नहीं जान सकता। और सबसे अच्छी एडवाइस अगर लेनी हो तो खुद से पूछ के देखना, जवाब मिल जाएगा।
1: Walk Talk Radio, tune in for a better life.
2: इश्क तेरा तड़पावे। Hi everyone, this is Sukhbir और आप सुन रहे हैं।

0: रेडियो।
1: हेलो, मेरा नाम है लकी मेहता। लाइफ में लर्निंग्स बहुत जरूरी है और हम ठोकर खा के ही लर्निंग सीखते हैं। कई बार हम भगवान को कोसते हैं, अपनों को कोसते हैं कि हमारे साथ ये क्यों हुआ, हमारा अपना हमसे क्यों रूठ गया, हमारा अपना हमसे क्यों छूट गया। एक्चुअली वो सब हमारी लर्निंग्स होती हैं। गॉड हमें थोड़ी थोड़ी देर में टेस्ट करते हैं। हमारी डेस्टिनी हमें हर जगह टेस्ट करती है। वो ये देखती है कि ये कितना तपा है, क्या ये कुंदन बनने लायक है। एग्जैक्टली, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। और लर्न आप तभी करते हैं जब आपको ठोकरें मिलती हैं। और उसके लिए सबसे पहले आपको अपने एम के लिए लॉयल रहना बहुत जरूरी है। लॉयल्टी की तो बहुत इम्पोर्टेंस है। आपको जो अचीव करना है जिंदगी में, जो पाना है, जो आपका मकसद है, जो भी है, आपको जो भी बनना है, जो भी पाना है, जिस भी मुकाम तक पहुंचना है, उन सबको पाने के लिए उसके रास्ते की लॉयल्टी बहुत जरूरी है।
2: Walk Talk Radio. Tune in for a better life.

आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। मैं हूं कहानी वाला रजत और ये है मेरा शो सफरनामा। सफरनामा जहां पर हम कुछ ऐसे शहरों से आपको मिलवाते हैं जिनके इतिहास, जिनकी ज्योग्राफी, जिनकी बनावट और बसावट जान के आपको ऐसा लगेगा कि बस एक बार इस शहर तो जरूर जाना है। तो सफरनामा हमारा पहुंच गया है एक ऐसे शहर जिसे अजनबियों से मोहब्बत है। दुनिया में कुछ गिने चुने शहर ऐसे हैं जिन्हें इटर्नल सिटी कहा जाता है, यानी सनातन शहर। हमारे हिंदुस्तान की काशी नगरी या बनारस भी ऐसा ही एक शहर है। इसी तरह से यूरोप के रोम और एथेंस शहरों को इटर्नल सिटी का दर्जा दिया गया है। सनातन शहर या इटर्नल सिटी उन शहरों को कहा जाता है जो हजारों सालों से आबाद है। यहाँ पर लोगों के रहने के जो प्रमाण या सबूत हैं वो कई बरसों से मिलते हैं, मतलब कई हजारों सालों से। ग्रीस या यूनान की राजधानी एथेंस में भी हजारों साल पहले से इंसानों के रहने के सबूत मिले हैं। आज हम उसी एथेंस की बात करने जा रहे हैं। ऐतिहासिक शहरों की बात करें तो एथेंस का कोई सानी नहीं। यहाँ के हर खंडर में इतिहास छुपा है, न सिर्फ यूनान का बल्कि पूरे यूरोप का और मानवता हर एक का एक शुरुआती इतिहास नजर आता है। एथेंस की हर गली से जुड़े हैं हजारों किस्से, हजारों दास्तानें। एथेंस को यूरोप की सभ्यता का केंद्र यानी कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है। पश्चिमी देशों की सभ्यता की राजधानी कहा जाता है। एथेंस ने दुनिया को दार्शनिक दिए, लोकतंत्र दिया और नाटक कला की नेमत भी दी। एथेंस की इमारतें और खंडहर पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की बुनियाद मानी जाती है। एथेंस के खंडरों में ही आबाद है यूनान की बहुत पुरानी परंपरा। ग्रीक जबान में इसे फिलोजीनिया कहते हैं। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है अजनबियों से मोहब्बत, फिलोजीनिया। हालांकि स्थानीय लोग इसे अब विदेशियों के प्रति गर्मजोशी मानते हैं, यानी उनका एक अच्छे खुले मन से स्वागत करना। आपको एथेंस पहुंचते ही गजब की गर्मजोशी और अपनेपन का एहसास होगा। एथेंस हाथ फैलाकर खुले दिल से हर आने जाने वाले का सम्मान और स्वागत करता है। लंदन से आकर एथेंस में बसने वाली जूलिया विलियम्स ने एक जगह इंटरव्यू में लिखा है कि एथेंस बहुत दोस्ताना शहर है। एथेंस के शानदार इतिहास को निहारने के लिए हर साल दुनिया भर से करीब 45 लाख लोग यहाँ आते हैं, लेकिन एथेंस ने अपने शानदार इतिहास में आधुनिकता के पन्ने भी जोड़ रखे हैं। आखिर क्यों लोग एथेंस को इतना पसंद करते हैं? तो एथेंस की रहने वाली क्रिसी मेनका कहती है कि बाहर के लोग हों या इसी वतन के, सबको ये शहर बहुत प्यारा है। जब भी आप इसकी गलियों में घूमेंगे तो यहाँ के कैफे और बार लोगों से आबाद नजर आएंगे। क्रिसी को एथेंस के सिटी सेंटर प्लाका के आसपास घूमना पसंद है। क्रिसी कहती है कि आसपास सैलानियों की भीड़ यानी टूरिस्ट को देखकर आपको ऐसा लगता है कि छुट्टियां चल रही हैं और आप पिकनिक पर निकले। गर्मी का मौसम भी सैलानियों के लिए बहुत खुशगवार होता है। साल में कम से कम 250 दिन यहाँ सूरज खिला हुआ देखने को मिलता है। अमरीकी सैलानी मीना एग्नोस कहती है कि यहाँ अप्रैल से अक्टूबर तक मौसम एकदम साफ रहता है, इसी वजह से आप एथेंस के आसपास मौजूद जजीरों पर घूमने जा सकते हैं। मीना एग्नोस लोगों को करीब 35 समुद्री मील दूर स्थित हाइड्रा द्वीप पर जाने की सलाह देती है, जो एथेंस के पास में है, और लोग वहाँ उस आइलैंड पर जाना चाहें तो बेशक जाएं। ये बिल्कुल शांत है, यहाँ पर कारों को ले जाने की मनाही है, तो आपके लिए पैदल चलना या फिर साइकिल से घूमना आसान होता है। बहुत से सैलानी यहाँ गधों और खच्चरों की सवारी करते नजर आते हैं। ये द्वीप जो है ये बड़ा शांत है और आराम तलबी के लिए मशहूर है। यू जस्ट गो एंड रिलैक्स देयर, कुछ नहीं, कोई गाड़ी का आवाज नहीं, कोई शोर नहीं। द्वीप पर मौजूद कैफे में भी भीड़ कम ही रहती है। हाइड्रा द्वीप दुनिया भर के सेलिब्रिटीज के बीच काफी पॉपुलर रहा है। मीना कहती है कि एथेंस से पहाड़ी और जंगली इलाके भी ज्यादा दूर नहीं है। अगर किसी को शहर के शोर शराबे से डर है तो शांत पहाड़ी और जंगली इलाकों का रुख कर सकता है। माउंट हाइमिटस एथेंस से महज 5 से 6 किलोमीटर दूर है और यहाँ बाइकिंग के लिए जा सकते हैं। आखिर एथेंस में रहना हो तो एक ऐसा तजुर्बा होता है। मीना कहती है कि एथेंस जैसे पुराने शहर में रहने पर आपको इतिहास से मोहब्बत हो जाती है। हर गली, हर चौराहे पर आपको इतिहास का एक टुकड़ा निहारना अच्छा लगता है। शहर के मशहूर खंडर जैसे कि एक्रोपोलिस या टेंपल ऑफ ज्यूस तो खैर दुनिया भर में मशहूर है। इनके अलावा एथेंस में नए इलाके भी आबाद हुए, जैसे कि काउकाकी नाम की बस्ती जो दुनिया की सबसे कूल नई बस्ती का दर्जा हासिल कर चुकी। हाल ही में एथेंस में आधुनिक कला का एक म्यूजियम भी खोला गया है। कुछ लोग एक्सार्किया नाम के इलाके को देखने जाने की सलाह देते हैं। ये इलाका ऐतिहासिक भी है और ग्रीस की हालिया सियासी उठापटक का गवाह भी। बाहर से आने वाले लोग यूं तो ऐतिहासिक ठिकानों और म्यूजियम के चक्कर ही लगाते रहते हैं, मगर एथेंस की गलियों में भी बहुत दिलचस्प राज छिपे हुए हैं। लंदन से आकर एथेंस में बसने वाली बसी कैलेटिन आल्प कहती हैं कि एथेंस के पास अंगूरों के भी कई बाग हैं।
इनमें से कई जगह बहुत उम्दा वाइन तैयार की जाती है। Did you know that? ग्रीस में पिछले काफी दिनों से सियासी और आर्थिक उठापटक चल रही। पिछले दशक में आई मंदी का सबसे ज्यादा असर यही देखने को मिला था, इसलिए इन देशों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल गई। लोगों को उनके काम के एवज में ठीक से पैसे नहीं मिल रहे हैं। कुल मिलाकर ग्रीस के लोग अपने मौजूदा निजाम से यानी सरकार से और जो उन्हें चला रहे हैं उन लोगों से खुश नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एथेंस बहुत सस्ता शहर है। लंदन के मुकाबले यहाँ उसके आधे पैसे के खर्च में आपका काम चल जाता है। यहाँ घूमते हुए अगर आपको ग्रीक जबान नहीं भी आती तो काम चल जाएगा। बहुत से लोग यूनानी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, मगर गर्म जोशी बढ़ानी होगी यानी सबसे बातचीत करते रहना, तो थोड़ी बहुत ग्रीक बोलने में हाथ आजमाइए ताकि बातचीत होती रहे। लोग विदेशियों के मुंह से अपनी भाषा सुनकर यहाँ बहुत खुश होते हैं। फिर हो सकता है कि वो आपको शहर के कुछ ऐसे राज बता दें जो सिर्फ यहाँ के लोकल्स जानते हैं और किसी को जानने को नहीं मिलता। तो आज का जो मेरा सफरनामा था ये एथेंस के नाम था, एक ऐसा शहर जिसे अजनबियों से मोहब्बत है। कमाल का शहर है, देखने जरूर जाइए। और कैसा रहा एक्सपीरियंस ये आप हमसे शेयर कर सकते हैं वॉक टॉक पर। वॉक टॉक रेडियो पर मैं हूँ कहानी वाला रजत, ये है मेरा शो सफरनामा।

0: हो सकता है हमने ये बातें सुनी हो सकता है कई एक बार कही भी होंगी कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। एट द सेम टाइम हम लोगों ने ये बात भी कही है कि करना चाहिए तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। आए, मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। बट सोच करके देखिए, मतलब कितनी अलग हैं ये बातें कि एक तरफ तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता, यानी कि अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता। बट करने वालों ने तो अकेले बहुत कुछ किया है, अपने दम पर बहुत कुछ किया है। वो जज्बा होना चाहिए, वो आग होनी चाहिए, करने वाले कर लेते हैं। बट हाँ, जो काम टीम वर्क का है उसे टीम वर्क के साथ नहीं किया जा सकता है। मैं अगर जो कोशिश करूं कि मैं एक बिल्डिंग बनाऊंगा और मैं अकेले बनाऊंगा, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, तो शायद मुझे लंबा टाइम लगे, लंबा वक्त लगे, शायद वो क्वालिटी मैं ना दे पाऊं। बट ऐसा नहीं है कि मैं बना नहीं सकता। मांझी जैसे इंसान ने पहाड़ अकेले ही काटा था, लेकिन वहीं पर अगर जो मांझी का सपोर्ट गांव वाले करते, आसपास वाले करते, तो यकीनन वो कम टाइम लगता और ज्यादा बेहतर काम हो सकता था। तो जो काम टीम के साथ में होता है उसमें क्वालिटी होती है। वापस लौट करके आते हैं अपने पॉइंट पर। पॉइंट ये था कि अकेला चना क्या कर सकता है या अकेले के से क्या हो सकता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। एक बार एक गांव में काफी लंबे टाइम तक बरसात बिल्कुल नहीं हुई थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था, उनकी फसलें खराब हो रही थी, बच्चे भूखे प्यासे मर रहे थे, मतलब एकदम अकाल वाली सिचुएशन होने वाली थी। उनको समझ नहीं आया कि क्या करना है। एंड फाइनली उसी गांव में एक विद्वान महात्मा रहते थे, वो सब गांव वाले मिलकर के उनके पास में गए। उन्होंने कहा कि इसका समाधान आप कुछ दीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, अब तो हमारे घर पे बच्चे प्यासे मरने लगे हैं। महात्मा ने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम कल मेरे पास में आना और मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल करके तुमको बताता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, ये मान लेना आप। तो बोले हाँ कोई बात नहीं, मैं कल तुमको बताता हूं। गांव वाले वापस चले गए। अगले दिन उन्हीं महात्मा के पास में गांव वाले वापस लौट करके आए। महात्मा ने कहा कि कल रात में मैंने सपना देखा है और सपने में भगवान आए हैं। भगवान ने यह कहा है कि गांव से बाहर का जो कुआं है उसमें सारे गांव वाले एक एक लोटा दूध अगर जो डालेंगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और उसके बाद में मैं बारिश करा दूंगा। गांव वालों ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो गांव वालों में से सब लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम एक एक लोटा दूध लेकर के जाएंगे और उस कुएं में डाल करके रात में आ जाएंगे। उनमें से एक गांव वाले ने सोचा कि मैं एक लोटा दूध क्यों बर्बाद करूं, मतलब बाकी के सारे लोग दूध डालने वाले हैं, अगर मैं एक लोटा पानी भी डाल दूंगा तो किसी को क्या पता चलेगा, दूध में पानी जाके मिलता है तो पानी भी तो दूध ही कहता है। तो उसने ये सोचा और वो एक लोटा पानी भर के लेके गया और कुएं में डाल दिया और चला आया। अगले दिन सुबह महात्मा के साथ में सारे गांव वाले जब कुएं के पास में पहुंचे तो लोगों ने देखा कि वहां पर एक सिंगल लोटा दूध का नहीं पड़ा हुआ था, पूरा कुआं पानी से भरा हुआ था। यानी कि पूरे गांव में किसी एक सिंगल इंसान ने दूध से भरा हुआ लोटा नहीं डाला था उस कुएं में। सबने यही सोचा कि बाकी सब तो दूध डालने वाले हैं, मेरे अकेले के से क्या हो जाएगा, तो मैं पानी डाल देता हूं। सोचिए, इसी तरह की गलतियां हम अक्सर हमारी रियल लाइफ में करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे एक के कुछ ना करने से क्या होगा, या मेरे अकेले करने से क्या होगा, मैं अकेले अगर जो कचरा नहीं फेंकूंगा तो क्या होगा, मैं अकेले अगर जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करूंगा तो क्या होगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है, और ये अकेले अकेले अकेले अकेले ऐसे मिलकर के कब जमाना हो जाता है, कब टीम हो जाती है, हमें पता नहीं चलता है। तो अगर आप वाकई में चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में बदलाव आए तो वो बदलाव हमें हमारे से शुरू करना पड़ेगा, अपने आप से शुरू करना पड़ेगा। सोचने वाली बात है ना ये, कि मतलब हम सब चाहते हैं कि हमारा जो देश है ये एकदम से अमेरिका जैसा हो जाए, ट्रैफिक रूल्स फॉलो हो, ट्रैफिक ना मिले, सड़कें चौड़ी हो, कहीं पर भी कचरा ना मिले, धूल मिट्टी ना मिले, हम ये सब चाहते हैं। लेकिन क्या उस डायरेक्शन में हम कदम उठाते हैं? कार का शीशा डाउन करके अक्सर हम पैकेट यूं ही फेंक देते हैं, कार का गेट खोल करके पिचक मुंह के अंदर का जो गुटखा था वो हम यूं ही सड़क पर थूक देते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अमेरिका जैसे बन जाएं। कोसते हैं हम सरकार को, सरकार के बस का ये नहीं है, सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती, बट क्या हम हमारे हिस्से का करते हैं? आई एम वेरी मच श्योर कि बाहर के जो देश हैं, जो साफ हैं, वहां पर सरकार से ज्यादा एफर्ट्स लोग डालते हैं। बचपन में मैंने ये कहानी सुनी थी, आई डोंट नो कितनी सच है, बट उन दिनों किताबों में आया करता था कि जापान में जो लोग हैं वो अपने बैग में सुई धागा लेके चलते हैं, अगर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं पर किसी भी बस का सीट फटा हुआ है तो वो लोग उस सुई धागे की मदद से उस सीट को सिल देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये उनके पैसे से खरीदी हुई बस है जिसका इस्तेमाल उनको ही करना है। और हमारे यहां क्या होता है, हमें हमारा विरोध जताना है, एक काम करो ट्रेन जला दो, पटरियां उखाड़ दो, हॉस्पिटल्स जला दो, बस जला दो, हम ये करते हैं। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हम प्रोग्रेस करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। कैसे? सिंपल सी बात कहने की इस पूरे एपिसोड में यही थी कि अगर आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है, अकेला चना भी भार फोड़ सकता है और बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो कभी भी किसी भी थॉट पर ये मत सोचिए कि सिर्फ मेरे करने से क्या होगा, क्योंकि आप ही के जैसे न जाने कितने लोग सिर्फ यही सोच के कुछ नहीं करते हैं कि सिर्फ मेरे करने से क्या होगा। आप करना शुरू करिए, जमाना करना शुरू कर देगा। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। स्टे ट्यून्ड।
1: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक ट्यूनिंग फॉर द बेस्ट।